मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 2 जुलाई 2026। इस समय सुबह के 5:57 होने को हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
2: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री तकाइची कल शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि पिंस प्रक्रिया खराब मौसम और जमीनी नेविगेशन सहायता उपलब्ध न होने की स्थिति में विशेष रूप से उपयोगी है। इसका विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है। झारखंड में पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। सरकार ने सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार का सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच और मरीजों के समय पर इलाज के निर्देश जारी किए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवास सहित

0: आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से ननवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। ये पहला मौका है जब डूरंड कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। इसके अलावा फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने DR कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। अंतिम 16 में इंग्लैंड का मुकाबला 6 जुलाई को सह मेजबान मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वंदना।

सुप्रभात, नमस्कार, स्नेह भरा अभिवादन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त नेहा श्रीमाली। वंदना कार्यक्रम में हम कुछ पल ऐसे बिताएंगे जो मन को सुकून दे, विचारों को सकारात्मक दिशा दे और दिन भर की भागदौड़ के बीच आत्मा को थोड़ा सा विश्राम दे। भारतीय संस्कृति में प्रार्थना केवल शब्द नहीं होती, बल्कि वह अपने भीतर झांकने का एक सुंदर अवसर भी होती है। जब मन श्रद्धा से भर जाता है तो कठिन से कठिन रास्ते भी आसान लगते लगते हैं। यही भावना लेकर शुरू करते हैं आज का वंदना का ये सफर।

कभी कभी जीवन में उत्तर तुरंत नहीं मिलते, ऐसे समय में धैर्य सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। बीज भी पहले पेड़ बनने से पहले लंबे समय तक मिट्टी के भीतर शांत रहता है। इसलिए यदि आपकी मेहनत का फल अभी दिखाई नहीं दे रहा तो विश्वास बनाए रखिए, सही समय आने पर हर प्रयास अपना रंग जरूर दिखाता है।

कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा मन ही है। यदि मन में विश्वास हो तो छोटी सी शुरुआत भी बड़े बदलाव का कारण बन सकती है। हर सुबह हमें एक नया अवसर देती है कल की गलतियों से सीखने का और आज को बेहतर बनाने का।

रिश्तों की सबसे सुंदर बात यह है कि वे प्रेम और सम्मान से मजबूत होते हैं। मीठे शब्द किसी भी पूजा से कम नहीं होते। यदि आज किसी के चेहरे पर आपकी वजह से मुस्कान आ जाए तो समझिए आपका दिन सफल हो गया। और इस भक्ति संगीत के साथ ही वंदना कार्य

आज गुरुवार 2 जुलाई को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में सबसे पहले आप सुनेंगे सुबह 7 बजे सदाबहार नगमे, 7:45 पर सुगम संगीत और 8:30 पर होगा कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर।

निर्देशक संगीत पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक। 11 बजे होगा शास्त्रीय संगीत, 11:30 पर सुगम संगीत और फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक बार फिर आप सुनेंगे दोपहर 12 बजे। सहेलियां की बाड़ी कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दोपहर 1:05 पर। गीत संगीत और मनोरंजन का माध्यम फिल्म संगीत एक बार फिर आप सुनेंगे दोपहर 1:45 से लेकर 2:15 पर। कृषि जगत का कार्यक्रम होगा दिन में 2:30 पर। और हमारी दूसरी प्रसारण सभा में युववाणी कार्यक्रम, हमारे युवा श्रोताओं का चहेता और मनोरंजन कार्यक्रम युववाणी आप सुनेंगे हमारे मीडियम वेव और एफएम दोनों चैनल्स पर एक साथ शाम 5 बजे। शाम 7 बजे होगा कार्यक्रम खेती और घर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 8 बजे। और फिल्म संगीत का ही कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:30 से लेकर रात्रि 10:30 तक। आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच लंदन में खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल क्रिकेट मैच की कमेंट्री का प्रसारण होगा रात्रि 10:30 से।

AIR at 90. मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:40 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान, भाग संख्या 126। संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

राजा दशरथ के चारों कुमार अपनी अपनी वधुओं सहित अयोध्या के राजद्वार पर पहुंचने ही वाले हैं। पूरी नगरी में मांगलिक शकुन वस्तुओं की सुगंध के साथ रानियों के मंगल गीत गूंज रहे हैं। सोने के थाल में अक्षत चंदन लेकर माताएं परिछन करने चली। धूप के धुएं से आकाश यूं आच्छादित है जैसे सावन के काले कजरारे बादल उमड़ घुमड़ कर छा गए हों। आकाश से कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा हो रही है। शुभ समय विचार कर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी तो राजा दशरथ ने शिव, पार्वती तथा गणेश का स्मरण करके समाज सहित नगर में प्रवेश किया। श्री राम की जयध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ मंगलवाणी दसों दिशाओं में प्रतिध्वनित हो रही है। अयोध्यावासी अपने राजकुमार पर वस्त्र और मणिमोती न्योछावर कर रहे हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देख सरस्वती को भी कोई उपयुक्त उपमा देते नहीं बनती। नव विवाहित कुमार और उनकी वधुएं जब राजद्वार पर पहुंची तो आनंदित माताओं ने उनकी परिछन की, आरती उतारी।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान का पाठ। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 6:50 हुए हैं। आइए सुनते हैं खेती में आज जुलाई माह के कृषि कार्य।

खेती में आज उम्र वाला हंगले किसान भाई बहनों ने नंदू भाई रो राम राम सा। देखो किसान भाई बहनों, जुलाई रो महीनो चाल रो है और अनी टाइम पे देखो आपने कशा कशा कृषि संबंधी कार्य करना है अंडे बारे में बात करा। और सबसे पहले देखो फसलारे उत्पादन की बात करा तो बाजरो, ज्वार, मक्का रे लारे, मूंग, उड़द, चावला और सोयाबीन री मिश्रित या अंतरशस्य फसल अनी टाइम पे आप ले सका सा। तिल री बुआई जुलाई रे प्रथम सप्ताह में आप कर सका। बुआई में पहले प्रति किलो बीज ने 3 ग्राम थायरम चूर्ण ने 75% WPU उपचारित करना है सा। मूंग, उड़ा, चवला 3 ग्राम थायरम 75% WP और अंडे बाद प्रति हेक्टर 600 ग्राम राइजोबियम कल्चर उपचारित करें पचे आपी जुलाई रे मध्य तक बोई सका सा। कपास में वर्का न वेवा पर सिंचाई करनी है और खरपतवार भी आपने निकाल देनी है। मूंगफली री जुमका किस्म में पौधा प्रे बुआई रे 1 माह बाद मिट्टी चढ़ावनी है। कपास में सफेद मक्खी, ग्रे विविल, जेसिड और थ्रिप्स रे नियंत्रण रे वाते कीड़ा दिखाई देवा पर आपने थाई मिठ्योर 30 EC दवा जो है 1 लीटर प्रति हेक्टर करीन आपने छिड़काव करनो है सा। खरीफ फसला में कीट व पतंगा ने नष्ट करवारे वाते प्रकाश पाश रो उपयोग अपी कर सका। अंडे वाते मानसून री वर्षा प्रारंभ तई खेतारी मेड़ा पर गैस री लालटेन या बल्ब अपी जलाई सका और अंडे नीचे 5% मिट्टी रो तेल जो है पानी में मिलायन करी बड़ा बर्तन में राखी दा। प्रकाश प्रे कातरार जो है पतंगा आकर्षित वेगा और नीचे मिट्टी रे तेल मिलिया थका पानी में गिरेगा और वनी मर जाएगा सा। किसान भी बहनों बाजरा री प्रमुख किस्म री बात करा तो MPMH 17, HHB 67-2, RHB 177, HHB 299, RHB 234, RHB 223 रो आपी 4 किलो बीज प्रति हेक्टरी दरों बोई सका सा। और कतारों कतारी दूरी 40-45 सेंटीमीटर और पौधों पौधा बीच री दूरी 10-15 सेंटीमीटर अपने रखनी पड़ेगा सा। बाजरा रे बीज ने गुंजिया या चेपा रोग बचाव रे वाते बीज ने नमक रे 20% गोल यानी 1 किलो नमक में 5 लीटर पानी में लगभग 5 मिनट तक डुबाई रखना है। तैरता थका कचरा और हल्का बीजा ने अपने निकाली जलाई देना है। बजा थका बीजा ने निखारीन साफ पानी में धो लेना है। अंत में प्रति किलो बीज 3 ग्राम थायरम 75% WP प्रति किलो बीज दर उपचारित करनो है सा। ज्वार प्रताप ज्वार 1430, CSV 31, CSV 23, HPH 837, राज विजय 1862 रो 9-10 किलो बीज प्रति हेक्टरी दरू बोनो है और कतारू कतारी दूरी जो है 45 सेंटीमीटर और पौधों पौधारी दूरी 10-12 सेंटीमीटर रखनी है। मक्का री फसल री बुआई भी मानसून आगमन रे लारे आपने करनी है। DHM 117, प्रताप शंकर मक्का 3, प्रताप कंचन 2, HQPM 1, प्रताप मक्का 9, प्रताप शंकर मक्का 1 व DHM 121 रो 20-25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टरी दर काम में लेना है। और मक्का की फसल अधिक उपज लेवारे वाते अपने बीजा ने 500 PPM या 0.5 ग्राम थायो यूरिया प्रति लीटर पानी रे गोल में 8-10 घंटा तक भिगोइन पचे छाया में हुकाइन राखनो है और पचे अवंडी बुआई करनी है। मानसून की शुरुआत वे तई सोयाबीन की उन्नत किस्म PK 472, JS 2029, JS 2034, JS 95-60 और प्रताप सोया 45 रो 80 किलो बीज प्रति हेक्टरी दरों अपी काम में ले सका सा। कतारों कतार

दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधों पौधे की दूरी अपने 10 15 सेंटीमीटर रखनी पड़ेगा सा। अब आप बागवानी की बात करा तो देखो बेर में काट छाट करनी है जनु कही है कि नया प्रोह में अधिक संख्या में फूल और फल आवेगा। काटिया थका स्थान पर अपने फफूंद नासी बोर्डेक्स रो मिश्रण रो लेप करनो है। बेर रे पौधा में वर्षों पहली अपने खाद और उर्वरक देनो है। बेर री फसल में यूरिया री आधी मात्रा देनी है। तैयार किया थका गड्ढा में फलदार पौधा रे पिंडी सहित अपने लगाना है। पपीता रे बीजा री रोपाई करवा रो काम भी अपने एनी टाइम पे आप ही कर सका सा। गड्ढा में रोपाई पहली 10 किलोग्राम अच्छी सड़ी थकी गोबर री खाद 300 ग्राम सिंकल सुपर फास्फेट और 500 ग्राम क्यूमुलोफोस 1.5% चून जरूर मिलाओ है सा। अब आप सब्जी की बात करा तो देखो करेलो तरोई टिंडो काकड़ी रीमणा और टमाटर में फल छेदक कीट नियंत्रण रेवाते प्रभावित फलाने तोड़ी भूमि में अपने गाड़ी नष्ट कर देनो पड़ेगा सा। और मेलाथियान 50 ईसी 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी रे गोल रो छिड़काव करना है और कम 3 दिन तक अपने फल काम में नहीं लेना है। रिंगणा रे पौध रोपण रे 20 दिन बाद 20 किलोग्राम नत्रजन यानी कि 44 किलोग्राम प्रति यूरिया प्रति हेक्टर की खड़ी फसल में अपने दिन सिंचित करनी है। संकर किस्म में यह मात्रा 30 किलोग्राम नत्रजन यानी कि 62 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टर रखनो है। टमाटर रे पौधा लगावा और 30 दिन बाद 30 किलोग्राम नत्रजन यानी कि 62 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टर की दर अपने खड़ी फसल में देनो चाहे। संकर किस्म में यह मात्रा 45 किलोग्राम यानी कि 110 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टर रखनो पड़ेगा सा। फूल गोभी की अगति किस्म या इम्प्रूव्ड जापानीज पूसा हाइब्रिड 2 पूसा हिम ज्योति किस्म री नर्सरी तैयार करवारो यो उचित समय है। 1 हेक्टर क्षेत्र में पौध तैयार करवा वास्ते 375 और 400 ग्राम बीज री आवश्यकता पड़ेगा सा। पत्ता गोभी री गोल्डन एकर प्राइड ऑफ इंडिया किस्म रो चयन नर्सरी में पौध तैयार करवा वास्ते आप ही कर सका। अनिवार्य 500 ग्राम बीज प्रति हेक्टर की दर उपयोग अपने करना पड़ेगा। कुष्मांड कुल री सब्जियां लौकी है तरोई है टिंडा है खीरो है आदि री फसला रे बुआई रे 25 से 30 दिन बाद नत्रजन 30 किलोग्राम यानी कि 62 किलोग्राम यूरिया और फूल आवा पर नत्रजन 30 किलोग्राम यानी कि 62 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टर री दर अपने खड़ी फसल में दें पच्चे सिंचाई करनी पड़ेगा। भिंडी री खड़ी फसल में बुआई रे 30 दिन बाद नत्रजन 30 किलो यानी कि 62 किलो यूरिया प्रति हेक्टर की दर अपने देना पड़ेगा सा। अबे आप ही फूला रे उत्पादन री बात करा तो देखो बरसात रे मौसम में गेंदा बालसम जीनिया आदि फूला री पौध तैयार करनी है। गुलदाउदी मोगरा चमेली री कलमा आप ही लगाई सका सा। कलमा में शीघ्र जड़ा विकसित करवा रे वास्ते इंडोल ब्यूटायरिक एसिड रसायन 5 ग्राम में प्रति लीटर पानी री दर गोलिन कलमा ने आधा मिनट तक डुबोइन पछे क्यारा में लगाणो है सा। गुलाब में आवश्यकता अनुसार बडिंग कर सका और जल निकास रो प्रबंधन भी आप ही कर सका सा। रजनीगंधा में बरसात न वेवा पर आवश्यकता अनुसार अपने सिंचाई करनी पड़ेगा और निराई गुड़ाई और पोषक तत्व मिश्रण रो 15 दिन रे अंतराल में छिड़काव भी अपने करना पड़ेगा। अब देखो आप औषधीय पौधा की बात करा तो देखो जुलाई माह में 2.5 × 2.5 पौधा और कतारू कतारी दूरी रखता थका खेत में 18,000 ग्वार पाठा प्रति हेक्टर अनुसार अपी रुपाई कर सका सा। अबे देखो किसान भाई बहन अपी पशुपालन और डेयरी की बात करा तो पशु ब्यावारे 2 घंटा बाद बच्चा ने खीस अवश्य पिलानो है। अधिक दूध देवा वाला पशुआरे ब्यावारे 7-8 दिन तक दुग्ध ज्वर यानी कि जिन्हें अपी मिल्क फीवर कमासा वेवा पूरी संभावना वणा ने बहुत ही ज्यादा वेवे। अंडे वाते पशु ने कैल्शियम फॉस्फोरस रो गोल 70-100 ग्राम प्रतिदिन पिलानो है। 8-10 दिन तक पूरे दूध नहीं निकालनो है। पशुआरे पेट में कीड़ारी रोकथाम करवारे वाते बच्चा पैदा वेवारे 7 दिन 25 दिन 3 माह और 6 माह रे अंतराल पर कीटनाशक दवाई रो खुराक चिकित्सक री सलाह रे अनुसार अपने देनो पड़ेगा सा। और अंडे बाद प्रत्येक 4 माह रे अंतराल पर आवश्यक देतो रहनो है। अबे आप ही हरा चारे री बात करा तो हरा चारा रे वाते लोबिया ज्वार बहु कटाई वाली चरी मक्का बाजरा और ग्वार री बुआई आप ही कर सका सा। प्रति हेक्टर रे वाते लोबिया रो 33-40 किलोग्राम ज्वार रो 40-45 किलोग्राम बहु कटाई वाली ज्वार चरी रो 20-25 किलोग्राम मक्का रो 50-60 किलोग्राम और बाजरा 10-12 किलोग्राम बीज अपने लेना पड़ेगा सा। ज्वार बाजरा या मक्का लोबिया ने 2:1:2 लाइनर मध्य एक लाइन में बोवाओ अधिक पौष्टिक व अच्छो चारो भी अपने प्राप्त वेगा। तो किसान भाई बहनों देखो जुलाई महीनो चाल रो है टाइम पे आप कशा कशा कृषि कार्य कर सका अंडे बारे में आपने जानकारी दी दी जानकारी तो देखो और भी देवर इच्छा है लेकिन घड़ी आड़ी देखा तो माने चालवारो टाइम भी रो है। तो नंदू भाई ने आज्ञा दोसा राम राम सा।

अभी आप सुन रहे थे खेती में आज जुलाई माह के कृषि कार्य। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಟ್ 90. ये आकाशवाणी उदयपुर है. इस समय सुबह के 7 बजे हैं. आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे. सदाबहार नगमे कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों का कार्यक्रम में स्वागत. और कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाजों में गाया प्रेम रोग फिल्म का.

अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म राजा हिंदुस्तानी सदाबहार नगमे का एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर से। और अब आपको सुनवाते हैं अनुराधा पोडवाल और मनहर उदास की आवाजों में राम लखन फिल्म का ये गीत।

0: राम तेरी गंगा मेली, इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की। आइए अब आपको सुनवाते हैं एक संदेश।
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
2: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला आधी दाढ़ी करा ले।
2: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
2: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
6: रुक जा बुड्ढू, वॉन्ट ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
5: तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
6: आज मैं कहता है, स्मार्ट बनो, कूल बन जाओ।
0: सदाबहार नगमे का एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर से। और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति। आवाज़ें हैं आशा भोसले और महेंद्र कपूर और साथियों की। फिल्म का नाम राम और श्याम।

और धनवानों की इस दिन

0: है चिपचोर?
1: मैं चिपचिपू।
0: क्या है चिपचोर?
1: You sing like Kishore, but शादी क्या थी?
0: Oh yes, September 8.
1: Oh, very late.
0: Darling.

0: है बुलबुल।
1: सच है बिल्कुल,
0: लग जा गले ए, लग जा गले दुनिया चले। छम छम छम छम छम छम छम एक गण हम पर

0: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में खिलौना फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत के साथ ही सदाबहार नगमे का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 7:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में पहला गीत आपको सुनवाएं, उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: जलवायु और भूख, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन दुनिया भर की खाद्य प्रणालियों को बाधित करता है, उत्पादन से लेकर उपलब्धता तक, और इससे भूख का खतरा बढ़ता है। कुछ इलाकों को शायद थोड़ा फायदा हो, लेकिन ज्यादातर जगह पर खराब मौसम, कम फसल और बढ़ती कीमतों के कारण खाद्य की कमी होने लगती है। सबसे ज्यादा असर पड़ता है गरीब लोगों पर। साथ ही अस्थिर खाद्य प्रणालियां खुद भी जलवायु परिवर्तन को बढ़ाती है। इसलिए अब हम जलवायु परिवर्तनों का सामना करने वाली खाद्य प्रणालियों पर ध्यान दे रहे हैं, ताकि भूख और जलवायु की समस्याओं से बचा जा सके। और इससे भी बड़ी बात, अशांत खाद्य प्रणालियां खुद भी जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देती हैं। इसलिए आज जरूरत है उन खाद्य प्रणालियों पर ध्यान देने की जो क्लाइमेट के बदलाव से जूझ सकती हैं, ताकि भूख और जलवायु दोनों संकट से निपटा जा सके। यह एक दिलचस्प तथ्य है, 2020 में दुनिया की लगभग 10% आबादी को निरंतर कुपोषण का सामना करना पड़ा। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
0: अभी आप सुन रहे थे जलवायु संदेश सुगम संगीत में। अब आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में गाए ये गीत।

0: जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में गए इस गीत के साथ ही सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आइए सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी उदयपुर से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सुनाया तकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सुनाया तकाची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
2: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों की दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल है। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय दान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री तकाईची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलों, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजे समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थलसेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। श्री मिस्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल है। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थयात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांधरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज

0: इस जीत के साथ ही अमेरिका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मेक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब ड्यूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 2 दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस ATF में राहत, पेट्रोल, डीजल और LPG पर इंतजार, जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी। हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमेरिका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की PM, रणनीतिक संबंधों पर जोर, PM मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर GST संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज, चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी NCR में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल NCR, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने यह खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है, उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट, चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर, दर्शनार्थियों की दौड़ में केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ, छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सिमट रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: हर सुबह उम्मीद का नया पैगाम लेकर आती है। हर किरण जिंदगी को नई पहचान दे जाती है। मुस्कुराइए, क्योंकि आपका एक मुस्कुराना किसी और की पूरी दुनिया महका जाती है। बिल्कुल, तो मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए और जुड़ जाइए अपने शहर की अपनी आवाज कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर से। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त नेहा श्रीमाली और मेरे साथ हैं अनीता। तो स्वीकार कीजिए हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
1: और नमस्कार के साथ ही हम अपने श्रोताओं को बता देते हैं नेहा के आज हमारे ग्रीन एंड गेटअवे गुरुवार में क्या है खास।
0: बिल्कुल, मॉर्निंग ब्रीफ में हम बात करेंगे विश्व खेल पत्रकारिता दिवस की, साथ ही होगी प्रमुख स्थानीय खबरें, अपडेट देंगे हम T20 विश्व कप और फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। साथ ही इको टॉक में हम बात करेंगे वन महोत्सव जो 1 से 7 जुलाई के बीच में आयोजित किया जा रहा है,
1: और उसके बाद यात्रा संवाद में हम बात करेंगे गुप्तेश्वर महादेव की, और उसके साथ ही बताएंगे आज के दिन के इतिहास के बारे में कि आज 2 जुलाई को क्या हुआ है खास।
0: बिल्कुल, और आज के इस खास प्रोग्राम में होगी कुछ खास बात रेखा सोनी से योग और स्वास्थ्य विषय पर, और इसके साथ ही होगा मनोरंजन तो मुस्कान और ढेर सारी बातें। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ
1: जी।

0: तो अनीता चार कदम, बस चार कदम हमारे साथ चल दो और हमारे सारे श्रोता भी हमारे साथ चल दिए इस नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम में। और कार्यक्रम में साथ साथ बढ़ते आगे बढ़ते हैं और अब हमारे श्रोताओं को जानकारी देते हैं स्थानीय खबरों के बारे में। तो उदयपुर की प्रतिभाशाली खिलाड़ी यशविका अनेजा ने महाराष्ट्र के नासिक में 25 से 28 जून तक आयोजित 14वीं राष्ट्रीय पेंचक सिलाट चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ यशविका राष्ट्रीय पेंचक सिलाट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली उदयपुर की पहली खिलाड़ी बन गई है। उनकी सफलता से न केवल उदयपुर और मेवाड़ बल्कि पूरे राजस्थान का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित हुआ है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण को लेकर उदयपुर पुलिस ने कल से एक माह तक चलने वाले महिला सुरक्षा संकल्प अभियान की शुरुआत की है। जुलाई में प्रत्येक बुधवार आयोजित होने वाले अभियान के पहले दिन पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों की संपर्क सभा और आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं और छात्राओं के साथ ऑनलाइन संवाद किया गया।
0: बिल्कुल। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानकारी देते हैं कल और आज सुबह खेले गए फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस के बारे में। तो श्रोताओं, फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 मुकाबलों में रोमांच लगातार बढ़ता जा रहा है। कल और आज सुबह तक खेले गए मुकाबलों की झलकियों की अगर बात करें तो इंग्लैंड ने डीआर कांगो को 2-1 से हराया। कप्तान हैरी केन ने 2 शानदार गोल दाग कर टीम को अगले दौर में पहुंचा दिया। इसी तरह बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से मात दी। बेहद रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने शानदार वापसी करते हुए जीत दर्ज की और अंतिम 16 में जगह बनाई। साथ ही अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को 2-0 से हराया। मजबूत रक्षात्मक प्रदर्शन और सटीक आक्रमण के दम पर अमेरिका ने ये मुकाबला अपने नाम किया।
1: और अब बात करें महिला टी20 विश्व कप की, तो टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला कल ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 125 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने बैथ मूनी को 36 गेंदों पर 61 रनों की शानदार पारी की बदौलत मैच 13 ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने लगातार एक और बार महिला टी20 विश्व कप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब नजर रहेगी दूसरे सेमीफाइनल पर जो आज इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात को 11 बजे शुरू होगा और इस मैच की विजेता टीम 5 जुलाई को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर होने वाले फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। क्रिकेट प्रेमियों की निगाह अब इस रोमांचक दूसरे सेमीफाइनल पर टिकी है जहां फाइनल का दूसरा दावेदार तय होगा।

0: तो नेहा, हम देखते हैं कि हर दिन कुछ खास होता है, कोई ना कोई विशेषता को लिए होता है। आज का दिन 2 जुलाई का उन खेल पत्रकारों, फोटोग्राफरों और टिप्पणीकारों, संपादकों के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है, उनके काम को सराहने का दिन। विश्व खेल पत्रकारिता दिवस जो हर साल 2 जुलाई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है।
1: बिल्कुल, आज का दिन खेल प्रेमियों के लिए खास है क्योंकि आज है विश्व खेल पत्रकारिता दिवस। अनिता, जब भी हम क्रिकेट मैच देखते हैं या ओलंपिक या फुटबॉल, तो हमें मैदान में खिलाड़ी दिखाई देते हैं, लेकिन मैदान के बाहर एक और टीम होती है जो हर पल की जानकारी हम तक पहुंचाती है, वो है खेल पत्रकार। बारिश हो, धूप हो, रात हो या विदेशी दौरा, हर जगह मौजूद रहते हैं ताकि हमें सही और तेज जानकारी मिल सके। आज के दिन हम उन सभी खेल पत्रकारों को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने खेलों को सिर्फ प्रतियोगिता नहीं बल्कि प्रेरणा बनाया है। और अगर हम बात करें इस दिवस को मनाने के लिए 2 जुलाई का दिन ही क्यों चुना गया, तो इसके पीछे का ये कारण है कि 2 जुलाई 1924 को पेरिस ओलंपिक के दौरान ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल पत्रकारों के इस शीर्ष निकाय की स्थापना हुई थी, इसलिए इसकी याद में हर साल 2 जुलाई को ये दिन समर्पित किया गया और इस दिवस की शुरुआत की 1994 में हुई थी।
0: और इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि वर्तमान समय में खेल पत्रकारिता में AI और आधुनिक डेटा एनालिसिस्ट का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। 2026 में खेल पत्रकार इस बात पर चर्चा और कार्यशालाएं आयोजित कर रहे हैं कि कैसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके खेल विश्लेषण को और बेहतर बनाया जाए।
1: बिल्कुल अनिता, मैदान पर खेलने वाले खिलाड़ियों के साथ साथ लगातार यात्रा करने वाले और कड़े डेडलाइन में दबाव में काम करने वाले खेल पत्रकारों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना भी इस साल के प्रमुख एजेंडों में शामिल किया गया है।
0: विश्व में कुछ प्रसिद्ध खेल पत्रकार हुए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो बिल सिम्पसन्स, ये ऐसे पत्रकार हैं जो अपने अनूठे दृष्टिकोण और बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं और तथ्यों को मनोरंजक अंदाज से प्रस्तुत करते हैं। शम्स चरानिया ये काफी युवा हैं, 17 साल की उम्र से खेल पत्रकारिता में अपने करियर की इन्होंने शुरुआत की और

0: 22 साल की उम्र में 2015 में याव स्पोर्ट्स के एमबीए इनसाइडर के रूप में इनको नियुक्त किया गया।
1: बिल्कुल इंटर, अगर प्रसिद्ध खेल पत्रकारों की बात ही हो रही है तो हम बात करेंगे बोमानी जोन्स। यह पुरस्कार विजेता टीवी खेल पत्रकार हैं जो पूर्णकालिक ब्रॉडकास्टर बन गए हैं। और साथ ही बात करेंगे हम हर्षा भोगले, ये विश्व के सबसे लोकप्रिय कमेंटेटरों में से एक है, उच्च सम्मानित पत्रकार और प्रस्तुतकर्ता है। एक कमेंटेटर के रूप में उनका करियर 19 वर्ष की आयु में हैदराबाद ऑल इंडिया रेडियो से शुरू हुआ। 2008 में आईपीएल के लॉन्च के बाद भारत के खेल पत्रकारिता में जबरदस्त उछाल आया और भारत के खेल पत्रकारों के लिए संभावनाएं भी बढ़ गईं।

0: हरियाली से है खुशहाली, सुंदरता मन हरने वाली, पेड़ों और प्रकृति का नाता जैसे हो बच्चों की माता। जी हाँ, प्रकृति और पेड़ों का जो नाता है उसे संवारना, उसकी रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना और उनकी देखभाल करना हम सभी का कर्तव्य है। इसी उद्देश्य के साथ 1 से 7 जुलाई तक हर साल वन महोत्सव मनाया जाता है। पर्यावरण और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह उत्सव मनाया जाता है।
1: बिल्कुल अनिता, वन महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1950 में भारत के तत्कालीन केंद्रीय खाद्य और कृषि मंत्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी द्वारा की गई थी। उनका मानना था कि पेड़ों को काटना एक अपराध है, पृथ्वी को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने चाहिए। उन्होंने इस उत्सव को एक आंदोलन का रूप दिया ताकि देश का हर नागरिक पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझे। तब से हर साल जुलाई के पहले सप्ताह में वन महोत्सव मनाया

0: जाता है क्योंकि भारत में ये समय मानसून की शुरुआत का होता है जो पौधों को लगाने के लिए सबसे अनुकूल होता है।
1: जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। और हम पेड़ लगा तो लेते हैं निहार, लेकिन उनकी देखभाल करना भूल जाते हैं जिससे पेड़ सूख जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो इसीलिए 2026 में सरकार, एनजीओ और वन विभागों का मुख्य जोर सर्वाइकल रेट को बढ़ावा देना है। पौधों को जियो टैगिंग की जा रही है ताकि उनकी निगरानी की जा सके। महानगरों और शहरों के बढ़ते कंक्रीट के जंगलों और प्रदूषण को कम करने के लिए इस साल शहरों में मियावादी पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है। पार्कों, सोसाइटी और सड़कों के किनारे बड़े पैमाने पर छायादार पेड़ लगाए जा रहे हैं।
0: बिल्कुल, और अनीता, पेड़ लगाने के अनेक फायदे हैं, ये बात तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और हमारे लिए तो सही है, साथ ही बढ़ते वैश्विक तापमान को भी नियंत्रित करते हैं। पेड़ों की जड़ें बारिश के पानी को जमीन के अंदर सोखने में मदद करती है। बारिश में जो मिट्टी बह जाती है उसे रोकती है और पक्षियों, तितलियों और छोटे जीवों का आश्रय होते हैं पेड़।
1: जी हाँ, और हर साल इस महोत्सव को एक थीम के साथ मनाया जाता है। तो 2026 की थीम है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। इस मानसून हम सब मिलकर एक खुद से संकल्प लेते हैं कि एक पेड़ अवश्य लगाएंगे और उसकी देखभाल भी अवश्य करेंगे।
0: बिल्कुल।

0: अनिता नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब हमारे श्रोताओं को बताते हैं आज के दिन का इतिहास, यानी कि आज 2 जुलाई का दिन। तो आइए जानते हैं आज के इतिहास के बारे में। इतिहास में हर दिन अपना एक विशेष महत्व है, तो 2 जुलाई के दिन भारत और विश्व में बहुत सी घटनाएं हुई जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। आज के दिन वर्ल्ड यूएफओ दिवस मनाया जाता है। इसे वर्ष 1947 में हुए यूएफओ या उड़न तश्तरी के क्रैश होने की याद में मनाया जाता है।
1: जी हाँ, और 1712 में ब्रिटिश के थॉमस सेवरी ने पहले भाप के इंजन का पेटेंट हासिल भी किया था। और 1843 में आज ही के दिन होम्योपैथी का आविष्कार करने वाले जर्मन निवासी डॉक्टर क्रिश्चियन फ्राइडरिक सैम्यूल हानेमान का निधन हुआ।

0: बिल्कुल, वर्ष 1997 में वैज्ञानिक मार्कोनी ने लंदन में रेडियो का पेटेंट करवाया था और वर्ष 1950 में स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक यूसुफ जाफर मेहर अली का आज ही के दिन निधन हुआ था।
1: 1972 में आज ही के दिन श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार भुट्टो के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इसमें तय हुआ था कि दोनों एक दूसरे के विरुद्ध न तो कोई बल प्रयोग करेंगे और न ही एक दूसरे की राजनीतिक स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप करेंगे।
0: बिल्कुल, और आज ही के दिन वर्ष 2004 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था। सीएसटी टर्मिनस को अब सीएसएमटी टर्मिनस है। वो भारत के सबसे व्यस्त स्टेशन में से एक है। ब्रिटिश काल में इसे विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था।
1: अमेरिकी आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन ने 2 जुलाई 1879 को अपने पहले व्यावहारिक ताप दीप लैंप का पेटेंट कराया था और इस आविष्कार ने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया और औद्योगिक क्रांति को नई दिशा दी।
0: और इसी तरह आज ही के दिन डेजर्ट सिल्क रेशमा, भारत की प्रसिद्ध और अनूठी पारंपरिक लोक गायिका जिन्होंने राजस्थानी लोक संगीत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई।

मीडियम वेव और एफएम बैंड आकाशवाणी उदयपुर पे दोनों ही चैनल्स पर आप एक साथ सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर। सुबह के 9 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से।

जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज ब्यावर जिले के देवमाली गांव से बीबीजी रामजी योजना का शुभारंभ करेंगे। जयपुर में चल रहे 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में आज केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह राष्ट्रीय ई

0: वन्यूज पुरस्कार प्रदान करेंगे। राज्य में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए आज से विशेष हेलमेट जागरूकता अभियान की शुरुआत और प्रदेश में मॉनसून के आज प्रवेश के आसार, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज ब्यावर जिले के मसूदा विधानसभा क्षेत्र के देवमाली गांव के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री यहां से वीबीजी रामजी योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही वे जल जीवन मिशन के तहत लगभग 418 करोड़ रुपए की विभिन्न पेयजल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम के दौरान 78 नई पेयजल टंकियों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी किया जाएगा। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इससे पहले कल मुख्यमंत्री ने जयपुर में लोक मंथन 2026 के कर्टेन रेजर कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रदेशवासियों से राजस्थान की संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर अधिक मजबूत पहचान दिलाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान शक्ति, भक्ति, विचार, वीरता, संस्कृति और लोक परंपराओं की भूमि है और हमें इस पर गर्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम भारत के लोग विषय पर आयोजित हो रहा लोक मंथन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के वैश्विक संवाद का माध्यम बनेगा।
1: ये हमारे राजस्थान की एक बहुत प्यारी संस्कृति है। आप जहां जाओगे वहीं आपको लगेगा कि उस संस्कृति में मनोहर हो, स्वागत हो, वो अपने आप में निराला मिलेगा और ये हमें आगे भी बढ़ाना चाहिए। ये आज तो राजस्थान को राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक केंद्र के रूप में अधिक प्रतिष्ठा प्रदान करेगा। आइए हम सब मिलकर इस आयोजन को केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, बौद्धिक शक्ति और राष्ट्र प्रथम के संकल्प को का महोत्सव बनाए।
0: कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि लोक मंथन भारतीय सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इस अवसर पर लोक मंथन की वेबसाइट का लोकार्पण और एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। जयपुर में आयोजित 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आज समापन होगा। समापन अवसर पर राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ये पुरस्कार ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संस्थानों को प्रदान किए जाते हैं। समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह होंगे। सम्मेलन में आज डिजिटल गवर्नेंस तथा उभरती प्रौद्योगिकी से जुड़े विषयों पर 3 प्लेनरी सत्र आयोजित किए जाएंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग जगत के विशेषज्ञ, स्टार्टअप्स तथा शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस शाखा ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए फंडिंग नेटवर्क संचालित करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस इंटेलिजेंस के अतिरिक्त महानिदेशक प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि आरोपित रफीक खान चांद शेख महाराष्ट्र के औरंगाबाद का निवासी है। इस पर आईएसआई के लिए काम करने और जासूसी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों तक धनराशि पहुंचाने का आरोप है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष जनवरी में दर्ज एक मामले की जांच के दौरान ये जानकारी सामने आई। इस मामले में जैसलमेर निवासी एक व्यक्ति और असम के डिब्रूगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर कार्यरत एक कर्मचारी को गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तानी हैंडलर तक पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही आईएएस अधिकारी भास्कर ए सावंत को एसोसिएशन का प्रशासक नियुक्त किया है। कार्यवाहक सीजे न्यायमूर्ति एसपी शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने ये आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने श्री सावंत को व्यक्तिगत रूप से एसोसिएशन की प्रबंध समिति के चुनाव 3 महीने में पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। उन्हें 29 जुलाई तक अदालत

0: हुकूमत को चुनाव कार्यक्रम से अवगत कराने को भी कहा गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए आज से विशेष हेलमेट जागरूकता और प्रवर्तन अभियान शुरू किया जा रहा है। राजस्थान पुलिस की ओर से 16 जुलाई तक चलने वाले अभियान के दौरान बिना हेलमेट और तेज गति से वाहन चलाने, अवैध पार्किंग करने तथा राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस वे पर लेन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभियान के तहत दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाले सहयात्री दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे पहले कल मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने सड़क सुरक्षा पर राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी तालमेल के साथ और जवाबदेह तरीके से काम करने के निर्देश दिए। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर बल दिया है। नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, बार बार होने वाले चुनावों से होने वाली रुकावटें कम होंगी और अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव कराने का विचार नया नहीं है और चुनाव आयोग, विधि आयोग तथा अन्य विशेषज्ञ निकायों ने समय समय पर इसकी सिफारिश की है।
1: राष्ट्र प्रथम की नीति सोच करके आज देश को वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत है कि लोकसभा और विधानसभा के सारे चुनाव साथ हों। ये सोच जो है बहुत लंबे समय से चल रही, लेकिन उसको बिल के रूप में लाने का काम पहली बार हुआ।
0: और अब मौसम। प्रदेश में आषाढ़ महीने की शुरुआत कुछ स्थानों पर बरसात के साथ हुई। राजधानी जयपुर में कई इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। भरतपुर में कल सुबह बरसात के बाद दिन भर ठंडी हवाएं चलती रहीं। कोटपूतली बहरोड जिले के कोटपूतली, विराटनगर और पावटा में कल देर रात हल्की बरसात से मौसम सुहावना हो गया। भीलवाड़ा में भी देर रात तेज हवा के साथ कुछ देर झमाझम बादल बरसे। इस बीच आज भी राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर बादल छाए हुए हैं तथा नम हवाएं चल रही हैं। हमारी हनुमानगढ़ संवाददाता ने बताया है कि वहां बादलों की आवाजाही से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के पूर्वी इलाकों से मॉनसून दस्तक देगा। उदयपुर, कोटा, अजमेर और जयपुर के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। विभाग ने 4 और 5 जुलाई को कोटा तथा उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश और एक दो स्थानों पर बहुत तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में कल से आंधी बारिश की गतिविधियां शुरू होने के आसार हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2025 का आयोजन 12 से 18 जुलाई तक किया जाएगा। आयोग के अनुसार परीक्षा के प्रवेश पत्र परीक्षा तारीख से 3 दिन पहले आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज ब्यावर जिले के देवमाली गांव से वीबीजी रामजी योजना का शुभारंभ करेंगे। जयपुर में चल रहे 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में आज केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। राज्य में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए आज से विशेष हेलमेट जागरूकता अभियान की शुरुआत और प्रदेश में मॉनसून के आज प्रवेश के आसार। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाकों में तेज बारिश के साथ बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: समाचारों के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर में। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वेव और एफएम दोनों चैनल्स पर एक साथ। और आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त नेहा और मेरे साथ हैं
3: अनीता।
2: तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में। और कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं योग और स्वास्थ्य विषय पर रानी सोनी की वार्ता।
4: नमस्कार। मन को शांत कर दे जो अंतर मन से जोड़ दे

योग वो अनमोल विधा है जो हर बीमारी का रुख मोड़ दे। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा यानी रानी सोनी का सहस्नेह नमस्कार। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होंगे। दोस्तों, सुबह की इस ताजी हवा में जब हम आंखें खोलते हैं तो हमारे सामने होती है एक अंतहीन दौड़। बच्चों के स्कूल का टिफिन, ऑफिस की फाइलें, घर के अनगिनत काम, ट्रैफिक का शोर और इन सब के पीछे कहीं छूट जाता है हमारा अपना शरीर और मन। हम दुनिया भर की खबरें रखते हैं लेकिन खुद के भीतर क्या चल रहा है इससे बेखबर रहते हैं। इसीलिए आज की इस विशेष रेडियो वार्ता में मैं बात करने जा रही हूं एक ऐसे विषय पर जो हमारी सदियों पुरानी विरासत भी है और आज के इस फास्ट फॉरवर्ड जीवन की सबसे बड़ी जरूरत भी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं योग और उसके महत्व पर। अगले कुछ मिनट मेरे साथ जुड़े रहिए क्योंकि यह चर्चा आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकती है। योग क्या है? श्रोताओ, जब हम योग शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है? किसी कठिन आसन में शरीर को मोड़ना, सिर के बल खड़े हो जाना या फिर बाबाओं को ध्यान में बैठे हुए देखना। अगर आप भी ऐसे ही सोचते हैं तो रुकिए। योग सिर्फ शरीर को मोड़ने या पसीना बहाने की कोई कसरत नहीं है। योग शब्द संस्कृत की युज धातु से बना है जिसका सीधा और सरल अर्थ है जोड़ना। अब सवाल उठता है, किसे जोड़ना? योग जोड़ता है हमारे शरीर को हमारे मन से, हमारे मन को हमारी आत्मा से। यह हमारी बिखरी हुई ऊर्जा को समेटकर हमें स्वयं से मिलाता है। हमारे महान ऋषि पतंजलि ने कहा था, योगश्च चित्तवृत्ति निरोध, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। सरल शब्दों में कहे तो यानी मन की चंचलता को शांत करना ही योग है। आज जब पूरी दुनिया मानसिक तनाव से गुजर रही है तब ये प्राचीन विज्ञान हमें जीवन जीने की एक संपूर्ण पद्धति सिखाता है। यह हमारे लिए बेहद गर्व की बात है कि भारत की इस अनमोल धरोहर को आज पूरी दुनिया नतमस्तक होकर स्वीकार कर रही है। एक दौर था जब लोग को केवल संन्यासों से जोड़कर देखा जाता था लेकिन आज यह आधुनिक लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है। श्रोताओं, आप सब जानते ही हैं कि हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में जब भारत ने इसका प्रस्ताव रखा तो रिकॉर्ड देशों ने इसका समर्थन किया। आज न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर से लेकर पेरिस के एफिल टावर तक, हिमालय की वादियों से लेकर सुदूर देशों के कॉर्पोरेट ऑफिस तक करोड़ों लोग एक साथ योग करते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि योग किसी धर्म, जाति या देश की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। यह पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग है। चलिए अब थोड़ा सा व्यवहारिक बातें कर ली जाए। आज हमारी जीवन शैली कैसी हो गई है? सुबह से शाम तक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे रहना, घंटों मोबाइल पर रील्स स्क्रॉल करना और शारीरिक एक्टिविटी के नाम पर सिर्फ अंगुलियां चलाना, परिणाम क्या है? कम उम्र में पीठ दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, मोटापा, कमजोर इम्यूनिटी और कई सारी बीमारियां। यहां पर योग एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। योग के दो सबसे मुख्य स्तंभ है आसन और प्राणायाम। पहले बात करते हैं आसनों की। जब हम ताड़ासन, भुजंगासन या सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी लचीली होती है। सूर्य नमस्कार तो अपने आप में एक संपूर्ण व्यायाम है जो हमारे सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक शरीर के हर अंग को सक्रिय कर देता है। योगा पोजेस हमारे ब्लड सर्कुलेशन को सुधारते हैं, शरीर के सारे सिस्टम पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और सारे सिस्टम सुचारू रूप से कार्य करते हैं और हम दिन भर ऊर्जावान महसूस करते हैं, एनर्जेटिक महसूस करते हैं। इसके बाद आता है प्राणायाम, यानी हमारे सांसों का विज्ञान। जब हम प्राणायाम करते हैं तो शरीर के आंतरिक अंगों पर ऑक्सीजन पहुंचती है, उनकी कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अनुलोम विलोम प्राणायाम ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर पर काम करता है, बैलेंस करता है, शरीर में कहीं भी असंतुलन हो तो संतुलित करता है। भ्रामरी प्राणायाम हमारे मन को रिलैक्स करता है।

0: गुस्सा कम होता है, चिड़चिड़ापन कम होता है, नींद अच्छी आती है। इसी प्रकार से अन्य प्राणायाम हमारे मन पर, हमारे शरीर पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। आज डॉक्टर्स भी मानते हैं कि रेगुलर योग से हाई बीपी, डायबिटीज, कमर दर्द और कई सारी बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योर किया जा सकता है। लेकिन श्रोताओं, यहां मैं एक बहुत जरूरी बात जोड़ना चाहूंगी। आजकल सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पर रील्स देख देखकर लोग कोई भी कठिन आसन करने लगते हैं। याद रखिए, सिर्फ रील्स बनाने वाले इन्फ्लुएंसर को देखकर योग करना खतरनाक हो सकता है। योग हमेशा एक सर्टिफाइड अनुभवी टीचर्स के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए, क्योंकि हर एक की बनावट और जरूरत अलग अलग होती है। गलत तरीके से किया गया आसन फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि रोजाना योग क्लास जाने का समय किसके पास है? कभी बारिश है, कभी कड़कती धूप है, कभी बहुत तेज गर्मी है, या कभी कड़कड़ाती ठंड है। ऐसे बदलते मौसम में अक्सर हमारी योग क्लास छूट जाती है और रूटीन टूट जाता है। इसका सबसे बेहतरीन समाधान है ऑनलाइन योगा क्लासेस। तकनीकी के इस दौर में अब आप लाइव ऑनलाइन क्लासेस के जरिए एक सही योग गुरु से जुड़ सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपने घर के कंफर्ट जोन में बिना किसी ट्रैवलिंग के पूरी तरह सुरक्षित रहकर नियमित अभ्यास कर सकते हैं। मौसम चाहे बाहर कैसा भी हो, आपके घर के भीतर आपका योग कभी नहीं रुकेगा। और योग में कंसिस्टेंसी यानी नियमितता ही सफलता की कुंजी है। श्रोताओं, शरीर की बीमारी तो फिर भी दवा से ठीक हो सकती है, लेकिन उस बीमारी का क्या करें जो हमारे मन को कुतर रही है? स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोमेनिया आज हर दूसरे घर की कहानी बन चुके हैं। हम बिस्तर पर होते हैं, लेकिन दिमाग में विचारों का बवंडर चल रहा होता है। यहाँ पर योग का सबसे खूबसूरत हिस्सा काम आता है, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। जब हम कुछ मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठते हैं और अपनी आती और जाती हुई सांसों को महसूस करते हैं, तो हमारा पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ये शरीर का वह हिस्सा है जो हमें शांत करता है, हील करता है। योग हमें बीते हुए कल के पछतावे और आने वाले कल की चिंता से खींचकर इस खूबसूरत वर्तमान क्षण में जीना सिखाता है। योग की सबसे बड़ी खूबसूरती जानते हैं क्या है? इसके लिए किसी महंगे जिम की मेंबरशिप नहीं चाहिए, ना कोई इक्विपमेंट चाहिए। आपको चाहिए बस एक योगा मैट या दरी, थोड़ा सा समय और अच्छा सा स्थान। यह हर उम्र के लिए वरदान है। बच्चों और युवाओं के लिए फोकस और मेमोरी पावर बढ़ाने का अचूक साधन है। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, बर्नआउट से बचने के लिए, कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए और तनाव को कम करने का साधन है। हमारे बुजुर्गों के लिए यह बढ़ती उम्र में जोड़ों के दर्द से राहत देने और शरीर को आत्मनिर्भर बनाए रखने का सहारा है। श्रोताओं, चलते चलते मैं बस इतना ही कहूंगी, योग को अपने जीवन का कोई टास्क या कोई काम मत बनाइए, इसे अपनी लाइफ स्टाइल बनाइए। रोजाना सिर्फ 15 से 20 मिनट खुद को देना कोई घाटे का सौदा नहीं है। चाहे ऑनलाइन करें या ऑफलाइन, बस किसी सही मार्गदर्शक के साथ शुरुआत करें। जब आप खुद को ये समय देंगे, तो आप पाएंगे कि आपका स्वभाव शांत, खुश मिजाज और धैर्यवान बन रहा है और शरीर ऊर्जावान बन रहा है। तो आइए आज इस रेडियो वार्ता के माध्यम से हम सब मिलकर एक संकल्प लें कि हम अपने व्यस्त 24 घंटों में से कुछ मिनट अपने सेहत के नाम करेंगे, योग अपनाएंगे और एक स्वस्थ, समृद्ध और शांत समाज का निर्माण करेंगे। याद रखिए, स्वस्थ शरीर और शांत मन ही एक सुखी जीवन का असली धन है। इसी सकारात्मक विचार के साथ धन्यवाद, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे योग और स्वास्थ्य विषय पर रानी सोनी की वार्ता।

0: झीलों की नगरी उदयपुर जो अपनी झीलों प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है और किंतु यहाँ कई धार्मिक स्थल कई धार्मिक शिवालय भी हैं जो धार्मिक दृष्टि के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता लिए हुए भी हैं। उन्हीं में से एक है उदयपुर के तितिडी के पास बसा हुआ गुप्तेश्वर महादेव जी का मंदिर।
1: बिल्कुल, राजस्थान का जो शहर है झीलों की नगरी उदयपुर, यहाँ पर स्थित है गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, एक बेहद पवित्र प्राचीन और अद्वितीय गुफा। यह मंदिर न केवल अपनी धार्मिक महत्ता बल्कि अपनी भौगोलिक स्थिति को और प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। इसे स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं द्वारा मेवाड़ का अमरनाथ भी कहा जाता है। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर उदयपुर शहर के तीतरडी यानी कि सेक्टर 9 क्षेत्र में एक ऊंची और विशाल पहाड़ी पर स्थित है। पहाड़ी की चढ़ाई, यह मंदिर एक प्राकृतिक गुफा के भीतर बना है जो पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को करीब 300 से 400 सीढ़ियों की चढ़ाई करनी पड़ती है। जैसे जैसे हम सीढ़ी चढ़ते जाते हैं और हमें आसपास की अरावली की पहाड़ियों के नीचे बसे उदयपुर शहर का बेहद खूबसूरत और विहंगम दृश्य दिखाई देता है। यहाँ की ठंडी हवाएं चढ़ाई की थकान को मिटा देती है।
0: गुप्तेश्वर शब्द का अर्थ होता है गुप्त रूप से निवास करने वाले ईश्वर। प्राचीन गुफा ऐसा माना जाता है कि गुफा सदियों पुरानी है और प्राचीन काल में यहाँ साधु संत गुप्त रूप से आकर भगवान शिव की कठिन तपस्या किया करते थे। अमरनाथ जी से तुलना जम्मू कश्मीर के अमरनाथ मंदिर की तरह ही इस मंदिर में भी शिव भक्तों को एक सक्रिय प्राकृतिक गुफा के अंदर जाकर भगवान शिव के दर्शन होते हैं। गुफा का प्रवेश द्वार काफी छोटा है और सकड़ा भी है, जहाँ श्रद्धालुओं को झुककर या बैठकर अंदर जाना जाता है। एक बेहद रोमांचक और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है।
1: बिल्कुल अनीता, गुफा के गर्भगृह में एक प्राचीन और स्वयं प्रकट हुआ शिवलिंग स्थापित है। गुफा के भीतर का शांत वातावरण, वहाँ की सकारात्मक ऊर्जा भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देती है। मंदिर परिसर और गुफा के भीतर प्राचीन काल से ही धार्मिक अनुष्ठान और अखंड ज्योत जलाने की परंपरा चली आ रही है। श्रावण महीने के पूरे महीने में यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। इस दौरान पूरे मंदिर को फूलों और लाइटों से

0: सजाया जाता है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर यहाँ एक विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें उदयपुर ही नहीं बल्कि दूर दूर से लाखों श्रद्धालु बाबा गुप्तेश्वर के दर्शन करने आते हैं।
1: वैसे तो देखो, कोई भी मंदिर हो, कोई भी शिवालय हो, कोई भी जगह हो, जाने का समय हमेशा अच्छा ही होता है। जब भी आपके मंदिर भाव हो, आप मंदिर जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि पहाड़ियों के बीच बचा है, हरियालियों के बीच बसा है ना, गुफा के बीच है, इसलिए कहा जाता है कि सबसे अच्छा समय मानसून का होता है या फिर होता है सर्दियों का।

0: क्योंकि पहाड़ियों के बीच बचा है, हरियालियों के बीच बसा है ना, गुफा के बीच है, इसलिए कहा जाता है कि सबसे अच्छा समय मॉनसून का होता है या फिर होता है सर्दियों का, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियां हैं, तो चढ़ने में जिनको थोड़ी सी कठिनाई हो, जैसे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो अपने आप को बुजुर्ग मानते हैं, जो चल नहीं सकते, सीढ़ियां ज्यादा चढ़ नहीं सकते हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान से जाना चाहिए, क्योंकि पहाड़ी है और सीढ़ियां ज्यादा है।
1: बिल्कुल, धीरे धीरे और आराम से अगर चढ़ेंगे तो वे भी बाबा गुप्तेश्वर मंदिर के दर्शन आराम से कर सकेंगे।
0: जी,
1: और अब अनीता कार्यक्रम में आगे भी बढ़ते हैं और घड़ी की अगर तरफ देखें तो समय हो रहा है हमारे श्रोताओं से विदा लेने का, तो उन्हें छोड़े जाते हैं इस गीत के साथ। तो दीजिए आज के कार्यक्रम से आपकी रेडियो दोस्त नेहा
0: और अनीता को इजाजत।
1: नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे नमस्कार उदयपुर, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश उमंग कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं।
2: और मैं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
1: लिखते हैं, मित्रता एवं रिश्तेदारी परस्पर सम्मान पर टिकी होती है।
2: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
1: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुरदीप और बेबी किरत अवाना ने लिखा है।
2: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम उमंग के तहत 3 जून 2026 को प्रस्तुत गोबी शीत मरुस्थल की भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक जानकारी हमारे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। साथ ही प्रेरणादायी कहानी दोस्त की पहचान ने सच्ची मित्रता के गुणों को समझने की महत्वपूर्ण सीख हमें दी। ऐसे रोचक शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कार्यक्रमों की भविष्य में भी आपसे अपेक्षा है। आपके उत्कृष्ट प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद।
1: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडे और संजय मार्कंडे जी लिखते हैं।
2: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। समावेशी शिक्षा पर प्रोफेसर भारती जी द्वारा दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी महत्वपूर्ण थी। साथ ही गुजरे सप्ताह शीत मरुस्थल पर बेहद शानदार जानकारी दी गई। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी को हमारे बच्चों ने छुट्टियों में बड़े ध्यान और लगन से सुना और वे इस पर अमल भी कर रहे हैं, इसलिए हम उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम का हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं।
1: हम भी आपका हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं संदेश भेजने के लिए।
2: अगला संदेश हमें मिला है नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा ऋषभ कनक और भावना वर्मा जी का।
1: ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे।
2: आप सभी श्रोताओं को हमारी ओर से आभार खूबसूरत संदेशों को भेजने के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी बहुमूल्य खनिज सोने के बारे में
1: और अब चलते हैं आगे और चर्चा करते हैं एक और खनिज के बारे में। तो अजीत जी, जरा उस खनिज का नाम तो बताइए।
2: जी विमलेश जी, वो तो बताऊंगा, लेकिन इस बार कुछ हिंट के साथ।
1: तो दीजिए हिंट।
2: हिंट है, ये खनिज सोने से भी अधिक मूल्यवान माना जाता है। इसकी चमक अत्यंत आकर्षक है
1: जी।
2: इसे तराशा जाता है और हाँ, ये कांच काटने के काम भी आता है।
1: जी अजीत जी, मैं समझ गई, ये कहीं हीरा तो नहीं?
2: बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ श्रोताओ, ये हीरा है। ये खनिज पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी प्राकृतिक पदार्थ से अधिक कठोर है। हीरे के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि कितने लोग ये जानते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आइए देते हैं इस रोचक चर्चा को विस्तार।
1: श्रोताओ, हीरे का निर्माण होता है पृथ्वी की गहराइयों में। अगर आप पूछें कि कितनी गहराइयों में, तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर नीचे पृथ्वी की परत मेंटल में बनता है।
2: आपको हम ये भी बता दें कि कोयला और हीरा दोनों ही मुख्य रूप से कार्बन से बने होते हैं
1: जी।
2: लेकिन हीरा बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है।
1: श्रोताओं, जैसा कि अभी हमने सुना था कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर से भी अधिक गहराई में बनता है, आइए जानते हैं क्या होता है उन गहराइयों में।
2: श्रोताओं, पृथ्वी की गहराइयों में लगभग तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है और वहाँ का दबाव वायुमंडलीय दबाव से हजारों गुना अधिक होता है।
1: इन अत्यधिक दबाव वाली परिस्थितियों में कार्बन के परमाणु एक विशेष क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण हीरा बनता है। इस प्रक्रिया में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। लेकिन अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। अभी हमने जाना कि हीरे पृथ्वी की सतह से 150 से भी अधिक गहराई में बनते हैं। इतनी गहराई तक उत्खनन तो असंभव है, तो फिर हीरे तक हम कैसे पहुँचे?
2: सचमुच ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है। विवेश, यदि हीरे इतनी गहराई में ही बने रहते तो हम उन्हें कभी देख ही नहीं पाते। होता ये है कि ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण मैग्मा यानी धरती के अंदर की पिघली चट्टानें तीव्र गति से ऊपर उठती हैं और वे साथ साथ हीरों को भी पृथ्वी की सतह के बहुत करीब ले आती हैं
1: और फिर हम उन्हें उत्खनन द्वारा निकाल लेते हैं। श्रोताओ, वैज्ञानिक दृष्टि से हीरा शुद्ध कार्बन है। आपको बता दें कि हीरा और आपके घर में पाए जाने वाले पेंसिल के नोक ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं। अंतर केवल परमाणुओं की व्यवस्था का है।
2: पता है श्रोताओ, हीरे को यदि अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन में जलाया जाए तो अंत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वो बदल सकता है। श्रोताओ, एक बात और आपको बता दें, आजकल आभूषणों और उद्योग में इस्तेमाल होने वाले हीरे प्रयोगशालाओं में ही बनाए जाते हैं।
1: लेकिन एक खास बात यह है कि कृत्रिम रूप में हीरों को बनाने के लिए छोटा प्राकृतिक

0: हीरा इस्तेमाल किया जाता है जिसे डायमंड सीड कहा जाता है। इस सीड के द्वारा प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करके हीरा बनाया जाता है। एक बात जरूर है कि प्राकृतिक रूप से हीरा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन कृत्रिम रूप में इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है।
1: लेकिन इसे बनाने की विधा या फॉर्मूला हमें प्रकृति से ही मिलता है, तो हम याद रख सकते हैं कि पृथ्वी की गहराइयों में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो कार्बन के क्रिस्टल बनते हैं उन्हें हम हीरा कहते हैं।
0: तो श्रोताओं, आप कह सकते हैं कि आपके हाथ में चमकता हुआ हीरा वास्तव में पृथ्वी की गहराइयों में लाखों करोड़ों वर्ष पहले बना हुआ एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है।
1: जी, तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हीरे की। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है, डायमंड सीड किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: डायमंड सीड किसे कहते हैं?
1: आप हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है जिसके द्वारा पशु पक्षियों के प्रति दया और प्रेम भाव रखने का संदेश दिया गया है।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो उद्यान के बाहर कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे जो शाक्य गणराज के राजा थे जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
2: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
4: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं।
2: ओह, देखो एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है। हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
4: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया। भला इसका क्या दोष है?
5: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
4: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है?

0: गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो। मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा तौर पर राजवैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ। हाँ मित्र, अभी जाता हूँ।
1: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हो।
2: कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ,

0: मार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था। वो इधर ही कहीं आया है।
1: तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है।
0: ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
2: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
1: हाँ, तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
2: क्यों दे दो?
0: क्यों दे दो? ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है।
1: भाई इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
2: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
1: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
3: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था। प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
4: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
0: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है जिसे मैंने मारा था। वे मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
4: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
2: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
4: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
2: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
0: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
2: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
4: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है।
5: क्या आप कोई
4: मार्ग सुझा सकते हैं?
5: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
4: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे? आज्ञा है
5: महाराज। मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
3: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
6: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा? इस दुकान में बैठ से सिद्धार्थ से मिलना चाहिए था। नहीं जा रहा है। रात में बताया होगा कैसे? इस बारे में क्या है?
5: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
7: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
3: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
5: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा

0: राजहंस को अपने पास बुलाए।
1: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
2: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी। हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
3: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूं कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
4: महाराज जय हो, महाराज जय हो, महाराज जय हो।
5: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय।
6: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलर्ट हूँ मैं, चंचल हूँ मैं, जल्दी सीख भी जाती हूँ।

0: महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हमारा आदित्य।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें भारत के सौर मिशन की विस्तार से जानकारी दी गई है।
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0।
4: दिन था 2 सितंबर 2023, स्थान इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, समय भारतीय समय अनुसार ठीक 11:50, जब अंतरिक्ष यान आदित्य L1 की गगनभेदी गर्जना से आकाश गूंज उठा। लाखों करोड़ों लोगों ने सारी दुनिया में इस दृश्य को टेलीविजन पर देखा।
5: श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 के पहले सूर्य मिशन को लॉन्च कर दिया गया।
4: रेडियो पर समाचार प्रसारित हुए और दूसरे दिन के सभी अखबारों ने इसे अपने मुख पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा। शीर्षक था आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत विश्व की चौथी महाशक्ति बना। आज कक्षा में बड़े उत्साह का वातावरण है, क्योंकि विद्यालय के विशेष निमंत्रण पर आज जाने माने स्पेस जर्नलिस्ट श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं, जो सौर्य यान आदित्य के बारे में बातचीत करेंगे।
6: क्या तुम्हें पता है कि श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं? क्या वो चंद्रयान के बारे में बात करेंगे?
7: मुझे लगता है वो आदित्य यान के बारे में बात करेंगे।
6: चलो देखते हैं वो किस यान के बारे में बात करेंगे।
8: हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब?
9: हम अच्छे हैं।
8: तो बच्चों, शुरू करते हैं बातचीत। आप तैयार हैं?
9: जी हम तैयार हैं।
8: तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं भारत के सौर्य यान आदित्य L1 के बारे में।
9: आदित्य L1 के बारे में?
10: बच्चों शांत हो जाओ, आप बारी बारी सर से सवाल पूछ सकते हैं।
6: सर, इसका नाम आदित्य क्यों पड़ा?
8: बहुत अच्छा सवाल। देखो, आदित्य एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सूरज यानी सूर्य। अच्छा चलो बताओ, सूर्य के लिए और कौन कौन से शब्द हैं?
6: सर, टीचर ने बताया था कि सूर्य को रवि और भास्कर भी कहते हैं।
8: बहुत अच्छे। चलो अब मेरी ओर से एक खास सवाल। अच्छा तो अब ये बताओ कि क्या तुमने किसी वैज्ञानिक का नाम सुना है जिनके नाम में भास्कर शब्द जुड़ा है?
6: जी सर, उनका नाम है भास्कराचार्य।
8: अरे वाह, तुम्हारा क्या नाम है बेटी?
6: जी, मेरा नाम श्रुति है।
8: शाबाश श्रुति। तुम्हें बता दूं कि भास्कराचार्य प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। हाँ, तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। क्या आप जानते हैं कि सूर्य क्या है? मेरा मतलब है कि सूर्य ग्रह है या तारा है?
10: सूर्य ग्रह है या तारा?
8: अरे सोचो सोचो, जो जवाब देगा या प्रश्न पूछेगा वो सबसे पहले अपना नाम बताएगा।
6: सर, मेरा नाम सुमित है। सूर्य एक ग्रह है।
8: सुमित, तुमसे जरा सी भूल हो गई। सूर्य असल में एक तारा है।
9: अच्छा सर।
7: सर, मेरा नाम सोहम है। मेरा प्रश्न यह है कि सूर्य इतनी गर्मी कैसे देता है? क्या वहाँ आग जलती है?
6: और अगर जलती है तो वहाँ आग किसने लगाई होगी?
8: बच्चों, दरअसल सूर्य में गर्मी आग जलने से नहीं होती। सूर्य ऐसी गैसों से बना है जो बहुत गर्म होती हैं, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन।
7: हीलियम और हाइड्रोजन सर?
8: हाँ, सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों का एक विशाल गोला है।
7: विशाल गैसों का गोला? अब समझ आया कि सूर्य इतना गर्म कैसे होता है।
8: शाबाश,

तो सुनिए अपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब

0: समझ गए ना?
1: जी सर।
2: सर जिस तरह से चंद्रमा पर जाया जा सकता है, क्या उसी प्रकार सूर्य पर भी जाया जा सकता है?
0: बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो, सूर्य का तापमान इतना अधिक है कि वहाँ चंद्रमा की तरह नहीं जाया जा सकता। हाँ, एक निश्चित दूरी से सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए तो हमारे देश ने सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा।
2: सर, आदित्य अंतरिक्ष यान के बारे में हमें विस्तार से बताइए ना।
0: जरूर बच्चों, देखो आदित्य L1 चंद्रयान की तरह ही एक यान है जिसका कार्य है सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना।
1: जी सर।
0: जैसे ये किस समय कैसा होता है, इसका तापमान स्थिर रहता है या घटता बढ़ता है, और इसका क्या प्रभाव हमारी पृथ्वी या सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर पड़ता है।
2: सर, हमने आपके लेख में ही पढ़ा है कि आदित्य यान ने सूर्य के कई फोटोज पृथ्वी पर भेजे हैं।
0: हाँ, सही कहा। आदित्य यान का मुख्य उद्देश्य सूर्य की बाहरी परतों का अध्ययन करना है। इन तस्वीरों से हमें तूफानों और अंतरिक्ष के मौसम की बेहतर जानकारी मिलेगी, जिससे भविष्य में संचार और उपग्रह सेवाओं को सुरक्षित रखने में हमें बड़ी मदद मिलेगी।
2: सर, मेरा नाम दिवाकर है।
0: भाई वाह, दिवाकर का मतलब भी तो सूर्य ही होता है ना?
1: जी सर।
0: जी दिवाकर, आपका प्रश्न क्या है?
2: सर, मेरा प्रश्न है, यदि सूर्य इतना गर्म है तो आदित्य यान उसके पास जाकर तस्वीरें कैसे भेज रहा है? क्या वो जल नहीं जाएगा?
3: अरे भला जलेगा कैसे, आदित्य यान सूर्य से एक सुरक्षित दूरी पर है, करोड़ों किलोमीटर दूर, समझे?
2: जी सर। सर, आदित्य यान का पूरा नाम आदित्य L1 क्यों है? L1 का क्या मतलब है?
0: देखो बेटी, L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। ये बिंदु अंतरिक्ष का एक विशिष्ट स्थान होता है जो सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। इस स्थान से सूर्य को लगातार बिना किसी रुकावट के देखा जा सकता है, और ये देखा गया है कि अंतरिक्ष यान लगभग स्थिर रहता है। लैग्रेंज बिंदु 1 से 5 तक होते हैं।
2: सर, एक बार जब सूर्य ग्रहण लगा था तो हमें विशेष प्रकार की किट दी गई थी और कहा गया था कि इसी किट के द्वारा सूर्य को देखें। ऐसा क्यों?
0: बेटा सोहम, सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही नहीं, सूर्य को कभी भी प्रत्यक्ष आंखों से देखना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन आदित्य यान ने जो तस्वीरें हमें भेजी हैं, उन्हें देखकर हमें पता चलता है कि सचमुच कितना अद्भुत है हमारा सूर्य।
2: सर, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी बड़े होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगी, चंद्रमा और दूर दूर के तारों के बारे में पढ़ूंगी और अंतरिक्ष यान भी भेजूंगी।
0: शाबाश बच्चों, शाबाश। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, और देश का नाम हमेशा रोशन करो।
4: साथियों, अभी आपने सुनी जानकारी L1 यानी आदित्य यान के बारे में। कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ये भी पता लगाइए कि और कौन कौन से यान अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजे गए हैं।
5: हमारा आदित्य, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत का आज का ये कार्यक्रम आधारित है शीर्षक संगीत पर। आज के इस विशेष फिल्म संगीत कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त नेहा। तो साथियों स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगले एक घंटे तक हम साथ साथ तय करेंगे संगीत की एक बेहद खूबसूरत यात्रा। आज के इस कार्यक्रम का शीर्षक है दिल। कहते हैं इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका दिल होता है। यही दिल कभी मुस्कुराता है, कभी रूठ जाता है, कभी किसी की यादों में खो जाता है, तो कभी किसी की धड़कनों में अपना घर बना लेता है। शायद यही वजह है कि हिंदी फिल्मों में दिल पर सबसे ज्यादा गीत लिखे गए हैं।

दिल की जुबान लफ्जों की मोहताज नहीं होती, कुछ धड़कनें खामोश होकर भी बात करती है। जो दिल तक पहुंच जाए वही असली रिश्ता है, बाकी तो मुलाकातें बस मुलाकात होती है।

दिल की दुनिया भी बड़ी अनोखी होती है। कभी ये किसी को देखकर तेज धड़कने लगता है, तो कभी किसी की एक मुस्कान पूरे दिल को खूबसूरत बना देती है। दिल से निकली दुआएं

0: पापा
1: लाइए 3,000।
2: क्यों भाई?
1: मेरी पॉकेट मनी।
2: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
1: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ।
2: है
1: नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
2: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
1: अपना मोबाइल लाओ,
2: ले ले।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: दादा कौन सा प्लान है?
6: टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
7: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
5: दादी रुको, चंदना क्लिक मत करना।
7: क्यों?
5: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
7: थैंक्स बप्पू, बचा लिया। ये रे तेरी समझदारी का फल।
8: आज मैं कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।

0: फिल्म स्टाइल गया है पटल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड बेस OTT ऐप नाउ

हिंदी फिल्मों में दिल कभी खिलौना नहीं बना, बल्कि हर एहसास का सबसे सुंदर रूप बनकर सामने आया। प्यार हो, दोस्ती हो, इंतजार हो या जुदाई, हर भावना की शुरुआत भी दिल से होती है और मंजिल भी दिल ही होता है। दिल का रिश्ता दुनिया के हर रिश्ते से अलग होता है। इसे ना कोई तराजू तोल सकता है और ना कोई बाजार खरीद सकता है। जिस दिल में अपनापन बस जाए वो घर बन जाता है, और जिस दिल में मोहब्बत बस जाए वो सफर बन जाता है।

दोस्तों, अगर दिल खुश हो तो छोटी सी बात भी त्योहार लगती है, और अगर दिल उदास हो तो बड़ी बड़ी खुशियां भी फीकी पड़ जाती हैं। इसलिए कहा गया है, दिल को खुश रखना भी एक इबादत है, क्योंकि मुस्कुराता हुआ दिल कई और चेहरों पर मुस्कान लेकर आता है।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

लता मंगेशकर की आवाज में मुकद्दर का सिकंदर इस फिल्म के गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह सफर अब यहीं समाप्त होता है। शीर्षक संगीत में आज का हमारा शीर्षक था दिल।

0: शीर्षक गीत पर आधारित कार्यक्रम अभी आपने सुना, प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से हो रहा था। सवेरे के ठीक 11 बज चुके हैं। आइए आपको सुनवाते हैं शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में राग सुधा वसंत आज हम आपको सुनवाएंगे। उससे पहले सुनते हैं संदेश और उसके बाद आनंद लीजिएगा शास्त्रीय संगीत का।
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
2: हाँ यार।
1: अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
2: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
2: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
2: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
2: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
6: रुक जा बुड्ढू,
7: वाओ, ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
5: तू समझ गई ना, रिलैक्स।
7: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
8: आज मैं कहता है, स्मार्ट बनो, कूल

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान में एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सुनते हैं शास्त्रीय संगीत सरोद वादन, उस्ताद अलाउद्दीन खान की आवाज इसमें है।

0: शास्त्रीय संगीत में राग सुधा वसंत आज आपने सुनी। प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से हो रहा था। सवेरे के 11:30 हो चुके हैं। आप हैं आरजी एकता के साथ और अब आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत में चंद गजलें। पहली गजल तलत अजीज की आवाज में।
1: हमने दुनिया में आके क्या देखा, देखा जो कुछ सो ख्वाब सा देखा। है तो इंसान खाक का पुतला, लेक पानी का बुलबुला देखा। अब न दीजिए जफर किसी को दिल कि जिसे देखा बेवफा देखा।

0: पापा लाइए 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ।
1: है
0: नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ,
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: दादा कौन सा प्लांट है?
5: टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
6: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
4: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
6: क्यों?
4: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल होंगे चोरी।
6: थैंक्स पप्पू, बचा लिया। ये रे तेरी समझदारी का फल।
7: आज मैं कहता है स्मार्ट बनो, बोल रहा
8: हूँ। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है, अभी आपने सुनी थी चंद गजलें। दोपहर के ठीक 12 बजे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में पहली आवाज राहत फतेह अली खान साहब की है।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में मोहित चौहान की आवाज में बेहतरीन सा नगमा अभी आपने सुना। प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से हो रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं सलीम मर्चेंट की आवाज में एक और बेहतरीन सा गीत फिल्म पाठशाला से।

कोई आपसा फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें इसमें थी। कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत का, शाश्वत सचदेव और शहजाद की आवाज में एक और प्यारा सा गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म पद्मावत से।

0: नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो ये फटा है, सुन कते फटे हैं पुराने नोट को
0: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ नया नोट मिलेगा?
2: हाँ,
1: जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
0: आज मैं कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
3: ये देख कैसे।
0: हैप्पी बर्थडे भाई।
3: दिखा
4: हाँ मेरा फेवरेट कलर
5: हमेशा शॉपिंग।
6: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट?
7: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
8: आई नो पा, सेव करो सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
9: आई नो ना।
8: आरबीआई कहता है
10: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
11: संदेश के बाद एक बार आपको फिर से सुनवाएंगे प्यारा सा गीत फिल्म अनवर से रूप कुमार राठौड़ और साथियों की आवाजों में।

अनवर फिल्म से अभी आपने ये प्यारा सा नगमा सुना, प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से हो रहा है। आप ही आरजे एकता के साथ और एक और प्यारा सा गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म काइट से, केकी की आवाज इसमें है।

फिल्म जोश से आपने ये बेहतरीन सा नगमा सुना। आइए आपको सुनवाते हैं एजेंट विनोद फिल्म का ये प्यारा सा गीत, अरिजीत सिंह की आवाज़ इसमें है।

0: फिल्म संगीत का लुत्फ आप उठा रहे हैं, एक से एक बेहतरीन गीत आप सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं जरा हटके जरा बचके फिल्म से। अरिजीत सिंह सचिन जिगर की आवाजों में बेहतरीन सा नगमा पेश है आपकी खिदमत में, सुनते हैं।
1: बदलते

तो इसी प्यारे से गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम भी यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं, दोपहर के 1 बजने को है और जुड़ते हैं आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से और वहां से हम सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश के मुक्कावरीपल्ली गांव से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया। इस योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी। इधर राजस्थान में अभियान की राज्य स्तरीय शुरुआत ब्यावर जिले के देवमाली गांव से हो रही है। पंचायत समिति में हो रहे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वीबीजी रामजी का शुभारंभ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री यहां से जल जीवन मिशन के तहत लगभग 418 करोड़ रुपए की विभिन्न पेयजल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही 78 नई पेयजल टंकियों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को और आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। अलवर में अब कचरे से बिजली बनाई जाएगी। राजधानी जयपुर के बाद अलवर प्रदेश का ऐसा दूसरा शहर होगा जहां वेस्ट टू एनर्जी परियोजना के तहत कचरे से बिजली का उत्पादन होगा। अलवर नगर निगम ने इसके लिए वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। संयंत्र में रोजाना लगभग 1000 टन ठोस कचरे का उपयोग किया जाएगा। इससे शहर में एकत्रित कचरे के निस्तारण में भी सहायता मिलेगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी जोधपुर के वैज्ञानिक अब ब्रह्मांड से जुड़े शोध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगदान देंगे। संस्थान के दो वैज्ञानिकों को यूरोप की वैज्ञानिक संस्था सीईआरएन सर्न की एटलस परियोजना से जोड़ा गया है। ये परियोजना दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक

0: अनुसंधान पहलों में से एक है। इसके लिए मशीन लर्निंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इस शोध के माध्यम से वैज्ञानिक ब्रह्मांड की संरचना, सूक्ष्म कणों के गुणों और नए वैज्ञानिक सिद्धांतों की संभावनाओं का अध्ययन करेंगे। भरतपुर जिले के रायपुर गांव के पास आज एक सड़क दुर्घटना में दो महिलाओं की मृत्यु हो गई जबकि 13 अन्य घायल हो गईं। ये दुर्घटना उस समय हुई जब ये महिलाएं काम के लिए जा रही थीं और उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। घायल महिलाओं को भरतपुर के आरबीएम जिला अस्पताल पहुंचाया गया है जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने प्रदेश में दस्तक दे दी है। मॉनसून इस बार सामान्य से एक सप्ताह की देरी से प्रवेश किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में इसके आगे बढ़ने की उम्मीद है। आज उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में गरज के साथ मध्यम बरसात की संभावना है। कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं कोटा संभाग के जिलों में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश के आसार हैं। विभाग ने अगले पूरे हफ्ते जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर में बारिश की गतिविधियां जारी रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था आज जम्मू से रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालटल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठे हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थ यात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है। ये यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडिया वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:05 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सहेलियारी बाड़ी।

0: राम राम ममता बैसा राम राम
1: राम राम अनुश्री बैसा राम राम
0: सहेलिया री बाड़ी कार्यक्रम होनवा वाली हंगले बेना ने और जो भाई लोग होनीरा वे वणा ने भी आपानो
1: राम राम सा।
0: देखो ममता बैसा कार्यक्रम रो टेम वेवे है और आपा लावा आपानी ये गाठरी जनिमी ने वेवे भात भातरी जानकारी रूपाला रूपाला गीत कई भी योजना वेवेत वंडी जानकारी अंडे अलावा कई भी वार दिवस वेवेत वंडी भी जानकारी आपा लावा संस्कृति जुड़ी तकी वाता भी आपा करा और बेना ने आगे बढ़ा वारी बात भी आपने कार्यक्रम में वेवे है। तो आज आप हंगलों पहले आपने बेनम बात करा कि जो महिला उद्यमिता है वंडा नवा अवसर कई कई वे सके है।
1: बिल्कुल सा। देखो आज आप एक ऐसा विषय पे चर्चा करी ना जो केवल अपने महिला रे अपने बेना रे जीवन में बदलाव ले रो है बल्कि जो अपनी देश की अर्थव्यवस्था है वने भी नई दिशा दे रो है। आपनो आज रो विषय आप बतायो कि भाई महिला उद्यमिता रा नया अवसर। तो देखो समय रे लाए रे महिला री जो भूमिका है वणी में निरंतर परिवर्तन आई रो है सा।
0: बिल्कुल पहली जटे आपने बेना खाली परिवार और घर रो जो कामकाज है वटे सीमित रहती वटे वे आज देखो शिक्षा विज्ञान कृषि उद्योग व्यापार और दूसरा जो सेवा क्षेत्र है वड़ा में भी अपनी प्रतिभा रो परिचय दे रही है। आज घनी हारी में ना जो है नौकरी करवा रहे साथ साथ अपन और स्वयं रो व्यवसाय भी सफलता पूर्वक चल रही है और ये उद्यमिता है जो बेना ने आत्मनिर्भर बनावा रहे साथ साथ दूजारे वास्ते भी रोजगार रा अवसर पैदा करवा रो मौको देवे है।
1: बिल्कुल बढ़िया बात की दिशा। और देखो वर्तमान टाइम पे आप देख ही रहा की अपनी जो महिला है वनारे वाते स्वरोजगार नया अवसर उपलब्ध है। यदि आप देखा कोई महिला रे पास में कोई विशेष कौशल है तो वह अपने व्यवसाय रो रूप देने अच्छी आय अर्जित कर सके। जैसे व्यवसाय की बात करा तो उन्हीं में सिलाई वेगी कढ़ाई वेगी बुनाई है ब्यूटी पार्लर है बेकरी है रेडीमेड वस्त्र निर्माण है अगरबत्ती बनाणो मोमबत्ती बनाणो साबुन मसाला पापड़ अचार जेम जेली जैसा हस्त निर्मित सजावटी वस्तुओं निर्माण करीने कई तरीका रा काम महिला कर सके जना में उन्होंने कम पूंजी भी व्यवसाय शुरू कर सके सा।

0: अच्छी बात है सा। और देखो अंडे ला रहे अपन ग्रामीण क्षेत्र बेनारी वाता कर रहा, तो देखो उद्यमिता आनी में भी तेजियों आगे बढ़ी रही है। डेयरी व्यवसाय है, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, जैविक खेती, औषधीय पौधा की खेती और फुलारी खेती जैसे जो काम है अपनी बेना करी रही है और ये बनारा आय रहा अच्छा स्रोत बनी गया है। स्वयं सहायता समूह माध्यमों बेना मिलियन उत्पादन करे है और अपना उत्पादन रो विपणन भी करे और आर्थिक रूप वे मजबूत बनी रही है।
1: और देखो डिजिटल तकनीक की बात करा तो महिला उद्यमिता ने यह भी एक नई उड़ान दे दी है। आज मोबाइल फोन इंटरनेट सहायता महिला अपने उत्पाद प्रचार प्रसार कर रही है। सोशल मीडिया के माध्यम ग्राहक आसानी वाणों जोड़ी रहा है। ऑनलाइन भुगतान की सुविधा ने व्यापार ने और भी सरल बनी दी दो। अभी घर बैठा तक देश रिचे विभिन्न हिस्सा में अपना उत्पाद पहुंचाई सके और जो भी संभव वेगियो है बदला विशेष रूप वना महिला रे वाते लाभदायक भी है। जो पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण घर उबाने नहीं जा सके वे भी अपना व्यवसाय कर सके सा।
0: बिल्कुल सा। और लारे लारे अगर आप सरकार की बात करें देखो जो सरकार है वे भी महिला उद्यमिता ने बढ़ावो देवार वास्ते घनी योजना चल रही है। और आप ये देखा हाँ कि स्वयं सहायता समूह है, आजीविका मिशन है, ग्रामीण आजीविका मिशन है और बात बात प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम जो लाखों लाख महिलावा है जो वे आत्मनिर्भर बनी रही है।
1: और देखो महिला उद्यमिता केवल आय बढ़ावा रो माध्यम नहीं है बल्कि यो महिला में आत्मविश्वास रो निर्माण, निर्णय लेवारी क्षमता, नेतृत्व विकास भी करे है। यदि एक महिला आर्थिक रूप से सशक्त हुई जाए तो वह अपना पूरे परिवार ने लाभान्वित करे, बच्चा की शिक्षा और नो स्वास्थ्य, परिवार रो जो जीवन स्तर है वहीं में भी सकारात्मक परिवर्तन लावे। और यू इस कारण है कि महिला जो उद्यमिता है वो देश का समग्र विकास रो महत्वपूर्ण आधार मान्यो गयो है सा।
0: कुल मिलन अपाइयों कह सका हाँ कि महिला उद्यमिता केवल व्यवसाय नहीं है बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन रो सशक्त माध्यम है। चनान एक महिला आगे बढ़े तो परिवार आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े और देश रो विकास रा नया आयाम स्थापित हुए। अणी संदेश रे साथे आपा यो विश्वास रखा है कि आपानी बेना सफल उद्यमी बनी आत्मनिर्भर भारत रो निर्माण में आपनो महत्वपूर्ण योगदान देवेला। अणी आशा रे साथे इस आपानी विषय ने अटिस विराम देता तक आपके वो तो एक बढ़िया सो गीत सुनला सा।
1: बिल्कुल सा।

0: तो देखो अनुश्री भाई साहब का कार्यक्रम में प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत सुनाया और लाला ने आपा सहेलियों ने संदेश भी सुनाया। और देखो अब कार्यक्रम में आपा आगे जानकारी करावा डिजी लॉकर और डिजिटल दस्तावेज की कई कई सहेलियां रहते उपयोगिता है अने बारे में जानकारी करावा सर।
1: बिल्कुल भाई साहब, देखो आज रो युग अगर आप कहवा तो डिजिटल तकनीक रो युग है। पहले आप अपना महत्वपूर्ण दस्तावेज वेता जैसे आनकी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, दूजा जितना भी आवश्यक कागजात वेता वड़ा ने लारे रखना पड़ता आपने। कई दान ये दस्तावेज खोई जाता, खराब भी जाता या समय पर उपलब्ध नहीं वेता, पर अब जो तकनीक है यानी समस्या ने सरल समाधान प्रस्तुत की दो जिन्हें आप डिजी लॉकर नाम जाना हाँ।
0: बिल्कुल सा, देखो डिजी लॉकर भारत सरकार एक सुरक्षित डिजिटल सेवा है जने माध्यमों नागरिक अपना महत्वपूर्ण दस्तावेज ऑनलाइन सुरक्षित राखी सके। और या जो सेवा है नागरिका ने अपना प्रमाण पत्र और वनारा दस्तावेज ने डिजिटल रूप संग्रहित करे और आवश्यकता पड़वा पे कहीं भी कटे भी विवरणा उपयोग करने सुविधा प्राप्त कर सके सा।
1: बिल्कुल भाई साहब, देखो डिजी लॉकर अगर सब मोटो लाभ देखा तो इनमें रखा तका दस्तावेज सुरक्षित रहे। अगर मोबाइल या कंप्यूटर बदल जावे तो भी उपयोगकर्ता अपने खाता में लॉग इन कर हंगला दस्तावेज पाचा प्राप्त कर सके। में मूल प्रमाण पत्र खोवारो या क्षतिग्रस्त व्यवहारी चिंता घनी हद तक खत्म भी जावे। आज अगर आप देखा कि सरकारी विभाग है, संस्थान है, ये डिजी लॉकर में उपलब्ध डिजिटल दस्तावेज मान्यता देवे है। उदाहरण वास्ते जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र है, शैक्षणिक अंक सूची है, आधार कार्ड है या दूजा कई भी प्रमाण पत्र है जो जरूरत पड़े तो डिजी लॉकर आप वड़ा ने बताई सका। मतलब वड़ा ने कागज बतावारी जरूरत नहीं, आप डिजी लॉकर डायरेक्टली बताई सका डिजी लॉकर।
0: बिल्कुल सा, और डिजिटल दस्तावेज रो उपयोग केवल सुविधा ही नहीं है बाकी आप देखा कि बल्कि समय और धन भी बचत करे है। पहले आप कहीं भी आवेदन रहते दस्तावेज री प्रतिया तैयार करनी पड़ती, वड़ा ने सत्यापित कराना पड़तो और कई बार आप डाक या पे कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता। अभी अनेक सेवा में आप डिजिटल जे दस्तावेज है सीधा ऑनलाइन साझा कर सका जेनु कार्य तेजियों पूरो वे जा सा।
1: बिल्कुल, और जो अपना छात्र है वनारे वास्ते भी डिजी लॉकर घणो उपयोगी है। परीक्षा परिणाम, अंक सूची, डिग्री, प्रमाण पत्र ने सुरक्षित तो राखी है। लारे लारे देखो नौकरी रा आवेदन, छात्रवृत्ति और दूजी कई भी काम वे जन्मी ने ये दस्तावेज तुरंत उपलब्ध हो जावे। जणियो कहिए कि समय की भी बचत वे और अनावश्यक परेशानी भी नहीं वे है।
0: और देखो डिजी लॉकर रो जो उपयोग है इन्हें करवा वास्ते केवल आधार जुड़ियो मोबाइल नंबर और इंटरनेट री आवश्यकता वे। एक बार पंजीकरण करवारे बाद उपयोगकर्ता जो है अपना दस्तावेज ने सुरक्षित राखी सके और आवश्यकता पड़वा पर वणा डाउनलोड कर सके, साझा भी कर सके। और यह सेवा उपयोग में सरल है और आम नागरिक का रवाते पूरी तरीका निःशुल्क है सा।
1: बिल्कुल सा, लेकिन फिर भी आपने यो ध्यान रखनो है कि डिजिटल सेवा रो उपयोग करता टाइम आपने सावधानी रखनी है। अपने मोबाइल पे आवा वाला ओटीपी कहीं दूजे आदमी ने नहीं देना है। अपनो पासवर्ड मजबूत रखनो है, समय समय पे इन्हें बदलतो रहना है। केवल आधिकारिक माध्यमों से अपने उपयोग करना है, कहीं भी संदिग्ध लिंक पे क्लिक कर मचना है क्योंकि डिजिटल सुरक्षा अपनी जिम्मेदारी है।
0: और देखो आप अंत में यू कह सका कि भाई डिजी लॉकर है केवल दस्तावेज रखवारो माध्यम नहीं है बल्कि सुरक्षित, सरल और आधुनिक जीवन री एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बनी चुकी है। यदि प्रत्येक नागरिक नो सही उपयोग करे, सरकारी सेवा तक पहुंचे और आसानियों ने प्राप्त कर सके और समय, श्रम और संसाधन री बचत भी कर सके सा। तो देखो अनुश्री भाई साहब, तो भी जानकारी और अभी आप कहो तो सहेलिया ने मनोरंजन की दुनिया में ले चलना और एक प्यारो सो राजस्थानी गीत और सुना।
1: बिल्कुल सुना सा।

0: तो देखो आप बढ़िया सुगीत सुनी होगी सुनी पाचा अपना कार्यक्रम में आया और अबे आपने बेनो आप बात करा देखो आत्मनिर्भरता री आप बात करा हाँ कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आत्मनिर्भरता किस तरह ही सके ये आपने बेनो आज बात करा हाँ। तो वैसा देखो भारत एक कृषि प्रधान देश है अपने आटे गहूँ चावल दाला फल सब्जियां दूध और मसाला घना मात्रा में वेवे है पर कई दान उचित भंडारण और प्रसंस्करण री सुविधा नहीं वेवो बड़ी मात्रा में कृषि उपज खराब भी जावे अगर आना उत्पादन समय पर प्रसंस्करण नहीं करियो जावे तो नहीं केवल उन्हें गुणवत्ता उपयोग अवधि बढ़े बल्कि किसान आदि उद्यमिता रे आय में भी वृद्धि हो जावे है।
1: और खाद्य प्रसंस्करण रे हरसी पर बात करा तो कृषि उत्पादारो अन्य प्रकार वणाने तैयार करनो वे अधिक समय तक सुरक्षित रह सके वणरो मूल्य भी बढ़ी जावे उदाहरण रे बात यहाँ पर देखा आम जेम वणाणो जूस वणाणो अचार वणाणो टमाटर सॉस वणाणो प्यूरी वणाणो दूध पनीर दही और घी वणाणो और गेहूं और बाजरा का विभिन्न खाद्य पदार्थ तैयार करनो अनेक प्रकार साधारण कृषि जो उत्पादन

0: वणा ने अधिक मूल्य वाला उत्पाद आप वणाई सका सा।
1: बिल्कुल भाई साहब, और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आज देश रो सब तेजियों बढ़तो तको क्षेत्र आप मान सका। अने मैं कही है किसान ने अपनी उपज ने बेहतर मूल्य मिले, उपभोक्ता ने गुणवत्ता पूर्वक और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध हुए, अंडा साथे साथे यह उद्योग जो है ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का नवा अवसर पैदा करे और छोटा छोटा खाद्य प्रसंस्करण केंद्र स्थापित कर स्थानीय स्तर पर अपने जो मोटियार है और अपने जो बेना है वे रोजगार प्राप्त कर सके है।
0: और विशेष रूप में आप देखा महिला रे वाते यो जो क्षेत्र है वो आत्मनिर्भर बना रहते एक अच्छो माध्यम है। घर पे पापड़, अचार, मसाला, मुरब्बा, नमकीन, बेकरी रा उत्पाद, बाजरा और अन्य मोटा अनाज बना पौष्टिक खाद्य और पदार्थ तैयार कर सके, वणा ने स्थानीय बाजार में बेची भी सके, ऑनलाइन रे माध्यम बेची सके और अन्य कई भी की महिला री आय भी बढ़े और परिवार जो आर्थिक स्थिति है वह मजबूत रहे हैं।
1: देखो आज री बदलती जीवन शैली के कारण पेक किदा तका और तैयार खाद्य पदार्थ री मांग बढ़ी रही है क्योंकि सब काम काजी भी चुकिया है। असिया में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग रे वास्ते नवा नवा अवसर भी तेजियों विकसित हो रहा है। यदि उत्पाद री गुणवत्ता, स्वच्छता और पैकेजिंग पे खास ध्यान दियो जावे तो छोटा उद्योग भी बड़ा बाजार तक अपनी पहुँच बनाई सके है।
0: और सरकार भी अनेक क्षेत्र में बढ़ावा देवा रहते अनेक योजना चल रही है। खाद्य प्रसंस्करण इकाई री स्थापना करी रही, प्रशिक्षण दे रही और आधुनिक जो तकनीक है जैसे कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग है और विपणन रे वास्ते विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई रही है। और अणा योजना रो लाभ उठाने युवा महिला अपना स्वयं व उद्यम शुरू कर सके और आत्मनिर्भर बन सके सा।
1: देखो सर, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग रो सब मोटो लाभ तो यो ही से कि में कृषि उपज री बर्बादी कम वे, फल और सब्जियां लंबा समय तक सुरक्षित रहे, जनो किसाना ने नुकसान कम वे, साथ ही मूल्य संवर्धन वेवाओं देश री अर्थव्यवस्था ने भी मजबूती मिले है और निर्यात री संभावना बढ़े। कुल मिले ना पाई के सका कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग केवल कृषि उत्पादन ने सुरक्षित रखवारो माध्यम नहीं है बल्कि यो किसाना री समृद्धि, ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण और रोजगार सृजन रो प्रभावी आधार है और यो उद्योग आत्मनिर्भर भारत रे निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभावे है।
0: बिल्कुल सा, तो आप भी खाद्य प्रसंस्करण ने बढ़ावा दा और छोटा छोटा उद्यम शुरू करने आत्मनिर्भर बन सका सा। तो देखो अनुश्री भाई सा, या तो भी जानकारी और केवो तो एक प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत और सुना।
1: बिल्कुल सुना सा।

0: तो देखो भैसा बढ़िया सो गीत सुनी और गीत सुनी पाछा अपने कार्यक्रम में आया हाँ। और अबे अपने बेना ने बतावा वना वो जुड़ी तकी कोई बढ़िया सी योजना वे तो वंदे बारे में।
1: तो देखो आज आप सहेलियां वाते लेना आया हाँ सुकन्या समृद्धि योजना। देखो यह योजना बेटियां परिवार समाज और देश रे भविष्य रे वाते है वना रे शिक्षा वना रे स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता रे वाते आर्थिक सुरक्षा बनाने प्रदान करे है। अन्य उद्देश्य ने ध्यान में रखता थका भारत सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान रे अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की दी है सा। और यो योजना परिवार ने अपनी बेटिया ने भविष्य रे वाते नियमित बचत करवा रे वाते प्रोत्साहित करे है सा।
0: गणी हो योजना बैसा या और अन्य योजना में अगर बात करना देखो सुकन्या समृद्धि योजना ऐसी छोटी सी बचत योजना है जिसमें माँ बाप है कानूनी अभिभावक है वे अपनी बेटी रे नाम खातो खुलवाई सके। यो खातो बेटी का जन्म लेन 10 वर्ष रे आयु पूरी विवाह तक खोलियो जा सके। एक परिवार अपनी पात्र बेटी रे वास्ते अलग अलग खाता खुलवाई सके है। जो जो पात्र बेटियां वे बनार वाते अलग अलग खातो खुलवाई सके है।
1: और वैसा आनी योजना री सबू बड़ी विशेषता री बात करा तो आनी में जो जमा की दी गई राशि है वह सरकार द्वारा समय समय पे निर्धारित आकर्षक ब्याज वणी पे मिले है। अने लारिस आयकर जे नियम है अने अनुसार पात्र निवेशक है वणा ने लाभ भी प्राप्त वेतो रे। और अन्य प्रकार या जो योजना है वा सुरक्षित बचत रे लारे बेहतर आर्थिक लाभ भी प्रदान करे है सा।
0: देखो सा सुकन्या समृद्धि खाता में हर वर्ष आपने सुविधा रे अनुसार निर्धारित न्यूनतम राशियों लेन अधिकतम सीमा तक री धनराशि आप जमा कर सका हाँ। नियमित बचत करवाऊ कही वे कि समय रे साथे अच्छी खासी राशि आप तैयार करना जनो उपयोग बेटी रे उच्च शिक्षा या पची विवाह जैसा महत्वपूर्ण काम में आप कर सका हाँ।
1: और आज रे टाइम पे शिक्षा रो खर्च लगातार बढ़ी रो है ऐसा में यदि माता पिता बेटी रे बचपन में थोड़ी थोड़ी बचत शुरू कर दे और भविष्य में आर्थिक बोझ बना रो काफी कम पड़ जावे अन योजना। और अन योजना रो सब बड़ो उद्देश्य है छोटी बचत रे माध्यम बड़ा सपना ने साकार करनो।
0: और देखो आप लाभ री बात कर रहे हो तनी योजना रो एक महत्वपूर्ण लाभ यो भी है कि इमें जमा धन जो है पूरी तरह सुरक्षित रहे क्योंकि यो भारत सरकार री समर्थित जो बचत योजना है। अन्य वास्ते में निवेश करवा वाला परिवार निश्चित वेन अपनी बेटी रे भविष्य वास्ते बचत कर सके है।
1: सुकन्या समृद्धि योजना रो खातो देश भर रे डाकघर है अधिकृत जे बैंक है वणी में खोलियो जाई सके। और खातो खोलवारे वाते बेटी रो जन्म प्रमाण पत्र अभिभावक री पहचान पत्र संबंधित जे आवश्यक दस्तावेज वे प्रस्तुत करना वे। और आज बैंकिंग सेवा रे विस्तार रे कारण अन योजना रो लाभ देश रा दूर दराज क्षेत्र तक भी पहुंची रो है सा।
0: बिल्कुल सा। और यह योजना केवल बचत योजना नहीं है अपन यो होचनो है कि अपने समाज री जो बेटिया है वनारे प्रति सकारात्मक सोच विकसित करवारो एक माध्यम है। जनार बेटी एक परिवार में बेटी रे भविष्य रे वास्ते योजनाबद्ध तरीकों बचत करे है तो वनारो आत्मविश्वास बढ़े है।
1: और यू इस कह सका कि भाई सुकन्या समृद्धि योजना बेटिया रे उज्जवल भविष्य आर्थिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है पहल है। और यह योजना परिवार में बचत री आदत ने बढ़ाओ देवे बेटिया रे सपना ने नई उड़ान देवारो अवसर भी प्रदान करे है सा।
0: बिल्कुल सा। तो आप अपने बेटिया री शिक्षा सम्मान और सुरक्षित भविष्य रे वास्ते जागरूक बनो है। और असी जो भी जन कल्याण करे योजना है वनारो आपने अधिक अधिक लाभ उठावने से लारे लारे जो अनजान है वना ने भी अंडी जानकारी देनी है ताकि वे भी अनु लाभान्वित वे सके।
1: और

0: तो भाई साहब देखो बढ़िया सो गोल्ड लो आप दौड़ायो है कोटल गोल्ड लो लेन घूमिया। हाँ अभी देखो कोटल गोल्ड लो लीधो है तो गोल्ड लो तो घूमे ही से, और अभी घूमा तो आप पर्यटन करवाने भी जावा तो आपको तो बढ़िया सो आप चाला। हाँ घूमवाने और जवई बांध चाला सा
1: बिल्कुल सा सही लेने ले चला जवई बांध। राजस्थान का देखो जवई क्षेत्र नाम आप सुना तो मन में अपने विशाल ग्रेनाइट जो पहाड़िया है, शांत जलाशय है, खुला जंगल है, चट्टाना पर विचरण करता लगा तेंदुआ है, हिसक मनमोहक छवि अपने हमें उभरे है। पाली जिला में स्थित जवई आज राजस्थान रो प्रमुख प्राकृतिक पर्यटन स्थल अपनी विशेष पहचान बनी चुके है सा।
0: बिल्कुल भाई साहब देखो जवई रो जो प्रमुख आकर्षण जो है वो वटारो है जवई बांध अंडो निर्माण जोधपुर रियासत रे समय में किदो हो रहे बांध पश्चिमी राजस्थान रे वास्ते जल रो महत्वपूर्ण स्रोत है और एरे मेरे रा जो क्षेत्र है वाणी में सिंचाई और पेयजल री जितनी भी आवश्यकता है वणा ने पूरी करे। वर्षा रे ऋतु रे पछे जनाणियो बांध पानी लबालब भर जावे तो अटाय प्राकृतिक दृश्य घना मनोहर दिखाई देवे है।
1: जवई क्षेत्र की सब बड़ी पहचान की अपा बात करा तो अटे पाया जाने वाला तेंदुआ है सा। आश्चर्य बात यह है कि अटे तेंदुआ स्थानीय ग्रामीण वर्षों एक दूसरा लारे सामंजस्यपूर्ण वातावरण में रहवे है और यू इस कारण है कि जवई आज देश रो प्रमुख लेपर्ड सफारी स्थल में गिनो जावे। सुबह और शाम रे टेम पे अटे खुली जीप में सफारी करता थका पर्यटक चट्टाना पे बैठा थका तेंदुआ वनारे प्राकृतिक आवास में देखवारो रोमांचक अनुभव आप अटे प्राप्त कर सका सा।
0: देखो जवई केवल तेंदुआरे वास्ते इसने बैसा अंडे लारे लारे पक्षी प्रेमी जो है वनारे वास्ते भी कणी स्वर्गु कम नहीं है। सर्दियारा मौसम में अटे अनेक प्रवासी पक्षी आवे जलाशयारे आस पास फ्लेमिंगो सारस पेलिकन बगुला और दूजा कई दुर्लभ पक्षी आप अटे देख सका। यो इस कारण है कि देश विदेश घना हारा पक्षी विशेषज्ञ प्रकृति प्रेमी अटे आवता रहे है।
1: जवई री विशाल ग्रेनाइट जो चट्टाना है ये प्राकृतिक सुंदरता उन्हें आकर्षक बनावे है। सूर्योदय और सूर्यास्त टचरे में है वोणा चट्टाना ने बदली ने रंग पर्यटक ने मंत्रमुग्ध करे है और फोटोग्राफी रा जो शौकीन है वणा रे वाते यो स्थान कणी स्वप्न लोकू कम नहीं है सा।
0: और देखो धार्मिक दृष्टि में भी जवई क्षेत्र घणो महत्वपूर्ण है। अटे स्थित परकाणा जैन तीर्थ जैन धर्म रो एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जेटे देश भर श्रद्धालु दर्शन करवाने आवे है। अंडे अलावा अटे अंडे आसपास की प्राचीन मंदिर और ऐतिहासिक स्थल भी स्थित है जो अणि क्षेत्र ने सांस्कृतिक विरासत ने समृद्ध बनावे। यदि कोई पर्यटक राजस्थानी ग्रामीण संस्कृति ने निकट देखना चाहे तो जवई वणारे वास्ते एक आदर्श स्थान है। अटारो गांव में पारंपरिक राजस्थानी जीवन शैली लोक संस्कृति रंग बिरंगी वेशभूषा लोक गीत लोक नृत्य और आत्मीय आतिथ्य पर्यटकारो मन मोही लेवे। स्थानीय लोगारो सरल स्वभावनी यात्रा ने यादगार बनाई देवे है।
1: और आज जवई में पर्यटन सुविधा ने देखता थका वनो तेजू विकास भी है। अटे अनेक प्राकृतिक आधारित रिसोर्ट कैंप संचालित वेरा है जेटे ठेरी ने पर्यटक सफारी बर्ड वॉचिंग और प्रकृति भ्रमण और स्थानीय व्यंजनारो आनंद ले रहा है। अटे स्थानीय लोगा ने रोजगार नया अवसर भी प्राप्त हुआ है और क्षेत्र रा आर्थिक विकास ने भी नरी गति मिली है सा।
0: और देखो आपा तो वणाई सरिया हाँ लारे लारे आपानी बेना ने आपा कहवा कि अगर आप भी जवाई घूमवारो कार्यक्रम वणाई रहो तो देखो अबार आपाने देखा कि अक्टूबर और मार्च महीना तक रो समय सब बढ़िया मान्यो जावे है और अक्टूबर रे कोई ज्यादा टाइम नहीं रियो है तो आप भी तैयारी कर सको। अणि दौरान जो मौसम है वो सुहावनो रहे है वन्य जीव और प्रवासी पक्षियां ने देखवारी संभावना भी अटे बढ़ जावे है। कुल मिले ना पायो कही सका कि जवई केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है बल्कि प्रकृति वन्य जीव संस्कृति ग्रामीण जीवन रो अद्भुत संगम है।
1: और अटारी जो शांत वादियां है विशाल चट्टाना है रोमांचक सफारी है आत्मीय वातावरण हर पर्यटक ने एक अनूठो अनुभव प्रदान करे है। यदि आप राजस्थान की एक अलग और अनोखी पहचान देखना चाहिए रहा तो आप सब ने जवई यात्रा अवश्य करनी चाहे सा।
0: बिल्कुल भाई सा देखो जवई यात्रा रे साथे साथे इस आपाने कार्यक्रम चालवारो भी टाइम वेरो है तो आपाने आने कार्यक्रम ने आप आटे विराम देवा और आपाने बेनो आप विदा लेवा चाला सा
1: राम राम सा।

सहेलियरी बाड़ी ये कार्यक्रम अभी आपने सुना, प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से हो रहा था। दोपहर के 1:45 हो चुके हैं। आइए आपको सुनवाते कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आरजे एकता। आइए सुनते हैं पहला गीत केकी और डोमिनिको की आवाजों में।

बड़ा ही प्यारा सा गीत अभी आपने सुना और वंस अपन टाइम मुंबई फिल्म से गीत था, केके और डोमिनिको की आवाज़ इसमें थी। और अब हम आपको सुनाते हैं फिल्म संगीत में एक और प्यारा सा गीत, मोहब्बतें फिल्म, बड़ी ही प्यारी फिल्म थी ये, और उद्भव और प्रीता मजुमदार की आवाज़ में सुनवाते हैं एक और प्यारा सा ट्रैक।

0: पैरों में बंधन पायल ने मचाया सुर। फिल्म मोहब्बतें से अभी आपने प्यारा सा गीत सुना, ये सुनते एक संदेश और उसके बाद फिर से लिए चलेंगे आपको फिल्मी तरानों की ओर।
1: दस लाख की लॉटरी
2: जी,
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहे।
6: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह।
5: अनजान ऐप से बचें,
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: बाजीराव मस्तानी फिल्म से एक और प्यारा सा गीत आपको सुनवाते हैं, श्रेया घोषाल, मुज्दाबा, अजीज नजन की आवाजों में।

बाजीराव मस्तानी फिल्म से ये बेहतरीन सा नगमा अभी आपने सुना। अगली आवाज कविता कृष्णमूर्ति की है, जुबिता फिल्म का ये गीत है, आइए सुनते हैं।

बड़ा ही प्यारा गीत अभी आपने सुना फिल्म युवा से, और इसी के साथ ही फिल्मी गीतों का ये सफर यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं, दोपहर के 2:10 हो चुके हैं, वक्त हो चला है कार्यक्रम विकास चर्चा का, और विकास चर्चा में आज का विषय है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। जी हाँ, सभी के लिए आवास सुगम बनाने के लिए सरकार के दृष्टिकोण के अनुसरण मामलों की मंत्रालय MOHUA ने 25 जून 2015 से 15 प्रधानमंत्री आवास के लिए आवास शहरी मिशन के लिए आवास मिशन को कार्यान्वित किया है। मिशन की मूल अवधि 31 मार्च 2022 तक थी, जिसे वित्त पोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बिना किसी परिवर्तन के 31 मार्च 2022 तक स्वीकृत घरों को पूरा करने के लिए 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया था, और उसके बाद CLSS सभी के लिए आवास की वैधता 31 मार्च 2022 तक थी। मिशन के तहत मंत्रालय निम्नलिखित 4 वर्टिकल के माध्यम से शहर जुग्गी वासियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS, निम्न आय वर्गों LIG और मध्यम आय वर्गीय क्षेत्रों से संबंधित अन्य लोगों की आवास आवश्यकता को पूरी करने के लिए ये कार्य किया गया। लाभार्थी नेटवर्क वाली व्यक्तिगत गृह निर्माण या संबंधन BLC इस श्रेणी के अंतर्गत EWS श्रेणियों से संबंधित व्यक्ति पात्र परिवारों को 1.5 लाख की केंद्रीय सहायता मिलेगी, और दूसरा सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में किफायती आवास भारत सरकार द्वारा EWS वर्ग के लिए प्रति घर 1.5 लाख रुपए की केंद्रीय सहायता उन परियोजनाओं में प्रदान की जाती है जहां परियोजनाओं में कम से कम 35% घर EWS वर्ग के लिए है और एक ही परियोजना से कम 250 घर है। इन सीटू स्लम पुनर्विकास ISSR निजी डेवलपर की भागीदारी के साथ भूमि को संसाधन के रूप में उपयोग करते हुए इन सीटू स्लम पुनर्विकास के अंतर्गत पात्र जुग्गी वासियों के लिए निर्मित सभी घरों के लिए प्रति घर 1 लाख का स्लम पुनर्विकास अनुदाय स्वीकार्य है। ऋण आधारित सब्सिडी योजना CLSS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, मध्यम वर्ग और मध्यम आय वर्गी के लिए 6 लाख, 9 लाख और 12 लाख तक के ऋण पर 6.5%, 4% और 3% की ब्याज सब्सिडी दी जाती है। MIG के CLS 1 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2021 तक लागू थी। बात करें लाभार्थी परिवारों की, तो मिशन के अंतर्गत लाभार्थी परिवार में पति पत्नी, अविवाहित पुत्र और अविवाहित पुत्रियां शामिल होती है। लाभार्थी परिवार के पास भारत के किसी भी भाग में अपने नाम पर या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर कोई पक्का मकान, हर मौसम में रहने योग्य आवास नहीं होना चाहिए। वयस्क कमाने वाले सदस्य वैवाहिक स्थिति की परवाह किए बिना एक परिवार माना जाएगा, बशर्ते कि भारत के किसी भी हिस्से में उनके नाम पर कोई पक्का मकान, हर मौसम में रहने योग्य आवासीय इकाई नहीं है। विवाहित दंपति के माध्यम से योजना के तहत परिवार की आय पात्रता के अधीन पति पत्नी में से कोई एक या दोनों संयुक्त परिवार में से एक घर के लिए पात्र होंगे। एक पात्र लाभार्थी मिशन के चारों क्षेत्रों में केवल एक का लाभ उठा सकता है। इसके अतिरिक्त 21 वर्ग मीटर से कम निर्मित वाले क्षेत्र पक्के मकान के मालिक को मौजूद आवासीय इकाइयों के क्षेत्र

क्षेत्रफल में 30 वर्ग मीटर तक की वृद्धि के लिए शामिल किया जा सकता है। हालांकि यदि भूमि स्थान की अनुपलब्धता या किसी अन्य कारण से वृद्धि संभव नहीं हो तो वह पीएमवाई योजना के तहत कहीं और मकान प्राप्त कर सकता है। मुख्य विवरण की बात करें तो राज्यों को लचीलापन, कैफेटेरिया दृष्टिकोण, राज्यों केंद्र शासित प्रदेश आवास की अपनी मांग को पूरा करने की मिशन के किसी भी विभाग को चुनने की स्वतंत्रता थी। मांग आधारित दृष्टिकोण राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मांग के आकलन के आधार पर आवास की आवश्यकता, राज्य स्तर पर परियोजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन। घर का स्वामित्व घर किसी वयस्क महिला सदस्य के नाम पर संयुक्त नाम पर होना चाहिए। विकलांग व्यक्ति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों को ट्रांसजेंडर और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। विधवाओं को सर्वोपरि प्राथमिकता दी जाएगी। सभी घरों में पीने का पानी, बिजली की आपूर्ति और सीवरेज और शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध होगी। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर। तो आज की ये थी विकास चर्चा प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना पर, और अब हम जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और वहां से हम सुनेंगे हिंदी में समाचार। समाचार होंगे आपसे कुछ ही पलों में।

0: से दोपहर समाचार के साथ मैं कनिक लता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकायची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत, दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खड़े उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकायची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकायची, और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी।
1: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोडमैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000

0: बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी।
1: इससे पहले आज प्रधानमंत्री तकाईची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान के प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
2: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
3: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
1: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बाताल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावरीपल्ले गांव में विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
4: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जयरामजी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कर रहे, पहले साल ही विकसित भारत जयरामजी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
1: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़

0: के नाम अभियान के तहत मॉनसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉ जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @XHIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
1: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मॉनसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: महाराष्ट्र में आज लगातार 2 दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
2: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षा रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टिलेमंस ने 125

25वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 की बार पहली जीत दर्ज की। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की

0: शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। दोपहर के 2:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का खास कार्यक्रम कृषि जगत।
2: Oh,

0: राम राम अनुश्री भैसा, राम राम।
1: राम राम ममता भैसा, राम राम।
0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनावाला सगला किसान भाई बहना ने आपनो
2: राम राम सा।
0: देखो भैसा, कार्यक्रम रो टेम लियो और आपा किसान भाई रे वाते भात भात री जानकारी राजस्थानी लोकगीत ने कार्यक्रम में लेन आया हां सा। और आज देखो आपा किसान भाई ने जानकारी करावांगा किसान री बात में कि धान री नर्सरी री रो वैज्ञानिक प्रबंधन किसान भाई किस तरह कर सके।
1: बिल्कुल भैसा, देखो धान री खेती अगर आपा करनो छावा हां तो देखो वा एक तरह एक स्वस्थ और सशक्त और रोग मुक्त तो नर्सरी तैयार करना अपने जरूरी है, क्योंकि धान री खेती री सफलता आने पे निर्भर है। अगर नर्सरी रा जो पौधा है वनाने सही पोषण और सुरक्षा मिले तो जो आप मुख्य खेत में जिना रोपाई कर रहा तो वे तेजू बढ़ेला और अपना उत्पादन जो है वे भी अच्छो वेवेला। तो आप आज अगर बात करी रहा हाँ कि वैज्ञानिक प्रबंधन री तो सब पहली आप बात करा आने रे जगह रो चयन और क्षेत्रफल कशु वेणो छावे।
0: बिल्कुल सा, वैज्ञानिक प्रबंधन रे वाते नर्सरी रो जो स्थान है वो सही वेणो सब पहलो आनी प्रबंधन रे वाते पहलो कदम है। नर्सरी रे वाते ऐसो खेत चुनो जो उपजाऊ वे, जटे धूप अच्छी आती वे, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था वे और छायादार जो जगह वे वहीं पे नर्सरी बनावा बचना चाहे, क्योंकि अन्य पौधा कमजोर और लंबा वे हिस्सा।
1: बिल्कुल भैसा, और देखो अंडलारे आपा क्षेत्रफल रो अनुपात अगर आपा निकाला तो सामान्य तक आपा देखा हाँ कि एक हेक्टर जैसे मुख्य खेत में रोपाई रे वास्ते आपा ने 1/10 भाग क्षेत्र में नर्सरी तैयार करनो पर्याप्त वेवे। महीन या सुगंधित किस्म रे वास्ते यो क्षेत्रफल थोड़ो कम वेवे, जैसे यानी कि 800 वर्ग मीटर आपा इन्हें राखी सका हाँ।
0: नर्सरी तैयार करवारी विधियां अलग अलग वे, भौगोलिक स्थिति और पानी की उपलब्धता के आधार पर धान री नर्सरी री मुख्य रूप से 3 विधियां वे। एक तो गीली क्यारी विधि, दूसरी सूखी क्यारी विधि, तीसरी है डेपोक विधि। आप गीली क्यारी विधि की बात करें तो यह सब प्रचलित और वैज्ञानिक रूप से सफल विधि है, जटे पानी की प्रचुरता वेवे है। खेत तो 2-3 बार अच्छी जुताई करने पानी ने भर देनो और वणी में कद्दू कर लेनो, मिट्टी ने समतल करीने 1.25 मीटर चौड़ी और आवश्यकता अनुसार लंबी क्यारियां बनानो, 2 क्यारियों के बीच में 30-40 सेंटीमीटर की नाली बनानो जो पानी देवा और अतिरिक्त पानी निकालने वास्ते काम आवे हैसा।
1: या तो आप गीली क्यारी री बात बताई वैसा, और अगर आप सूखी क्यारी री बात करा तो यह विधि वना क्षेत्र लिए उपयुक्त है जटे पानी री कमी वेवे है। या रोपाई रे समय बारिश जो है वह अनिश्चित वेवे, खेत ने बिना पानी भरया सूखो ही अपने जोतनो है और भूरभूरो बना देनो है। पछे वणी में कई उठी तकी जो क्यारिया है वना ने उठी तकी क्यारिया बनावनी है, पछे बीजा ने सूखी मिट्टी में बोई देवना और ऊपर हल्की हल्की अपने सिंचाई करनी है।
0: अभी आप डेपोक विधि री बात करा तो ये एक आधुनिक तकनीक है, जणी में बिना मिट्टी री कंक्रीट रे फर्श प्लास्टिक शीट या पछे केला रे पत्ता पे पौध उगे जावे अने ये पौध केवल 11-14 दिन में तैयार वे जावे अने कुशल प्रबंधन री आवश्यकता वेवे हैसा।
1: देखो भैसा, अगर उन्नत किस्म री अगर आप बात करा तो उन्नत किस्म और बीजा री मात्रा रो चयन भी आपने वास्ते जरूरी है। अनिर वास्ते कहिए कि बीज दर आप देखा हाँ कि आपने जो स्थानीय जलवायु मिट्टी और प्रकार जो है वनी रे आधार पे आपने पानी री उपलब्धता रे अनुसार प्रमाणित बीजा रो चयन करनो है। और देखो सामान्य किस्म रे वास्ते आपने 30-40 किलोग्राम प्रति हेक्टर आपने बीज लेना, और संकर अगर आप ले रहा हाँ जैसे कि हाइब्रिड है तो वना किस्म रे वास्ते 12-15 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब आपने बीज लेनी है।
0: बीज शोधन की बात करा तो देखो आना महत्वपूर्ण वैज्ञानिक चरण है, और नर्सरी में बीमारियों रोकवा वास्ते सब प्रभावी और सस्ता तरीका है बीज शोधन। बीजा ने सीधा बोवारी बजाय वना में वैज्ञानिक प्रक्रिया बोनो है सा।
1: बिल्कुल भैसा, देखो बीज शोधन के बारे में आप बात कर रहा हाँ और अनि बातचीत ने और आगे बढ़ावा और अनि जानकारी में आप और आगे जारी रखा, लेकिन देखो आप लगातार बात करता रहे वहां तो अपना किसान भाई भी थोड़ा सा बोर वे जाइए कि देखो लगातार बोलिया बोलिया जा रहा है, तो थोड़ा सा वनारो मनोरंजन करदा और अनि विषय पर पाछा वहां पर आप केवत बढ़िया सुगीत सुनाई था।
0: बिल्कुल सुनावा सा।

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो ये फटा है। सुन फटे फटे आप पुराने नोट को
0: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ नया नोट।

0: जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
1: आज मैं कहता है स्मार्ट बनो, तू बन जाओ।
2: ये देख कैसे।
3: हैप्पी बर्थडे भाई।
2: दिखा
4: हाँ, मेरा फेवरेट कलर
3: हमेशा शॉपिंग।
5: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
6: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
7: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
5: आई नो माँ।
7: RBI कहता है
8: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
9: तो देखो अनुश्री भाई सा राजस्थानी लोक गीत सुनायो, लाला ने आपा कार्यक्रम में संदेश भी सुनाया और आपा किसान भाई ने जानकारी कराई रहा बीज शोधन री। तो देखो अन्ना वैज्ञानिक चरण री अगर आपा बात करा तो अन्नी में वैज्ञानिक चरण आपा देखा कि कमजोर बीजा ने अलग करनो वे, जनी में खोखला जे बीज है वना ने अपने नमक रे पानी में घोली ने स्वस्थ बीज ने अलग करनो वे। दूसरो वे फफूंदनाशक उपचार की बात करा तो अन्नी में अपने कार्बोनिडीज में 2 ग्राम या टाइकोडीन में वीडी 5-10 ग्राम लेनो है। अन्य प्रति किलोग्राम बीज दर पानी मिले में 24 घंटा तक भिगो देना है। लारे लारे अंकुरण की बात करा तो 24 घंटा बाद बीजा ने पानी निकाली जूट बोरिया में बांधी देनो, अंधेरे स्थान पे 24-36 घंटा रहते राखनो। और जो बीज छोटा सफेद अंकुर वेजा सुई जैसा निकले तो अपने बुवाई रहते वे तैयार है सा।
10: बढ़िया चीज़ आप बताई भाई सा। देखो बीज रो बीज रे बाद आप आवा पोषण प्रबंधन पे, तो पोषण प्रबंधन री बात अगर आप करा तो देखो नर्सरी री जो मिट्टी है इन्हें समृद्ध बनावर वास्ते संतुलित उर्वरक प्रबंध अनिवार्य वे। 1000 वर्ग मीटर री नर्सरी रे वास्ते मानक मात्रा री अगर बात करा आप तो देखो गोबरी खाद या कंपोस्ट री बात करा तो बुवाई 15 दिन पहली 10-12 क्विंटल अच्छी तरह सड़ी तक आपने गोबरी खाद लेनी है। अगर नाइट्रोजन री बात करा तो लगभग 8-10 किलोग्राम और आदि बुवाई रे समय और आदि बुवाई रे बाद आपने 10-15 दिन रे बाद में करनी है। फास्फोरस की बात करा तो लगभग 15-20 किलोग्राम बुवाई रे समय में करना है। पोटाश जो है लगभग 5-6 किलोग्राम बुवाई रे समय में डालना है। जिंक सल्फेट की बात अगर करा तो देखो यदि मिट्टी में जिंक की कमी वे तो आपने 2.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट 21% बुवाई रे समय डालना है। जिंक की कमी हो पत्तियां आपने देखा हाँ कि पीली और भूरी पड़वा लगी जावे, वंडे लारे लारे आपने बुवाई और जल प्रबंधन भी देखना है।
9: अन्नी में अपने अंकुरित बीजा ने क्यारिया पे शाम रे टेम पे समान रूप बिखेरी देनो, शाम रे टेम पे बुवाई करवा तेज धूप अंकुरों वे झुलसे नहीं है। जल प्रबंधन की बात करा तो शुरुआत में 3-4 दिन तक क्यारिया में केवल नमी बनी रखनी है, पानी में रुकवानी देनो है, जल भरावरी स्थिति नहीं बने। अधिक पानी में कहवे कि अंकुर सड़ी जावे। पौधा ने थोड़ा बड़ा वेवा पे 5-6 दिन बाद क्यारिया में 1-2 सेंटीमीटर पानी रे स्तर पे बनाए रखना। जिस तरह पौधा लंबाई बढ़े पानी का स्तर बढ़े ना 3-5 सेंटीमीटर करनो है सा।
10: सही बात है भाई सा। और देखो लारे लारे आप आए देखा कि खरपतवार नियंत्रण भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि नर्सरी में अगर खरपतवार बढ़ जावे तो जो आपना जो पौधा है वे वना आपने जो मुख्य पौधा वे वना रो पोषण छीनी लेवे है, तो आनी वो आपने हाथ उन्हीं रही कर सका। रासायनिक नियंत्रण भी आप ले सका। देखो हाथ आप खरपतवार निकाली दा रासायनिक नियंत्रण करा तो बुवाई 1-3 दिन रे मेन आपने खरपतवार उगो पहली प्रिटिला क्लोर जो वे इन्हें 60-90 मिलीमीटर पानी में प्रति 1000 वर्ग मीटर की दर पर्याप्त पानी में मिलने छिड़काव करना है। अंडे लारे लारे देखो अपन कीट और रोग प्रबंधन पर भी ध्यान देना है कि नर्सरी अवस्था में पौधा माते नजर रखनी वे क्योंकि अणिमी ने झोंका रोग और बुरा दब्बा जैसे जो रोग है वे भी जावे, तना छेदक रोग भी जावे और भी कई पातिरा रोग भी जावे तो वना ने आपने ध्यान रखी वना रो उपचार आपने करना है।
9: पौधा ने उखाड़वा और रोपाई में आपा देखा मुख्य खेत में रोपाई की बात करा तो सही टाइम में आपने देखना वैज्ञानिक रूप मध्यम और देरू पाकवा वाली किस्म रे जो पौधा है वे 21-25 दिन में यदि पौधा में 4-5 पत्तियां आई जाए रोपाई रेवाते पूरी तरीके से तैयार हो जावे। 30 दिन में अधिक पुरानी पौध रोपाई रेवाते कलर निकली जावे और पैदावार घटे है। उखाड़वारी विधि की बात करा तो पौध उखाड़वा 1 दिन पहले नर्सरी में पर्याप्त पानी भर देना ताकि मिट्टी मुलायम रह जाए और पौधा हमेशा जड़ रे पास में पकड़ी ने धीरे उखाड़ना ताकि जड़ा टूटी नहीं सके। जड़ उपचार की बात करा तो रोपाई रे तुरंत पहली उखाड़िया गया जो पौधा है वहां ने बंडला री जड़ बोवेस्टिन 1 ग्राम लीटर या पे सुडोमोनस फ्लोरेंस गोल में 20-30 मिनट वाते डुबोई राखनो है। यो कदम मुख्य खेत में फफूंदजनित रोग है और आक्रमण ने रोके है सा।
10: देखो कुल मिलन वैसा आप आई हो कह सका हाँ कि धान री नर्सरी रो एक वैज्ञानिक प्रबंधन नहीं केवल बीजारी बचत करे है बल्कि कम समय में मजबूत और प्रतिरोगी पौधा तैयार

0: तैयार करें। अगर आप आना चरणा ने जो आप बतायो है वणा रो अगर बराबर पालन करे आपना किसान भाई तो मुख्य फसल री जो उत्पादकता है वणी में 15-20% तक री सीधी वृद्धि आप देख सका। हाँ
1: तो देखो अनुश्री भाई साहब या तो भी जानकारी और अभी आप कहो तो एक प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत और सुना कार्यक्रम में
0: बिल्कुल सुना सा।

0: भाई साहब देखो आप आ गीत सुनियो और गीत रे पचे पाचा कार्यक्रम में आया पहली आप बात करी रहा धान री नर्सरी री वैज्ञानिक विधि और अब आप देखो कृषि मौसम आधारित सलाह आप किसान भाई ने देवा क्योंकि अंडो कई महत्व है यू भी आप ने बतावा। देखो मौसम विभाग रो जो पूर्वानुमान है वनी रे हिसाब अगर आप दिखा तो बारी बारिश ओलावृष्टि पाला या तेज आंधी रे आधार पर समय पहली अगर सलाह मिल जावे तो अपने किसान भाई जो है कटी तकी या जो भी तैयार फसल है वे सुरक्षित स्थान पे पहुंचे सके या फिर जो बोई रहा है तो वनडे वास्ते भी वे वालों जो नुकसान है वनियों वे बच सके है।
1: बिल्कुल सा और अनियो देखो लागत में कमी और संसाधन आदि भी बचत रहे। अनि मैं आपा सिंचाई प्रबंधन की बात करा तो यदि अपने आवा वाला टाइम में बारिश की संभावना है भारी बारिश की तो आना अपने पूर्वानुमान है वैज्ञानिक सलाह अनुसार अंपा किसान भाई सिंचाई ने रोकी दे अणियों कही वे की पानी बिजली और ईंधन की जो फिजूल खर्ची है बनी बचत रहे। खाद और दवा की बात करा तो तेज हवा या बारिश दौरान छिड़काव करवा दवाया और उर्वरक बेच आवे। मौसम आधारित सलाह किसान ने बतावे कि कणी धन कणी टेम पे अपने छिड़काव करना सब प्रभावी रहेगा चणियों पैसा की बर्बादी रुके है सा।
0: सही बात है सा। देखो फसल चक्र रे हर चरण में मौसम री भूमिका या वेवे की सलाह जो किसान भाइया ने देवे वा सटीक समय बतावे कि बुवाई कंदान करनी है निरई गुड़ई और खरपतवार नियंत्रण कंदान करनो है फसल री कटाई रे वास्ते कसियो दिन सबू अनुकूल रहेला। साथ ही साथ कई तरह का कीट और फफूंद जनित रोग जो है वर्णी रे वास्ते देखो खास तापमान और आर्द्रता में ये तेजू फैल ले जैसे यहाँ की हवा में नमी बढ़वा पे सरसों में चेपा रोग या धान में ब्लास्ट रोग ये बढ़ जावे। मौसम आधारित सलाहों के ये कि किसान पहली सचेत भी जावे कि आवा वाला दन्ना में कौन सो रोग लागी सके और जनियो आपने किसान पहली निर्वारक उपाय उठाई लेवे है।
1: पशुधन और डेयरी प्रबंधन की बात करें आप तो मौसम आधारित सलाह अपने फसलों तक ही सीमित नहीं है बल्कि पशुओं और प्रबंधन की जानकारी भी देवे है। अधिक गर्मी कड़ाकड़ी ठंड अन्न दौरान पशुओं ने बीमारियों की स्तर बचाना है अन्य भी आणी सलाह देवे तो यो अपने फायदो वे। चारा की उपलब्धता की बात करा तो वनारे स्वास्थ्य रे वाते मौसम रे अनुकूल शेड प्रबंधन कर सके सा।
0: बिल्कुल भाई साहब देखो अंडे ला रहे देखो जो आप मौसम आधारित सलाह है वणी मीने दीर्घकालीन पूर्वानुमान ने देखें वैज्ञानिक किसान ने आप या सलाह देवे कि वणा ने अणिबार कम पानी वाली या जल्दी पकवा वाली या सूखा प्रतिरोधी कसी किस्मा रो चयन करनो ये चीज वे बताई सके है। कुल मिले आप यो कही सका हाँ कि कृषि मौसम आधारित सलाह सटीक खेती रो आधार है यो पारंपरिक खेती ने जोखिम ने कम करे और अधिक लाभदायक और टिकाऊ बनावे अणि कही है कि सही उपयोग न केवल किसान री आय बढ़ावे बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा ने भी मजबूत करे। कुल मिले वैसा आप यू कह सका कि कृषि आधारित सलाह जो है यो हमेशा भारतीय कृषि रे वास्ते एक मार्गदर्शन की तरह काम करे है
1: और बदलती थकी जलवायु अनिश्चित मौसम वाली दौर में किसान ने पारंपरिक ज्ञान री बजाय बनाई निर्भरता ने कम करे तो किसान भाई ने टेम टेम पे मौसम रो पूर्वानुमान री जानकारी वेणी चावे ताकि कहे कि अपने वे खेतीवाड़ी में सावचेत वे काम कर सके और अपनी जो पूंजी री बर्बादी है वने वे रोकी सके।
0: बिल्कुल भाई साहब क्योंकि मौसम री जानकारी आप रे अगर कटी तक की फसल है तो वे आप संभाल सको जनी तरह मौसम री जानकारी वे तो आप वो भी फसल है वनी रे आपने कणी तरह व्यवस्था करनी यो भी आप देख सको। कुल मिलन आप यो कही सका हाँ कृषि मौसम आधारित सलाह रो घणो महत्व है तो आपने जो भी किसान भाई आपने ये आवाज सुनी रहा है तो वहां ने यो ध्यान रखनो है कि कृषि मौसम आधारित जो सलाह है वनी ने इग्नोर नहीं करनी है और अगर आपने कोई भी वैज्ञानिक सलाह आपने मिली रही है तो वंडो फायदो आपने उठानो है।
1: बिल्कुल सा तो देखो
0: बिल्कुल देखो या तो आप बात की दी हाँ और अबे क्योंकि थोड़ी देर में आपने कार्यक्रम जावरो भी टेम भेजी है तो जाता जाता आपने किसान भाई ने आपके वो तो एक बढ़िया सो गीत और सुनाई था सा।
1: हाँ सा

0: तो अनुश्री वैसा देखो आप कार्यक्रम में हो जानकारी कराई और अब आप पे घड़ी आड़ी देखा तो आपने चाल वालों टाइम वेगियो सा तो चला सा
1: राम राम सा।

कृषि जगत, ये कार्यक्रम अभी आपने सुना, प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से हो रहा था। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, वहां से हम सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: आपके साथ मैं कनक लता। भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की नौवीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा तीन दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
2: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
3: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुआ। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने तथा गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावलीपिल्ले गांव में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉ. जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में

0: बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियो वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3:05 हो चुके हैं। हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे सांधिकालीन सभा की प्रसारणों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 5 बजे हैं, हमारी आज की सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में युवा साथियों के लिए होगा ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर उनका खास कार्यक्रम युववाणी।

0: सकती। समय नहीं, वो है बदलाव। क्योंकि अगर जरा पीछे मुड़ के देखें तो पिछले 10-15 सालों में हमारी जिंदगी कितनी बदल गई है। पहले खेतों में सिर्फ हल और बैलगाड़ी दिखाई देते थे, आज वहीं ड्रोन उड़ रहे हैं। पहले दुकानों पर जाकर सामान खरीदना पड़ता था, आज मोबाइल पर 2 मिनट में ऑर्डर हो जाता है। पहले जानकारी ढूंढने में घंटों लगते थे और आज कुछ ही सेकंड्स में जवाब हमारे सामने होता है।
1: बिल्कुल सही कहा चिन्मय, लेकिन मजेदार बात यह है कि बदलाव सिर्फ मशीनों में नहीं आया, लोगों की सोच में भी आया है। आज का युवा नौकरी ढूंढने के साथ साथ खुद को कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। कलाकार अपनी कला को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, खिलाड़ी हर रिकॉर्ड को चुनौती दे रहे हैं और किसान अब नई तकनीकों को अपनाने से पीछे नहीं है।
0: बिल्कुल, और मुझे लगता है कि हर दौर की सबसे बड़ी पहचान उसकी नई सोच होती है, क्योंकि जो समय के साथ बदलना सीख जाते हैं वही आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बात और है, बदलाव का मतलब अपनी जड़ों को भूल जाना बिल्कुल नहीं होता।
1: बिल्कुल चिन्मय, असली बदलाव वही होता है जहां परंपरा भी साथ चले और प्रगति भी, जहां नई तकनीक हो लेकिन प्रकृति का सम्मान भी हो, जहां आधुनिक सोच हो लेकिन अपनी संस्कृति और मूल्यों की खुशबू भी बनी रहे।
0: और शायद यही वजह है कि आज का सफर भी इतना ही दिलचस्प होने वाला है। कहीं बात होगी आधुनिक खेती की, कहीं ऐसे युवा टेक्नोक्रेट की जिसने दुनिया भर के कारोबार का तरीका बदल दिया। कहीं मिलेंगे संगीत और अभिनय की दुनिया के शानदार नामों से, तो कहीं इतिहास के ऐसे पन्ने पलटेंगे जो हमें प्रकृति और इंसानियत दोनों की कीमत समझाते हैं।
1: यानी आज का युवाणी सिर्फ अलग अलग विषयों का संग्रह नहीं बल्कि एक ऐसी यात्रा है जहां हर पड़ाव में हमें कुछ नया सोचने पर मजबूर मिलेगा और कहीं प्रेरणा मिलेगी, कहीं जानकारी और कई ऐसी कहानियां जो शायद कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी आपके साथ हैं।
0: तो अगले कुछ मिनटों के लिए अपने आप को थोड़ा सा आराम दीजिए, क्योंकि बातचीत होगी ऐसी जिसमें खेत भी होंगे, तकनीक भी होगा, इतिहास भी होगा, संगीत भी होगा और खेलों की दुनिया की चमक भी। तो दोस्तों, मैं हूं चिन्मय और मेरे साथ है साहिल और आप सुन रहे हैं युववाणी।

0: शादी बंद हो जाए, ना मिलेगा तेरे घर वालों को ढूंढाई का सस्ता, बाकी तमाम रिश्ते हटा,
1: बाकी तमाम रिश्ते हटा।

0: साथियों, आज के हमारे स्पेशल सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं इंडिया एट 2047, 2047 का ये भविष्य हम जो है उसमें देखने जा रहे हैं, और मॉडर्न एग्रीकल्चर की बात होने वाली है। साल 2047 तक हमारा भारत जो एक डेवलप्ड नेशन बनने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है, और इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल रहने वाला है।
1: बिल्कुल, आज फार्मिंग सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड्स तक सीमित नहीं है। मॉडर्न एग्रीकल्चर में AI, ड्रोन, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, स्मार्ट इरिगेशन और सॉइल टेस्टिंग जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। इससे फार्मर्स कम लागत में बेहतर प्रोडक्शन ले पा रहे हैं।
0: आज फार्मर्स मोबाइल ऐप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की मदद से वेदर फोरकास्ट, मार्केट प्राइसेस और गवर्नमेंट स्कीम्स की इन्फॉर्मेशन भी आसानी से प्राप्त कर रहे हैं। इसी सही टाइम पर सही डिसीजन लेने से पहले से जो है वो आसान हो चुका है।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, प्रिसाइज फार्मिंग और मिलेट कल्टीवेशन पर भी खास फोकस किया जा रहा है। इससे फूड क्वालिटी भी और बेहतर हो रही है और पानी की बचत हो रही है, और तो और एनवायरमेंट को भी काफी फायदा मिल रहा है।
0: एग्री स्टार्टअप्स भी एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। ये स्टार्टअप मॉडर्न मशीन, कोल्ड स्टोरेज, ऑनलाइन मार्केटिंग और स्मार्ट फार्मिंग सॉल्यूशंस के जरिए फार्मर्स की इनकम बढ़ाने में मदद कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, अगर हम बात करें भारत सरकार की, तो भारत सरकार के द्वारा डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, पीएम किसान और पीएम फसल बीमा योजना और ई नाम जैसे इनिशिएटिव्स भी एग्रीकल्चर को मॉडर्न टेक्नोलॉजी ड्राइवर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं।
0: और चंदा एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और सस्टेनेबल फार्मिंग पर इसी तरह फोकस रहा तो इंडिया एट 2047 तक भारत दुनिया का लीडिंग एग्रीकल्चर नेशंस में अपनी पोजीशन और मजबूत कर सकता है।
1: तो साथियों, मॉडर्न एग्रीकल्चर सिर्फ नई टेक्नोलॉजी को अपनाने का नाम नहीं है, बल्कि फार्मर्स की इनकम बढ़ाने, फूड सिक्योरिटी को मजबूत करने और आने वाली जनरेशंस के लिए सस्टेनेबल फ्यूचर तैयार करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है।

0: नाम है जिन्होंने अपने नवचार और दूरदर्शिता से वैश्विक पहचान बनाई है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक युवा टेक्नोक्रेट फैबियन पिंकर्स, जिन्होंने बिजनेस सॉफ्टवेयर की दुनिया में एक नई सोच को जन्म दिया।
1: फैबियन पिंकर्स बेल्जियम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। वर्ष 2005 में उन्होंने उडू की स्थापना की। दिलचस्प बात यह है कि इस कंपनी की शुरुआत टाइनी ईआरपी के नाम से हुई, जो बाद में ओपन ईआरपी और फिर अंत में उडू के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया।
0: आज उडू दुनिया के 170 से अधिक देशों में लाखों उपयोगकर्ताओं और हजारों कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। अकाउंटिंग, सेल्स, इन्वेंट्री, ह्यूमन रिसोर्स, मैन्युफैक्चरिंग, ई कॉमर्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए यह एक भरोसेमंद और लोकप्रिय प्लेटफॉर्म बन चुका है।
1: फैबियन की सोच हमेशा से ही अलग रही है। उनका मानना था कि आधुनिक और प्रभावी बिजनेस सॉफ्टवेयर केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं होने चाहिए, छोटे और मध्यम बिजनेस को भी ऐसी तकनीक सुलभ और किफायती रूप में मिलनी चाहिए। यही विचार उडू की सफलता की सबसे बड़ी वजह बना।
0: उनकी इसी दृष्टि और नेतृत्व से उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी सहारा गया। वर्ष 2019 में उन्हें ईवा एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर बेल्जियम के प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया। इसके बाद 2020 में उन्हें मैनेजर ऑफ द ईयर का सम्मान भी प्राप्त हुआ। उनके नेतृत्व में उडू ने तेजी से विस्तार किया और आज यह यूरोप की सबसे अग्रणीय सॉफ्टवेयर कंपनियों में गिनी जाती है।
1: साथियों, फैबियन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन ही नहीं है बल्कि ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी में मजबूत समर्थक भी हैं। उनका मानना है कि बेहतर तकनीक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे ताकि व्यवसाय अधिक कुशल, पारदर्शी और आधुनिक बन सके।
0: आज दुनिया भर के लाखों उद्यमी और स्टार्टअप उनकी सोच से प्रेरणा लेते हैं। फैबियन की सफलता यह साबित करती है कि यदि विचार नया हो, उद्देश्य स्पष्ट हो और मेहनत निरंतर हो, तो एक युवा टेक्नोक्रेट भी वैश्विक स्तर पर बदलाव ला सकता है।
1: निश्चित रूप से फैबियन पिंकर्स की यात्रा नवाचार, नेतृत्व और तकनीक के माध्यम से समाज और उद्योग दोनों के लिए नई दिशा देने का प्रेरक मिलती है।

0: तकनीक और नवचार की दुनिया से आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं उस मंच की ओर जहां प्रतिभा, मेहनत और समर्पण किसी भी व्यक्ति को एक अलग पहचान दिलाता है।
1: जी हाँ, अब समय है हमारे विशेष सेगमेंट शख्सियत का, जिसमें आज हम बात करेंगे दो ऐसी हस्तियों की जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपनी अलग छाप छोड़ी है।
0: आज की पहली शख्सियत है भारतीय फिल्म जगत के प्रसिद्ध कोरियोग्राफर जॉनी मास्टर की।
1: जॉनी मास्टर, जिनका वास्तविक नाम शेख जानी बाशा है, उनका जन्म 2 जुलाई 1982 को आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में हुआ। बचपन से ही उन्हें नृत्य में गहरी रुचि थी। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक बैकग्राउंड डांसर के रूप में की और बाद में कई प्रसिद्ध कोरियोग्राफर के साथ सहायक रूप में काम करते हुए अपने हुनर को निखारा।
0: वर्ष 2009 में तेलुगु फिल्म द्रोणा से उन्हें स्वतंत्र कोरियोग्राफर के रूप में पहला बड़ा अवसर मिला। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी ऊर्जा से भरपूर, आधुनिक और दर्शकों को आकर्षित करने वाली कोरियोग्राफी के कारण वे दक्षिण भारतीय सिनेमा के साथ साथ हिंदी फिल्म के उद्योग के जो है बहुत ही लोकप्रिय कोरियोग्राफर बन गए।
1: जानी मास्टर ने तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों के अनेक सुपरहिट गीतों में कोरियोग्राफी की है। अभिनेता अल्लू अर्जुन, रामचरण, जूनियर एनटीआर, थलपति विजय, यश, सलमान खान और रणवीर सिंह जैसे कई बड़े सितारों के साथ उनका काम काफी सराहा गया है। उनके डांस स्टेप्स और अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हैं और युवा वर्ग के बीच बेहद लोकप्रिय भी रहते हैं।
0: उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है वर्ष 2024 का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। उन्हें फिल्म तिरुचित्रांबलम के लोकप्रिय गीत मेघम करुणाकथा के लिए उत्कृष्ट कोरियोग्राफी के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया। यह सम्मान भारतीय सिनेमा में उनके योगदान की एक बड़ी पहचान माना जाता है।
1: राष्ट्रीय सम्मान के अलावा जानी मास्टर को सीमा यानी कि साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स और अन्य प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार समारोह में भी कई बार सम्मानित किया जा चुका है। उनकी कोरियोग्राफी की विशेषता यह है कि पारंपरिक और आधुनिक नृत्य शैलियों को ऐसा सुंदर समन्वय करते हैं जो हर आयु वर्ग के दर्शकों को आकर्षित करता है।
0: कोरियोग्राफर होने के साथ साथ जॉनी मास्टर कई डांस रियलिटी शो में जज और मेंटर की भूमिका निभा चुके हैं। वे युवा कलाकारों को मंच देने और नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भी जाने जाते हैं।
1: बैकग्राउंड डांसर से राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कोरियोग्राफर बनने तक का जॉनी मास्टर का सफर इस बात का प्रमाण है कि प्रतिभा, निरंतर अभ्यास और दृढ़ संकल्प के बल पर सफलता भी नई ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है।
0: अब बात करते हैं आज की दूसरी शख्सियत की। अपनी सादगी, गंभीर अभिनय और हर किरदार में जान डालने के लिए अद्भुत क्षमता के लिए पहचाने जाने वाले अभिनेता जो है पवन मल्होत्रा की। भारतीय सिनेमा के उन चुनिंदा कलाकारों में से वो एक है जिन्होंने बिना किसी स्टार छवि के केवल अपने अभिनय के दम पर दर्शकों के दिल में खास जगह बनाई है।
1: साथियों, पवन मल्होत्रा का जन्म 2 जुलाई 1958 को दिल्ली में हुआ। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत टेलीविजन से की और जल्द ही अपनी प्रभावशाली अभिनव शैली के कारण फिल्म जगत में भी पहचान बना ली। पिछले 3 दशकों से अधिक समय से उन्होंने हिंदी के साथ साथ पंजाबी, तेलुगु और अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई है।
0: अगर उनके यादगार अभिनय की बात करें तो ब्लैक फ्राइडे, भाग मिल्खा भाग, हवा हवाई, मंटो, शेर दिल, द पीली भात सागा, ग्रहण और तब्बर जैसी फिल्में और वेब सीरीज में उन्होंने अपने किरदार को निभाया है। दर्शकों और समीक्षाओं दोनों की खूब सराहना वो प्राप्त कर चुके हैं और हर भूमिका में उनका सहज और स्वाभाविक अभिनय उन्हें एक अलग पहचान दिलाता है।
1: साथियों, पवन मल्होत्रा की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह किसी भी किरदार में पूरी तरह से ढल जाते हैं। चाहे संवेदनशील पिता की भूमिका हो, एक कठोर पुलिस अधिकारी का चरित्र हो या फिर समाज के किसी साधारण व्यक्ति का जीवन, वे हर भूमिका पूरी ईमानदारी और गहराई के साथ निभाते हैं।
0: उनकी प्रतिभा को कई प्रतिष्ठित मंचों पर सम्मान भी मिला है। वर्ष 2022 में उन्हें फिल्म शेर दिल के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में उत्कृष्ट अभिनय के लिए सहारा गया है। समीक्षक उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे सशक्त चरित्र अभिनेताओं में भी गिनते हैं।
1: फिल्मों के अलावा पवन मल्होत्रा ने टेलीविजन और डिजिटल

0: डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी अपने अभिनय क्षमता का शानदार परिचय दिया है। हर एक नए माध्यम में उन्होंने ये साबित किया है कि अच्छा अभिनय समय और मंच का मोहताज नहीं होता।
1: पवन मल्होत्रा की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि सफलता केवल लोकप्रियता से नहीं बल्कि अपने काम के प्रति समर्पण, निरंतर सीखने की इच्छा और उत्कृष्ट प्रदर्शन से प्राप्त होती है। यही कारण है कि आज के कुछ युवा कलाकारों के लिए ये प्रेरणा सूत्र बन चुके हैं।
0: वास्तव में पवन मल्होत्रा भारतीय सिनेमा की उन अनमोल हस्तियों में से है जिन्होंने अपने दमदार अभिनय से हर किरदार को यादगार बना दिया और यह साबित किया कि ऐसे सशक्त अभिनेता अपनी कला से ही दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ते हैं।

Peter, il chante

0: कला और सिनेमा की इन प्रेरक शख्सियतों से आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं इतिहास के उन महत्वपूर्ण पड़ावों की ओर जिन्होंने भारत की विदेश नीति और पड़ोसी देशों के साथ उसके संबंधों को नई दिशा दी।
1: जी हाँ, आज के दिन इतिहास में दर्ज एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना से जुड़ा है कि शिमला एग्रीमेंट, जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों की आधारशिला को एक नई दिशा देने का प्रयास किया।
0: आइए जानते हैं शिमला समझौते से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें और इस

0: भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश के गठन के बाद दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है।
1: इस समझौते पर भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति बाद में प्रधानमंत्री बने जुल्फिकार अली भुट्टो ने हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हस्ताक्षर किए। कई दिनों तक चली वार्ताओं के बाद दोनों देशों ने यह सहमति बनाई कि भविष्य में अपने मतभेदों को युद्ध के बजाय शांतिपूर्ण और द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करेंगे।
0: शिमला समझौते का एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि 1971 के युद्ध विराम के बाद बनी सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC का नाम दिया गया। दोनों देशों ने LOC का सम्मान करने और एक तरफा तरीके से उसकी स्थिति में कोई बदलाव न करने का संकल्प भी व्यक्त किया।
1: इसके अलावा दोनों देशों ने अपनी संबंधी को सामान्य बनाने, राजनीतिक संपर्क बनाने, संचार और यात्रा सुविधाओं को बेहतर करने तथा व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के प्रोत्साहित करने पर भी सहमति जताई। समझौते का उद्देश्य दक्षिण एशिया में स्थायी शांति और विश्वास का वातावरण तैयार करना था।
0: इतिहास के पन्नों में दर्ज शिमला समझौता हमें यह संदेश देता है कि संवाद, कूटनीति और आपसी विश्वास किसी भी लंबे समय तक चलने वाले विवाद के समाधान का महत्वपूर्ण आधार बन सकता है।
1: और इसी ऐतिहासिक महत्व के कारण 2 जुलाई को शिमला समझौते की वर्षगांठ के रूप में याद किया जाता है।
0: बिल्कुल साहिल, इतिहास में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जो हमें केवल अतीत की जानकारी नहीं देते बल्कि प्रकृति और समाज और मानवीय मूल्यों के प्रति हमारी जिम्मेदारी का भी एहसास कराते हैं। और आज जब 1 से 7 जुलाई वन महोत्सव सप्ताह चल रहा है और इसी सप्ताह में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही प्रेरणादायक अध्याय की जो पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है।
1: बिल्कुल साथियों, हम बात कर रहे हैं बिश्नोई बलिदान की, एक ऐसी घटना जिसने यह सिद्ध कर दिया कि प्रकृति की रक्षा के लिए मानव अपने को भी त्याग कर सकता है।
0: वर्ष 1730 में वर्तमान राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में एक ऐतिहासिक घटना घटी। उस समय जोधपुर के शासक महाराजा अभय सिंह के आदेश पर राजकीय निर्माण कार्य के लिए लकड़ी जुटाने हेतु सैनिक खेजड़ी में पेड़ों को काटने पहुंचे।
1: लेकिन बिश्नोई समाज के लिए खेजड़ी का वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं बल्कि जीवन, पर्यावरण और आस्था का प्रतीक था। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक गुरु जोंभाजी ने लगभग 500 वर्ष पहले अपने 29 सिद्धांतों में प्रकृति, वन्य जीवों और हरित वृक्षों की रक्षा का संदेश दिया था। इन्हीं सिद्धांतों का पालन करते हुए गांव की महिला अमृता देवी बिश्नोई ने पेड़ों की रक्षा का संकल्प लिया।
0: जब सैनिकों ने पेड़ काटने का प्रयास किया तो अमृता देवी ने खेजड़ी के वृक्ष को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, सर साटे रुख राहे तो भी सस्तो जान, अर्थात यदि पेड़ बचाने के लिए सिर भी कट जाए तो ये सौदा भी सस्ता है।
1: अमृता देवी के बाद उनकी तीनों बेटियां आंसू, रतनी और भागु भी पेड़ों की रक्षा के लिए आगे आईं। देखते ही देखते आसपास के गांवों के लोग भी पहुंचने लगे। अंततः 363 बिश्नोई स्त्री पुरुषों ने एक एक पेड़ से लिपटकर अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, लेकिन पेड़ों को बचाने में अपना संकल्प नहीं छोड़ा।
0: जब यह समाचार महाराजा अभय सिंह तक पहुंचा तो वे इस बलिदान से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने तत्कालीन पेड़ों की कटाई रुकवाई और बिश्नोई क्षेत्रों में हर हरे भरे जो पेड़ थे और उनके जो वन्य जीव थे उनके शिकार पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया।
1: खेजड़ी का यह बलिदान विश्व के पर्यावरण संरक्षण इतिहास की सबसे प्रेरणादायक घटनाओं में गिना जाता है। माना जाता है कि बाद के वर्षों में शुरू हुए चिपको आंदोलन सहित अनेक पर्यावरण आंदोलन को भी इस घटना से प्रेरणा मिली है।
0: बिल्कुल, आज भी हर वर्ष राजस्थान के खेजड़ली में इन 363 बलिदानियों की स्मृति में मेला और श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उनका त्याग हमें यह संदेश देता है कि प्रकृति का संरक्षण केवल सरकार का नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।
1: वाकई में बिश्नोई समाज का यह अद्वितीय बलिदान मानव और प्रकृति के बीच गहरे संबंध, पर्यावरण और के प्रति समर्पण और जीवन मूल्यों के लिए भी अमर मिसाल है।

0: आज के हमारे अगले स्पेशल सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं अनूप कुमार दत्ता की, जो कि भारत के जाने माने ऑथर और जर्नलिस्ट है। खासतौर पर बच्चों और युवाओं के लिए लिखी गई उनकी जो बुक्स है वो काफी पॉपुलर रही है।
1: बिल्कुल, अनूप कुमार दत्ता का जन्म 2 जुलाई 1946 को असम में हुआ। उन्होंने जर्नलिज्म और राइटिंग दोनों फील्ड्स में लंबे समय तक काम किया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की कल्चर, हिस्ट्री और वाइल्ड लाइफ को अपनी बुक्स के जरिए देश दुनिया तक पहुंचाया।
0: उन्होंने इंग्लिश में काफी बुक्स लिखी। उनकी प्रसिद्ध बुक्स में द काजीरंगा ट्रेल, द अहोम्स यूनिकॉर्न्स और द ब्लाइंड विटनेस जैसी रचनाएं शामिल है। उनकी राइटिंग स्टाइल आसान, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव मानी जाती है।
1: साथ ही अनूप कुमार दत्ता की बुक्स सिर्फ स्टोरीज नहीं सुनाती, बल्कि रीडर्स को नेचर, वाइल्ड लाइफ, हिस्ट्री और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की रिच हेरिटेज से भी जोड़ती है। यही वजह है कि उनकी बुक्स स्टूडेंट्स और यंग रीडर्स के बीच काफी पसंद की जाती है।
0: अगर अचीवमेंट्स की बात करें तो उन्हें चिल्ड्रंस लिटरेचर और जर्नलिज्म के में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए नेशनल और रीजनल ऑनर से सम्मानित किया जा चुका है। उनकी रचनाओं ने इंडियन लिटरेचर में एक अलग पहचान बनाई है।
1: साथ ही अनूप कुमार दत्ता की जर्नी हमें यह सिखाती है कि अच्छी राइटिंग सिर्फ नॉलेज नहीं देती, बल्कि सोसाइटी और कल्चर को समझाने का एक नया पर्सपेक्टिव भी देती है। साथियों, अब स्पेशल सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अजीज की, जो इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे लोकप्रिय प्लेबैक सिंगर्स में से एक थे। अपनी पावरफुल वॉइस और सोलफुल सिंगिंग की वजह से उन्होंने लाखों म्यूजिक लवर्स का दिल जीता।
0: बिल्कुल, मोहम्मद अजीज का जन्म 2 जुलाई 1954 को कोलकाता में हुआ। बचपन से ही उन्हें म्यूजिक का शौक था और आगे चलकर उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग को अपना करियर बना लिया।
1: साथियों, 1980s और 1990s में मोहम्मद अजीज ने बॉलीवुड के कई सुपरहिट सॉन्ग्स गाए। उन्होंने लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल, बप्पी लहरी, अनु मलिक और कई दूसरे फेमस म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया।
0: उनकी आवाज अमिताभ बच्चन, गोविंदा, मिथुन चक्रवर्ती, सनी देओल जैसे कई बड़े एक्टर्स को खूब पसंद आई। उनके लोकप्रिय गीतों में माई नेम इज लखन, मर्द टांगे वाला, आजकल कुछ याद और रहता नहीं के और कई डिवोशनल सॉन्ग्स भी शामिल है।
1: मोहम्मद अजीज की सबसे बड़ी पहचान थी उनकी हाई पिच सिंगिंग, क्लियर प्रोनंसिएशन और इमोशन से भरपूर परफॉर्मेंस। इसी वजह से उन्होंने हिंदी के साथ साथ बंगाली, ओडिया और कई दूसरे इंडियन

0: लैंग्वेजेस में भी हजारों गाने रिकॉर्ड किए।
1: उनका म्यूजिक आज भी लिसनर्स के बीच उतना ही पॉपुलर है और नई जनरेशन भी उनके सॉन्ग को उतना ही पसंद करती है। उनका सफर हमें सिखाता है कि टैलेंट, डेडिकेशन और पैशन इंसान को हमेशा यादगार बना देता है।
0: तो साथियों, मोहम्मद अजीज सिर्फ एक बेहतरीन सिंगर ही नहीं है बल्कि इंडियन प्लेबैक म्यूजिक की एक सुनहरे दौर की पहचान भी है। तो आइए सुनते हैं उनका एक गीत।

0: वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अब आपके मोबाइल में हमारा रेडियो कहीं भी कभी भी। अब आप सुन सकते हैं FM रेडियो लेक सिटी के प्रोग्राम्स देश और दुनिया के किसी भी कोने में।
4: रेडियो लेक सिटी, लेक सिटी।
3: हमारे प्रोग्राम सुनने के लिए आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाना पड़ेगा और डाउनलोड करना पड़ेगा न्यूज ऑन AIR ऐप, यानी NEWSONAIR ऐप। यही आपको मिलेगा हमारा चैनल AIR उदयपुर FM लेक सिटी।
5: नॉन स्टॉप म्यूजिक, नॉन स्टॉप फन, इट्स कूलेस्ट वन, कूलेस्ट वन।
3: अब आप इसके आइकन को दबाएं और आनंद लें हमारे मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का कहीं भी

0: मुझे
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहे।
4: तो साहिल, अब हम बात कर रहे हैं कार्ल लुईस की, जिन्होंने दुनिया के सबसे महान ट्रैक एंड फील्ड एथलीट्स में गिना जाता है। अपनी इनक्रेडिबल स्पीड और लॉन्ग जंप परफॉर्मेंसेस की वजह से उन्होंने एथलीट्स में एक अलग पहचान बनाई है।
5: बिल्कुल चिन्मय, साथ ही बता दें कि कार्ल लुईस का जन्म 1 जुलाई 1961 को अलबामा यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ। बचपन से ही उनका इंटरेस्ट एथलेटिक्स में था और कड़ी मेहनत के दम पर उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी जगह बनाई।
4: कार्ल ने स्प्रिंट इवेंट्स के साथ साथ लॉन्ग जंप्स में भी शानदार परफॉर्मेंस दी। कई सालों तक उन्होंने लॉन्ग जंप्स में अपना डोमिनेशन बनाए रखा और लगातार बड़े इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में मेडल्स जीते।
5: बिल्कुल, और अगर अचीवमेंट्स की बात करें तो उन्होंने ओलंपिक गेम्स में 9 गोल्ड मेडल्स और 1 सिल्वर मेडल जीते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स में भी उन्होंने 8 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए हैं, जो अपने आप में ही एक बड़ी अचीवमेंट है। साथ ही साथ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने उन्हें ओलंपियन ऑफ द सेंचुरी के टाइटल से नवाजा गया।
4: उनकी स्पीड, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी उन्हें एथलीट्स की दुनिया में एक बड़ा लेजेंड बना देती है। आज भी कई यंग एथलीट्स उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं।
5: कार्ल लुईस की जर्नी हमें सिखाती है कि टैलेंट के साथ अगर हार्ड वर्क, डेडिकेशन और सेल्फ बिलीफ हो तो दुनिया का कोई भी गोल हासिल किया जा सकता है।
4: अब आगे बात करते हैं दिलीप सरदेसाई की, जिन्होंने इंडियन क्रिकेट में सबसे भरोसेमंद बैट्समैन में गिना जाता है। अपने काम, एटीट्यूड और शानदार बैटिंग की वजह से उन्होंने इंडियन क्रिकेट में एक खास पहचान बनाई है।
5: बिल्कुल, साथ ही साथ दिलीप सरदेसाई का जन्म जो है 8 अगस्त 1940 को गोवा में

0: हुआ था। उन्होंने 1960s और 1970s में इंडियन क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया और कई यादगार इनिंग्स खेली।
1: उनके करियर का सबसे यादगार दौरा था 1971 का वेस्ट इंडीज दौरा। उस सीरीज में उन्होंने शानदार बैटिंग करते हुए 642 रन बनाए और इंडिया के ऐतिहासिक सीरीज विन में बड़ी भूमिका निभाई।
0: उस जीत ने इंडियन क्रिकेट का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से बदल दिया। इसी परफॉर्मेंस की वजह से दिलीप सरदेसाई को उस टूर का सबसे बड़ा हीरो माना गया।
1: अगर अचीवमेंट्स की बात करें तो उन्होंने अपने टेस्ट क्रिकेट करियर में 13 सेंचुरीज 22 हाफ सेंचुरीज की मदद से 3,442 रन बनाए। उनके कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ने इंडियन बैटिंग को एक नई मजबूती दी।
0: दिलीप सरदेसाई की जर्नी हमें सिखाती है कि पेशेंस, हार्डवर्क और टीम स्पिरिट किसी भी खिलाड़ी को सबसे बड़ी ताकत दे सकती है।

0: अब नजर डालते हैं 2 जुलाई को इतिहास के पन्नों में दर्ज हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर।
1: सबसे पहले बात करते हैं भारत की। 2 जुलाई 1940 को महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता में गिरफ्तार कर नजरबंद कर दिया था। उनकी राष्ट्रवादी गतिविधियों से ब्रिटिश शासन जो है वो चिंतित था।
0: विश्व इतिहास की बात करें तो 2 जुलाई 1964 को अमेरिका में सिविल राइट्स एक्ट लागू हुआ, जिसने सार्वजनिक स्थानों पर नस्लीय भेदभाव को कानूनी रूप से समाप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम रखा।
1: इस दिन 1937 में विश्व प्रसिद्ध महिला वैमानिक अमेलिया ईयरहार्ट अपने विश्व भ्रमण के प्रयास के दौरान प्रशांत महासागर के ऊपर रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई थी। उनका यह सफर आज भी इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में गिना जाता है।
0: इसके अलावा 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह दिन खेल पत्रकारों के योगदान को सम्मान देने के लिए समर्पित है।
1: तो ये थी 2 जुलाई से जुड़ी इतिहास की कुछ प्रमुख घटनाएं, जिन्होंने अपने अपने समय, दुनिया और भारत के इतिहास पर गहरी छाप छोड़ी।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। शाम के 6 बजे हैं, आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आज नई दिल्ली में वार्ता के दौरान कई क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने यह स्वीकार किया कि ये विश्वास का रिश्ता है और बातचीत में ये विश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि आज की बातचीत में ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। विदेश सचिव ने कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष है और आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में

0: मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
0: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलॉसफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। त्रिपुरा के अगरतला में आज राज्य स्तरीय विकसित भारत जी रामजी का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर त्रिपुरा के श्रम मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि नई योजना प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। योजना के अंतर्गत दैनिक मजदूरी 256 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के सचिव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण ये नोटिस जारी किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थित दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मैच में आज रात इंगलवुड में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा, वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 6:05 हुए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कुछ फिल्मी गीत।

फिल्म संगीत में लीजिए सुनिए सबसे पहले घर फिल्म से आर डी बर्मन के संगीत से सजा ये गीत, और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

लता मंगेशकर की आवाज में घर फिल्म से अभी आपने गीत सुना। और लीजिए सुनिए अगला गीत, एक बार फिर आर डी बर्मन के संगीत से सजा, गोलमाल फिल्म से आवाज किशोर कुमार की।

फकीरा, ये है अगली फिल्म जिसे हम सुनवाने जा रहे हैं आपको। अगला गीत संगीत रविंद्र जैन का है और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

0: गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

जहरीला इंसान, ये है अगली फिल्म जिसे हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। ये गीत आवाज किशोर कुमार की है, संगीत आर डी बर्मन का।

अश्रुतोली जी सुनिए फिल्म संगीत का आखिरी नगमा सलील चौधरी के संगीत से सजा हुआ फिल्म रजनीगंधा से आवाज लता मंगेशकर की।

0: रजनीगंधा फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। उसके बाद जिले की चिट्ठी और 6:45 पर होंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, बीबीजी रामजी योजना पर अगले 5 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जयपुर में 2 दिन के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का समापन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एआई को सुशासन की अनिवार्य जरूरत बताया। राज्य में मॉनसून के प्रवेश के साथ कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश। अगले 24 घंटों में अनेक जिलों में भारी बरसात की संभावना। और प्रदेश में जुलाई महीने को एंटी डेंगू माह के रूप में मनाया जाएगा। विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित होंगी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी का आज से राष्ट्रव्यापी शुभारंभ हुआ। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री शिवराज

0: राज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुक्कावरिपल्ली गांव से इसकी शुरुआत की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि योजना के तहत पहले ही साल में 1,51,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, वहीं अगले 5 सालों में 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे गांव में रोजगार बढ़ने के साथ ही वहां की तस्वीर बदलेगी।
1: 5 साल में विकसित भारत जी राम जी योजना में 7.5 लाख करोड़ रुपया खर्चा होंगे, मतलब 5 साल में हर पंचायत को 2 करोड़ रुपया से ज्यादा मिलेंगे। और ये पैसा ठीक से गांव में खर्च हो गया तो मजदूरों को रोजगार तो मिलेगा ही, लेकिन गांव की तस्वीर भी बदल जाएगी और वहां की जनता की तकदीर भी बदल जाएगी।
0: केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की कि अब किसी भी राज्य में मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, मजदूरों को उनकी मेहनत का पूरा पैसा मिलेगा। उन्होंने बताया कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक खर्च 6% से बढ़ाकर 9% कर दिया गया है। इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ब्यावर जिले के मसूदा कृषि उपज

0: केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की कि अब किसी भी राज्य में मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी। मजदूरों को उनकी मेहनत का पूरा पैसा मिलेगा। उन्होंने बताया कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक खर्च 6% से बढ़ाकर 9% कर दिया गया है। इधर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ब्यावर जिले के मसूदा कृषि उपज मंडी से राष्ट्रीय कार्यक्रम से वीसी के माध्यम से जुड़े। इस दौरान उन्होंने वीबीजी रामजी योजना के राज्य स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों की समृद्धि और विकास के लिए ये योजना लाई गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत जल संरक्षण, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका और आपदाओं से निपटने संबंधी ठोस कार्य करवाए जा सकेंगे।
1: इस योजना में एक डिजिटल बहु स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इसमें निश्चित समय सीमा जिला लोकपालों की व्यवस्था भी की गई है। वेतन का भुगतान हर हफ्ते करना अनिवार्य होगा। 2 हफ्ते से अधिक देरी होने पर उसका मुआवजा भी आपको मिलेगा। प्रशासनिक व्यय की सीमा को बढ़ा करके 6% से 9% किया है, ताकि जमीनी स्तर पर पर्याप्त कर्मचारी, तकनीकी विशेषज्ञ, प्रशिक्षण, निगरानी क्षमता उनकी रख सके। इस कानून में एक टिकाऊ और जवाबदेह वित्तीय मॉडल का प्रावधान है, जिससे हम विकास उन्मुखी कर सकें और उस गांव को हम विकास से जोड़ सकें।
0: मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लगभग 424 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने देवमाली में 2 करोड़ रुपए की लागत से दर्शनार्थियों के लिए आश्रय स्थल बनाने की भी घोषणा की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने वीबीजी रामजी योजना के तहत 2 लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण किया। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब कोई विकल्प नहीं बल्कि सुशासन की अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी है। उन्होंने एआई का बुद्धिमत्ता से उपयोग करने की जरूरत पर जोर दिया। श्री सिंह जयपुर में आयोजित 2 दिवसीय 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने के लिए प्रशासनिक सोच में बदलाव जरूरी है। उन्होंने कहा कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के मंत्र के अनुरूप सरकार नागरिक केंद्रित, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन को बढ़ावा दे रही है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने सुशासन में बाधक बन रहे करीब 2000 नियमों को समाप्त किया है, जिसमें दस्तावेजों के अनिवार्य सत्यापन सहित कई अन्य फैसले शामिल हैं। समारोह में श्री सिंह ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों का वितरण किया। इस साल 7 श्रेणियों में कुल 17 ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इनमें 10 स्वर्ण और 6 रजत पुरस्कार शामिल हैं। डिजिटलीकरण के माध्यम से जमीनी स्तर पर सेवा वितरण को गहरा और व्यापक बनाने के लिए दिए गए पुरस्कारों में ग्राम पंचायत श्रेणी भी शामिल है। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि सम्मेलन में सभी राज्यों की भागीदारी रही, सभी ने अपने अनुभव साझा किए।
2: 11वीं इस तरह की राष्ट्रीय स्तर की गोष्ठी आज जयपुर नगर में की गई है और एक बड़ी संतोषजनक बात यह है कि देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसमें इसमें भागीदारी नहीं रही, कोई ऐसा केंद्र शासित प्रदेश नहीं। प्रत्येक प्रदेश के अधिकारियों ने अपने अपने अनुभव जो वहां की बेस्ट प्रैक्टिस है यहां साझी की। एक दूसरे के साथ विचारों का भी आदान प्रदान हुआ और एक दूसरे के अनुभवों का, और इस श्रृंखला को और इस क्रम को हम निरंतर आगे बढ़ाते हुए मोदी जी के द्वारा लाए गए जो गवर्नेंस रिफॉर्म्स है वो ना केवल गवर्नेंस तक सीमित है बल्कि उनका बहुत अधिक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी रहा है, सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में भी।
0: सहकार सप्ताह के तहत आज जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार, तकनीकी दक्षता और उत्कृष्ट कार्यों के लिए सहकारी संस्थाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने कहा कि सहकारिता केवल एक व्यवस्था नहीं बल्कि एक सबके लिए सब एक के लिए के सिद्धांत पर आधारित जन कल्याण की सशक्त विचारधारा है। उन्होंने कहा कि एकता, विश्वास और सामूहिक प्रयासों से हर चुनौती का सामना करते हुए समावेशी और सतत विकास का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.com

0: facebook.com/ghazipur.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने आज प्रदेश के पूर्वी हिस्सों से प्रवेश कर लिया है। मौसम विभाग के अनुसार सामान्य से 7 दिन की देरी से आया मॉनसून वर्तमान में टोंक, जयपुर और अलवर में सक्रिय है। भरतपुर के बयाना में आज तेज बरसात हुई, वहीं शहर के अलावा कई क्षेत्रों में हल्की बारिश दर्ज की गई। प्रतापगढ़ में 4 इंच से ज्यादा बारिश के समाचार हैं। चित्तौड़गढ़ में भी मूसलाधार बारिश हुई। दौसा में तेज बरसात से कई इलाकों में पानी भर गया। अलवर शहर और आसपास के इलाकों में भी बरसात हुई। राजधानी जयपुर में सुबह से ही बादलों की आवाजाही रही। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि मॉनसून के आगामी 2-3 दिनों में राज्य के कुछ और भागों में आगे बढ़ने की प्रबल संभावना है। उन्होंने बताया कि आज उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम तो कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं कोटा संभाग के जिलों में कहीं कहीं अति भारी बारिश का पूर्वानुमान है।
1: आज मानसून के समय से एक सप्ताह की देरी से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में प्रवेश किया है। इसी के साथ पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में कुछ भागों में मध्यम से कहीं कहीं भारी बारिश की रिपोर्ट हुई है। इसके अलावा एक और बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया फिलहाल उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक के ऊपर बना हुआ है। साथ ही मानसून ट्रफ लाइन भी फिलहाल सक्रिय है। ऐसे में आगामी 3-4 दिनों में राजस्थान में मानसून सक्रिय रहने और राज्य के कई भागों में मानसून के प्रवेश करने तथा आगे बढ़ने के लिए प्रबल संभावना बनी हुई है। इस दौरान उदयपुर, कोटा संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। बाकी राज्य के ज्यादातर इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ कहीं कहीं पर तेज थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने की भी प्रबल संभावना बनी रही।
0: राज्य में जुलाई महीने को एंटी डेंगू माह के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान चिकित्सा विभाग की ओर से डेंगू की रोकथाम, मच्छर नियंत्रण और जन जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर रवि शेखावत ने बताया कि मानसून के दौरान एडीज मच्छरों के प्रजनन की संभावना बढ़ जाती है। मच्छरों के प्रजनन स्थलों को खत्म करना और आमजन की सक्रिय भागीदारी ही डेंगू से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान विभिन्न विभागों का सहयोग लेते हुए समुदाय स्तर पर कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
2: डेंगू नियंत्रण के लिए जन भागीदारी, जांच करें, सफाई करें और ढके। जुलाई 2026 में जो डेंगू के लिए माह मना रहे हैं, इसके अंदर चिकित्सा विभाग के अलावा शहरी, ग्रामीण, पंचायती राज, पानी की आपूर्ति, शिक्षा, परिवहन, नगर पालिका, स्थायी निकाय, गैर सरकारी संगठनों की साझेदारी से स्थानीय और धार्मिक गुरुओं के साथ समन्वय बैठक का आयोजन करेंगे। मच्छरों के प्रजनन को रोकने और तथा 3 दिन के समय व्यक्तिगत सुरक्षा उपायों का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भी लोगों को जागरूक किया जाएगा।
0: केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने का प्रयास कर रही है। श्री यादव आज नई दिल्ली में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। श्री यादव ने बताया कि सरकार पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था के साथ साथ विकास सुनिश्चित करने पर काम कर रही है। ये सम्मेलन देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में तेजी लाने और वैश्विक इलेक्ट्रिक व्हीकल विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए आयोजित किया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC ने भर्ती परीक्षाओं के कार्यक्रम में आंशिक बदलाव किया है। RAS भर्ती प्रारंभिक परीक्षा अब 29 नवंबर के स्थान पर 6 दिसंबर को आयोजित की जाएगी, जबकि मुख्य परीक्षा अगले साल 1 और 2 मई को आयोजित होगी। इसी तरह माध्यमिक शिक्षा विभाग की प्राध्यापक विशेष शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 8 दिसंबर को होगी। ये परीक्षा पहले 6 दिसंबर को होनी थी। इसके अलावा सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा 27 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, BBG रामजी योजना पर अगले 5 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जयपुर में 2 दिन के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का समापन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने AI को सुशासन की अनिवार्य जरूरत बताया। राज्य में मॉनसून के प्रवेश के साथ कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश, अगले 24 घंटों में अनेक जिलों में भारी बरसात की संभावना। और प्रदेश में जुलाई महीने को

डेंगू माह के रूप में मनाया जाएगा, विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित होंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से फलौदी जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख प्रतापाराम ने तैयार किया है। फलौदी जिले में इन दिनों जल संरक्षण की महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। जन सहयोग से रेत में दबे गुलाब सागर, पणिहानी और सेलड़ी तालाबों के एकीकरण का काम किया जा रहा है। इससे इन जल स्रोतों को पुनर्जीवित कर एक बड़े जलाशय का स्वरूप दिया जाएगा। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने बीते दिनों कामों का निरीक्षण किया और इससे जुड़े लोगों का उत्साहवर्धन किया। जिला जल और स्वच्छता मिशन की बैठक में पेयजल और स्वच्छता योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल कनेक्शन, पेयजल आपूर्ति की गुणवत्ता और जल स्रोतों के संरक्षण पर चर्चा हुई। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को सभी काम समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन सक्रिय है। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। जिला कलेक्टर ने दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में आवश्यक सुधार करने, चेतावनी बोर्ड लगाने तथा आवारा पशुओं के गले में रिफ्लेक्टर लगाने के निर्देश दिए। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और अन्य एजेंसियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा प्रबंधन, अवैध गतिविधियों की रोकथाम और आवश्यक निगरानी व्यवस्था पर चर्चा की गई। अधिकारियों को सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश दिए गए। जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में लंबित आवेदनों के निस्तारण और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति पर चर्चा हुई। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए आयोजित संवाद कार्यक्रम में प्रशासनिक अनुभव साझा किए गए। अधिकारियों को जनसेवा, पारदर्शिता और संवेदनशील प्रशासन के महत्व से अवगत कराया गया। जिला कलेक्टर ने बापीणी उपखंड के इशरू गांव में बीते दिनों रात्रि चौपाल आयोजित कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने पेयजल, सड़क, बिजली और मुआवजे से संबंधित समस्याएं उनके सामने रखी, जिनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के लिए जिले में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में विभिन्न विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। फलौदी विधायक पब्बा राम बिश्नोई और जिला कलेक्टर ने शिविरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मानसून को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक में जल भराव वाले क्षेत्रों की पहचान, नियंत्रण कक्षों की स्थापना और आपातकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। जिला स्तर पर 24 घंटे संचालित नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिले के 86,000 से अधिक किसानों को 23वीं किस्त की राशि का लाभ मिला है। किसानों के बैंक खातों में ये राशि सीधे हस्तांतरित की गई। कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को विभिन्न कृषि योजनाओं की जानकारी भी दी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर फलौदी दुर्ग में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जन प्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और आमजन ने योगाभ्यास किया। जिले भर में आयोजित कार्यक्रमों में 1,21,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना के तहत जिले के पात्र आवेदकों के चयन के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई। योजना के तहत 583 वरिष्ठ नागरिकों का चयन किया गया है। इनमें से 519 वरिष्ठ नागरिक रेल मार्ग से और 64 हवाई मार्ग से धार्मिक यात्रा करेंगे। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले में 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई गई। चिकित्सा विभाग के अनुसार जिले में 1,53,000 से अधिक बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके लिए जिले भर में सैकड़ों पोलियो बूथ स्थापित किए गए और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने घर घर जाकर बच्चों को दवा पिलाई। फलौदी शहर में भामा शाहों के सहयोग से नए यातायात पुलिस थाने का निर्माण किया गया है। इसका बीते दिनों उद्घाटन हुआ। पुलिस विभाग ने इस पहल को जन सहयोग का अच्छा उदाहरण बताया। इसके साथ ही फलौदी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहो वीबीजी राम जी माथे आता 5 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपया खर्च कराया जावेला। जयपुर में 2 दिन रो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन पूरो थियो। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह एआई ने सुशासन री जरूरत बताया। राज्य में चौमासारी बिरखा स्वरूफी, आवता 24 घंटा में कई ठोड़ा भारी बारिश रा आसार। और प्रदेश में ओ महीनों एंटी डेंगू महारा तौर मनायो जावेला। समाचार सागर में सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी रातेत आज आखा देश में काम शुरू फेंक्यो। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आंध्र प्रदेश रा मुक्कावरी पल्ली गांव इनरी शुरुआत कीनी। ई मौके श्री चौहान कहो कि रातेत पहले साल में 1,51,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करीचियो है, जबकि आवता 5 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपया खर्च कराया जावेला। जिनो गांव में नौकरी धंधा का मौका बधवा सके वठरी तस्वीर बदलेला।
1: 5 साल में विकसित भारत जी राम जी योजना में 7.5 लाख करोड़ रुपया खर्चा होंगे, मतलब 5 साल में हर पंचायत को 2 करोड़ रुपया से ज्यादा मिलेंगे। और ये पैसा ठीक से गांव में खर्च हो गया तो मजदूरों को रोजगार तो मिलेगा ही, लेकिन गांव की तस्वीर भी बदल जाएगी और वहां की जनता की तकदीर भी बदल जाएगी।
0: केंद्रीय मंत्री ऐलान की नोक देश राकेणी राज्य में मजूरी 300 रुपया रोजिनों कम नहीं फैला। वे बतायो कि वीबीजी रामजी ने असरदार तरीका लागू करण सारू प्रशासनिक खर्च 6.9% करती उचियो है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ब्यावर जिला रे मसूदा कृषि उपज मंडियों वीडियो कॉन्फ्रेंस रे जरिए ई कार्यक्रम में जुड़िया। इन दौरान वे वीबीजी रामजी रा राज्य स्तर रा कार्यक्रम में कहो कि गांव री बरकत और विकास सारू वीबीजी रामजी लाइचियो है। श्री शर्मा कहो कि इरे जरिए पानी बचावन, गांवई हलका में बुनियादी ढांचा विकास, आजीविका और आपदारू समूह करण जुड़िया काम कराया जावेला।
2: इस योजना में एक डिजिटल बहु स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इसमें निश्चित समय सीमा और जिला लोकपालों की व्यवस्था भी की गई है। वेतन का भुगतान हर हफ्ते करना अनिवार्य होगा। 2 हफ्ते से अधिक देरी होने पर उसका मुआवजा भी आपको मिलेगा। प्रशासनिक व्यय की सीमा को बढ़ा करके 6% से 9% किया है, ताकि जमीनी स्तर पर पर्याप्त कर्मचारी, तकनीकी विशेषज्ञ, प्रशिक्षण, निगरानी क्षमता उनकी रख सके। इस कानून में एक टिकाऊ और जवाबदेह वित्तीय मॉडल का प्रावधान है, जिससे हम विकास उन्मुखी कर सके और उस गांव को हम विकास से जोड़ सके।
0: मुख्यमंत्री ई मौके करीब 424 करोड़ रुपए रा विकास रा काम री शुरुआत कीनी। वे देवमाली में 2 करोड़ रुपए रा खर्च यात्रुओं सारू आराम घर बनावन रो ऐलान कीनो। कार्यक्रम में श्री शर्मा वीबीजी रामजी रा तेत दो जना ने ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड दीना। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह कहो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुशासन री जरूरत बन क्यों है। वह आज जयपुर में रखी जा 2 दिन रा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन रा समापन समारोह में बोल रहा है। जितेंद्र सिंह एआई ने बुद्धिमानियों काम लेवन री जरूरत माथे जोर दिनो। ई मौके केंद्रीय मंत्री कहो कि विकसित भारत 2047 रो सपनो सांचो करण सारू प्रशासनिक सोच में बदलाव जरूरी है। वह कहो कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस रा मंत्र रा हिसाब सरकार जनता माथे खास ध्यान देवन वाला साफ कोई सागे और जवाबदेह प्रशासन ने बधावो दे रही है। डॉक्टर सिंह कहो कि केंद्र सरकार सुशासन में अड़चन पैदा कर रहा करीब 2000 नियम खत्म करती ना है, जहां में कागजात रा जरूरी सत्यापन समेत कई फैसला शामिल है। जलसा में श्री सिंह 7 श्रेणियों में 17 राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार तीना, आमाय 10 स्वर्ण

0: और 6 रजत पुरस्कार ही शामिल है। डिजिटल तरीकों जमीनी लेवल मथे सेवा पोगावन और बेहतर बनावन सारू दिया जाए इनाम आए ग्राम पंचायत श्रेणी ही शामिल है। कार्यक्रम पाछे खबर नवीसा सागे बातचीत करता था कांशी सिंह कहो कि एआई मौजूदा दौर में जिंदगी की जरूरत बन गयो है।
1: ये 11वीं इस तरह की राष्ट्रीय स्तर की गोष्ठी आज जयपुर नगर में की गई है और एक बड़ी संतोषजनक बात यह है कि देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसमें इसमें भागीदारी नहीं रही, कोई ऐसा केंद्र शासित प्रदेश नहीं। प्रदेश के अधिकारियों ने अपने अपने अनुभव जो वहां की बेस्ट प्रैक्टिस है यहां साझी, एक दूसरे के साथ विचारों का भी आदान प्रदान हुआ और एक दूसरे के अनुभवों का, और इस श्रृंखला को और इस क्रम को हम निरंतर आगे बढ़ाते हुए मोदी जी के द्वारा लाए गए जो गवर्नेंस रिफॉर्म्स है वो ना केवल गवर्नेंस तक सीमित है बल्कि उनका बहुत अधिक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी रहा है, सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में।
0: सहकार सप्ताह रा तहत आज जयपुर में राज्य स्तर रो मान जलसो राखी छो। जलसा में गांवी हल्का में नवाचार तकनीकी दक्षता और बेहतरी सारू काम करण बाबत सहकारी संस्थाओं रा अहंकार और कर्मचारियों रो मान करी छो। जलसा में सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक कहो के सहकारिता केवल एक व्यवस्था नहीं बल्कि सबके लिए एक सब एक के लिए रा सिद्धांत माथे आधारित जनता रा भलारी मजबूत सोच है। वह कहो के एका भरोसा और बड़ी कोशिशों हर चुनौती रो सामो करता था का समावेशी और लगातार विकास रो लक्ष्य हासिल करे जा सके है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। राज्य का ऊबड़ी हल्का में चौमासारी बिरखा शुरू की है। मौसम विभाग के मुजब 7 दिन मोड़ा पाछे टोंक जयपुर और अलवर में चौमासारी बिरखा भवन लगी है। भरतपुर जिला रा बयाना में जोरदार में बरसियो। प्रतापगढ़ में 4 इंच उमबत्ती बिरखा रा समाचार है। चित्तौड़गढ़ में तेज बरसात हुई। दौसा में भी तेज बरसात उनके हल्का माई पानी भर गयो। अलवर शहर और आरसारा रा हल्का माई चोखो में बरसियो। राजधानी जयपुर माई बादला मंडिया रहा। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि आवता 2-3 दिन माई प्रदेश रा कुछ और हल्का माई चौमासारी बिरखा सरूफे बन रा आसार है। वह बतायो कि आज उदयपुर कोटा अजमेर भरतपुर और जयपुर संभाग में कठे कठे बादलों ने गाज सागे बिखा विवन रे संभावना है, जबकि कोटा संभाग रा जिला में कठे कठे घनी जोरदार बिखा विवन रा आसार है।
2: आज मानसून के समय से एक सप्ताह की देरी से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में प्रवेश किया है। इसी के साथ पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में कुछ भागों में मध्यम से कहीं कहीं भारी बारिश की रिपोर्ट हुई है। इसके अलावा एक और बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया फिलहाल उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक के ऊपर बना हुआ है, साथ ही मानसून ट्रफ लाइन भी फिलहाल सक्रिय है। ऐसे में आगामी 3-4 दिनों में राजस्थान में मानसून सक्रिय रहने और राज्य के कई भागों में मानसून के प्रवेश करने तथा आगे बढ़ने के लिए संभावना बनी हुई है। इस दौरान उदयपुर कोटा संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। बाकी राज्य के ज्यादातर इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ कहीं पर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने की भी प्रबल संभावना बनी रही।
0: राज्य में वो महीनों एंटी डेंगू माह रा तौर मनायो चावेला। इन दौरान डेंगू री रोकथाम मच्छरों माथा काबू करण और जनता में जाग जगावन सारू चिकित्सा विभाग ने ओर जांच करें सफाई करें और ढके मुद्दा माथे खास अभियान चलायो चावेला। जयपुर रा मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम डॉक्टर रवि शेखावत बतायो कि चौमासा में मच्छर पैदा होवन की संभावना बढ़ जावे है। डेंगू रो असरदार टीको या खास इलाज नहीं विवणु मच्छर पैदा विवण रे ठोड़ा खत्म करण हर जनता की भागीदारी बचाव रो सब असरदार तरीको है। चिकित्सा विभाग जनताओं अभियान में मदद करण हर घर कमठाना हर आर सारे साफ सफाई रखण री अपील की है।
3: डेंगू नियंत्रण के लिए जन भागीदारी, जांच करें, सफाई करें और ढके। जुलाई 2026 में जो डेंगू के लिए माह मना रहे हैं इसके अंदर चिकित्सा विभाग के अलावा शहरी ग्रामीण पंचायती राज, पानी की आपूर्ति, शिक्षा, परिवहन, नगर पालिका, स्थायी निकाय, गैर सरकारी संगठनों की साझेदारी से स्थानीय और धार्मिक गुरुओं के साथ समन्वय बैठक का आयोजन करेंगे। मच्छरों के प्रजनन को रोकने और तथा 3 दिन के समय

0: व्यक्तिगत सुरक्षा उपायों का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भी लोगों को जागरूक किया जाएगा।
1: राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी भर्ती परीक्षा हमारा कार्यक्रम में थोड़ो बदलाव की न है। आरएएस भर्ती प्रारंभिक परीक्षा अब 29 नवंबर ने बजाय 6 दिसंबर में फैला, जबकि आरएएस मेंस आवता साल 1 और 2 मई ने रखी जावेला। माध्यमिक शिक्षा विभाग री प्राध्यापक विशेष शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 8 दिसंबर ने फैला। इसके अलावा सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा 27 दिसंबर ने ली जावेला। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई साल 2026 री 12वीं कक्षा री सप्लीमेंट्री परीक्षा सारू अर्जियां लेवनो शुरू करती नो है। बोर्ड रे मुजब रेगुलर और प्राइवेट उम्मीदवार सारू अर्जियां दाखिल करण और फीस जमा करावन रो काम 30 जून शुरू फेंक्यो है। संबद्ध स्कूलों ने 8 जुलाई तक परीक्षा संगम पोर्टल रे जरिए अर्जियां बोर्ड में जमा करावनी भेला। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज बतायो कि मुख्य परीक्षा में सप्लीमेंट्री आवण वाला यकीनी एक विषय में अंक सुधार सारू विद्यार्थी आ परीक्षा दे सकेला। सप्लीमेंट्री परीक्षा 28 जुलाई उभेला। आखिर में खास समाचार एक फेर सुन लेगाओ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहो वीबीजी रामजी माथे आवता 5 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपया खर्च कराया जावेला। जयपुर में 2 दिन रो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन पूरो कियो। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह एआई ने सुशासन री जरूरत बताया। राज्य में चौमासा री बिरखा सरूफी आवता 24 घंटा में कई ठोणा भारी बारिश रा आसार। प्रदेश में ओ महीनो एंटी डेंगू माहरा तौर मनायो जावेला। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। आनो आडियो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजे हिंदी में प्रसारित करो जावेला। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। श्रोताओं शाम के 7 बजे हैं। अब किसान भाइयों के लिए होगा उनका खास कार्यक्रम खेती और घर।

0: राम राम ममता भाई सर, राम राम
1: राम राम रामा भाई, राम राम
0: खेती और घर वाला संगला किसान भाई ने भी अपनो
1: राम राम सा। देखो रामा भाई, कार्यक्रम रो टेम भी और आपा किसान भाई रे बाते भात मात्री जानकारी, योजना संबंधी जानकारी और आपा विषय वार रे बाते भी जानकारी करावाते भी अपना टेम टेम पे स्टूडियो में आपा विषय विशेषज्ञ ने भी बुलावा और खेती बाड़ी की जानकारी किसान भाई ने दा। तो देखो रामा भाई, आज आपा खेती और घर कार्यक्रम में चौपाल री बात में किसान भाई ने जानकारी करावांगा खरीफ में दलहन रो उत्पाद किस तरह करे सा।
0: बिल्कुल सा। तो देखो आज आपा बात करांगा कि खरीफ मौसम में दलहन उत्पादन री। तो देखो सबों पहले तो अपने यो समझना है कि खरीफ री जो जो मुख्य दलहनी फसल है वे कसी कसी है। देखो अना में अरहर है, उड़द है, मूंग है, लोबिया है और कुंथी, ये जो है ये प्रमुख खास कई सका। अना की बुआई मुख्यतः अपने जून और जुलाई के बीच जो मानसून की वर्षा है वनडे हाथे की जावे है। दलहन एक ऐसी फसल है, एक ऐसी फसल बल्कि पोषण, कृषि और पर्यावरण तीनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है सर।
1: बिल्कुल सा। और दलहन की फसल में अगर आप पोषण सुरक्षा की बात करें रामा भाई, तो दाला प्रोटीन सब सुलभ और सस्तो स्त्रोत है। अना में प्रोटीन लारे आयरन, कैल्शियम, फाइबर, विटामिन और अनेक आवश्यक खनिज भी पाया जावे। संतुलित आहार में दाला रो विशेष स्थान है। अन्य में मिट्टी की उर्वरता की बात करा तो दलहन जो फसल है अना में जड़ा में उपस्थित राइबोजियम जीवाणु वायुमंडली जो नाइट्रोजन है वना मिट्टी में स्थिर करे है सा।
0: बल्कि अन्य में कही देखो अंडी जो भूमि की उर्वरता भी बढ़ावे है और रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता भी कम हो जावे है। कम लागत हो अन्य में बेहतर उत्पादन भी है। देखो दलहन

0: फसलों जो है वह अन्य फसल की तुलना में लागत के अपेक्षाकृत कम आवेंडी लागत, और यदि आप टाइम पे बोई और ढंग आप देखभाल की जाए तो किसान भाई है जो बढ़िया लाभ भी कमाई सके।
1: पोरणी में कम पानी की आवश्यकता पड़े और धान जैसी जो फसल है वनारी तुलना में अधिकांश दलहनी जो फसल है वे कम पानी एना में चावे है अणी बात जल संरक्षण की दृष्टि भी एनारो महत्व बढ़ जावे है सा।
0: बिल्कुल सा, आप बात करें देखो फसल चक्र की उपयोगिता की, तो देखो फसल जो दलहनी फसल है वह फसल चक्र में शामिल करवाऊँ भूमि की गुणवत्ता भी बढ़े और रोग और कीटाणु प्रकोप भी कम हुए और अगली फसल ने उत्पादन भी बढ़िया वैसा।
1: और अब यहाँ पर देखा कि बढ़िया पैदावार रहे वाते कणी कणी वातारो किसान भाई ने ध्यान रखना चाहे तो सब पहली रामा भाई बात करा आप प्रमाणित और उन्नत किस्म ना बीज रो आपने किसान भाई ने चयन करना चाहे बुवाई टाइम पे करनी है, अगर देखो देर बुवाई करेगा किसान भाई तो वही उत्पादन प्रभावित हो सके सा।
0: बिल्कुल सा, अन्य अलावा देखो बीजो उपचार जरूर करना है ताकि आप बीज जनित रोगों में बचाव कर सका, जटे आवश्यक हुए बटे राइजोबियम कल्चर उपयोग जरूर करना है, अन्य कोई वेगा की पौधा की वृद्धि और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी सहायता मिलेगा।
1: खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था करनी चाहे दलहनी जी फसल है वे लंबा टाइम तक जल भराव सहन नहीं कर सके तो अन्य बातें भी किसान भाई ने विशेष ध्यान रखना चाहे की जल जमा नहीं मिलना चाहे।
0: अन्य अलावा देखो अपने खरपतवार नियंत्रण रो बिल्कुल ध्यान रखना चाहे, समय समय पर अपने जो शुरुआती जो अवस्था है वहीं में खरपतवार फसल की वृद्धि ने प्रभावित करें, अन्य वास्ते अपने फसल रो नियमित निरीक्षण भी करना है और कीट और रोग दिखाई दे तो अपने कृषि विशेषज्ञ की सलाह लेने उचित उपाय भी अपनाना है।
1: मृदा परीक्षण के आधार पर संतुलित उर्वरक का किसान भाई ने प्रयोग करना चाहे। अब यहाँ पर देखा कि दलहनी जो फसल है वहीं में कई कई किसान भाई रहते चुनौतियां है सा।
0: बिल्कुल सा, देखो सबसे पहले तो यह है कि अनियमित रूप वर्षा, अंडे अलावा या बचे अत्यधिक वर्षा या जल भराव, कीट और रोगों का प्रकोप और गुणवत्ता युक्त जो बीज है वंडी उपलब्धता, ये अपने खास चुनौतियां है सा।
1: और एक यो भी वे की बाजार में अनो उचित मूल्य रो भी अभाव रेवे, अना चुनौतियां रो समाधान वैज्ञानिक खेती मौसम री जानकारी उन्नत तकनीक और सरकारी योजना रो लाभ उठाने किसान भाई कर सके सा।
0: बिल्कुल सा, सरकार भी देखो दलहन उत्पादन बढ़ावर वास्ते उन्नत बीज है, प्रशिक्षण है, तकनीकी मार्गदर्शन है और विभिन्न योजना के माध्यम किसान भाई ने सहयोग भी प्रदान कर रही है सा।
1: दलहन उत्पादन बढ़ावाते देश की जो प्रोटीन आवश्यकता पूरी हुए है और दाला रे आयात पे निर्भरता कम पड़े है, किसान की आय भी बढ़े लारे मिट्टी रो स्वास्थ्य भी बेहतर बने तो करे सा।
0: हाँ सा, अनिवास्ते आप कहवा की देखो खरीफ मौसम में दलहन फसल रो ज्यादा ज्यादा उत्पादन नहीं केवल किसान भाई लिए बल्कि अपने देश का खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए भी बहुत ही आवश्यक है सा।
1: तो देखो वैज्ञानिक खेती किसान भाई ने अपनानी चाहे, उन्नत तकनीक का उपयोग करीने खरीफ दलहन उत्पादन ने नई ऊंचाई तक पहुंच सका और अपना योगदान भी दे सका सा।
0: देखो सर ममता भाई सा बढ़िया जानकारी दी थी और अभी आप बोलो तो बढ़िया सो एक राजस्थानी लोक संगीत होना सा।
1: हाँ सर।

0: तो रामा भाई देखो आपा कार्यक्रम में प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत सुनो सा और देखो आपा टेम टेम पे आपा कृषि संबंधित कृषि में नवाचार संबंधित वाताचीता करवा वाते विषय विशेषज्ञ ने भी कार्यक्रम में बुलावा। तो देखो आज आपा किसान भाई बातें की बातचीत लेना है
1: सा। तो देखो आज आपा बात करेगा कृषि में जो डिजिटल क्रांति आई है वही विषय पर आपने चौपाल में पधारिया है परशुराम जी जाट साहब, ये सहायक कृषि अधिकारी है और वणा बात करेगा गजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब।
2: खेती और घर कार्यक्रम होने वाला हंगले किसान श्रोता ने गजेंद्र सिंह राठौड़ो राम राम सा। देखो श्रोता आपा टाइम टाइम पे कृषि और कृषि जुड़ी थकी नरी हरी महत्वपूर्ण जानकारी आपने श्रोता ने दा और अनिस क्रम में आज आपा देखांगा कि जो कृषि क्षेत्र में जो डिजिटल क्रांति आई है यूं कहा कि घनी घनी सुविधारो विस्तार भी है वही संबंध में आपा बात करांगा और यह बातचीत करवाते आपने स्टूडियो में भेजा है परशुराम जी जाट साहब, आप सहायक कृषि अधिकारी है मावली ब्लॉक रे महीने। तो सब पहला कार्यक्रम में आपका स्वागत राम राम सा।
3: राम राम सा।
2: तो परशुराम जी जो आपने कार्यक्रम रो विषय की भी नित नई चीजा हुई रही कृषि क्षेत्र में सरकार द्वारा भी हुई रही है और तकनीक में भी जो सुधार हुई रहो हुई काफी फायदा मिल रही हो तो किसान ने भी अंडो फायदा मिले अड़ी सोचो आप आगे बढ़ रहे हैं। तो सब पहला तो आप ये होते तो आपने कृषि क्षेत्र में जो डिजिटल क्रांति आप जो कह रहा कई यही ऐसी वनडे बारे में आप थोड़ा बताओ।
3: देखो स्टूडियो पे मारो सब किसान भैया ने राम राम नमस्ते। एक फार्मर आई डी जो आप 2 साल पहला जो शिविर चालू किया सरकार का आपने किसान आईडी यानी कि हर गांव में हर पंचायत में इन्हें शिविर लगान सरकार को जमीन है इतनी जितनी किसान की वो फार्मर आईडी माते जुड़वा दे ई मित्र माते अबे चालू हुई हो भाई पहला कैंपा में निःशुल्क ही आपने। तो ये कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति जो बड़ा कदम है वो एक खाद की जो बहुत भारी समस्या हुई है खासकर आगे आपने तो खाद की समस्या में किसान ने लाइन में लागना पड़े वो 2 कट्टा की डिमांड है मंडी ने 1 कट्टो मिले किन्ने नहीं भी मिले कट्टो तो वही सुविधा ने जो असुविधा ने दूर करने वास्ते सरकार एक FSAS नाम रो एप लॉन्च की दो वणो के एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यो आपने राजसमंद और सिरोही जिला में 25 जून ने माननीय आयुक्त कृषि श्री नरेश जी गोयल द्वारा मतलब पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चालू की दो ने। तो अब अनादे जिला मैंने सिरोही और राजसमंद में FSAS एप के माध्यम किसान ऑनलाइन बुकिंग करेंगे खातरी और QR कोड के माध्यम 24 घंटा महीने वो संबंधित आदान विक्रेता रे बटे जान खात खरीद सकेगा।
2: तो परशुराम जी जो आपनी बात हुई समझ में आया कि जो फार्मर आईडी थी आप खास बात की थी और वणी में आप यह भी बताया कि भाई कई तरीके को असुविधाओं मंच होते हैं आईडी उपयोगी है तो जो भी श्रोतापन हो रहा है वणा ने आप यह जानकारी दो कि फार्मर आईडी कई चीज है और अन्य फार्मर आईडी में कई तरीके की जानकारी किसान वायरी ली जाएगा और अगर कोई मतलब जो किसान है वो अन्य फार्मर आईडी ने बनाना चाहिए है या आईडी क्रिएट करना चाहिए है अंडी कई प्रक्रिया है वनडे बारे में आप थोड़ो बताओ।
3: देखो मारो सभी किसान भाइयों एक ही निवेदन है जहां किसान आ रहे आईडी बन गई है वो तो बहुत अच्छी बात है और जो किसान वंचित रह गया है वो आज भी आप ई मित्र माते जमाबंदी और आपकी पासबुक जो जमीन की पासबुक है किसान घोड़े वह पासबुक और एक बैंक की पासबुक ये चारों सारा डॉक्यूमेंट लेन ई मित्र माते आप जान आईडी बना सको और नजदीकी आपने जो राजस्व विभाग में पटवारी साहब बैठे हैं पटवारी साहब भी और सलाह ले लो वो नई जमीन आप खरीदी है या बेची है तो वो जमीन उनमें कट और एड जो उनमें वीजा के प्रोसेस में आप रहे।
2: नहीं तो यो फार्मर आईडी मान लो कई किसान बनी थकी कई किसान ने कितर बनाने मंडो आप तरीको बताई दो ये दो चीजें आप अपनी हटे वेगी लेकिन ये आईडी वणी कतरा दन में आवे और अगर आईडी वन गई तो वणी महीने कड़ी कड़ी तरीका री सरकारी सुविधा रो लाभ किसान भाई ने मिल सके वनडे बारे में बताओ।
3: ये आईडी देखो लगभग एक बार ऑनलाइन करते हैं लगभग सप्ताह भर मान लो अधिकतम टाइम बाकी 24 आवर्स में क्रिएट भी जा हाथों हाथी मतलब नंबर आ जा 12 डिजिट 14 15 डिजिट की जो आईडी है या फार्मर आईडी मतलब 15 डिजिट का संख्या हाथों हाथ जारी भी जाए व्हाट्सएप मोबाइल पे आ जाओ फोन पे भी आपकी आईडी जनरेट भी और जनरेट होने के बाद में जमीन बाई दे वो खसरा वो जोड़ना भूल गयो फिर हमारी जमीन रहने वाला माहौल है जमीन

0: बनते विलंब में, तो विलंब करके निकल लान वापस दोबारा एडिटिंग करवा सके बने।
1: क्योंकि आप बड़े बात कहती कि बताइए भाई आपने फार्मर आईडी में जो खसरा नंबर है, तो आपने देखा कि गावड़ा क्षेत्र में या तहसील स्तर पे जगह जगह ये जमीन विवाद न रही है, अलग अलग खसरा है, कोई एक खसरो अलग पंचायत में हीरो, एक खसरो अलग ब्लॉक में हीरो, तो अन्य संबंध में किसान कहीं काफी भ्रमित रहे। तो वड़ा ने अगर स्पष्ट रूप में अगर आप समझाना चाहो कि अगर कसो कहीं किसान ऐसी स्थिति है तो कितना दूर कर सके
0: वो, अरे फार्मर आईडी में अलग अलग पंचायत वाइज प्रॉब्लम आवे हो, जब फार्मर आईडी बनेगा उठे मित्र बातें, तो जैसे रे वाला मामले रो है जमीन है वलभ नगर में या उदयपुर में, तो उदयपुर नाम हो पंजाब में जाएगा उन्हें किसान को, और वो टोटल जमीन किसान के पास में जैसे 2 हेक्टर है, 0.5 हेक्टर है, 5 हेक्टर है, वो सारी एडिटिंग में भागा उन्होंने।
1: तो केवल मतलब अगर एक किसान कहीं भी क्षेत्र में रही रो है और बंडा कहीं अन्य क्षेत्र में खेती वाली जमीन है, तो वो वही खसरा नंबर ने यानी फार्मर आईडी लारे अटैच कर सकी रो।
0: हाँ कर सकी रो।
1: तो या तो वही बात बड़े होते दीदी आपकी भाई अन्य फार्मर आईडी रो लाभ है, कई और दूसरी सुविधा जो है सरकारी सुविधा जितना आप यू कहा कि भाई नरी हरी अपने सब्सिडी है, या पे आप कहीं कृषि यंत्र रो अनुदान है, या पे आप यू कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो अपने मिल रही है, या गंडे फसल बीमा रो क्लेम है, कई ये सब चीजें भी ये सब मतलब जितनी स्कीम ये भी फार्मर आईडी ही दी जुड़ेगा।
0: ये ऑल टाइम में सरकार की बिल्कुल मंशा ये है कि भाई किसान को मतलब एक ही जिस प्रकार से आधार में सभी मतलब आधार पूरे भारत में मान्य है, वैसा वैसे फार्मर आईडी पूरे भारत में वो मान्य रहेगी, कहीं भी जाएगा वो डिजिटल पहचान होगी 15 अंकों की उसकी, किसान में सारो आएगा जैसे बीमा क्लेम कटो मिलेगा वो तुम्हें विवरण शो जाएगा, और MSP में जैसे गेहूँ खरीदा मतलब बेचेगा किसान, चना बेचेगा या सरसों बेचेगा, तो वो तुरंत बना जमीन का जो डॉक्यूमेंट है वो आईडी नंबर डालते ही वो फेंच भी जाएगा मैंने, तो और तुरंत फार्म भर देगा वो।
1: और लाल जो काफी वित्तीय सुविधा किसान उठे रहे जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, तो भविष्य में बेच सके किसान क्रेडिट कार्ड में कतरी देनदारी बाकी है, कतरो आप पे उठे सका या जानकारी भी आईडी मिल सके।
0: हाँ किसान क्रेडिट कार्ड किसी से जो किसान ले रहा है उन्हें सुलभ भी जाएगा, मतलब आसानी में मर जाएगा बैंक वाला, क्योंकि बैंक में वो 15 डिजिट डालते हैं उन्हें किसान की जमीन मर जाएगा, कितनी जमीन नाम पे है और कितनी जमीन माता है किसान की और लोन वगैरह ले रही है या जमीन फ्री है, तो तुरंत मतलब आसान काम हो जाएगा उनको।
1: एक आप कार्यक्रम में जिक्र की दो कि भाई पहला ये मामलों डिजिटल नहीं हो और ऑफलाइन में नई दिक्कत आती लेन में लागू पड़ते हो किसान भाई ने, अभी जो अपनी खाद है जितर खाद ही कंटेम कतरो स्टॉक आया जो पूर्ण रूप नहीं मिल भाई रो, सरकार तो पूरी कोशिश कर रही है कि भाई सब लोगों ने खाद मिले, पर अगर जो फार्मर आईडी वही गयो तो यो अब आंकड़ो डिजिटल हो जाएगा कि कतरा कट्टा कतरी भूमि माते आना चाहिए रहा है, तो ये सब चीजें भी सुविधाजनक रहेगा।
0: बिल्कुल रहेगा, ये किसान के नाम पर जितनी जमीन रहेगा बड़ी जमीन के आधार पे मिट्टी जो अभी सोल्ड हेल्थ कार्ड हुए अपने मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड हुए बड़े कार्ड के आधार पे जो फसल किसान लग रो बड़े फसल ऐप में जो भरम भरेगा उदाहरण भी मेरे को DAP सही हो यूरिया सही हो, तो बड़े में अलग अलग कॉलम आएगा भी आप किसी फसल लगा रहा हो बड़े में कितनी मात्रा जो रिकमेंडेड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान द्वारा रिकमेंड कर रखी हुई थी आपको इस फसल में मिलेगी, तो वो मात्रा उनमें अपने आप वो सिस्टम मिलेगा, तो मतलब जैसे किसान कहेगा 20 कट्टा छाटना हमारे यूरिया का, तो 20 कट्टा उधर नहीं मिलेगा, जो बड़ी जमीन जितनी है उतरो बड़ी संतुलित मात्रा में उर्वरक बनने इशू हो जाएगा।
1: तो परेशान जी या तो कहीं हाउ जानकारी आप दे रहा हो, लेकिन अब आज जितना आप देख रहे हैं खरीफ की फसल टाइम है और कृषि विभाग द्वारा नए नए कैंप भी लगे रह गया जगह जगह, तो आप ब्लॉक में कैंप लगा हुएगा, तो अना कैंप में आजकल वो बीज वितरण का काम भी चल रहा है ताकि उन्नत बीज आप किसानों तक पहुंचाना, तो जो खाद रो सिस्टम भी जो भविष्य में बीज रो भी भेज जाएगा
0: बीज रो भी भेज जाएगा,
1: अन्य सब चीजें ये सब जो चीजें मेरी है अन्य आपने कई लगे कि मतलब कि किसान ने कतरो लाभ दे सके।
0: किसान ने लाभ मतलब वास्तविक किसान ने जो लाभ मिलेगा जो बीच में कोई फर्जी बड़ा है कि मेरा नाम से जमींदार है दूसरा आदमी उसको जमींदार देकर के कोई से बीज ले रहा है खाद ले रहा है, तो वो सब बंद हो जाएगा क्योंकि डिजिटल है, तो OTP आएगा तो OTP के द्वारा ही उसको खाद मिलेगा, और या फेस ऑथेंटिकेशन भी है इसमें फेस के द्वारा भी आधार से ऑथेंटिकेशन होगा और फिर खाद मिलेगा उसको या बीज मिलेगा, और बीज वगैरह के लिए हमारा राजस्थान सुविधा ऐप चालू रखा सरकार ने विगत 2 वर्षों से, तो ये बिल्कुल डिजिटल प्लेटफॉर्म है ओनली राजस्थान के लिए है, और ये जो फर्टिलाइजर का है वो ऑल इंडिया के लिए लागू हो जाएगा भविष्य में।
1: तो प्रशांत जी एक और जो प्रश्न है अगर आपने देखा कि आप कई जगह देखा गाँव में चाहे शहर में या शहर नजदीक जो भी किसान है ये लोग कह की आप बात करा रखा कि ये हमारे बाप दादा की जमीन है या हमारे बेलारी जमीन है लेकिन हमारे तक बंटवारा नहीं हुआ
0: बराबर
1: ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसी स्थिति में मान लो जो वंडे पिताजी या पूर्वज जो गुजर गया है अभी वे 3-4 भाई है, तो अभी फार्मर आईडी की तरफ बनाएगा क्योंकि

0: क्योंकि आपको जमाबंदी नकल नसब देनी है, तो बड़ी स्थिति में कहीं वो करना चाहिए।
1: बड़ी स्थिति में पहला तो आप विरासत रो जो मोटेशन है वो खोलना पड़ेगा आपने, जान पंचायत में सरपंच साहब मिलने आए दौड़ा हो जो भी मगर रिपोर्ट लगेगा वो ना गए आपने संबंधित पटवारी साहब ने डॉक्यूमेंट दे मोटेशन खुलवाना पड़ेगा। एक बार मोटेशन खुलवाना बाद में आईडी बनेगा ऑलरेडी।
0: और अगर मतलब हाल में कहीं अपने क्षेत्र में अगर कोई कैंप लागू हो तो वहाँ कैंप में भी ये काम वीरा,
1: कैंप में भी ये काम वीरा बिल्कुल। कोई मोटेशन खुल किसान रहे अगर पिताजी मृत्यु होगी और बहना का नाम हत्या वगैरह है या मोटेशन काम पेंडिंग है तो वो बटे कैंप में जान कर सके।
0: और खास तौर पर कई जगह पर देखा कि महिला किसान है अपन नरियारा और कोई विधवा है या एकल परित्यक्ता है और वनडे खाते जमीन नहीं थे किए तो वहां भी आप महिला भी अपने फार्मर आईडी बड़ी सुविधाजनक रूप में बनी सकी रही है।
1: बिल्कुल बना सकी है, तो जमीन वनडे नाम पे है तो आईडी बन जाएगी वनडे।
0: तो परशुराम जी अपना जितना आप शुरुआत में एक FSS ऐप है तो यह FSS ऐप कितना काम करे और अगर मान लो कंडी फार्मर आईडी बन गई है तो FSS ऐप रो इस्तेमाल की तरह करना है वनडे बारे में बताओ और थोड़ी ऐप भी जानकारी दो।
1: बिल्कुल, यो FSS मतलब फर्टिलाइजर सेल ऑथेंटिकेशन सिस्टम FSS, यो ऐप आपने प्ले स्टोर में जान किसान ने लॉगिन करना है मतलब प्ले स्टोर में जान ही इंस्टॉलेशन करवा के डालना होगा ने डालने बाद में अपने में 2-5 मिनट में वो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल हुआ बाद में आधार नंबर मांगेगा पहला किसान का, तो आधार नंबर में दो तरीका है, आधार नंबर डालोगा आप किसान आधार नंबर कह रहे वो एक तो मांगे OTP, अगर OTP के नहीं आ रहा मोबाइल नंबर नहीं है तो फेस आईडी यानी फेस रो माध्यम को ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। पैसे बनो डिस्ट्रिक्ट आएगा फिर किसा स्टेट को किसान है किसे जिला में है बनो रहने वाला और जमीन किसी जिला में आई रही तो अड़े प्रकार उनकी प्रक्रिया पूरी होगा। और बड़े बाद में आईडी एक मतलब एक बड़ी एक बात किसान भी स्वयं भी आईडी बन जाएगा, जो जो आधार आईडी है वो सेम आईडी मतलब बनेगा। और अगर बंदे माता जी के नाम पर जमीन अलग है बेटा के नाम अलग जमीन है तो बंदे अलग अलग आईडी बनेगा अलग अलग फोन में, तो ये बड़ी आईडी बना कर वो फिलहाल सिरोही और अपने राजसमंद जिला विकास कार्य सुविधा चालू हुई सरकार।
0: तो ये जो पायलट प्रोजेक्ट रूप में जो दो जिला में शुरू हुई है तो केवल मतलब अंडे निकट भविष्य में सब जगह अंडे प्रचारित कर लागू करना है क्या? तो अन्य किसान में बातें हर एक चीज चाहे वे भाई है बटवारों विरोधों को तो सब बातें आप अपनी खातर ही भूमि भी पतो पड़ जाएगा कितने कई स्थिति है वो बड़ी क्लियर हो जाएगा।
1: बिल्कुल, यह स्थिति क्लियर हो जाएगा। और किसान ने मैं ये निवेदन करूँ कि भाई अगर अगले किसान पे फार्मर आईडी नहीं बनी थी है और जमीन एड नहीं है भी जमीन ज्यादा है किसान ने बताया कि हमें 2 बीघा जुड़ा दी थी और अभी खाद लेवाना चाहेगा तो आई डी में 2 बीघा हिसाब से 2 कटे मिलेगा बना हुआ 1 कटो बनेगा खाद यूरिया हुआ DAP को, तो बने बाद में अगर वंचित जमीन है और तो आज भी वो अब टाइम किसान मिले किसान वो टाइम कैंप में जुड़ा सके या ई मित्र में जान एड करवा दे बने ताकि वो समय में बने भविष्य में बने कोई समस्या नहीं आए खाद के लिए में बाकी दिक्कत आएगी।
0: तो ज्यादा ज्यादा कार्यक्रम में परशुराम जी जितना भी अपने किसान छोटा है वहां आप संक्षिप्त में कई कहना चाह रहा हूँ यानी फार्मर आईडी किसान में कतरो लाभ है कतरो उन्हें फायदा हो सके और आवा निकट भविष्य में या खेती जो है बिल्कुल यानी डिजिटल क्रांति और ऑनलाइन माध्यम में कतरे सच्चाई है।
1: देखो मेरा तो किसानों एक ही आग्रह है कि एक तो आपने फोन मायने राज किसान सुविधा ऐप यानी डिजिटल मतलब जो आज फोन के ऊपर हर चीज जानकारी मिलना तो आप फोन में व्हाट्सएप चलाओ इंस्टाग्राम चलाओ फेसबुक चलाओ तो वो चीज आपने कोई विशेष फायदा नहीं करे। खेती वालों का कर रहे तो मैंने फोन में एक तो ऐप AS वाला जो ऐप बना चाहे और एक राज किसान सुविधा ऐप हर किसान के फोन में जरूर बना चाहे आने में मौसम की जानकारी मंडी की जानकारी और कोऑपरेटिव जो भी आपका लोन है लघु सीमांत काश्तकार हो वो लोन की व्यवस्था और पशुपालन की सारी जानकारी बनी में एक ही प्लेटफॉर्म मतलब आपने मतलब एक क्लिक करते मिल जाए उन्हें तो यो ऐप जरूर आप फोन में इंस्टॉल करो ये मेरा निवेदन है।
0: तो आप परशुराम जी जाट सहायक कृषि अधिकारी और आज कार्यक्रम में आप फार्मर आईडी और FSAS ऐप के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आप किसान श्रोता साझा की और कार्यक्रम का हिस्सा बना अन्य घणो घणो धन्यवाद। राम राम सा।
1: राम राम सा।
2: तो देखो राम भाई आप कार्यक्रम में अति बढ़िया हाउ जानकारी होनी सा और अपने किसान भाई भी अणी बात में जागरूकता लावेगा कि भाई डिजिटल क्रांति रो कई महत्व है और अभी आपके हो तो कार्यक्रम में आगे बढ़ावा एक प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत सुनावा सा।
3: हाँ सा।

0: तो देखो रामा भैया पा कार्यक्रम में राजस्थानी गीत सुनायो और अभी देखो किसान भाई ने मौसम री जानकारी करा सा।
1: हाँ सा।
0: तो देखो मौसम विज्ञान विभाग जयपुर प्राप्त सूचना के आधार पे आगामी दिनों में हल्की मध्यम वर्षा की संभावना है। हवारी गति 3-5 किलोमीटर प्रति घंटा रे वेगो दक्षिण पश्चिम चलेगा और अधिकतम तापमान 28-33 और न्यूनतम तापमान 24-25 रेवारे लारे लारे। सापेक्ष आर्द्रता की बात करा तो न्यूनतम 53-71 और अधिकतम 86-90% रेवारी संभावना है सा।
1: बिल्कुल सा। और किसान भाई ने दूसरी जानकारी भी देना तो देखो बात करा आप मक्कारी तो आप जटे खेत में अपने पर्याप्त पानी उपलब्ध है तो बटे अपने किसान भाई ने मक्कारी बुआई करवारी सलाह दी जावे। मक्कारी जो उन्नत किस्म है वह प्रताप है, PM1 है, HUQ PM1 है, HQ PM6 है, PI PM6 है और प्रताप संकर मक्का है सर।
0: बिल्कुल साहब। सोयाबीन की बात करा तो सोयाबीन की बुवाई जो पर्याप्त नमी व्यापिस किसान भाई ने करनी चाहे और 1 हेक्टर की बुवाई लारे 80 किलो प्रमाणित बीज प्रयोग करे। बुवाई में पहली वनर की बीजा ने 3 ग्राम थायराम या 1 ग्राम कार्बोनिड्रेट्स में उपचारित करना है। बीजा ने बुवाई में पूर्व राइजोबियम कल्चर बीजोपचार करना आवश्यक है। सोयाबीन की उन्नत किस्म की बात करा रामा भाई तो प्रताप सोया 1, प्रताप राज सोया 24, NCR 37 ऐसा।
1: आप बात करें आप खरीफ फसल की जो दाल है वहीं पे बात करें तो देखो मूंग है उड़द की जो फसल है मंडी बुआई अपने किसान भाई ने उन्नत बीज साथ में अपने करनी है सा। और उन्नत बीज जो है वह पूसा विशाल पूसा 5931 अंडे अलावा देखो RMG 268 MHL 600 ये हमारी उन्नत किस्म है। और बुआई पहला अपने बीजा ने फसल रे विशेष राइबोजियम और फास्फोरस सोलुबलियम है वनिंग बैक्टीरिया की अवश्य उपचार करना है सर।
0: मूंगफली की बात करा तो मूंगफली की उन्नत किस्म प्रताप मूंगफली 1, प्रताप मूंगफली 2,

0: तेल 24 जीजी 7 मिट्टी के जांच के आधार पर अंतिम रुतायों पहली प्रति हेक्टर 250 किलोग्राम जिप्सम मिलान हुए और बुवाई के टाइम पे प्रति हेक्टर 375 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 35 किलो यूरिया नैला में उरी ने दे देनो है सा।
1: बिल्कुल सा, बात करा पर ज्वारी तो देखो ज्वारी ज्वार तना में जो मक्खी कीट है वनडे नियंत्रण के लिए मानसून की पहली वर्षा है वनडे पहला सप्ताह में आप बुवाई कर लेनी है और जो उन्नत किस्म जो है वह CSC 15 CSC 17 ये हमारी उन्नत किस्म है सर।
0: अब पशुओं की बात करें तो दूध उत्पादन बढ़ावा दूधारू जो पशु है वना ने किसान भाई संतुलित आहार दे तो वनारी दूध की मात्रा भी बढ़ेगा सा।
1: बिल्कुल सा, तो देखो यह तो बढ़िया जानकारी दी थी और अब यहाँ पर होना एक और बढ़िया सो राजस्थानी लोक संगीत।

0: तो देखो ममता भाई साहब, बढ़िया सो राजस्थानी गीत हुई आपा। और अभी आपा देखो, हर बार आपा नई नई योजना लेना हुआ, तो आज आपा योजना लेना यहाँ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो अन्य पे आपा किसान भाई ने जानकारी देगा कि यह किस तरह आपने फायदेमंद वे सके आपने लिए।
1: तो देखो रामा भाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक कृषि बीमा योजना है। और मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटा या पचे बीमारियों के कारण फसलों ने वेवाला नुकसान की स्थिति में किसानों ने आर्थिक सुरक्षा और वित्तीय सहायता प्रदान करना है सा।
0: बिल्कुल सा, देखो अपने जो फसल बीमा योजना है वह देखो प्राकृतिक आपदा, ओलावृष्टि और सूखा जो फसल खराब हुई है उन्हें आर्थिक मुआवजा दिए जा रहे हैं। अन्य में ज्यादा से ज्यादा जो प्रीमियम है वह 2% है खरीफ रे वास्ते, और रबी रे वास्ते 1.5% जो नकदी जो है फसल के लिए वह 5% है, और व्यापक जोखिम भी अन्य में कवर हुए हैं सा।
1: बिल्कुल सा, और बागवानी फसल

0: करवाते 5% प्रीमियम दे है, बाकी बच्चों तक को सारो प्रीमियम केंद्र सरकार और राज्य सरकार उठावे है सा।
1: अंडा देखो मुख्य मुख्य जो लाभ है वह आप बतीदा देखो कि राज्य बड़ा पैमान पे अपने जो बीमा का क्लेम है वो सीधा किसान बयारे खाता में ट्रांसफर किया जा रहा है। यानी मैं अंडे अलावा कवरेज की बात करा तो बुआई हूँ लेकिन लेने अपने कटाई तक सभी जो गैर प्रतिबंधित प्राकृतिक जोखिम है वहाँ सुरक्षा प्रदान करे सा।
0: और कवर किया गया जोखिम की बात करें आपा तो सूखो वेग्यो, बाढ़ वेग्यो, ओलावृष्टि वेगी, तूफान वेग्यो, भूसंकलन वेग्यो और प्राकृतिक और आग जैसी जी आपदा है वनारे कारण खराब भी थे कि जो फसल है वनो मुआवजो दियो जावे है और स्थानीय आपदा पे व्यथा का नुकसान भी इनमें शामिल है सा।
1: बिल्कुल सा, देखो इनमें पंजीकरण की बात करें तो अंडी आखिरी तारीख जो खरीफ फसल है जिस तरह बाजरा है ग्वार है वनारे लिए 31 जुलाई अंडी तक अपने पंजीकरण कर देना चाहिए। और अंडे अलावा देखो आवश्यक दस्तावेज की बात करा तो आपके पास एक गैर कृषि ऋण किसान है तो अपने आवेदन के लिए जो दस्तावेज छावे वहीं पर बात करा तो देखो आधार कार्ड है, जमाबंदी छावे जिन्हें जो जिन्हें आप कह भू अभिलेख, बैंक की पासबुक और अपने फसल प्रमाण पत्र भी छावे या पटवारी और कृषि विभाग द्वारा अपने जो जारी किए वो अपने प्रमाण पत्र छावे और खेत के मालिक घोषणा पत्र या पट्टो वो अपने पास वेणो छावे सा।
0: आवेदन प्रक्रिया की बात करा तो योजना रो लाभ उठावर वास्ते किसान भाई आपने नजदीकी बैंक, कृषि कार्यालय, जन सेवा केंद्र, CSC या पीछे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो पोर्टल है वन्य माध्यम ऑनलाइन आवेदन कर सके सा।
1: बिल्कुल सा, अंडे अलावा देखो मोबाइल ऐप वो भी प्रयोग कर सके किसान भाई फसल रो बीमा करावर वास्ते क्लेम स्टेटस चेक करवा वास्ते आप अपने जो मोबाइल है वन पे जो प्रधानमंत्री ऐप वालों जो है उन्हें इस्तेमाल आप कर सका सा।
0: नजदीकी यहाँ पर सहायता और हेल्पलाइन नंबर की बात करा तो कहीं भी जानकारी या समस्या रो समाधान रे बाते आप 1447 पे कॉल कर सको हो। अणि योजना रो लक्ष्य किसान री आय ने स्थिर करनो और वने खेती में निरंतरता बनाए रखवर वाते प्रोत्साहित करे सा।
1: बिल्कुल सा, तो देखो या तो बढ़िया जानकारी दी थी और अब एक और नोना पर राजस्थानी लोक संगीत।

0: तो देखो ममता भाई साहब बढ़िया, सर राजस्थानी लोक संगीत हुनियो, और देखो अभी चलता चलता देखो एक बढ़िया जानकारी दे दा कि आज है विश्व खेल पत्रकार दिवस, तो आने पे यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी दे दा।
1: बिल्कुल सा, हर वर्ष 2 जुलाई ने विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाए जावे। ओ जो दिन वणा खेल पत्रकार रे, लेखकार रे, कमेंटेटर जो है वणा रे वाते, फोटोग्राफर और प्रसारकार ने समर्पित है, जो खेल जगत री हर छोटी बड़ी घटना ने निष्पक्ष, सटीक और प्रभावशाली ढंगो दुनिया तक पहुंचावे है सा।
0: बिल्कुल सा,

0: અને દિવસ ની શરૂઆત વર્ષ 1994 મે એસોસિએશન ઇન્ટરનેશનલ ડેલા પ્રેસ જો હે વનડે દ્વારા કી ગઈ હી.
1: और यह संस्था आज विश्व भर में खेल पत्रकार सब बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन मानी जावे है. खेल पत्रकारिता केवल मैच रो स्कोर या परिणाम बतावा तक सीमित नहीं है. अनो उद्देश्य खिलाड़ी भावना, खिलाड़ी रो संघर्ष और उनकी उपलब्धि और खेल संस्कृतियों समाज तक पहुँचाना है सा.
0: बिल्कुल सर, यदि कोई खिलाड़ी जो है वो मेहनत, अनुशासन और समर्पण के बाद सफलता प्राप्त करे तो वनडी जो प्रेरणादायक कहानी है वे लोगों तक पहुँचा रो काम भी खेल पत्रकार ही करे सा.
1: खेल पत्रकार स्टेडियम की हलचल, खिलाड़ियों की भावना, दर्शकों का उत्साह और प्रतियोगिता हद महत्वपूर्ण जो क्षण है वने शब्द, चित्र और आवाज के माध्यम से जीवंत बनावे.
0: बिल्कुल सर, वनडी रिपोर्टिंग रो कारण दर्शक अपने श्रोता खेल रे भावनात्मक रूप में जुड़ पावे सा.
1: रेडियो की बात करा तो खेल पत्रकारिता में बनारी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. आंखों देखियो हाल, सीधी कमेंट्री ने दर्शकों श्रोता रे मैदान रो रोमांच घर बैठा महसूस करावे है सा.
0: बिल्कुल सा, आज भी देखो रेडियो री विश्वसनीयता भी प्रभाव कायम है सा और समय के साथ साथ खेल पत्रकार रो स्वरूप भी आजकल बदल गयो है सा.
1: बिल्कुल सा, तो देखो रमा भैया तो भी जानकारी और अब यहाँ पर घड़ी आड़ी देखा तो अपने चालवारो टीम वेग्यो सा. तो जय जवान
0: जय किसान.

अभी किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम खेती और घर। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात के 8 बजे हैं, आइए आपको ले चलते हैं फिल्मी गीतों के सफर पर।

फिल्म संगीत मेरी जी सबसे पहले आपको सुनवाने जा रहे हैं परदेश फिल्म से ये गीत, कुमार सानू और अलका याग्निक के स्वरों में संगीत नदीम श्रवण का है।

श्रोता आपको सुनवा रहे हैं फिल्म संगीत में। आज सन 1990 के बाद आई कुछ ऐसी खूबसूरत फिल्में जिनके गाने आपके दिलों में अभी भी बसे हुए हैं। परदेश, इस फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना। परदेश 8 अगस्त सन 1997 में रिलीज हुई और ये वापस इसे पूरी तरह से रिलीज किया गया। थिएटर में आई ये फिल्म 97 में और एक बार और जब ये 15 नवंबर 2024 में वापस इसे किया गया, वापस इसका स्क्रीन प्ले फिल्म री रिलीज की गई ये फिल्म। और इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थे महिमा चौधरी, अमरीश पुरी, शाहरुख।

स्वच्छता फिल्म बरसात आई थी सन 1995 में और अगस्त 2005 में इस फिल्म को रिलीज किया गया। 1995 में ये फिल्म बनी और इस फिल्म को बनाया, डायरेक्ट किया राजकुमार संतोषी ने। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में ट्विंकल खन्ना और बॉबी देओल आपको देखने को मिले थे और इस फिल्म के गाने अपने आप में यादगार रहे।

श्रोताओं, सन 1990 में एक म्यूजिक डायरेक्टर थे नदीम श्रवण, जिनके म्यूजिक को बहुत सराहा जा रहा था। और बरसात के बाद, यानी बरसात के साथ साथ एक और ऐसी फिल्म थी जो आई 1991 में थी, 30 अगस्त 1991 को थिएटर में रिलीज हुई फिल्म साजन। साजन में मुख्य भूमिका में संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और सलमान खान थे। लक्ष्मीकांत बेर्डे, कादर खान, रीमा लागू और एकता सोहिनी, पंकज उदास स्पेशल अपीयरेंस में इस फिल्म में आए थे। और इस फिल्म के जो भी गाने थे, जितने भी गाने थे, उन्हें दर्शकों ने खूब सराहा। संगीत नदीम श्रवण का।

श्रोताओं आपको सुनवा रहे हैं कुछ ऐसे फिल्मी गीत जो सन 1990 के दशक के गीत हैं। 90 के दशक में आई कुछ ऐसी फिल्में जिनकी गाने सभी के दिलों को भाए, और ऐसे ही एक फिल्म थी जिसका एक गाना सभी के दिलों पर आज भी राज करता है। जी हाँ, फिल्म थी हैरी बावेजा की फिल्म, डायरेक्टेड बाय हैरी बावेजा, और ये फिल्म थी इम्तिहान। ये फिल्म 11 मार्च 1994 को रिलीज हुई थी और इसमें मुख्य भूमिकाओं में सनी देओल, सैफ अली खान, रवीना टंडन, शक्ति कपूर, दिलीप ताहिर और गुलशन ग्रोवर जैसे अन्य कलाकार थे।

इम्तिहान फिल्म में के इस गीत ने जैसे सभी के दिलों में अपनी छाप छोड़ी, वैसा ही एक और गीत रहा जो सन 1990 के दशक में आया। जी हाँ, एक फिल्म रिलीज हुई 12 नवंबर 1993 में और फिल्म थी बाजीगर। बाजीगर जिसे डायरेक्ट किया था अब्बास मुस्तान ने, और जिस तरह नदीम श्रवण के गीतों को सन 1990 में सराहा जा रहा था, और इसी के साथ साथ एक और म्यूजिक डायरेक्टर थे जिनके गाने भी बहुत पसंद किए जा रहे थे, वो थे अनु मलिक। बाजीगर फिल्म में अनु मलिक के संगीत ने अपने हुनर से चार चांद लगा दिया, और इस फिल्म में जो कास्ट थी वो थी शाहरुख खान, काजोल और शिल्पा शेट्टी। अनु मलिक के संगीत से सजा विनोद कुमार राठौर की आवाज में बाजीगर फिल्म से अगला गीत।

दोस्तों आपको सुनवा रहे हैं कुछ ऐसे फिल्मी गीत जो सन 1990 के दशक के जो लोगों के दिल को बहुत भाए। बात करें म्यूजिक डायरेक्टर नदीम श्रवण की, जिनकी मेलोडी लोगों को बहुत भाई, और उसके साथ साथ अनु मलिक की वर्सिटैलिटी यानी वर्सिटाइल म्यूजिक जो अनु मलिक का था वो भी श्रोताओं ने बहुत पसंद किया। और इसके साथ साथ एक और म्यूजिक डायरेक्टर उसी दशक में आए जो थे जोड़ी हमारे पंडित जतिन और ललित की। ये जोड़ी भी जब अपना म्यूजिक बनाती थी तो लोगों के दिलों में इनका म्यूजिक बस ऐसे हल्के से उतर जाता था। कहेंगे द मोस्ट रोमांटिक म्यूजिक इन दोनों भाइयों ने मिलकर दिया। और अगली फिल्म जिससे आप गीत सुनवा रहे हैं, संगीत जतिन ललित का है, और ये जो जोड़ी है इन्होंने एक फिल्म बनाई जो बेहद ही खूबसूरत फिल्म थी, संगीत से अपनी फिल्म बनाई जो थी जो जीता वही सिकंदर। मई 22, 1992 में आई ये फिल्म जिसमें मुख्य भूमिकाओं में आमिर खान, आयशा जुल्का, दीपक तिजोरी और मानिक सिंह और पूजा बेदी थी।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आप भी अपने उत्पाद का विज्ञापन आकाशवाणी पर कीजिए और अपने व्यापार को आकाश की ऊंचाई तक पहुंचाइए। अधिक जानकारी के लिए नजदीक के आकाशवाणी केंद्र से संपर्क करें या हमें मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।

वहीं 22 जून 1999 की ये फिल्म आ अब लौट चले इस फिल्म के म्यूजिक में भी एक अलग ही बात थी और इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में ऐश्वर्या राय और अक्षय खन्ना रहे। दोस्तों चलते चलते अब अगली फिल्म जिसे आपको हम गीत सुना रहे हैं वो आई फिल्म हम आपके हैं कौन। हम आपके हैं कौन एक ऐसी फिल्म जो सभी के दिलों पे आज दिन तक राज कर रही है। इस फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में माधुरी दीक्षित और सलमान खान रहे और ये फिल्म आई 5 अगस्त 1994 को। मोनिश बहेल, रेणुका शाणे, अनुपम खेर, आलोक नाथ, रीमा लागू, बिंदु और सतीश शाह भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आए।

हम आपके हैं कौन। फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आज यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

0: श्रोताओं, रात के 9 रात के 8:45 होने को है और ये वक्त होता है हिंदी में समाचारों का, जिन्हें हम रिले करते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचार संध्या थोड़ी ही देर में आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और रात 9 बजे आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार News@9। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष है और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
2: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलॉसफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
3: प्रधानमंत्री

0: भाई जी और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
1: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
3: Trade also is an important element of this partnership.
4: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
3: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से

0: सुनिश्चित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरल में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरल पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलिथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर सीसीटीवी निगरानी और आरएफआईडी आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माही, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल

0: चोकअप कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंग्लवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में पीएसए चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज और को जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's speed and Japan's expertise will work as driving force for global growth. Holds talks with Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. India and Japan announce energy partnership to strengthen strategic oil reserves and maritime transport resilience. Government to expand oil refining capacity to 300 million metric tons per annum in next 1 year amid West Asia crisis. Center launches Air Suvidha 2.0 portal for Ebola health screening at entry points of international airports across the country. IMD issues red alert for heavy rainfall in parts of western and central India for next 2 to 3 days. And in FIFA World Cup, Spain to take on Austria in round of 32 match in Los Angeles tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combined with India's speed and scale, the entire world benefits. He said both sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said India and Japan today reached agreements on several areas such as economic security, AI, defense and health that will make the partnership futuristic and limitless.
2: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
1: In her address, Prime Minister of Japan, Sanae Takaichi said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. Ms. Takaichi said, through the Power Asia initiative, it is working to translate this vision into a concrete action. On the occasion, both Prime Ministers jointly inaugurated Maruti Suzuki's fourth vehicle manufacturing facility at Kharkhoda in Haryana. Earlier, India and Japan today exchanged agreements in different fields including economic and energy security, pharmaceuticals and AI. Prime Minister Narendra Modi held annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi this afternoon. Addressing the joint press meet following the talks, Prime Minister Modi said, "Trust is the biggest asset in today's time, and the India and Japan bilateral partnership has stood the test of time." He highlighted that India and Japan are among the world's

0: गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

टिटी संगीत गाय इस खूबसूरत गजल के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 9:30 हुए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

नदीम श्रवण के संगीत से सजा बेवफा फिल्म से अभी आपने गीत सुना, आवाज लता मंगेशकर की थी। श्रोता ने ये सुनिए मुझसे दोस्ती करोगे, इस फिल्म से गीत लता मंगेशकर और सोनू निगम के स्वर, संगीत राहुल शर्मा का।

0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ।
2: हमें मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।

शुभा उदित नारायण के स्वर में अभी आपने दिल से फिल्म से ये गीत सुना, संगीत ए आर रहमान का था। और लीजिए सुनिए अगला गीत अनु मलिक के संगीत से सजा फिल्म खुद्दार से, कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों के स्वर में।

0: 266.6 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात के 10 बजे हैं, आइए आपको अगला गीत सुनवाते हैं। आवाज अरिजीत सिंह और निहिरा जोशी, फिल्म का नाम है किल दिल, संगीत शंकर एहसान लॉय का।
1: एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में, वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

धोनी। ये है अगली फिल्म जिसे आपको सुनाने जा रहे हैं। ये गीत संगीत अमाल मलिक का है और इस गीत को गाया है पलक मुचाल ने।

मिस्टर एंड मिसेस माही। इस फिल्म से अभी आप ये गीत सुन रहे थे बनी और सागर के स्वरों में। लीजिए सुनिए अगला गीत फिल्म धुरंधर से अरिजीत सिंह और अरमान खान की आवाजें, संगीत शाश्वत सचदेव का।

श्रोता, धुरंधर फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर हम रात आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

श्रोताओं, रात के 10:30 होने को हैं। आइए अब जुड़ते हैं आकाशवाणी दिल्ली से, जहां से आप सुनेंगे आईसीसी वुमेन्स टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच लंदन में खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल क्रिकेट मैच की कमेंट्री का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बस थोड़ी ही देर में।

0: First ball 20.
1: This is Akashwani. We now bring you ball-by-ball commentary of the second semi-final T20 cricket match to be played between England and South Africa of the ICC Women's T20 World Cup 2026. Before that, listen to a special program, First Ball 20.
2: First Ball 20.
0: Unbeaten in the group stage and looking absolutely ruthless, ICC Women's T20 World Cup hosts England are set to be up against back-to-back finalist South Africa at the Oval. Hello and welcome to First Ball 20. I am Megha and joining me in studio as my co-host is Dharmendra Mani Rajesh.
3: जी मेघा, और अब हम मेहमानों का भी परिचय करा दें. हमारे साथ आज हैं ख्याति गुलानी, पूर्व क्रिकेटर, शामिल यकीन पूर्व क्रिकेटर, और जी राजा रमन, वरिष्ठ खेल पत्रकार. तो सवालों की शुरुआत राजा आपसे ही.
4: जी,
3: टॉस की आज के मैच में कितनी बड़ी और क्या भूमिका रहने वाली है, इस बात को देखते हुए कि इस विश्व कप में द ओवल मैदान पर जो इससे पहले दो मैच हुए हैं, दोनों चेस करने वाली टीमें जीते हैं.
4: मेरा अपना मानना है धर्मेंद्र के टॉस का कोई ज्यादा महत्व नहीं रहेगा. सेमीफाइनल है, बात आ जाएगी नर्व पे, कौन सी टीम बेहतर अपने नर्व्स को कंट्रोल करेगी और अच्छा क्रिकेटबाजी करो.
5: इट बी अ कीन कॉन्टेस्ट, दोनों अच्छी टीम है और इट बी डिफिकल्ट टू पिक अ विनर. बाद में पूछेंगे.

0: mind been reminded that knockout cricket has been your nemesis, it's been your area of concern. Do you feel you're in a better place now to cope with this pressure?
1: Yeah, I think so. Everyone's really, really confident in what they've done, and this group as well. So, we're in a good spot, and hopefully we can perform out there today.
0: Go well this evening.
1: Thank you.
0: So the news from the toss, South Africa have won it, they're having a bowl.
2: साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया. नाउ द थिंग दैट नासिर हुसैन वाज कॉन्स्टेंटली अल्यूडिंग टू एट टॉस ख्याति वाज ही 2023 एंड 2025 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स 20 ओवर्स एंड 50 ओवर्स एडिशंस when England were knocked out by South Africa in this very stage.
3: Yes, definitely. They're known to upsetting any tournament, any team. And their form is yet to come in, and especially if you talk about Wolwart, she's yet to give her best. I guess, they can do anything, and any team can do anything in T20 cricket. But yes, having said that, English team looks very balanced at the moment, and they're giving their best. Their batters are contributing really well, their bowlers are contributing really well. They look to be a very balanced side, so let's see who plays well today.
4: Ji, aur consistency jo hai wo England ki is pure tournament mein ek mazboot paksh uska raha hai. Aur aise mein Jishan, अगर हम इस मुकाबले की बात करें तो ये मुकाबला कितना कांटे का, कितना नजदीकी हो सकता है, क्योंकि पिछला सेमीफाइनल बिल्कुल एक तरफा रहा था.
5: बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये अच्छा मैच होएगा, और खासकर हमारे रमन साहब ने साफ साफ कहा है इस बात को, तो मैं उनकी बातों को बहुत गौर से सुन रहा था. तो मुझे लगता है कि ये सच बात है कि एक ये अच्छा मैच होने वाला है, खासकर जहां तक इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का जो प्रीवियस जो पास्ट चीजें रही हैं उनके आपस के मैचेस के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंग्लैंड को आज के दिन में, आज जो उसकी टीम है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा सा एज है इंग्लैंड की टीम के लिए. फिर भी एक अच्छा मैच होगा, इसलिए कि उनके पास जो बैट्समैन हैं, खासकर साउथ अफ्रीका के पास जो पेस बॉलर्स हैं उनके, वो काफ़ी अच्छे हैं. एक एक मैच में उन्होंने अच्छे बॉलिंग करके, और उनकी इकोनॉमी भी बहुत अच्छी रही है साउथ अफ्रीका पेस बॉलर्स के खासकर, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा. अच्छे बैट्समैन जो बैट्समैन जो हैं वो इंग्लैंड टीम की, और जो खासकर जो पेस बॉलर्स पेस बॉलिंग जो कर रही है साउथ अफ्रीका की जो वुमेन्स टीम की, तो मुझे वो एक जो एक वॉर जो नजर आना है वो मुझे लगता है कि एक सही में एक बहुत अच्छा वॉर देखने को मिलेगा.
2: सो बैटल विद इन द वॉर विल लुक अहेड टू. नाउ राजा, we've seen with England the way they are functioning like a well-oiled machine. Charlie Dean was captaining in the games in between when Siva Brunt was injured. Every individual knows their roles and is performing that to the best of their abilities.
4: I think that's the hallmark of a good team, Megha, and any team that plays as well as England has done should fancy itself. Even though the skipper looked a little disappointed that she was not able to get the first ball, I think England got the batting to win this game, to put pressure on South Africa, and everything that is past, we have been talking about a couple of games that South Africa won in the last two World Cups, both in the 20-over format and the 50-over format against England. I don't think that's going to count for much. What you do today is what is going to matter a lot, and I think England has got the well-balanced team. If you talk about South Africa, you're talking primarily about their pace bowling, not so much about their batting, not so much about their spin bowling. England seems the well-rounded side. I think England will have the edge in this game. ख्याति, होम कंडीशन और घरेलू सपोर्ट भी होगा इंग्लैंड के पक्ष में, तो ये उनके लिए पॉजिटिव हो सकता है या उनके ऊपर प्रेशर आ सकता है इसकी वजह से?
3: अभी तक तो जैसे देखने को मिल रहा है इस टूर्नामेंट में उनको सपोर्ट ही मिल रहा है, एंड दे वेरी वेल अवेयर ऑफ द कंडीशंस, एंड जिस तरीके से वो खेल रहे हैं उनको पता है कि किस तरीके से हमें कब हमें गियर सेकेंड गियर लगाना, कैसे कब डिफेंसिव होने. तो आई थिंक दे आर गेटिंग गुड सपोर्ट फ्रॉम द क्राउड एज वेल एज दे आर वेल अवेयर ऑफ अबाउट द कंडीशंस.
2: जीशान, खास करके टॉप ऑर्डर ने काफी अतिशी बल्लेबाजी की है. अब तक टॉप थ्री का जो स्कोरिंग रेट रहा है 8.8 का अभी तक टूर्नामेंट में सर्वाधिक.
5: हाँ बिल्कुल, देखिए उनके पास में जो उनके सबसे जो इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं

0: बैटिंग लाइनअप की अगर बात करें तो हॉज का जो रहा है परफॉर्मेंस, वो उन्होंने सेंचुरी भी की है इस वर्ल्ड कप के सीरीज में, तो एक वो जरूर से नजर आना होगा कि शुरू के 6 ओवर में क्या करते हैं। बहुत अच्छी बातें सुनने को मिल रही है मुझे कि पीछे की बातों को नहीं कोई भी सोचता है। जब आज का मैच होता है तो आज के मैच को देखते हैं, और फिर ये भी जाहिर सी बात है कि थोड़ा सपोर्ट तो जरूर है कि अगर आप होम ग्राउंड में खेल रहे हैं तो आपको फायदा होता है। उनके पास जरूर से वो एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़ता है। मोरल सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, खासकर जो वुमेन्स क्रिकेट के टीम होती है उसको एक बहुत जरूरत होती है मोरल सपोर्ट की, वो है उनको इंग्लैंड के साथ में, थोड़ा एज है वहाँ पे। लेकिन क्रिकेट ग्राउंड में होना है, बैटिंग करनी है उन्हें। शुरू के 6 ओवर के जो मैचेस हुए हैं, उस 6 ओवर के मैचेस में उनको जरूर से ये समझना होगा कि कैसे उनके पेस बॉलर्स को उनको फेस करना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है शुरू का 6 ओवर। अगर वो शुरू के 6 ओवर में विकेट कम गिरे और एक 40-45 के आसपास वो स्कोर कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि वहां से एक मैच आगे बढ़ना इंग्लैंड के लिए फायदेमंद होगा।
1: और आज बैटिंग ही तो रही है इंग्लैंड की, जिसकी वजह से ये टीम अपने ग्रुप के 5 मैच जीतने में सफल रही है। दूसरी तरफ हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो मिला जुला प्रदर्शन रहा है, किसी खिलाड़ी ने बढ़िया किया, किसी और मैच में किसी और खिलाड़ी ने बढ़िया किया, तो 4 मैच ऑस्ट्रेलिया के अलावा उन्होंने भी जीते। मनोवैज्ञानिक रूप से इस मुकाबले में कौन सी टीम बेहतर स्थिति में होगी?
2: इंग्लैंड होगी, क्योंकि ओवरऑल कमांडिंग परफॉर्मेंसेज इंग्लैंड के ज्यादा बेहतर है। अगर आप पिछले मैच भी देखें जो बांग्लादेश के साथ था साउथ अफ्रीका का, दे वर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, मतलब नहीं लग रहा था कि आसानी से जीत ले उन्होंने मैच, लड़खड़ा गई थी टीम, और वहां से उठ के आना जीतना अच्छी बात है। बट आई थिंक इंग्लैंड के पास है जो वॉट एवर एज दैट वी आर लुकिंग फॉर इज विद इंग्लैंड, और खास करके क्योंकि इस पिच पे आज मैच हो चुका है ऑलरेडी, और जब आप और क्रिकेट खेलेंगे इंग्लैंड के फिर की गेंदबाज विल कम इन टू प्ले एंड साउथ अफ्रीका इज प्रॉब्ली गिवन देम दैट चांस। मुझे लगता है कि इंग्लैंड के लिए हर चीज सही बैठ रहा है और आज वो मैच इंग्लैंड के पक्ष में जा सकता है।
3: One of the players contributing to that edge is Dani Rabat-Hodge, and we've seen in her case took a paternity break, and in fact didn't play a whole lot of games in the build-up. The games that she played, she struggled, but brought her A game to the World Cup.
4: Yeah, I mean, she's a very good batter and she always give a very good start to the team, and she has given, she's proven this tournament as well. But if you see that there are other batters also, because she knows that we have deep batting lineup, so that is the reason she is able to give those starts to the team. And if you lay a good foundation, definitely, they can find a very good score in this match.
1: जिशान, इतिहास का किसी मैच में कितना बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं 2023 के सेमीफाइनल में उन्होंने इंग्लैंड को हराया था, 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप हुआ था पिछले साल उसमें भी साउथ अफ्रीका की टीम इंग्लैंड को हराने में कामयाब रही थी, तो वो क्या साइकोलॉजिकल एज होगा उनके पास इस मैच में, इंग्लैंड की टीम प्रेशर में होगी?
0: जरूर, थोड़ा कहीं ना कहीं वो दिमाग में रहता है कि हम 2020 और 50 दोनों में साउथ अफ्रीका से अगर हारे हुए हैं तो जरूर थोड़ा ना थोड़ा तो रहता ही है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखिए, आजकल जो क्रिकेट जो हो गया इतना प्रोफेशनल हो गया है, इतनी ज्यादा मेंटल स्ट्रांग हो जाते हैं जो भी क्रिकेटर, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स जो खासकर होते हैं, उनको वो पीछे की सारी चीजें जो है ना वो सब चीजें खत्म कर दी जाती हैं। आजकल जो सपोर्ट स्टाफ होता है, वो सपोर्ट स्टाफ इस तरह से उनको तैयार करता है ग्राउंड में जाने के पहले कि उनको वो पुरानी सारी चीजें, वो अपनी फैमिली और वो सारी चीजों को भूल करके ग्राउंड के अंदर में जाते हैं, तो वो जो मैचेस हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा रहता है कि वो एक प्रेशर थोड़ा सा होता है। लेकिन मुझे खासकर अभी जो इनके परफॉर्मेंस मैं देखता चला आ रहा हूँ इंग्लैंड की टीम का, तो मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि वो पुरानी जो बातें हैं वो चीजें कहीं थोड़ी होंगी 1-2%, लेकिन उन चीजों का कोई असर यहाँ नहीं होगा। और इंग्लैंड नो डाउट, मुझे जहाँ तक यकीन है कि इंग्लैंड एक अच्छा परफॉर्मेंस आज करेगा, लेकिन ये क्रिकेट है, क्रिकेट में कोई भी प्रेडिक्शन पहले से कर देना इस मेरे ख्याल से तो मैं नहीं कर सकता कभी भी। हाँ, ये जरूर है कि मैं ये समझता हूँ कि भाई लास्ट ओवर तक मैच होते हैं।

0: change in the England playing 11, and Sophia Dunkley had been featuring in the games where we didn't see skipper Nat Silverbrunt around. And talking about South Africa, they have gone for one change as well, and Sunil Loos is come in for Dane Van Niekerk.
1: जी और राजा अगर इस मैच की हम बात करें फिर से एक बार फिर तो इंग्लैंड के अभी तक के अभियान में जो है वो कंसिस्टेंसी लगातार दिखी है. दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, बांग्लादेश के खिलाफ भी मैच बड़ी मुश्किल से उन्होंने जीता, भारत के खिलाफ भी कांटे का उनका मुकाबला रहा. तो आज के मैच में आपको क्या लगता है कि कंसिस्टेंसी कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है?
2: ये दो मैचेस उनको तैयार भी किए होंगे. एक टफ मैच जो सेमीफाइनल होता है उसके लिए शायद इंडिया का मैच या बांग्लादेश का मैच उनको तैयारी में मदद की होगी, लेकिन उसमें से कितना सीख लिए हैं और फिर आज उसमें सुधार कितना ला सकते हैं अपने गेम में, खास करके उनके बल्लेबाजी में. दे हैव टेकन अ चांस पहले गेंदबाजी करके, उन्हें लगता है कि इंग्लैंड को अगर कम स्कोर में रोकने तो उनके बल्लेबाज मैच जिता सकते हैं. अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हैं फिर यू कम अंडर प्रेशर टू विन द मैच टू डिफेंडर स्कोर, तो उनके जो बल्लेबाज है वो मैच जिताना चाहिए उनको. क्या वो आज हो सकता है ये देखने वाली बात है. इंग्लैंड के पास सारे वो पत्ते हैं, दे हैव गॉट इनफ एंड मोर ट्रम्प कार्ड विद देम, लेकिन साउथ अफ्रीका को चाहिए कि अपने बल्लेबाज आज कुछ करिश्मा कर दिखाएं.
0: And Khyati, talking about South Africa's bowling, we talked about the 25 wickets that the Pacers have taken, including Shabnam Ismail, who reversed her retirement to come back and play in the T20 World Cup. She's an experienced campaigner. How would you assess her comeback thus far?
3: Definitely, I mean, it's a very good decision, I would say, because their team is at their best at the moment, and there are chances they can lift the trophy as well. And because, if you have seen their past performances, they have done really well, and it's a good decision because now the team looks very balanced and packed, and the three bowlers like Ismail Khan and the other as well, they're doing really well, and it's a very good balanced pacing attack. And I'm sure that she will definitely put an effort to lift this trophy for her team.
1: आज जिशान फिर से जो है बल्लेबाजी करने का मौका पहले इंग्लैंड की टीम को मिला है. टॉप ऑर्डर उनका बहुत कमाल का प्रदर्शन कर रहा है और एक तरह से माना जा रहा है कि इंग्लैंड के टॉप थ्री बल्लेबाज और उधर साउथ अफ्रीका की जो फास्ट गेंदबाजी है उनके बीच कांटे का मुकाबला होने वाला है. ऐसे में इंग्लैंड क्या स्कोर करे कि थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल स्थिति में पाए?
4: मैंने पहले भी कहा था इस बात को कि जो आज है वो बेसिकली एक तरह से एक वॉर है जो पेस बॉलर्स उनके हैं साउथ अफ्रीका वुमेन्स टीम के और जो इंडियन टीम के जो बैटर्स हैं उनके बीच में एक वॉर है. मैं ये फिर से ये कहता हूँ कि शुरू का 6 ओवर जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है T20 के मैचेस के लिए, दोनों के लिए, पेस बॉलर्स के लिए जो दूसरी टीम के हैं और जो बैटिंग जो करने आएंगे उनके लिए. तो ये खासकर बहुत ज़रूरी है कि जो खासकर वो जो उनके बैटर हैं उनके बारे में ये ज़रूर है कि उन्होंने 100 भी किया था लास्ट किसी मैच में हॉज ने. तो हॉज के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि वो एक लम्बा अगर वो खेलने की कोशिश करें, लाइक अगर वो ये सोच के चले कि हम शुरू के 6 ओवर में 50-60 बना दें और आउट हो जाए फिर वो प्रॉब्लम होएगी, इंग्लैंड टीम को बनना शुरू हो जाएगी. तो बेहतर ये होएगा मेरे ख्याल से, ये स्ट्रैटेजी उनकी जो भी सपोर्ट स्टाफ है उन्होंने बनाया होगा कि शुरू के 6 ओवर में जो इनकी पेस बॉलर्स हैं उसको कैसे फेस करना है, कम विकेट गिराना है, आप आगे लेके टीम के चलेंगे. अगर ऐसा करने में वो सक्सेस होते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छा लंबा स्कोर इंग्लैंड खड़ा करेंगे पेस बॉलर्स के अगेंस्ट में, और बाद में टीम जो इंग्लैंड टीम के पास में स्पिनर्स हैं कुछ, मैंने देखा है कि काफी विकेट्स भी लिए हैं उन्होंने और इंग्लैंड को जिताने में उनकी बहुत मदद रही है. तो मेरे ख्याल से ये शुरू का जो 6 ओवर का मैच है इंग्लैंड के लिए खासकर और साउथ अफ्रीका दोनों के लिए खासकर ये डिसाइड करेगा. फर्स्ट इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो भी बैटिंग करने आता है या जो बॉलिंग करता है दोनों के लिए, कि वो कैसे कम से कम स्कोर में इन्हें रखें और ज्यादा से ज्यादा विकेट निकालने की कोशिश करते हैं. जो इसमें कामयाब होंगे वो ऊपर की तरफ जरूर से आगे की तरफ वो टीम जो है बढ़ेगी. तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड ये सोच करके आई होगी कि हमें 6 ओवर में अगर 40

0: तो वो उतना बनाए विकेट ना गिरने दें। सोडेट के बाद के जो ओवर्स होंगे उसमें जब बॉलर कुछ दूसरे नए आएंगे उनकी तरफ से बॉल डालने के लिए, तो वो कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा फिर आगे हिट करके और 150-160 के आसपास स्कोर अगर लेकर के जाने की कोशिश करेंगे टारगेट होगा तो वो बेहतर होगा इंग्लैंड के लिए। मुझे यकीन है कि इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइनअप मैं देख रहा हूँ, उनकी परफॉर्मेंस जो थ्रू आउट जो सीरीज में देखा है मैंने, तो मुझे लगता है कि वो एक ऐसा स्कोर खड़ा करने में कामयाब होंगे। लेकिन ये जरूर है, क्रिकेट है, आपको थोड़ी सेंसेबल बैटिंग करनी पड़ेगी आज के दिन में, इसलिए कि ये बड़ा मैच है सेमी फाइनल। सेमी फाइनल में अगर आप थोड़ी सी भी लैक किया, ओवर कॉन्फिडेंस में अगर आपने आपको लेकर के आएंगे तो भी मुश्किल होगी। तो मुझे लगता है कि वो एक स्ट्रैटेजी बना के आएंगे और जरूर से एक ऐसा स्कोर खड़ा करेंगे जो अफ्रीका के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होगी।
1: और राजा, फील्डिंग की आज कितनी बड़ी भूमिका रहने वाली है? साउथ अफ्रीका का जो स्टैंडर्ड होता है फील्डिंग में, वो इस पूरे वर्ल्ड कप में दिखा नहीं है, उसकी कितनी बड़ी भूमिका होगी आज?
2: बहुत बड़ी होगी। कोई भी मैच में, क्रिकेट का कोई भी मैच, मोहल्ले का मैच हो या आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप हो T20 का, फील्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो शायद भारत की टीम को बहुत बुरी तरीके से पता चला होगा इस टूर्नामेंट में कि देयर फील्डिंग वाज नॉट अप टू स्क्रैच, और क्योंकि साउथ अफ्रीका कैन सेव एटलीस्ट 10 और 15 रन, दैट बी अ गुड एडवांटेज फॉर देम। काफी फिट टीम है एंड आई थिंक गुड हेल्प देम। लेकिन मैच तो इंग्लैंड के ओर जाता हुआ दिख रहा है, पहले 6 ओवर में पता चल जाएगा, बट आई थिंक इंग्लैंड हैज द कैन कॉल द शॉट्स इन दिस गेम।
3: Albeit subtly, we've had predictions from our experts, but thanks a lot for your analysis as well. Thank you, Dharmendra. So it is going to be England's formidable top order that will be up against the pace attack that has picked up 25 wickets for South Africa. A battle really to watch out for in this first innings as we wrap up our show here at First Ball 20 with the two England openers, Danny Rathod and Amy Jones, heading to the centre.
4: First Ball 20.

0: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास। और बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का T20 महिला विश्व कप का सेमीफाइनल नंबर दो यानी दूसरा सेमीफाइनल आमने सामने होने वाली टीमें इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका और मेजबान है इंग्लैंड और वेल्स में इस बार के टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जैसा आप प्रोग्राम में भी सुन रहे थे इस हमारे विवरण से पहले कि पलड़ा इंग्लैंड का भारी नजर आ रहा है कागज पर, लेकिन देखना यह होगा कि क्या दक्षिण अफ्रीका जो कि पिछले लगातार दो तीन वर्षों से आईसीसी टूर्नामेंट्स के महिला वर्ग में फाइनल में पहुंचते रहे हैं, ये अलग बात है कि खिताब उनसे छिटक गया है, लेकिन उसके बावजूद उनकी काबिलियत पर किसी तरीके का शक किसी को नहीं है। और टॉस जीता गया था दक्षिण अफ्रीका के द्वारा, उन्होंने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था। दोनों टीमों में एक एक परिवर्तन है, एक फोर्स्ड चेंज है, टैक्टिकल चेंज है, टैक्टिकल चेंज माना गया आज साउथ अफ्रीका की टीम में। कप्तान लॉरा वॉलवर्ड का कहना था कि सोनू लुइस को उन्होंने शामिल किया है जन बॉल नीलकर की जगह, और इंग्लैंड की टीम में सोफिया डंकली की जगह नैट सिवर ग्रंट का आगमन हुआ है जो तीन मैचेस नहीं खेल पाई थी काफ इंजरी की वजह से, लेकिन आज के मैच में न केवल वो टीम का नेतृत्व कर रही है बल्कि एक बहुत बड़े अहम मुकाबले से पहले उनका फिट होना इंग्लैंड के लिए प्लस पॉइंट समझा जा रहा है। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं शिवेंद्र चतुर्वेदी और मेरे साथ हैं अंग्रेजी में कमेंट्री के लिए मेरे साथ ही दर्पण टिकिया। दर्पण नमस्कार, स्वागत आपका।
1: Thank you so much, Shivendra. We are all set for the action to begin at the Oval. It is England versus South Africa. Of course, we are joined by Sunil Dhige, our scorer, who will be keeping us updated so that we can bring you the score.
2: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे आईसीसी T20 महिला विश्व कप के अंतर्गत इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के मध्य द ओवल लंदन में खेले जा रहे क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का अमेर चैनल है, मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। जयपुर अजमेर के अलावा आप हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी डूंगरपुर नाथद्वारा करौली भरतपुर झुंझुनू अनूपगढ़ और कोटपुतली केंद्रों से भी सुन रहे हैं, और साथ ही आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप

0: न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। इस समय रात्रि के 11 बजने को है। आइए सुनते हैं समाचार जो हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे और समाचारों के पश्चात आप पुनः जुड़ेंगे मैदान से जहां क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल आपको सुनाया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष है और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होगा।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
2: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में
3: शामिल होना एक खास बात कही जा सकती है, लेकिन गेंदबाजी की कमान संभालेगी मैरिजन कैप जो कि
2: विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य आवर्जन और निगरानी एजेंसियों
3: सर्कल के बाहर तैनात हो सकते हैं। एक डीप बैकवर्ड स्क्वायरलेस बाउंड्री पर और एक डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात है। दैनिक भारत जिनके बारे में जरूर जानकारी दे रहे हैं, इससे पहले इस बार ऑफ स्टंप के बाहर हल्का सा उछाल भी और खेलने का प्रयास तो किया था। टॉमी जोंस ने गेंद और बल्ले में संपर्क हुआ नहीं। डेनी वियर्ट्ज ने इस विश्व कप में 282 रन बनाए हैं, 5 पारियों में 94 का औसत है। हाईएस्ट जो उनका स्कोर है, सर्वोच्च स्कोर है 105 रन नाबाद। तो आज एक वाइटल कॉल होगी अपनी टीम की बल्लेबाजी में डेनी वियर्ट्ज, लेकिन फिलहाल स्ट्राइक पर वो ही है। स्कोरिंग का सिलसिला उन्होंने भी शुरू किया नहीं है। बैकफुट पर जाकर कट करने की कोशिश है, हल्का सा उछाल मिल रहा है, हल्का सा मूवमेंट भी है, हवा में हल्की सी लहराती हुई सी गेंद आ रही है। हालांकि इस पिच के बारे में कहा यह जा रहा था कि यहां पर बल्लेबाजी में कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए। पिछला मैच तो लो स्कोरिंग रहा था, जो एक वन वे ट्रैफिक था जिसे ऑस्ट्रेलिया ने बड़े प्रभावशाली अंदाज में जीता। वेस्टइंडीज को हरा करके 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और

0: एक बार के चैंपियन वेस्टइंडीज बाहर हो चुके हैं, भारत भी बाहर हो चुका है। 2017 में जब इंग्लैंड ने खिताब जीता था, भारत को ही पराजित किया था। इस बार धीमे से पंच किया था ऑफ साइड में, एक रन लिया गया है, दूसरा रन भी लेना चाहती है बैटर, लेकिन फिलहाल रन लेने की कोई संभावना नहीं। शांत सी शुरुआत, दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता और जब नेचुरल ग्राउंड से पूछा गया था कि अगर वो टॉस जीती तो क्या करती, तो उनका भी ये कहना था कि वो भी गेंदबाजी के लिए ही जाती। तो ये जो ओवल का मैदान है, इसके बारे में कहा यह जा रहा है, देखा भी ये जा रहा है कि जो टीम चेज करती है, सफलता ज़्यादातर उनके नाम पर ही लिखी जाती है, और शायद वो एक टैक्टिकल पॉइंट भी बन चुका है। इस बार मिडल लेग स्टंप की लाइन में गेंद थी, बैक फुट जाकर धीमे से पुश किया है मिड ऑन की दिशा में, एक रन मिलेगा। एक ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर है 3 रन बिना किसी नुकसान के।
1: तुम रिपोर्ट लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
1: लड़ी। जानिए अभा के बारे में।

0: पिछला ओवर अच्छा खासा प्रोडक्टिव साबित हुआ। नैनी विहार ठॉज कुछ मिसक्यूड शॉट्स भी थे उनके बल्ले से निकले, लेकिन यहाँ सिर्फ मायने ये रखता है कि आपके खाते में रन कितने आ रहे हैं और विकेट अगर बचे हुए हैं तो फिर उसे सोने पर सुहागा कहा जा सकता है। 20 रन एक विकेट के नुकसान पर अच्छी गेंद बॉल्ड हो गई है, बेहतरीन कामयाबी, डैनी विहार ठॉज को आउट कर दिया है, बोल्ड कर दिया है, कट करना चाहती थी, ऑफ स्टंप की लाइन में बॉल थी और देखना पड़ेगा कि क्या गेंद और बल्ले में संपर्क हुआ था। लगा तो ऐसा कि डायरेक्ट इंपैक्ट था स्टंप्स के ऊपर, लेकिन मैरिजन कैप जो कि एक ब्रेक थ्रू देने के लिए जानी चाहती हैं, उन्होंने डिफेंस को पियर्स कर दिया, गेंद और बल्ले के बीच में काफी, इनफैक्ट बैट और पैड के बीच में अच्छा खासा फासला था और इंग्लैंड को लगता हुआ ये जोर का झटका 2.2 ओवर के बाद 20 रन दो विकेट के नुकसान पर।
1: A good length delivery which after pitching jagged back in sharply and that inward movement is what caught Danny Wyatt-Hodge off guard. She has done very little wrong throughout this tournament. 294 runs in totality in this tournament, which includes a century, includes a couple of half centuries, and even here she had started off in good manner. She had already hit a couple of boundaries in the previous over. However, Marizaan Kaap, the heartbeat of this South African team, delivers a telling blow once again. Danny Wyatt-Hodge has now been replaced by Alice Capsey in the middle. So Capsey and Natsiva Brunch out there in the middle. And this is where I think we need to have a conversation about Sophia Dunkley. Remember, Sophia Dunkley came in as the injury cover for Natsiva Brunch and scored a 49 not out in the previous game, which was played at this very ground. Before that, she got a 50 as well in one of the group stage matches, but she was dropped from the team today so that they could get Siva Brunt in. Alice Capsey, who hasn't really done anything extraordinary in this World Cup, is now in the middle and has responsibilities on her shoulder. She gets beaten on the first ball by a lovely outswinger delivered on a good length outside the off stump, and tried to poke at it, did Alice Capsey, only to watch the ball whiz away from the outside edge of her bat.
0: बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं अर्जुन कैप, और उन्होंने बहुत ही अहम सफलता दिलाई है दक्षिण अफ्रीका को। इनफैक्ट एलिस कैप्सी को उनकी जो पहली गेंद थी स्लोअर डिलीवरी थी वो, और उसको खेलने के प्रयास में पूरी तरीके से चूकी थी अर्जुन कैप। ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और विकेट के पीछे, उसे गैदर किया गया, रन बनने की कोई संभावना नहीं। तो दो झटके पावर प्ले में, जहां बात होती है कि विस्फोटक बल्लेबाजी होती है, ताबड़तोड़ बैटिंग का नज़ारा हमें देखने को मिलता है आज की तारीख में T20 क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में या फिर क्लब क्रिकेट में भी, और बड़े से बड़े स्कोर बनाए जाते हैं 20-20 ओवर के मुकाबलों में। और यहाँ पर एक कहा जा सकता है कि साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरेंस अल्बर्ट ने जो टॉस जीता, वो टॉस बहुत ही अच्छा जीता उन्होंने, और पहले उन्होंने फील्डिंग करने का फैसला किया। अभी तक तो वो निर्णय सही साबित हुआ है। अगली गेंद इस बार स्टेप आउट करके धीमे से ऑन साइड में नैचुरल ब्रेंट ने पुश किया था बॉल को, जब तक फील्ड किया जाए छोर बदल लिया दोनों बैटर्स ने। तो पिछले ओवर में 16 रन खर्चे गए, लेकिन ये ओवर बिल्कुल शांत अंदाज में आगे बढ़ता हुआ, और डैनी विहार-ठॉज जैसे बता रहे थे दर्पण की 294 रन उन्होंने बनाए हैं। और ये अलग बात है कि आउट होकर के आज जल्दी ही पवेलियन लौट गई हैं, लेकिन अपनी टीम की ओर से दो उन्होंने अर्धशतक जमाए थे और एक शतक भी जमाया था इस टूर्नामेंट में आज, लेकिन बल्ले से कोई खास योगदान वो नहीं दे सके। इस बार मिडल और लेग स्टंप की दिशा में गेंद थी, बैकफुट पर जाकर धीमे से पुश किया है, हालांकि फील्डर्स डीप में तैनात थे और शॉट मिड विकेट की दिशा में इनफैक्ट कोई फील्डर था नहीं, तो एक रन लेने में कामयाबी। इसके साथ ही मैरिजन कैप का एक बहुत ही शानदार ओवर समाप्त होता हुआ।
2: तुम रिपोर्ट लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
4: ली। जानिए अभा के बारे में।

0: did not review it. She did walk to her partner at the other end and had a discussion. But if you are the batter, you would have felt that there was an inside edge, especially at the pace at which Shabnam Ismail is bowling.
1: इसीलिए कई बार कहा जाता है कि आपके लिए स्किलफुल होना तो जरूरी है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से टफ होना भी जरूरी है। बढ़िया शॉट है इस बार, नेट सिमर बैंड के बल्ले से निकला है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, चार रन।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: Right, and that also brings us to the end of the fourth over. 28 for 3 are England. They are in trouble, and the reason why we say in trouble, Jatin Sood gives us another piece of information which confirms it. This is the second time in this World Cup when England women have lost 3 wickets in the power play. The only game where they lost 3 in the power play was against Ireland, where they were 35 for 3 in 6 overs, and Ireland did give them a run for their money. However, two interesting things have happened. First, Ali Scapsi, despite getting that big, thick inside edge, did not review it. Otherwise, her LBW decision would have been overturned. The second thing is that Sophia Dunkley, who otherwise would have been playing in this situation, is not a part of the 11. Marizan Kapp begins what is her third over in the power play, delivers the first delivery on the fuller side of good length. Heather Knight lunges forward and wads it off into the cover region. No runs to be had on that occasion. The reason why I'm talking about Sophia Dunkley is because she was in good form. She comes across that kind of a player who has the big match temperament, who tends to counter-attack and throw the pressure back on the opposition, and she was dropped out of the 11 today. And Ali Scapsi therefore must have had that added pressure on her because she hasn't had a big score in this tournament, yet she was not able to deliver. The next delivery is down the leg side. Heather Knight tried to walk out of a crease, which we have seen on a couple of occasions even before this. Even in last over of Marizan Kapp, we saw the batters trying to step out of the crease and trying to throw her off her length because she's getting some movement. However, this delivery did not swing and ended up down the leg side, became a wide ball. The next delivery, this time Heather Knight stays rooted to her crease. However, the ball is full enough for her to get a good stride out. It is outside the off stump. She presses forward and then uses soft hands to ward the ball off into the cover point region. 4.2 overs done. 29 for 3 is the score currently, and South Africa, we believe, are in the driver's seat.
1: Definitely South Africa is in the driver's seat as far as this semi-final is concerned. Aur jo gendbazi unki team ki ore se hui hai, और आउटफील्ड में भी बहुत ही बढ़िया कंट्रीब्यूशन रहा है सभी खिलाड़ियों का अभी तक, तो कुल मिलाकर के परिस्थितियां इस समय साउथ अफ्रीका के पक्ष में जाती हुई प्रतीत हो रही हैं, क्योंकि तीन जो टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं वो पवेलियन में विश्राम कर रहे हैं। शबनम स्पाइल ने इस बार उनके बाईं ओर गेंद आई थी, हालांकि वो राइट हैंडर हैं, बाईं ओर डाइव लगाई उन्होंने और सुनिश्चित किया कि गेंद को रोक लें, लेकिन इसी क्रम में कई मरतबा ऐसा होता है कि खिलाड़ी इंजर्ड भी हो जाते हैं। थोड़ी सी मुश्किल में दिखी थी, लेकिन फिलहाल खड़ी हो गई है अपने स्थान पर। 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड का स्कोर है। 4.3 ओवर की बल्लेबाजी के बाद शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, स्टेप आउट किया था सिमर ब्रांड ने। बड़े ही प्रभावशाली, बड़े एकाधिकार के साथ बल्लेबाजी करती हैं, बड़े कमांडिंग अंदाज में बल्लेबाजी करती हैं, और इस बार एक लेग बाई का इशारा किया है जैकलिन विलियम्स ने। इस्माइल, जिनके बारे में हम जिक्र कर रहे थे, लगातार 51 विकेट ले चुकी हैं T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में। मेगन शर्ट के नाम पर 48 विकेट हैं। एलिस पेरी, ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी, 44 विकेट। आना शुपसोल, जिनके नाम पर 41 विकेट हैं। और मैरिजन कैप 39 विकेट लेकर के पांचवें पायदान पर हैं T20 इंटरनेशनल में, वर्ल्ड कप में जो लीडिंग विकेट टेकर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। इस बार पैच के सहारे खेला है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, आसानी के साथ एक रन मिलेगा। जो दूसरा ओवर था उसमें 16 रन बनाए गए थे इंग्लैंड के बैटर्स के द्वारा, लेकिन उसके बाद से ऐसा लगा कि परिस्थितियां यकायक बदल गई। हालांकि तब भी एक विकेट गिर चुका था, एमी जोन्स आउट होकर के पवेलियन वापस लौट चुकी थी। तब रन बनाने की रफ्तार 9.34 के आसपास थी, इस समय रन बनाने की रफ्तार है 6.62 रन प्रति ओवर। ओवर की आखिरी गेंद लेकर के आई थी मैरिजन कैप, ऑन साइड में खेला गया है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री पर प्रोटेक्शन है, एक रन मिलेगा। जब तक थ्रो आएगा तब तक दोनों बैटर छोर बदल लेंगे। 5 ओवर के बाद स्कोर 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाई हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
5: ली। जानिए आभा के बारे में।
6: आभा
5: यानी आयुष्मान।

0: समाचार साथ साथ।
1: So the first quarter of the first innings of this semi-final has belonged to South Africa. Marizan Kaap has completed her spell. She has delivered 3 overs in which she gave away only 9 runs and picked up the all-important wicket of Danny Wyatt-Hodge. 9 out of the 18 deliveries she sent down were dot balls. So once again, 50% dot balls. 33 for 3 England after 5 overs and looks like Shabnim Ismail is going to be given a 3rd over in the power play as well. Remember, this is exactly what they did against Australia too in the first match and were criticized for it. However, Shabnim Ismail creates another opportunity. There's a big, big appeal for LBW. Vehement shout. However, umpire Jacqueline Williams is unmoved. Laura Wolfart walks up to her bowler. Chloe Tryon joins the confab. So does Nadine De Klerk. They are having a discussion and by the looks of it, I think it was Chloe Tryon who ran in from mid-off, who suggested that the ball was a little too high and therefore we should not take the review. But once again, we saw that Wolfart was entrusted because the batter in question was Nat Sivabran. She moved back and across to stand on the off stump and this delivery was on a good length. However, it generated some extra bounce and hit her not on the pad but on the thigh guard. Next delivery, this time alters her length. Does Shabnim Ismail delivers it on a full length in line with the middle stump. The batter presses forward and dinks it back towards the bowler. Ismail quickly moves towards her right to clean it up. And an interesting reading on the speed gun, 118 kilometers per hour, which is pretty quick as far as women's cricket is concerned. The ball tracker replay is on our monitors and it tells us that whatever Chloe Tryon was suggesting was indeed correct. The ball was indeed high and would have missed the stumps. The next delivery, it's a short delivery from Shabnam Ismail, the perfume ball as they call it, not too far from the off stump. Siva Brunt did shape up for a pull shot, however the ball went whistling past her face and in the end she had to bail out. 3 dot balls to start the final over of the power play. England struggling. Nat Sivabrant not quite able to find her mojo. 33 for 3 is the score after 5.3. 3 balls remaining in the power play.
2: 3 dot deliveries शबनम स्माइल के बारे में उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, खेलना चाहती थी ऑफ साइड में। नैट सिवरब्रांड बिल्कुल स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। ऐसा कितनी बार आपने सुना या देखा होगा कि उनके जैसे कैलिबर की बैटर, उनके जैसे कैलिबर की खिलाड़ी और वो संघर्ष करती हुई नजर आ रही हो और उनकी टीम के 3 टॉप बैटर्स पावर प्ले में ही पवेलियन में विश्राम कर रहे हों। आज सोफिया डंकली को मैच से बाहर किया गया, टीम से बाहर किया गया, क्योंकि नैट सिवरब्रांड जो कि टीम की कप्तान है और वो स्वस्थ होकर के, फिट होकर के मुकाबले में वापस आई हैं। आज उनके कंधों पर दोहरी तिहरी जिम्मेदारी है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक बार ऑन साइड में, एक बार मिडल और लेग स्टंप की दिशा में थी, ये मोड़ा गया है, 1 रन से संतुष्ट होंगी। तो 4 डॉट डिलीवरीज के बाद एक सिंगल आया है। इस पावर प्ले का अब अगर कोई वाइड या नो बॉल नहीं होती तो सिर्फ 1 गेंद फेंकी जानी शेष है। 5.5 ओवर की बल्लेबाजी के बाद इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 34 रन बनाए हैं 3 विकेट के नुकसान पर। साउथ अफ्रीका विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबलों में जो कहानी रही है इंग्लैंड के साथ, खासतौर पर सेमीफाइनल में जब 2014 में 9 विकेट से हारे थे साउथ अफ्रीका, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उनको 5 रन से हार झेलनी पड़ी थी 2020 में। इसी बीच अगली गेंद खेला गया, उसे बाउंड्री लाइन पर, तब तक 1 रन लेने में कामयाबी। 6 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ड्रिंक्स का समय है।
3: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: 35 for 3 at the end of the power play. England, after being asked to bat first, are in a spot of bother. Amy Jones, Danny Wyatt-Hodge and Ali Skapsey, the 3 batters who have been dismissed. The 2 most experienced batters of this team now, Nat Sivabrant and Heather Knight, are out in the middle, but both are scoring.

0: won against India in the 2018 edition, and in the 2020 edition the match was abandoned. It was England versus India in the semi-final, and India advanced to the final because they had a better position in the group stage. And then of course the 2023 semi-final, where South Africa defeated England. May we add one more entry to that list? I know 2025 was the 50 over World Cup, but it was the more recent one where these two teams met in Guwahati, and once again England suffered a one-sided rubbing. South Africa scored 319 runs batting first. Laura Wolfart scored 169 in that game, and Marizaan Krapp picked up 5 wickets. Here again what we see is Marizaan Krapp has pretty much wrecked the top order. Marizaan Krapp picked up the wicket of Danny White-Hodge. Shabnam Ismail picked up 2 wickets, and therefore England are struggling at 35 for 3.
1: तो दो जो बैटर इस समय क्रीज पर हैं, दोनों बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं, और खासतौर पर अगर नैट सिल्वर ग्रैंट का जिक्र किया जाए, नैट सिल्वर ग्रैंट इनफैक्ट जापान में उनका जन्म हुआ था, टोक्यो में, और उनकी माता जी वो एक करियर डिप्लोमेट थी और अलग अलग देशों में उनकी तैनाती होती थी। तो बचपन में पोलैंड में रहीं, जहाँ पर लीग स्तर पर फुटबॉल खेला। उसके बाद नीदरलैंड में उन्होंने बास्केटबॉल का रुख किया था, लेकिन अंततः उन्होंने क्रिकेट को चुना। 7वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है। मैरिजन कैप अपनी गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, और चौथा ओवर है ये उनका। 9 रन सिर्फ उन्होंने खर्च किए हैं और 1 विकेट हासिल किया है। क्या बेहतरीन गेंदबाजी हुई है साउथ अफ्रीका की ओर से, और इससे बढ़िया टॉस तो कोई जीता जा ही नहीं सकता था। अभी तक की जो परिस्थितियां हैं उसको देख करके तो ओवल के मैदान पर ऐसा ही लग रहा है साउथ अफ्रीका के जो फैंस हैं वो झूमते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार मिडल और ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद थी, धीमे से पुश किया है, स्क्वायर थर्ड मैन की दिशा में पहुंची है। 1 रन लिया गया, दोनों बैटर्स ने छोर बदल लिया, और नैचुरल ब्रंट और हेदर नाइट दोनों का इस समय प्रयास ये है कि संभल करके बल्लेबाजी की जाए और एक बाद एक जो झटके लगे हैं टीम को उनसे उभरा जाए। और खासतौर पर ये जो मिडल ओवर्स हैं 7वें ओवर से लेकर के 13-14 ओवर तक, वहाँ पर इंग्लैंड को अपनी जो रणनीति है उसमें थोड़ा सा बदलाव तो करना पड़ेगा, और बदलाव यही होगा कि विकेट को बचा करके रखा जाए, क्रॉस बैटर स्ट्रोक्स या फ्लैम्बॉयंस ज़्यादा ना दिखाया जाए। इस बार गेंद हवा में उछली थी, लेकिन शॉर्ट पॉइंट विकेट की दिशा में फील्डर तैनात थी, लॉरा वुलवर्ट थी संभवतः वहाँ पर, गेंद को रोकने में या कैच करने में कामयाबी नहीं मिली। हालांकि डीप से बैकअप था, 1 रन लेने में दोनों ही बैटर्स को कामयाबी, छोर बदल लिया गया। तो धीमे धीमे भी सही, लेकिन इंग्लैंड के खाते में रनों का इजाफा हो रहा है। रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है कि विकेट्स को बचा करके रखना अब उनकी पहली प्राथमिकता है। 9 रन बनाए हैं नैट सिल्वर ग्रैंट ने, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज की भूमिका में है, और हेदर नाइट इस समय यॉर्क करने की कोशिश है, कलाइयों का इस्तेमाल करके फाइन लेकिन दिशा में मोड़ा गया है। वन वखाब का जहाँ पर मौजूद है, गेंद को उन्होंने फील्ड किया, तब तक 1 रन लेने का मौका दोनों बैटर्स के पास। पहली गेंद डॉट डिलीवरी, उसके बाद की 3 गेंदों पर सिंगल्स। लेकिन ये जो इस समय परिस्थिति है उसमें जाहिर सी बात है कि दक्षिण अफ्रीका की टीम अगर इंग्लैंड के बैटर्स सिंगल के बल ले रहे हैं और स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, उनके लिहाज से एक अच्छी रणनीति कही जा सकती है। लेकिन अगर केवल सिंगल लेने में कामयाब हो रहे हैं तो दक्षिण अफ्रीका के लिहाज से तो बेहतर स्थिति है। इस बार बढ़िया स्ट्रोक है मिड विकेट की दिशा में, गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है।
2: ये लगा आभासी चौका,
1: थोड़े इंतजार के बाद आया लेकिन अच्छा आया चौका, मिडिल और लेग स्टंप की लाइन पर थी, एक कदम आगे बढ़ाया, हाफ वॉली पर लिया और बड़ा कमांडिंग प्रभावशाली स्ट्रोक खेला। 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं था। हालांकि मिड विकेट की दिशा में फील्डर तैनात थी, लेकिन गेंद उनसे दूर काफी तेज रफ्तार से बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई। लेकिन कुल मिलाकर के केवल ये चौथा चौका इस बार लेग स्टंप की दिशा में ड्रिफ्ट करती हुई मैरिजन कैप, और क्या पैड से टकराई है या बल्ले से लगी है देखना दिलचस्प होगा, लेकिन वाइड उसे करार नहीं दिया गया। 7 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर है 42, 3 विकेट के नुकसान पर।
3: रोज लाई है ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाई हो।
3: तुम हो ही भुलक कर,
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
3: ली। जानिए आभा के बारे में,
4: आभा
3: यानी आयुष्मान।

0: 22 for 3 after 7 overs are England. And the big news is that Marizan Karp has bowled out her 4 overs. Laura Wolfart gave her the 4th over on a trot, which is an interesting move. She was going for the kill. She realizes that the wicket of Siva Brunt and Heather Knight is as good as gold for South Africa right now, and therefore she did not hold Karp back. But they won't have her services for the remaining part of the innings now. Ayobanga Khaka has been given the ball in hand. The first change in bowling. They are not going to bowl out Shabnam Ismail just yet. Khaka, who bowls right arm medium, runs into bowl this one from over the wicket. When the wicket keeper Sinalo Jafta up to the stumps delivers this one on a good length outside the off stump, and the batter flays her hands away from the body. The ball hits the bat and then runs towards deep third, where Molaba was stationed before Molaba could pick it up and throw it back to the wicketkeeper. A comfortable single was added to Heather Knight's score. She moves to 7 and England are 43 for 3 after 7.1. Nat Siva Brunt now on strike. Here comes Ayobamba Khaka to deliver what will be the second ball of her first over. Delivers this one on a good length. Once again, there is width on offer, and therefore Siva Brunt is allowed to free her arms. She plays it in a deft manner, and the ball goes meandering towards the deep point region, where Tasmin Brits does the fielding and ensures that the batter cannot get more than a single. 44 for 3 then, the score after 7.2 overs. Ayobanga Khaka usually used to take the new ball, but since Shabnam Ismail has come back, she has switched her role to that of a first change bowler. Next delivery outside the off stump opens the face of the plate. Does Heather Knight. The timing on that is good enough to beat Malaba in the deep. 4 runs. Ye laga aapha ka chauka. Delivered on a good length, but once again there was width on offer that allowed Heather Knight to throw her hands at it. She threw an angled face at it, and the timing was good enough to beat Malaba towards her right, running from deep third, and therefore another delectable boundary has been scored. 5 boundaries in the innings so far. Heather Knight moves to 11. The next delivery, and this time she's beaten. Beaten due to extra bit of bounce. Tell you what, this delivery pitched in pretty much the same spot. Heather Knight shaped up for the same shot, because why not? However, this one, perhaps because it landed on the seam, got up steeply and therefore went over the bat. Good take from Jafta, but that extra bounce surprised Knight.
1: जी हाँ, बिल्कुल यकायक ऐसा लगा कि बॉल में बाउंस अच्छा खासा आया था, और इस बार हालांकि बढ़िया फील्डिंग है अपने बाई ओर डाइव लगाते हुए डीप में स्क्वायर थर्ड मैन बाउंड्री की दिशा में, डेफिनेटली 2 रन तो बचाए गए, हालांकि 2 रन लेने से नहीं रोक सकी इंग्लैंड के बैटर्स को। तो 3 जो गेंदबाज हैं साउथ अफ्रीका की, मरिजन कैप, शबनम इस्माइल और आयाबंगा खाका, उन्होंने इस विश्व कप में 25 विकेट हासिल किए थे इस मुकाबले से पहले। और जतिन सूद बता रहे हैं कि बेस्ट इकोनॉमी इस विश्व कप में रहा है वो जॉर्जिया वेयरहैम का रहा है ऑफ़ कोर्स, लेकिन मरिजन कैप भी उनसे बहुत पीछे नहीं है। 6 मैचेस में 23 ओवर फेंकते हुए उन्होंने 8 विकेट हासिल किए हैं, और उनका जो इकोनॉमी रेट है वो 5 का है, जबकि जॉर्जिया वेयरहैम का इकोनॉमी रेट है 4.5 का। तो साउथ अफ्रीका ने आज टॉस जीता। दोनों टीमों में एक एक बदलाव सुने लो उसका आगमन साउथ अफ्रीका की टीम में हुआ है, जबकि इंग्लैंड की टीम में सोफिया डंकले की जगह पर नैट सिवर ब्रंट आई हैं, जो कि इस समय बल्लेबाजी करती हुई नजर आ रही हैं। और इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। डैनी वियर्ट हॉग, एमी जोन्स और एलिस कैप्सी 3 बैटर हैं जो कि पवेलियन में विश्राम कर रही हैं, और 50 रन भी नहीं बने। इनफैक्ट पावर प्ले में 6 ओवर में 35 रन बनाए गए 3 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड की बैटर्स के द्वारा। तो इंग्लैंड का जो टॉप ऑर्डर था जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही थी, आज वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया, और यही कारण है कि मिडल ऑर्डर में नैट सिवर ब्रंट और हेदर नाइक, जो कि बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं और एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्डअप हो रही है, 50 रन हो चुके हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए इंग्लैंड के। इसी बीच गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ है। मलाबा एक पहले स्पिन गेंदबाजी आक्रमण के तौर पर आई हैं। पहली गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलने का उपक्रम किया था नैट सिवर ब्रंट ने, और एक रिव्यू वैसे बेकार हो चुका है। क्या पैड से टकराई है गेंद? और जी हाँ, लॉरा वुलवर्ट ने रिव्यू के लिए इशारा कर दिया है, और एम्पायर के पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं कि वो तीसरे एम्पायर के पास जाए, क्लियर पोलोसाक के पास। एलॉय शेरिडन ने इशारा किया है थर्ड एम्पायर

0: के लिए और मलाबा अपना स्पेल की ही शुरुआत कर रही थी। हालांकि ऐसा लगा दर्पण की खुद गेंदबाज बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी।
1: Tell you what, they are desperate to see the back of Natsivabrant. Once again, the batter in question is Natsivabrant, and that's why Laura Wolfart was so eager to show the tee, because from where we saw it, it appeared as if there was bat involved. Malaba, the left-arm spinner, delivered this one from around the wicket. The ball drifted in towards the middle pole, and it pitched on a good length. Sivabrant loves to play behind square. She is known for those lapse shots, those scoop shots. The nutmeg, where she threads the ball from between her legs, is a very famous shot of hers. She thrives on playing those kind of shots. So her playing the reverse sweep on the first ball doesn't come across as a surprise. But the ball did hit her pad in front of the middle stump. However, we all felt that there was an inside edge before the ball went on to hit the pad, and that is exactly what Ultra Edge has also confirmed. And yes, South Africa have burnt another review. They are now out of reviews. They have used up both their reviews. This will be an interesting ploy going forward.
0: मलाबा ओवर के अगली गेंद बैक फुट पर जाकर ड्राइव किया, मिड ऑन की दिशा में खिलाड़ी डीप में लॉन्ग ऑन में तैनात हैं। तब तक एक रन मिलेगा। दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला है। रन बनाने की रफ्तार 6.12 रन प्रति ओवर पर पहुंचती थी। 51 रन 3 विकेट के नुकसान पर, तो 50 रन भी बमुश्किल तमाम आए हैं। और नैट्सवरब्रंट, हालांकि मलाबा को देखने से तो ऐसा लगा कि जैसे वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थी नहीं, लेकिन जैसा बर्पन बार बार इशारा कर रहे थे कि एक जो टेंडेंसी है खासतौर पर लॉरा वुलवर्ट की, इस बार फिर से रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश हेदर नाइट की, और शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में फील्डर तैनात थी। गेंद को उन्होंने फील्ड किया। फील्डिंग आउटफील्ड में बहुत ही सराहनीय प्रशंसनीय रही है दक्षिण अफ्रीका की अभी तक जो मुकाबला खेला गया है, और उसमें कहीं पर कोई ब्लेमिश नजर आया नहीं है। और ये दोनों ही जो बैटर हैं, नैट्सवरब्रंट या फिर हेदर नाइट, वो हेजिटेट नहीं करती अनकन्वेंशनल गैर परंपरागत स्ट्रोक्स खेलने में। जो जेन्युइन ऑथेंटिक क्रिकेटिंग शॉट्स हैं, इस बार स्क्वायर लेग एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद को खेला गया था। डीप में प्रोटेक्शन था, एक रन लिया गया दोनों बैटर्स के द्वारा। पहली गेंद डॉट डिलीवरी, उसके बाद की तीन गेंदों पर, पहली गेंद वो थी जहां पर रिव्यू लिया गया था साउथ अफ्रीका की ओर से, और वो रिव्यू बेकार गया, यानी उनके दोनों ही रिव्यू बेकार हो चुके हैं। और मलाबा की अगली तीन गेंदों पर एक एक रन देने में कामयाबी मिली है। तो इनिंग्स को कंसोलिडेट करने की कोशिश हो रही है नैट्सवरब्रंट और हेदर नाइट के द्वारा। चार खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। इस बार हाफ वॉली पर लेकर फाइन लेग की दिशा में खेला गया है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है 4 रनों के लिए।
2: ये लगा आभासी चौका।
0: बढ़िया चौका लंबे अंतराल के बाद आता हुआ इंग्लैंड के खाते में, हेदर नाइट के खाते में जाएगा ये, और अपनी टीम के लिए उन्होंने 4 आकर्षक रन जोड़े हैं। हालांकि डीप में फील्डर तैनात थे, ऑन साइड में इनफैक्ट 3 खिलाड़ी हैं जो कि बाउंड्री लाइन पर तैनात हैं। इस बार मलाबा की अच्छी वापसी, मिडिल और लेग स्टंप पर गेंद जरूर थी, धीमे से पुश किया और इसको भांपते हुए कि खिलाड़ी डीप में थे, एक रन लेने में कामयाबी। 9 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 9 ओवर के बाद इंग्लैंड ने बनाए 58 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
3: लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक कर।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
5: ली। जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
5: यानी आयुष्मान।

0: Heather Knight to use her wrists to turn the ball towards deep backward square leg, where Marizan Kopp did the fielding. A single was comfortably taken. 59 for 3 England after 9.1 overs. They will be looking to attack. The second important thing to note is that Kopp is now done. Ismail is now out of the attack, and therefore now you are looking at the second string of bowlers. And there we go. There comes the attacking shot from Nat Sivabrant, and it gets her a boundary.
1: ये लगा आभासा चौका.
0: Nat Sivabrant's third boundary, and probably the most convincing of them all, a tad shorter than the previous one, and that was all that Sivabrant required. She picked it from in front of the off and middle, didn't quite go onto the back foot. She stood on the front foot and swished her bat across the line with vehemence. The ball went scampering away and bisected the gap between deep backward square leg and deep midwicket. Let's see what Nadine de Klerk's response is going to be. She responds by trying to dart the ball into the block hole. However, Nat Sivabrant has been able to dig it out and play it towards deep midwicket. And before the fielder over there can converge, pick the ball up, throw it back to the 22-yard playing strip, two runs have been taken. Yes, the oval has big pockets, but watch out for Nat Sivabrant's running. This is what she thrives on. She loves to hair between the wickets, and that is exactly what she exhibited on that occasion. Now, backs away to the leg side. This is delivered on a good length at the middle stump, and Nat Sivabrant brings out the short arm pull to play towards deep midwicket, where once again Anuri Dirksen does the fielding. A single has been added. That takes England's score to 66 after 9.4 overs at the loss of 3 wickets. Suddenly, can you sense that urgency that Nat Sivabrant and Heather Knight are showing in their running between the wickets? This is exactly what I was talking about. They are now looking to up the ante against the second string of bowling. Next delivery on a drivable length outside the off stump, and Heather Knight lunges towards it and then plays a deft drive, a measured drive towards deep cover. A comfortable single this time has been taken, taking the score to 67 after 9.5. So in the next 4-5 overs, we are going to see a lot of it, and therefore South Africa have to be on their toes. Next delivery on a full length at the middle pole has been whipped away towards the right of long on, and Shabnam Ismail moves quickly to keep them down to a single. 10 overs are done. 68 for 3.
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: 2026 का T20 विश्व कप इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया जा रहा है, और टूर्नामेंट अपने बिजनेस एंड में पहुंच चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा करके फाइनल में जगह बना ली है, और आज दूसरा सेमीफाइनल ओवल के मैदान पर खेला जा रहा है, जहां पर दक्षिण अफ्रीका का सामना इंग्लैंड से हो रहा है। इंग्लैंड मेजबान टीम है, और मैच के शुरू होने के पहले कहा जा रहा था कि उनका कागज पर पलड़ा भारी है। इसी बीच गेंदबाजी में एक और परिवर्तन हो रहा है। क्रिस ट्रायन का आगमन हो रहा है, जिन्होंने की अच्छी गेंदबाजी अपनी टीम की ओर से की है। एक ऑलराउंडर की भूमिका में आती हैं, बाएं हाथ से स्पिन गेंदबाजी का दायित्व संभालती हैं। और इंग्लैंड की शुरुआत आज साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता, लॉरा बोलबर्ग ने, और उन्होंने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। दोनों टीमों में एक एक बदलाव था। सुनील लोहिया साउथ अफ्रीका की टीम में आई, नैट सिवरब्रांट इंग्लैंड की टीम में आई। इस बार खराब डिलीवरी, शॉर्ट डिलीवरी थी, स्टेप आउट किया ऑन साइड पर, फाइन लेग बाउंड्री के बाहर डिस्पैच कर दिया है नैट सिवरब्रांट ने गेंद को 4 रनों के लिए।
1: ये लगा आभासा चौका।
3: यकायक परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, और जैसा दर्पण इशारा कर रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि दोनों बैटर्स की आंखें जम चुकी हैं, और एक जो गेंदबाजी अटैक था उसमें पूरी गेंदबाजी में जो धार होनी चाहिए, अगली गेंद एक बार फिर से उसे फाइनल बाउंड्री की ओर 4 रनों के लिए डिस्पैच कर दिया गया है।
1: ये लगा आभासा चौका।
3: कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, परिस्थितियां किस तरीके से बदलती हैं इसका नमूना पेश करते हुए नैट सिवरब्रांट और हेदर नाइट, पर्टिकुलरली नैट सिवरब्रांट, लेग स्टंप की दिशा में शॉट डिलीवरी, लगातार दो गेंदों पर बैक टू बैक बाउंड्रीज, पिछले ओवर में 10 रन बनाए गए, और पलक झपकते ही इन दोनों बैटर्स ने 50 रन की साझेदारी पूरी कर ली है। एक बार फिर से गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला गया है ड्राइव करने के अंदाज में, हालांकि वहां पर शबनम इस्माइल मौजूद थी। गेंद को उन्होंने फील्ड किया, एक रन का इजाफा, पहली गेंद डॉट डिलीवरी।

0: दूसरी गेंद पर चौका, तीसरी गेंद पर चौका, चौथी गेंद पर सिंगल, 45 गेंदों में 54 रन इन दोनों खिलाड़ियों द्वारा जोड़े गए हैं, जिनमें नैट सिल्वरमैन का योगदान है 31 रन का और हेदर नाइट का योगदान है 21 रनों का। 77 3 विकेट के नुकसान पर इस बार फुल लैंड डिलीवरी थी। अब अंतिम छोड़ों में अपने स्ट्रोक को चेक किया, धीमे से पुश किया और स्ट्रोक खेलते ही दौड़ पड़ी थी नैट सिल्वरमैन और हेदर नाइट और नैट सिल्वरमैन के बीच में एक जो अंडरस्टैंडिंग देखने को मिल रही है, एक जो साझेदारी जिस तरीके से पुष्पित पल्लवित हो रही है, वो साउथ अफ्रीका के लिए एक डेंजरस सिग्नल हो सकता है। मिडिल और लेग स्टंप पर ऑन साइड में मोड़ा, मिड विकेट की दिशा में, खिलाड़ी डीप में बाउंड्री लाइन के आसपास तैनात है, बड़ी आसानी के साथ रन मिलेगा। 11 ओवर के बाद 79 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
1: तुम रिपोर्ट लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाई हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
1: ली। जानिए आभा के बारे में।
2: आभा
1: यानी आयुष्मान भारत है।

0: this match. Let us tell you, folks, that the average first inning score in the six women's T20Is played at the Oval is 152. However, in the England-New Zealand match that was played here last week, we saw New Zealand scored 164 and England chased it down with 16 balls to spare. So it's a good track for batting. Malaba delivers this one on the pads. It has been flicked away towards square leg, and before the fielders in the deep can converge and throw the ball back, once again the two batters have haired back and forth and converted this into a couple. Once again, fabulous, enthralling running between the wickets. Watch out for it. Malaba gets ready to deliver what will be the second ball of the 13th over, delivers this one on the shorter side of good length, outside the off stump, has been chopped towards extra cover where Laura Wolfart does the fielding. No runs to be had of that ball. However, what South Africa need is a wicket.
1: 3 wicket ke nuksan par Malaba ki gain, step out kiya, half volley balle kar inside out ke andaaz mein khela hai. Halanki fielder deep mein tairat thi, lekin gain ko rok nahi paayi hai. Gain boundary line ke bahar ja chuki hai 4 runon ke liye.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: हेदर नाइट एंड नैट सिल्वरब्रांड, दे आर ऑन फायर. उनके उन्होंने प्रण कर रखा है कि आज कुछ खास करके दिखाना है. और साथ ही एक और खास बात देखने को मिल रही है कि इंग्लैंड की बल्लेबाजी में जो डेप्थ है उसका आज नमूना पेश किया जा रहा है मिडल ऑर्डर में इन दोनों बैटर्स के द्वारा.
0: The last boundary that was hit by Heather Knight before the ball hit the boundary cushions, or so we felt, Nadine de Klerk ran across from long off, put in a big dive towards her right and tried to flick it away from the boundary cushions. We felt that the ball had already hit the boundary cushions, and now comes the confirmation from umpire Eloise Sheridan, albeit it comes after the delay because a boundary check was happening. It has been signaled a 4, 97 for 3 after 12.3 overs. Next delivery, Malaba this time delivers it with a slightly flatter trajectory so that the batter cannot step out on a good length around the off stump. And once again, brilliant use of wrist from Heather Knight, who tucks it away into the gap between long on and deep mid wicket. And once again, these two running like two cheetahs between the wicket convert it into a couple. 99 for 3 after 12.4 overs. The running between the wickets has been exhilarating.
1: 28 गेंदों में 35 रन पर पहुंच गई है हेदर नाइट. और बड़ा संयोग वाली बात यह है कि काफी देर से नेचुरल ब्रंट को बहुत ज्यादा स्ट्राइक नहीं मिल रही है. उन्होंने 31 गेंदें खेली हैं, 41 रन पर पहुंची है और 29 गेंदों में 35 पर पहुंच गई हैं हेदर नाइट. और चौथे विकेट के लिए 58 गेंदों में 76 रन इन दोनों बैटर्स द्वारा जोड़े जा चुके हैं. क्या बेहतरीन साझेदारी हुई है. 99 रन इस बार शर्णबैन गेंद थी, स्टेप आउट किया, ऑन साइड में खेला और मिड विकेट की दिशा में जब तक गेंद को फील्ड किया जाए आसानी के साथ एक रन. इसके साथ ही 13 ओवर के बाद 100 रन पूरे होते हुए इंग्लैंड के 13 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है 100 रन 3 विकेट के नुकसान पर.
3: तुम रिपोर्ट लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
3: तुम हो ही भुलक्कड़.
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
5: ली. जानिए आभा के बारे में.
6: आभा
5: यानी आयुष्मान.

0: Bahasa Coba. De Klerk was probably searching for a Yorker, ended up drifting on the pads, failed to land this one, and Natsiva Brunt, who is now watching the ball like a football, was quickly onto it and flicked it away towards the deep backward square leg boundary to pick up four. Next delivery, again a very full length delivery. This time Nadine De Klerk pretty much lands it where she wanted it to, outside the off stump, and Natsiva Brunt squeezes it towards the backward point fielder. Anari Dirksen will ensure that the ball doesn't pass her. A dot ball for our scorer Sunil Dighe to mark.
1: Production ने इस गेंद को रोका जरूर, लेकिन ऐसा लगा कि हाथ झटकती हुई नजर आई. शायद इस बार स्कूप करने की कोशिश, और कोशिश कामयाब होती हुई. विकेट कीपर के सिर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है 4 रनों के लिए.
0: ये लगा आभासा चौका.
1: नैट्सिवा ब्रंट की जितनी तारीफ की जाए कम है. बड़े संकट की घड़ी में वो आई थी जब इंग्लैंड की हालत खराब थी और 3 विकेट गिर चुके थे. इनफैक्ट 6 ओवर के बाद 35 रन बने थे 3 विकेट के नुकसान पर. अब पिछली 3 गेंदों में उन्होंने 2 चौके लगा दिए हैं और 49 पर पहुंच गई हैं, और इसके साथ ही अगली गेंद को इन्होंने मिड विकेट की दिशा में खेला है. 2 फील्डर्स को बाइसेक्ट करते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है 4 रनों के लिए.
0: ये लगा आभासा चौका.
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 144 16 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है, और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
0: Natsiva Brunt with that boundary has completed a half century. 53 and 35 balls, out of which 9 boundaries were scored, all in enthralling fashion, all in riveting fashion. It's been a captain's knock, as Shivendra was just talking. She came out to bat when England were in a deep, deep spot of bother. However, she exhibited maturity, responsibility at the start, provided sturdiness to the innings, but once she got her eye in, she started exhibiting what she's known for, those innovative shots behind the square, that quick, lightning quick running between the wickets, and it has been a joy to watch and call this innings live. England 113 for 3 at the end of the 14th over. Drinks are currently on the field, and I believe, Shivendra, South Africa will be scratching their heads because they need to find a way to get this partnership broken.
1: ऐसा लग रहा है कि साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी है पूरी तरीके से डिरेल हो चुकी है, और अगर थोड़ा सा अगर वैगन व्हील हमारे पास सामने आएगा तो उससे लगता है, ऐसा दर्पण पता चलेगा कि मिडिल और लेग स्टंप की दिशा में ही गेंदों को, गेंदबाजी को केंद्रित किया गया है. और नैट्सिवा ब्रंट ने खासतौर पर उसका बेहतरीन भरपूर मजा लिया है. उन्होंने स्कूप शॉट्स खेले हैं, उन्होंने मिड विकेट की दिशा में स्ट्रोक्स खेले हैं. जब जब शॉट डिलीवरीज आई हैं तब उन्होंने पुल करने के अंदाज में स्ट्रोक्स खेले हैं. 19वां अर्धशतक है. T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बल्लेबाजी करना बहुत पसंद करती हैं. 4था अर्धशतक है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और T20 वर्ल्ड कप में उनका 8वां अर्धशतक है. ये आंकड़े जतिन सूद ने हम तक पहुंचाए हैं हमारे स्टैटिस्टिशियन के द्वारा, और ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि नैट्सिवा ब्रंट, आज सोफिया डंकले की जगह पर उनको टीम में शामिल किया गया था. हालांकि सोफिया डंकले का जो प्रदर्शन था पिछले मुकाबले में वो कहीं से भी खराब नहीं था, लेकिन सच्चाई ये है कि आज जब टीम में वापसी हुई है नैट्सिवा ब्रंट की, तो उन्होंने साबित कर दिया है कि क्यों उनको लंबी रेस का घोड़ा कहा जाता है, और उन्होंने बड़ी सेवा की है. उनके साथ साथ हैदर नाइक, जो कि समय क्रीज पर मौजूद हैं, 4थे विकेट के लिए इन दोनों खिलाड़ियों ने एक अविस्मरणीय साझेदारी निभाई है. और साउथ अफ्रीका का जो गेंदबाजी आक्रमण, जिसमें मैरिजन कैप आई, शबनम स्माइल आई, इनफैक्ट अयाबोंगा खाका भी उस टिकड़ी की बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं. मलाबा इसी बीच नया ओवर लेकर के आई हैं, और लगातार मिडिल और लेग स्टंप की दिशा में ही गेंदबाजी की जा रही है. ये अलग बात है कि इस बार स्ट्रोक अच्छे से खेल नहीं पाई हैदर नाइट, लेकिन 113 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका है. 15वां ओवर प्रगति पर है.
0: दैट डिलीवरी stayed low from where I saw it, Shivendra. It was drifting on the pads and Heather Knight went for a cross-batted swipe, but it stayed low and struck her pad. Next

0: delivery. This one generates a bit of extra bounce. This time Heather Knight was looking to go for the reverse swish or the reverse sweep, but the ball passed over the bat. The previous one went under the bat. This one goes over the bat, hits her body. There's an appeal for LBW, but shakes her head, does umpire Aloysius Sheridan. Next delivery, steps out Heather Knight, takes this one, converts this one into a full ball, and then whips it towards long on to pick up a comfortable single. So that tells me, Shivendra, that there is some uneven bounce on this wicket.
1: है जरूर, लेकिन जिस तरीके से उस बाउंस को या गेंदबाजी की विविधता आक्रमण को नेगोशिएट किया है नैट सिल्वर ब्रांट और हेदर नाइट ने, वो सराहना के काबिल है। अगली गेंद पर एक और सिंगल ले लिया गया, चूंकि खिलाड़ी द्वीप में तैनात हैं और क्लोजिंग फील्डिंग का लगभग कोई ज़्यादा खिलाड़ी देखने को मिल नहीं रहे। गेंदबाजी आक्रमण भी छितरता बिखरता सा नजर आ रहा है। मलाबा गेंदबाजी कर रही है, एक बार फिर से लेग स्टंप की दिशा में, हाफ वॉली पर लेकर मिड विकेट की दिशा में खेला गया है। डीप में खिलाड़ी मौजूद हैं, एक रन का और इजाफा, पहली दो गेंदें डॉट डिलीवरी और उसके बाद तीन गेंदों पर सिंगल। पारी का 15वां ओवर, 116 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर में 35 रन, 3 विकेट के नुकसान पर, और इसके बाद के ओवर्स में 78 रन बिना किसी नुकसान के बनाए गए हैं इंग्लैंड के बैटर्स के द्वारा। ओवर की समाप्ति 116, 3 विकेट के नुकसान पर।
2: तुम रिपोर्ट लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाई हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
4: ली। जानिए आभा के बारे में।
5: आभा
4: यानी आयुष्मान।

0: wicket and to the straight boundary to give her 4 runs. Next delivery, it's a slow one. However, Knight has picked it up. There's a fielder in the team who dives forward but is unable to catch it. It is Nadine D. Clark who has made a valiant effort but dropped the catch and buries her face into her palm. The Shabnam Ismail. This was a good length delivery, but once again an off-base ball in line with the stumps went towards her left, did Heather Knight, to allow the bat to come through, then swung her bat hard, and the replay on my monitor tells me that I jumped the gun. Nadine D. Clark did dive forward, but she ended up collecting the ball on a half volley. She did not exactly reach the ball, so it's a valiant effort and not a drop catch. Anyhow, the last ball of the over, Nat Sivabrant now on strike. Good length delivery, angling in towards the off stump. Sivabrant backs away and chops it towards cover. End of the 16th, 123 for 3.
1: 23 रन पर 3 इंग्लैंड का स्कोर था और अब 100 रनों की साझेदारी हो चुकी है नैट सिवब्रंट और उनके साथी हैदर नाइक के बीच में. और जतिन सूद बता रहे हैं कि चौथे विकेट के लिए इस विश्व कप में ये सबसे बड़ी साझेदारी है. 101 रन न्यूजीलैंड बनाम स्कॉटलैंड के बीच में 101 रन बनाए गए थे इनफैक्ट शार्प और हैलिडे के बीच में, और अभी फिलहाल 100 रन बने हैं. तो जाहिर सी बात है जिस अंदाज में बल्लेबाजी हो रही है ये जो आंकड़ा है ये भी पीछे छूटने वाला है. 16 ओवर के बाद 123 रन है, 3 विकेट के नुकसान पर 7.69 रन प्रति ओवर के औसत से रन बनाए जा रहे हैं. मिडिल और लेग स्टंप की दिशा में एक बार फिर से आया बुंगा काका आई है. नए ओवर की उन्होंने शुरुआत की है, लगभग 89-90 किलोमीटर की स्पीड से गेंदबाजी करती है और कोई मुश्किल नहीं इसे नेगोशिएट करने में. ऑन साइड में खेला, हालांकि गेंद बाउंस करती हुई हवा में थी लेकिन फील्डर के पास नहीं, नो मैन्स लैंड में गिनती हुई. बड़ी आसानी के साथ रन दिए गए और नैट सिवब्रंट ने जिस अंदाज में चौके लगाए हैं, खासतौर पर उन्होंने ऑन साइड में मिडिल और लेग स्टंप पर जब उनको गेंद फेंकी गई है, पुल शॉट बहुत ही बेहतरीन खेलती है लेकिन इस बार डीप में बहुत अच्छी फील्डिंग. 2 रन तो खैर मिल ही जाएंगे और जहां सिंगल आ रहे थे 1 रन को 2 रन में बदला है, 2 को 3 में बदला है, खराब गेंदों को चौकों में बदला है. और इंटरेस्टिंग बात एक और है, दर्पण की पूरी पारी में एक भी ओवर बाउंड्री है, एक भी छक्का नहीं आया है. ये भी जाहिर करता है कि बल्ले को बड़ी सावधानी से गेंद के साथ कनेक्ट किया गया है. और ओवर बाउंड्रीज कई बार ऐसा भी होता है कि मिसक्यूज शॉट की बदौलत भी आ जाती है, वैसा कुछ देखने को नहीं मिला. पारी का 17वां ओवर चल रहा है और रन बनाने की रफ्तार 7.70 रन प्रति ओवर. ओवल के मैदान पर यह मुकाबला इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमों के बीच खेला जा रहा है. दूसरा सेमीफाइनल है महिला टी20 विश्व कप का, जहां दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया. आया बुमराह काका की गेंद लो फुल टॉस पार और ऐसा लगता है कि हैदर नाइट ने हमारी बात सुन ली थी. लो फुल टॉस पर उन्होंने गेंद को बाउंड्री के बाहर डिस्पैच कर दिया है. 6 रनों के लिए पहला छक्का
2: ये लगा आभाकर छक्का.
1: जी हां, पारी में लगने वाला पहला छक्का 42 गेंदों में 52 रन पर पहुंच गई है. हैदर नाइट 123 से ऊपर का उनका स्ट्राइक रेट.
0: अ 10th T20I 50. She also has 100 to her name and the first against South Africa in this long illustrious career of hers. And now unfurls a delectable inside out drive which fetches her another 4.
2: ये लगा आभा का चौका.
0: This was a slower delivery, perhaps the attempted leg cutter from Ayobonga Khaka outside the off stump, however on a drivable length. That and Heather Knight pressed backwards so that she could get underneath the ball and then whilst flaunting that high elbow of hers unfurled that delectable inside out drive towards the extra cover region. She moves to 56, England 137 for 3, looking at a score perhaps in the excess of 175 from here on in. Another slower delivery, this time it has been driven along the carpet in the same direction in the deep extra cover region. It will be fielded by Nadine D. Clark who runs towards her left to cut it off. 138 for 3 at the end of 17.
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
3: तुम हो ही भुलक्कड़.
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
5: ली. जानिए आभा के बारे में.
4: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत.

0: समाचार साथ साथ।
1: इंग्लैंड की टीम एक समय संघर्ष करती हुई नजर आ रही थी सेमीफाइनल में, 23 रन थे 3 विकेट के नुकसान पर, और जो शुरुआती तीन बैटर्स थी डैनी वियर्ड फॉज, एमी जोन्स और एलिस कैप्सी आउट होकर पवेलियन वापस लौट चुकी थी, लेकिन उसके बाद नैटसिवर ब्रंट और हेदर नाइट का आगमन हुआ क्रीज पर। 138 रन 3 विकेट के नुकसान पर फिलहाल स्कोर है। एनिंदी क्लार्क नए ओवर को लेकर के आई है, स्लोअर डिलीवरी थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, उसका ड्राइव किया लॉन्ग मिड ऑफ की दिशा में, एक रन के लिए दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदल लिया। पारी का ये कुल मिलाकर के 18वां ओवर है और एनिंदी क्लार्क अपना तीसरा ओवर लेकर के आई है। तो शबनम इस्माइल ने अपना गेंदबाजी का कोटा पूरा कर लिया है, मैरिजन कैप ने गेंदबाजी का कोटा पूरा कर लिया है, अयाबोंगा खाका, दरअसल ये जो टिकरी है जिसने इस मैच से पहले 25 विकेट हासिल किए थे, आज अयाबोंगा खाका बहुत ही निष्प्रभावी रही। इसी बीच अगली गेंद को मिड विकेट की दिशा में डिस्पैच कर दिया है सिबर ब्रंट ने 4 रनों के लिए।
2: ये लगा आभासी चौका।
1: तो चौकों की बरसात हो रही है ओवल के मैदान पर, खराब ओवरऑल गेंदबाजी का नमूना पेश किया जा रहा है, ओवर पिच डिलीवरी, एक कदम आगे बढ़ाकर हाफ वॉली पर लेकर मिड विकेट की दिशा में गेंद को डिस्पैच किया गया 4 रनों के लिए 143 तीन विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से स्टेप आउट करके हाफ वॉली पर लेकर गेंद को ओवर बाउंड्री के रूप में कन्वर्ट किया है, 6 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है।
2: ये लगा आभासी छक्का।
1: दोनों बैटर्स के बीच में कॉम्पिटिशन चल रहा है, 18 चौके और 2 छक्के लगाए जा चुके हैं नैटसिवर ब्रंट और हेदर नाइट, तू डाल डाल मैं पात पात वाली कहानी दोहराते हुए, और दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन है कि कौन स्कोरिंग के मामले में दर्पण एक दूसरे से आगे निकलेगा।
3: That six was huge, 85 meters. Far the ball went. Oh, Natsima Brunt has not only shifted into the top gear, might as well add that she has now turned on the nitro boosters. 149 for 3 England in 17.3 overs. Looks like she smacked the ball so hard that it has gone out of shape. The two umpires have converged and they are having a close look at the ball. Natsima Brunt, this is why they were so desperate to play her. Remember, she missed the ODIs against New Zealand played earlier. She missed the T20Is played against New Zealand earlier. And then she featured in the practice matches, featured in the first couple of games they played in this tournament. However, after that, she had to sit out due to an injury. Yet, in this big match, on the big stage, they brought her in because they know the value that she brings to this 11. The fans who have been following WPL also know how important a cog in the wheel she has been for the Mumbai Indians, who she represents in the WPL. She is an excellent, excellent player, one of the most consistent performers over the years. Meanwhile, reserve umpire Candice Labode is out there in the middle with a box of spare balls. We are going to have a change in ball, and South Africa will hope, their fans will hope, that the change in ball brings about a change in fortunes for them, because currently it's all going England's way. We still have 15 legal balls to go, and in those 15 legal balls they want to limit the damage as much as possible.
1: पिछले 5 ओवर में 56 रन बनाए गए हैं इंग्लैंड की बैटर्स के द्वारा, रन बनाने की रफ्तार रही है 11.20 रन प्रति ओवर। नदीन दिग्लाक की गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी थी, ऑन साइड में खेला है उसे और गेंद 4 रनों के लिए मिड विकेट बाउंड्री के बाहर जा चुकी है।
2: ये लगा आभासी चौका।
1: 153 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस चौके के साथ ही 150 रन पूरे होते हुए इंग्लैंड के, तो कहां तो टीम स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही थी और कहां ऐसा लग रहा है कि दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी की जो धार है वो तार तार हो चुकी है, पूरी तरीके से कुंद हो चुकी है। डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में लंबा फासला था, इस बार यॉर्क करने की कोशिश, अच्छी वापसी नदीन दिक्लाक की, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को खेला है, 1 रन मिलेगा 154 3 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में 2 चौके 1 छक्का और 2 कपल, यानी कुल मिलाकर के 16 रन बनाए जा चुके हैं दोनों बैटर्स के द्वारा। रन बनाने की रफ्तार लगभग 9 रन के आसपास पहुंचती हुई, 8.64 रन प्रति ओवर टू बी प्रसाइज, 17.5 ओवर के बाद 154 3 विकेट के नुकसान पर। नैटसिवर ब्रंट 45 रनों में 73 रन पर पहुंच चुकी हैं। हेदर नाइट के बल्ले से निकलता हुआ यह स्ट्रोक डिफेंसिव स्ट्रोक था, रन बनने की संभावना नहीं, 46 गेंदों में 58 रन उनके नाम पर।

0: 18 ओवर के बाद इंग्लैंड 156 3 विकेट के नुकसान पर।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेली मानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: 12 balls to go, 156 for 3, England, beg your pardon, 154 for 3, how many more can they get? This partnership, which is now worth 131 runs, is the highest ever in a knockout fixture in the T20 World Cup, as far as the women's are concerned. The next delivery, it's going to be bowled by Malaba, the left-arm spinner, who will be bowling her final over of the evening. Delivers this one on the shorter side of good length, angles it towards the body. Natsiva Bruns hangs back and then lofts it, chips it towards deep backward square leg to pick up a couple of runs. Next delivery, she goes for the big slog sweep, hasn't quite got it in the middle of the bat, and it will be caught at deep mid-wicket. Finally, this partnership has come to an end. Natsiva Brunt is out for 75, which happens to be the second highest score by a captain in the history of the ICC Women's T20 World Cup. Only person ahead of her is Amy Watkins of New Zealand, who scored 89 not out. Natsiva Brunt is out for a score of 75, and she will get a standing ovation, not just from the England dugout, but also from all the spectators that are present at the Oval. 75 of 47, which included 11 attractive fours and one huge 85-meter six. England are 156 for four.
0: नैट सिवर ब्रंट ने अपना काम कर दिया है और उन्होंने इंग्लैंड को उस स्थिति में पहुंचा दिया है जहां से वो इस मुकाबले में जीत की सुगंध को महसूस कर सकते हैं, ये कहा जा सकता है। हालांकि क्रिकेट गौरवमयी अनिश्चितताओं का खेल है और कुछ भी कहना इस समय जल्दबाजी होगी। प्रिया कैम्प का आगमन हुआ है, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, लेग स्टंप की दिशा में चली गई थी, हालांकि ये विकेट कीपर भी उसको रोक नहीं पाई, गैदर नहीं कर पाई, लेकिन अच्छी बात है कि बैकअप था, शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में एक रन का इजाफा।
2: Yes, that has been signalled as byes by the on-field umpire. That takes England's score to 157. Heather Knight once again back on strike. Malaba at the top of her mark, running into ball, what will be the fourth ball of the over. Steps out as Heather Knight and completely miscues it. An easy catch for Laura Wolfart at extra cover. And both set batters have now been dismissed. This was a clever piece of bowling from Malaba. Just 70.4 kilometers per hour is the reading on the speed gun, which tells us that she slowed it up, hung it up, allowed the batter to come forward, but eventually Heather Knight got deceived in the flight. She was probably looking to hit it more towards long off, but ended up slicing it, and an easy catch for the South African skipper. Yes, Heather Knight has done her job with this excellent, responsible, mature 58 of 47. However, the fact that England have lost both the set batters with still about 8 deliveries to go means it could be a difference of nearly 10 runs, if not more, in their final score. And that sometimes can be the difference in the end. Danny Gibson is the new batter.
0: ये जो दो बैटर अब दर्पण आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, दो बेहतरीन बैटर्स के पवेलियन लौटने के बाद फ्रेया कैंप ऑलराउंडर हैं, 173 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है, और डैनी गिब्सन 163 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है। तो ये दोनों बहुत ही सक्षम क्रिकेटर हैं, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, जहां शायद सिर्फ सिंगल होना चाहिए था उसे कपल में कन्वर्ट किया दोनों बैटर्स ने, फ्रेया कैंप और डैनी गिब्सन। तो ये भी एक संयोग है, क्रिकेट के मैदान पर बहुत बार देखने को ऐसा मिलता है कि जब दो बैटर्स बड़ी साझेदारी होती है, उसके बाद जैसे गेंदबाजी एक पेयर में की जाती है, कई बार क्या होता है कि जो बल्लेबाजों का आगमन क्रीज की ओर होता है या पवेलियन की ओर होता है, वो भी एक साथ होता है। 19 ओवर फिलहाल समाप्त हो चुके हैं, 160 रन 5 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड।
2: Malaba finishes off with 2 for 25 in her 4 overs. Excellent bowling figures, courtesy that brilliant final over. Before that, her penultimate over also yielded 3. So it was an expensive start from her. But again, it is not about how you start, it is about how you end. South Africa did not start this tournament on the right

0: note. They started off with a drubbing against Australia, but can they finish on the right note? That is the question. England did not start this innings on the right note, but can they finish on the right note? A slow over penalty has been applied. South Africa have not bowled their overs in time, which means now they will have to have an extra fielder inside the 25-yard circle, which means they can only have three boundary riders, deep backward square leg, deep mid-wicket, and long on are currently those three fielders. Ayobonga Khaka, who has been expensive today, 35 runs off her three overs, is going to be bowling the final over. The keeper is up to the stumps. Danny Gibson, who's known for those big hits, is currently on strike. Delivers this one on a very full length, and does Ayobonga Khaka, ensuring that the batter cannot get underneath it and hence cannot get the elevation. She does swing the bat hard and the ball goes skipping away towards deep mid wicket, where Nadine de Klerk does the fielding and she ensures that there is no more than a single to be had. 161 for 5, 5 balls to go in the innings.
1: Ayobonga Khaka अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर के आई हैं। 36 रन उन्होंने खर्चे हैं, पहली सफलता की तलाश है। मलाबा का पिछला ओवर साउथ अफ्रीका के लिहाज से बड़ा सुनहरा ओवर कहा जा सकता है, जहां उन्होंने दो विकेट हासिल किए थे। फिलहाल फ्रेया कैंप और डैनी गिब्सन क्रीज पर हैं। कैंप ने अभी सिर्फ एक गेंद खेली है, रन बनाने का सिलसिला उनको शुरू करना है। और जैसा हमने जिक्र किया, दर्पण बता रहे थे कि जो स्लो ओवर पेनल्टी है उसके लिहाज से केवल तीन खिलाड़ी 25 गज का जो घेरा है, सर्किल है, उसके बाहर तैनात किए जा सकते हैं। अन्यथा आमतौर पर सामान्य स्थिति में आप चार खिलाड़ियों को सर्किल के बाहर तैनात कर सकते थे। 161 रन, 5 विकेट के नुकसान पर रन बनाने की रफ्तार 8.40 रन प्रति ओवर। अच्छी वापसी करते हुए Ayobonga Khaka ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद को केंद्रित रखा है। हल्का सा मूवमेंट भी स्लैश करना चाहती थी उसको, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क हुआ नहीं। और ऐसे समय पर कोई डॉट डिलीवरी जिसका मोल जो है वो सोने के भाव से तो कम हो नहीं सकता, और वो डॉट डिलीवरी डाली गई है Ayobonga Khaka के द्वारा 161, 5 विकेट के नुकसान पर 19.2 ओवर की बल्लेबाजी के बाद। और जब इनिंग्स ब्रेक होगा, स्टूडियो से आप हमारा कार्यक्रम सुनेंगे फ्री हिट 2020, जहां पर विशेषज्ञ मौजूद होंगे और आप उनसे उनका विवेचन सुन सकते हैं किस तरीके से इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की पारी आगे बढ़ी है गेंदबाजी में और बल्लेबाजी में। कैंप इस समय शून्य पर क्रीज पर है, स्ट्राइक पर है, सामने है गिब्सन। 3 दिनों में 4 रन बनाकर ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई वाइड की अपील करते हुए जैकलिन विलियम्स ने अपने दोनों हाथ हवा में समानांतर उठा दिए हैं, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि Ayobonga Khaka की ये गेंद उसे वाइड करार दिया गया है। और पिछली गेंद भी ऑफ स्टंप की काफी बाहर थी, इस बार उससे भी ज्यादा बाहर। एक जो बाउंड्री लाइन है जहां पर वाइड का निर्धारण होता है, ब्लू लाइन, उसके बाहर टिप्पा गेंद खाती हुई। तो अभी भी अतिरिक्त रनों की संख्या हो चुकी है 10। इंग्लैंड 162, 5 विकेट के नुकसान पर ऑफ स्टंप की दिशा में गेंद ऑन साइड में खेला है, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद पहुंची है, 1 रन से संतुष्ट होंगे दोनों बैटर्स। साउथ अफ्रीका के लिहाज से दर्पण अच्छी वापसी कही जा सकती है।
0: यू कैन सी व्हाट शी इज ट्राइंग टू डू। Khaka इज ट्राइंग टू टेक द बॉल अवे फ्रॉम फ्रेया कैंप्स आर्क। फ्रेया कैंप इज नोन फॉर दैट बैट स्विंग ऑफ हर्स। शी इज नोन टू अनफर्ल दोस गोल्फ स्विंग्स। शी माइट नॉट अपीयर एज द मोस्ट पावरफुल पर्सन, but this youngster can strike the ball big due to her bat swing. However, she was able to shuffle across and work that one towards the leg side on the previous occasion. Next delivery, Gibson this time shuffles to the leg side. However, very intelligently, Khaka delivers this one outside the off stump of the right hander, and therefore in the end, even with a stretch, Gibson cannot reach the ball. Yet another dot ball, intelligent bowling from Khaka. Next delivery, this time she delivers it in line with the leg stump. Gibson swings the bat hard, gets a top edge, the ball comes swirling down towards Chloe Tryon, who was running towards her left from short third, and looks like she hasn't quite been able to catch it. Also, in her peripheral vision was Malaba, who ran in from fine leg, and both of them converged. However, it looks like the ball has hit the hands of Chloe Tryon and then spilled. And Tryon also tells Malaba, it was my catch, you did not need to be as close. 2 runs meanwhile were taken. Next delivery, which is the final delivery of the innings, it is outside the off stump and looks like Danny Gibson has got an edge. No, she hasn't. Jacqueline Williams says that it is a bye. The ball trickles away to fetch England 4 more. It was a good length delivery in line with what would have been the tram line for the umpire to decide it.

0: have socks up.
1: Having lost 3 wickets for 23 runs, England staged a comeback with a stand of 133 of 90 for the fourth wicket between current and former captains Natsibo Brunt and Heather Knight, but subsequently South Africa striking back as England score 169 for 5. Hello and welcome to Free Hit 20. I am Megha and join me in studio as my co-host is Dharmendra.
2: Ji, aur hamare saath mehman hai hamare Khyati Gulani Puru cricketer Jishanul Yaqeen Puru cricketer और जी राजा रमन वरिष्ठ खेल पत्रकार। राजा, ये जो 169 रन बनाया है इंग्लैंड ने, क्या आपको लगता है कि थोड़ा कम रह गई इंग्लैंड की टीम, क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी उनकी चल रही थी उन पावर प्ले के ओवर्स के बाद ऐसा लग रहा था कि 180-185 तक स्कोर जा सकता है।
3: 180 तो बनता था, लेकिन दोनों विकेट जो सेट बल्लेबाज थे दोनों एक साथ आउट होना, एक ही ओवर में आउट होना, शायद वो थोड़ा सा भारी पड़ा है। लेकिन इंग्लैंड के पास रन काफी है, मुझे लग रहा था शुरुआत में, मुझे लग रहा था कि 150 का स्कोर डिफेंडेबल स्कोर होगा, 169 काफी है उनके पास। और इंग्लैंड के पास वो गेंदबाज है जो साउथ अफ्रीका को रोक सके।
1: क्या थे इंटरेस्टिंगली दैट स्टैंड ऑफ 130 बिटवीन करंट एंड फॉर्मर कैप्टन्स, बट ऑन आइदर साइड ऑफ इट नॉट मच कॉन्ट्रीब्यूशंस।
4: Yeah, definitely. The way they have started and like losing 3 wickets in just 23 runs is like something odd for this big game. But after that, the way this Catherine Brunt and Heather Knight have played and the way they have stood up, it's amazing. It's commendable.
2: और जिशान, क्या यहाँ पर रणनीतिक चूक हुई है थोड़ी सी साउथ अफ्रीका के कप्तान से, क्योंकि अगर पावर प्ले की बात करें तो उनके जो फ्रंट लाइन गेंदबाज थे दोनों के 3-3 ओवर समाप्त हो चुके थे और कैप का 4th ओवर 7th ओवर तक समाप्त हो चुका था। इसके बाद ही इंग्लैंड ने अपनी जो पारी है वो बिल्ड किए है, क्योंकि 3 विकेट तो उन्होंने पावर प्ले में ही गंवा दिए थे।
5: बिल्कुल, थोड़ी सी कमी तो रही है साउथ अफ्रीका की, खासकर जो फील्डिंग को भी मैं देख रहा था कि उनका जो फील्डिंग का सेट करने का जो भी जगह होती है वो नहीं किया उन्होंने। आई डोंट नो कैसे क्या स्ट्रैटेजी उनकी रही आपस में उन लोगों के, कैप्टन की क्या सोच थी, क्योंकि जहां तक मैं समझ रहा हूं कि उन्होंने ज़्यादातर रन जो बनाए हैं दोनों जो बैटर हैं दोनों ने जो ज़्यादातर रन बनाए हैं वो मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच के एरिया में और सूट करके इसी लेग साइड में ज़्यादा रन बनाए हैं उन्होंने। तो उनको कहीं ना कहीं वो एक सोच होनी चाहिए थी कि या तो ये है कि 3 विकेट उन्होंने ले लिए थे पावर प्ले में, तो उस वजह से थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हुआ उन्हें, या उस तरह की कोई चीज़ हुई जहाँ वो मेंटल लैक किया उन्होंने वहाँ पे अपने उन चीज़ों को स्ट्रैटेजी में। उनको वो जरूर से ध्यान रखना चाहिए था कि चाहे दोनों बैटर जो थे उनके जो बैट आ रहे थे, अगर आप वॉच करेंगे उनकी बैटिंग को तो जो भी बैट उनके आ रहे थे वो मिड विकेट के एरिया की तरफ ज़्यादा उनकी कोशिश थी मारने की। और उनका जो बीट है दोनों का है, एक लंबी है, उनका जो रेंज उनको मिल रहे थे वो भी बहुत आराम से उनको मिल जा रहे थे रेंज, तो वो हमेशा कोशिश कर रहे थे मिड विकेट की तरफ मार के रन बनाने के लिए। तो वो स्ट्रैटेजी उन्होंने नहीं समझा बैटर को, जब तक बाय द टाइम वो समझते समझते उन्होंने, या तो उनको ये करना चाहिए था कि बीच में ही स्पिनर को कोशिश करनी चाहिए थी एक बारी और एक ओवर और डाल करके, एक ओवर और उनको रोकना चाहिए था, 2 ओवर कराना चाहिए था, 2 ओवर बीच बीच में ऐसे करके कुछ स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए थी, तो मुझे लगता है कि वो इंग्लैंड टीम को 140-150 के आसपास रोक सकते थे जहाँ तक बॉलिंग साइड की बात है। लेकिन जहाँ तक बैटिंग साइड की बात है, ऑब्वियस है, मुझे लगता है कि जिस हिसाब से उन दोनों ने बैटिंग की है और साउथ अफ्रीका को उन्होंने उनकी जो बॉलिंग अटैक था उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया था उन लोगों ने। अब यहाँ पर यह था कि एक कोई बैटर को रहना चाहिए था, देखा था जब उन्होंने कि वो आउट हो गए हैं तो दूसरे लेग को रहना

0: कोशिश करनी चाहिए थी आखिरी बॉल तक, अगर वो रहते तो हो सकता है कि वो जो 10-15 रन का जो लैग किया है वो भी आता और 180 और 185 के आसपास स्कोर होने चाहिए थे, जो कमी है। लेकिन मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि ये क्रिकेट है, अगेंस्ट इंडिया साउथ अफ्रीका ने 170 प्लस कुछ रन किए थे, इंडिया को रोका था उन्होंने, तो मुझे लगता है कि उनको एक जो माइंड सेट है साउथ अफ्रीका बैटर्स का कि 170-180 रन बनाने का जो उनका अपना है, वो अगर थोड़ा सा वो करेंगे तो एक मैच बहुत अच्छा बेहतरीन मैच देखने को मिलेगा आखिर तक मेरे ख्याल से।
1: Now, in fact, extending Zeeshan's point, overwhelming number of runs were scored on the leg side, all variants of sweeps and then flicks being used, Raja.
2: I think they played some creative shots. You can't, I will not blame the captain too much because they were moving outside of the main plane. Playing the sweep or playing the reverse sweep. And you can't be setting fields for unorthodox shots, so it's tough. And I think what England did was played very smart. After they lost the 3 wickets, they stayed at the wicket and they played out the one big bowler that South Africa had. In fact, two of them, they played them out very carefully and went after the others. And I think South Africa bowlers did not have a plan, or maybe they had a plan and they were not able to execute it. The other bowlers, the new ball bowlers, did a fantastic job for South Africa, but they needed somebody to back that up. And England was just biding its time and knew that it can go after the other bowlers, and they did a fabulous job with that.
3: जी, और ख्याति अगर बात करें इंग्लैंड की इस पारी की, कप्तान मैक्स वर्बंड की वापसी है, जिस तरह से वो पिछले कुछ मैचों से बाहर थी, और उसके बाद ये पारी, क्या आपको लगता है कि मैच का सबसे निर्णायक पहलू साबित हो सकता है?
4: डेफिनेटली, काफ इंजरी के बाद वो वापस आई है और उन्होंने जिस तरीके की ये पारी खेली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लीग स्टेज में भी खेलना इस टाइप की इनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट नॉकआउट्स में जहां हर गेम इंपॉर्टेंट होती है, अगर वहां पर अगर आप अपनी नर्व्स को कंट्रोल करके अपनी जो भी इंजरी है पास्ट की उसको भूल के इस तरीके से अगर कॉन्ट्रीब्यूट करें, जहां पर आपके जो टॉप 3 बैटर्स लीग स्टेज में अच्छी प्रदर्शन देते हुए और यहां आके अगर जब वो फेल हो जाए, और आपकी ये पारी कितनी इंपॉर्टेंट होती है वो आज देखें।
1: That you're exhibiting what value experience holds in such games where nerves are involved at a very high intensity. Now turning our attention to the second innings, and we've talked about experience. Zeeshan Wolfart, बहुत टाइम से रन्स नहीं आए उनके बल्ले से, कंस्ट्रिंग की विश्व कप से पहले कितने शानदार धुआंधार फॉर्म में थी।
5: बिल्कुल, देखिए क्रिकेट है, मुझे लगता है कि एक बड़ा मैच है आज के दिन में, तो मुझे उम्मीद है कि वो वापस रन बनाने का उनका आज का दिन, हो सकता है कि आज का दिन उनका हो जाए। बहुत बार ही ऐसा देखने को मिला है कि कोई एक बैट्समैन या एक कोई बैटर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, लेकिन एक सर्टेन जगह पे जहां पे जरूरत टीम को होती है वहां पे वो परफॉर्म करके अपनी टीम को निकाल के लिए, तो आज उनका हो सकता है कि वो आज दिन वापस आए और साउथ अफ्रीका के लिए एक अच्छी पारी खेल करके साउथ अफ्रीका को लेकर के जाए। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि टीम उनकी अच्छी है, बैटर्स उनके पास भी अच्छे हैं साउथ अफ्रीका के पास में, और जहां तक मैं एनालाइज कर रहा हूं कि इंडियन बॉलर्स भी हमारे बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलर्स थे, उसके बावजूद उनके जो बैटर्स थे उन्होंने 170 प्लस रन किए थे इंडिया के अगेंस्ट में, तो मुझे बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लग रहा है कि उन्हें दिक्कत होगी करीब तक जाने में इस मैच में। इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि ये एक मैच जरूर से एक बेहतरीन मोड़ की तरफ, हाँ ये जरूर है कि शुरुआत के जो 6 ओवर हैं वो बहुत डिपेंड करेंगे साउथ अफ्रीका के जीत और हार के ऊपर।
3: राजा, 170 रन का लक्ष्य, पिच में आपको ऐसा कुछ अभी दिखा है जिससे परेशानी हो सकती है साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को?
2: बॉल्स कुछ खास नहीं है और मुझे लगता है कि फिरकी गेंदबाज इसका पूरा फायदा उठाएंगे, देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, हमारे कमेंटेटर्स हमें सुनाएंगे कि पिच में जो बाउंस, एक हाथ बॉल जो बाउंस हुआ था उसमें विकेट जरूर मिला था दक्षिण अफ्रीका को, लेकिन यू विल सी दैट इंग्लैंड के स्पिनर्स जो है वो हावी होंगे दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों पर।
1: खास करके एक्लिप्सन हमने देखा है कि विश्व कप में अपना ए गेम लेकर आती है, शानदार प्रदर्शन इस विश्व कप में भी अब तक उनका रहा है।
4: जी बिल्कुल, ये कॉन्टेस्ट अब सेकेंड इनिंग में

0: the batters of South Africa and the spinners of English team. Definitely it will be a very good contest, and Laura Woolworth and Brits and Marison Karp or Ellis Capsey, Eccleston or Sarah Glenn ke beech mein contest hoga. Bahut interesting hoga dekhna ki kaun is contest ko jeetta hai.
1: जिशन क्या रहेगा पहला लक्ष्य इस समय साउथ अफ्रीकन टीम की जब बल्लेबाजी आएगी वो क्या चाहेंगे? पार प्ले में कम विकेट गंवाएं, कम रन भले बने कोई बात नहीं.
2: देखिए आजकल के जमाने के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो ये है जरूर कि वो कोशिश करेंगे कि पावर प्ले में 6 ओवर में हम 50-55 रन बना लें और कुछ विकेट भी ना गिरे, वो कोशिश रहती है. उन लोगों की स्ट्रैटेजी ऐसी हो सकती है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है ये विकेट ऐसा है कि ये इसमें बहुत ज़्यादा बाउंस नहीं है. इस विकेट में स्लो विकेट है. इस स्लो विकेट के हिसाब से अगर वो मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, अपने आप को मेहनत करेंगे, अगर रन दौड़ के बनाने की वो जो कोशिश होती है एक सिंगल और डबल और उस तो वो अगर वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे उसके ऊपर में, तो मुझे लगता है कि वो इस जो टारगेट है इसको अचीव करने के लिए वो काबिल होंगे. लेकिन अगर वो जाएंगे बिग हिट करने के लिए, तो आपने फर्स्ट इनिंग में भी देखा है कि जो टॉप स्कोरर है इस वर्ल्ड कप की, जिन्होंने 100 भी किया है, उन्होंने रन नहीं कर पाए हैं. वो तो बेहतर होगा हमारे ख्याल से कि जो शुरू का 6 ओवर है बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि शुरू का 6 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस मैच में. खासकर जैसे जैसे ये मैच एंड की तरफ जाएगा, साउथ अफ्रीका के जो बैटर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर डेवलप होता चला जाएगा, तो बेहतर होगा कि वो विकेट कम गिराएं, आखिर तक जाने की कोशिश करें. अगर आखिर तक जाने की कोशिश करेंगे तो मुझे यकीन है कि एक बहुत बेहतरीन मैच देखने को मिलेगा.
3: South Africa chased down 158 against India and collected 2 crucial points in the group stage. Now, Dedson, we've seen her bat at number 3 in this World Cup, barring that game against India where she couldn't open her account. She's been chipping in with important runs.
1: This is a game where everybody has to contribute. It's not a small score, chasing 170 to win. Everyone has to contribute, and if the top orders, the top three can get those runs, well and good for South Africa. It's going to be a challenge, Megha. I think no matter what your form is, the pressure of the scoreboard, that is going to be weighing very heavily on the batters' minds. Normally you would want to get about 45 runs in the first 6 overs without losing wickets, but South Africa will push for to make the best use of the new ball and to make the best use of power play and to try and get a good score, try and get 50-55 runs on board, and in the process they will lose wickets, and that's the nature of the beast of T20. And I think we will get to see a very fascinating contest, with England being smart, England playing the strategic game better than South Africa at this point of time.
4: Kathy, इंग्लैंड की कप्तान ने तो अपना काम कर दिया है, अब बारी है साउथ अफ्रीका की कप्तान की. उनकी अच्छी बारियां अभी तक आई नहीं है, कितना अहम रोल होगा इस बड़े रन चेज में?
0: डेफिनेटली उनको थोड़ा सा पिचिंग करना होगा आज के मैच में, और बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज ही उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, बिकॉज अच्छा स्कोर, अच्छा टोटल है. अब देखिए किस तरीके से इसको कॉन्ट्रीब्यूट कर पाती है.
3: राजा देव सिंह, लॉरेन बेल, barring one game in the group stage, give South Africa, rather England, early wickets.
1: This is a big game, semi-final. They will have to play at their best and think of contributing to the team. If you can pick up a few early wickets, nothing like that for England. But they've got a good score to defend.
3: Absolutely. 170 is what South Africa would be out in the pursuit of. Thanks a lot to each one of you for your analysis. As we turn our attention to the second innings, now South Africa are eyeing 3rd successive finals. England looking to win the World Cup at home.
5: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास. ओवल का मैदान जहां पर फाइनल में पहुंचने की जद्दोजहद T20 महिला विश्व कप के मुकाबले में, जिसका आयोजन इस वर्ष इंग्लैंड और वेल्स में हो रहा है. दूसरा सेमीफाइनल है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमों के बीच, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है. लॉरा वॉलवर्ट साउथ अफ्रीका की टीम की कप्तान, और उनके साथ है तैजमिन ब्रिक्स दूसरे छोर पर. और इंग्लैंड के सामने, इंग्लैंड ने इनफैक्ट एक 69

0: बनाए तो साउथ अफ्रीका के सामने 170 रन का लक्ष्य रखा गया है इस मुकाबले को जीत करके फाइनल में पहुंचने के लिए। ओवर की दूसरी गेंद लिंसे स्मिथ आई है गेंदबाजी करने के लिए और उनकी गेंद को पंच किया गया था लॉन्ग ऑफ की दिशा में, एक रन के लिए छोर बदला है। लॉरा वॉलवर्ट ने स्कोरिंग की शुरुआत की है। तैजमिन ब्रिट्स अब स्ट्राइक पर होंगी। तैजमिन ब्रिट्स एक बहुत ही करिश्माई क्रिकेटर हैं, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, बल्कि बहुत ही करिश्माई स्पोर्ट्स पर्सन है ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, उनके बारे में जरूर हम जिक्र करेंगे। अच्छी गेंद इस बार मिडल और लेग स्टंप की लाइन में अंदर की ओर आती हुई, दाहिने हाथ के बैटर के लिए लो रहती हुई और बल्ला अंतिम क्षणों में अड़ाया था तैजमिन ब्रिट्स ने। हालांकि गेंद पहले ही टिप्पा खा चुकी थी, लेकिन एक तरीके से सवाल तो बहुत गंभीर पूछा गया था लिंसे स्मिथ के द्वारा तैजमिन ब्रिट्स से। एक रन बिना किसी नुकसान के 170 रन का लक्ष्य इस सेमीफाइनल में, जिसका विवरण आज तक पहुंच रहा है आकाशवाणी के माध्यम से। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं शिवेंद्र और मेरे साथ हैं मेरे साथी कमेंट्रेटर दर्पण टिकिया, हमारे स्कोरर सुनील दीघे और स्टैटिस्टिशियन जतिन सूद। और हम ये जो दक्षिण अफ्रीका की पारी है इसका संपूर्ण विवरण आप तक पहुंचाएंगे, किस तरीके से पारी आगे बढ़ती है। साउथ अफ्रीका इनफैक्ट आज टॉस जीते थे ओवल के मैदान पर और पहले उन्होंने फील्डिंग करने का फैसला किया था। शॉर्ट पिच डिलीवरी थी, बैकफुट पर जाकर के पुल करने के अंदाज में खेला है तैजमिन ब्रिट्स ने। एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा उनको। एक ओवर के बाद साउथ अफ्रीका की धीमी शुरुआत, दो रन बिना किसी नुकसान के।
1: तुम रिपोर्ट लाई हो?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक कर,
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी करनी।
1: जानिए आभा के बारे।

0: is on the ground, the sun is drooping towards the horizon, and therefore it is also falling into the eyes of the fielders who are stationed on the lakeside boundary. So that would be something very interesting to watch as well. Lauren Bell meanwhile delivers this one on a short length once again, and once again the radar is off. This one goes way down the lakeside, another wide to be added. Tasman Brits on 3, Laura Wolfart on 1, South Africa 6 without loss in 1.3 overs. Next delivery, this time in the slot, and Brits opens her arms, goes for a big shot, whacks it over mid on for 4.
1: ये लगा आभा का चौका.
0: शी इज अ पावरफुल पावरफुल बैटर इज तास्मीन ब्रिट्स. दैट बाइसेप ऑफ हर्स ऑन द राइट आर्म हैज द टैटू ऑफ द ओलंपिक्स लोगो. And Shivendra was about to tell you about her story. She was a javelin thrower. Am I right, Shivendra? That's what you were coming to.
2: Yeah, बिल्कुल जेवलिन थ्रोअर थी और अपने देश के लिए वो वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं. अनफॉर्चुनेटली बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से ओलंपिक्स की उनकी यात्रा अधूरी रह गई थी. लेकिन ओलंपिक्स में जो कुछ अधूरा रह गया था उसे क्रिकेट के मैदान पर पूरा करने का उन्होंने संकल्प लिया है. और आज बहुत जरूरत है साउथ अफ्रीका को उनकी एक बेहतरीन पारी की. एक बहुत ही शानदार पारी वो खेल भी चुकी हैं इस मुकाबले में. इस विश्व कप में 69 गेंदों में 114 रन नीदरलैंड के खिलाफ उन्होंने बनाए थे और फिलहाल 101.5 ओवर के बाद 11 रन बने हैं साउथ अफ्रीका के सामने. टारगेट 170 रन का है. इस ओवर में एक चौका, दो वाइड डिलीवरी, लॉरेन बेल का ओवर समाप्त हुआ. दो ओवर के बाद 11 बिना किसी नुकसान के दक्षिण अफ्रीका.
3: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 144.16 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
0: बाउंड्री ऑन द फोर्थ बॉल ऑफ द ओवर. आफ्टर दैट Lauren Bell adjusted her line, delivered the next one on the pads, which was flicked away for a single. And then the last delivery was on a length to Laura Wolfart, who punched it towards cover. So a single and a dot ball after the boundary, which means at the end of the second over, 11 without loss are South Africa. Next over will be bowled by Lindsay Smith, who starts off with a delivery which is wide off, and it has been flared away through the backward point region for 4.
1: ये लगा आभा का चौका.
0: So Tasmin Brits on the prowl. This time around the ball did not swing in with that release of hers as it had been doing in the first over. This one spun away and Brits was ready, went on to the back foot and slashed it away to the boundary. The next delivery on a good length, this time closer to the off stump, and therefore drives it off the back foot. Does Brits picks up a single, moves to 13, and what a story it has been. That Shivendra was telling you, she was very close to playing in the 2012 London Olympics. Of course that did not materialize, but here in that same country, in the city of London, today she has the opportunity to do good for South Africa.
2: स्ट्राइक पर है कप्तान लॉरा वॉलवर्ट. 3 ओवर में 1 रन, स्टेप आउट किया, मिडल और ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद थी. मिड विकेट या लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलना चाहती थी. गेंद ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं, लेकिन अच्छी बात यह कि कारपेट के सारे गेंद लुढ़कती हुई दूर गई थी. और लिंसे स्मिथ कई सवाल पहले ओवर में पूछती हुई नजर आई थी दोनों बैटर्स से. दूसरे ओवर में अभी तक अपेक्षाकृत कामयाब नहीं हुई. पहली गेंद पर चौका, बाद की दोनों गेंदों पर सिंगल, यानी कुल मिलाकर के 6 रन 3 गेंदों में बनाए जा चुके हैं. इस बार ऑफ स्टंप के बाहर हाफ वॉले पर लिया, ड्राइव किया डीप बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री की ओर गेंद जा रही है, दो फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं, रोक नहीं पाएंगे गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए.
1: ये लगा आभा का चौका.
2: लिंसे स्मिथ का ये ओवर अच्छा खासा प्रोडक्टिव साबित होता हुआ. फुल लेंथ डिलीवरी, हाफ वॉली पर लेकर डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में पंच किया था. दो फील्डर प्रयास कर रहे थे, प्रयास असफल रहा और कामयाब हुई बैटर. 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर. कवर और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में लगभग 18-19 मीटर का फासला था, उस गैप का इस्तेमाल किया तास्मिन ब्रिट्स ने. 12 गेंदों में 17 रन पर पहुंच चुकी हैं. एक बार फिर से इस बार पैर से टकराई है उनकी गेंद, थोड़ी सी मुश्किलों में तो हैं क्योंकि एक बार गेंद उनके थाई पैड के आसपास लगी थी, तब थोड़ा सा मुश्किल में दिखी थी, ऐसा लगा था एब्डोमेन की साइड में बॉल लगी थी. इस बार पैर पर लगी थी, स्ट्रेट बल्ले से इस बार खेला, मिड ऑफ की दिशा में गेंद सीधे फील्डर के पास पहुंचती हुई. तो डॉट डिलीवरीज जो भी आती हैं वो उनका मोल सोने से कम नहीं होता है, और खासतौर पर ऐसे मुकाबले में जहां फाइनल में पहुंचना

0: 4477।
1: 170 रन का लक्ष्य है दक्षिण अफ्रीका के समक्ष, उन्होंने बनाए हैं 28 रन 4 ओवर के समाप्त होने के बाद, यानी रन बनाने की रफ्तार है 7 रन प्रति ओवर। और सौरभ वॉडवर्ट और टेस्विन विट्स बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए, चार्ली डीन का आगमन हुआ है आते ही उनका स्वागत किया गया। लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है, 4 रनों के लिए लॉरा वॉडवर्ट के बल्ले से निकलता हुआ बेहतरीन चौका।
2: ये लगा आभा का चौका,
1: शानदार अंदाज में बल्लेबाजी इन दोनों बैटर्स पर, कितना दारोमदार है। अभी दर्पण ये डेटा आपके साथ साझा कर रहे थे, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में इस बार ड्राइव किया गया, स्टेप आउट करके हाफ वॉली पर लेकर 2-3 कदम आगे बढ़ते हुए लॉरा वॉडवर्ट बेहतरीन फॉर्म में दिख रही हैं। हालांकि इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक उनके बल्ले ने वो आग नहीं उगली है जिसके लिए वो जानी जाती है, लेकिन आज साउथ अफ्रीकन फैन

0: उम्मीद कर रहे होंगे कि वो डिलीवर करेंगी। मिडविकेट की दिशा में अगली गेंद को खेला गया है, दोनों बैटर छोर बदलेंगे। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद डॉट डिलीवरी, तीसरी गेंद पर सिंगल। और टैस्मिन ब्रिट्स के बारे में हम आपको बता रहे थे, जिन्होंने कि पूर्व जैवलिन थ्रोअर हैं और उन्होंने 2007 में 16 वर्ष की आयु में विश्व युवा एथलेटिक्स में जैवलिन का गोल्ड मेडल जीता था अपने देश के लिए। पूरा परिवार खेलों को समर्पित है। अगली गेंद स्ट्रेटिश डिलीवरी थी, क्या बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा या देखना दिलचस्प होगा रिप्ले में। लेकिन न केवल बैटर बल्कि विकेट कीपर एमी जोन्स भी पूरी तरीके से बीट हुई इस पर और बाई करार दिया गया, यानी गेंद और बल्ले में संपर्क हुआ नहीं था, लेकिन बड़ा नजदीकी मामला था और गैदर भी नहीं कर पाई थी एमी जोन्स विकेट के पीछे। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई नुकसान नहीं हुआ साउथ अफ्रीका को। क्रॉस पैटेड स्ट्रोक खेलने की जो टेंडेंसी है वो फटाफट क्रिकेट का संस्करण है उसमें आमतौर पर देखने को मिलती है। कई मरतबा उसे लाजमी भी समझा जाता है क्योंकि आपको किसी भी तरीके से रन्स बनाने हैं, जो स्कूप शॉट है या पैडल स्वीप है उस अंदाज में है। खासतौर पर कुछ खिलाड़ी तो जाने ही जाते हैं, जैसे नटसेवर ब्रंट की बल्लेबाजी में हमने देखा आज। चार्ली डीन के ओवर की अगली गेंद स्ट्रेटिश डिलीवरी, बैक टू द बॉलर ड्राइव, फॉलो थ्रू में फील्ड किया गया, रन बनने की कोई संभावना नहीं। पांच ओवर के बाद साउथ अफ्रीका 36 रन बिना किसी नुकसान के।
1: तुम रिपोर्ट लाई हो?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक कर,
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।

0: 477.
1: Charlie Dean's last over produced 6 runs, and now looks like Lindsay Smith is going to be bowling the final over of the power play, which is interesting because her previous over was a little bit expensive. However, Natasha Brunt has trusted her, starts off with that arm ball which pitches outside the off stump and then angles in towards the stumps. However, Tasmin Brits brings out her own version of the reverse sweep. It's not quite a conventional reverse sweep, if there is anything conventional about the reverse sweep. It's her own version where she doesn't really crouch, doesn't really touch her knee on the floor, but in a half crouch position swishes it away towards deep third and picks up a couple. That takes her beyond 20. Next delivery angled in towards the stump of a good length, and this time Brits stays beside the line of the ball and elevates it towards mid wicket, where Danny Gibson is stationed at the boundary. She runs across towards her left in order to mop it up, and a couple, beg your pardon, only a single has been taken, which means that this is some good work from the fielder. She was able to save what should have been 2 runs. Next delivery, Laura Wolfart steps out, puts her dancing shoes on and lofts it over long on. One bounce and over the ropes for 4.
2: Ye laga, aadha ka choka.
1: Has Lindsay Smith become just a little bit predictable with her length? On a good length, not too far from the off pole, Wolfart jumped out of her crease and lofted it over mid-on. Currently long off and deep in wicket are the two fielders outside the 25-yard circle. Once again steps out, and this time she won't be able to clear the mid-on fielder. Sophie Eccleston has leaped towards her right and caught this. Laura Wolfart's innings has been cut short. South Africa lose their first wicket.
3: जोर का झटका लगता हुआ दक्षिण अफ्रीका को, कप्तान लॉरा वुल्फर्ट आउट होकर के पेविलियन का रुख करेंगी। पिछली गेंद पर उन्होंने बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक लगाया था, सिंगल बाउंस पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई थी। इस बार भी उन्होंने सर्कल को क्लियर करने की कोशिश की, मिडॉन की दिशा में सोफी एक्लिस्टन तैनात थी। गेंद हालांकि हवा में थी, अच्छी खासी हाइट थी, लेकिन अपने स्थान पर उछलते हुए छलांग लगाते हुए एक्लिस्टन ने ये बहुत ही दर्शनीय कैच लिया। 15 गेंदों में 17 रन बनाकर 3 चौकों की मदद से वो रन बनाए थे लॉरा वुल्फर्ट ने, और वो उन्होंने पवेलियन का रुख किया है। और एक बहुत बड़ा विकेट है ये, साउथ अफ्रीका को बहुत जोर का झटका, इंग्लैंड के लिए बहुत ही अच्छी सफलता। और पावर प्ले के आखिरी ओवर में ये विकेट मिला है, तो 6 ओवर के बाद 35 रन बनाए थे 3 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड की टीम ने, और दक्षिण अफ्रीका की टीम इस समय एक प्राइज्ड विकेट गंवा चुकी है।
1: दे आर 43 फॉर 1 विद द 2 डिलीवरी स्टिल रिमेनिंग इन द पावर प्ले। ड्रिंक्स हैव बीन कॉल्ड ऑन द फील्ड, एंड जतिन सूद टेल्स मी दैट द फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप फॉर

0: South Africa in this World Cup has not exactly been very productive. They scored 2 runs for the first wicket against Australia in the opening game, 11 against Pakistan, 25 against India, 121 against Netherlands, but after that 0 against Bangladesh, and here again 43 runs, which is a decent return but not exactly an overwhelming return. It's a decent platform that has been set. Anery Dirksen has walked out to bat at number 3, but here the bottom line is that Nat Siverbrant's move to give Lindsay Smith that extra over in the power play has brought fruits. Remember, her second over was slightly expensive. She had delivered a probing first over where she had given away only 2 runs, but in her second over she was hit for 2 boundaries and ended up giving away 10 runs in totality. Despite that, Siverbrant stuck to Smith and it yielded rewards. South Africa currently need 127 more of the remaining 86 balls.
1: तो परिस्थितियां बहुत आसान नहीं, लेकिन साथ ही कुछ भी असंभव नहीं क्रिकेट के मैदान पर, न जीत न हार। और जाहिर सी बात है कि प्रयास तो करने होंगे दक्षिण अफ्रीका को। जिस तरीके से इंग्लैंड की शुरुआत हुई, बेहद खराब शुरुआत हुई, 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर, इनफैक्ट 23 रन के स्कोर पर 3 विकेट गिर गए थे, और उसके बाद क्या साझेदारी हुई नैट सिवरब्रांट और हेदर नाइट के बीच में, और इन दोनों ही बैटर्स ने उसी क्रम में अपने अर्धशतक पूरे किए, इंग्लैंड की टीम को 169 के स्कोर पर पहुंचाया। हालांकि दोनों खिलाड़ी लगातार एक के बाद एक आउट हुए और अपनी टीम की ओर से बहुत ही बढ़िया कंट्रीब्यूशन रहा। नैट सिवरब्रांट ने 75 रन बनाए 46 गेंदों में और हेदर नाइट ने 58 रन बनाए 47 गेंदों में। एंडी डक्सन का आगमन हुआ है, 6 पारियां खेली है इस विश्व कप में, और जैसा हम इशारा कर रहे थे कि दर्पण ने भी इस ओर इशारा किया कि जो एक ओपनिंग पार्टनरशिप है वो उतनी ज्यादा पुष्पित पल्लवित हुई नहीं साउथ अफ्रीका की ओर से जितनी उम्मीद की जा सकती है। नई बल्लेबाज डक्सन हाफ वाले पल्ले का ड्राइव एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, नैट सिवरब्रांट के पास गेंद पहुंची है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया है और रन बनने की तो कोई संभावना है नहीं। एक अजीबोगरीब शॉट खेला गया था, हालांकि बात वही है, अगर सर्किल क्लियर हो जाता तो शायद परिस्थितियां डिफरेंट हो सकती थी। सिमिलर डायरेक्शन में जाती हुई बॉल रन के लिए नहीं। 6 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका 43 एक विकेट के नुकसान पर।
2: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: 43-1 at the end of the power play, which means South Africa have had a better return than what England had of their first 6 overs. As Shivendra was telling you, they scored 35 for the loss of 3 wickets in their batting innings. However, the big wicket of Laura Wolfart has just fallen, and we are saying it's a big wicket because all of you remember what she did in the 50 over World Cup. All of you must remember what she even did in the 2023 T20 World Cup semi-final. Anyhow, England go to who is arguably their best bowler, or renowned so throughout the world. Sophie Eccleston, the left-arm spinner, begins her spell, delivers the first one on a drivable length in line with the stumps that allows Tasmin Brits to press forward and push the ball towards long on and pick up a comfortable single. So a single to start off what is the 7th over. 44-1 are South Africa in pursuit of 170. Anery Dirksen now on strike. The next delivery is slightly flighted and the catch has been dropped. Looks like it's Charlotte Dean who has put this one down. Yes, indeed, it is the England vice captain. Flighted delivery from Eccleston, inviting the big shot from Anery Dirksen. Dirksen went for the lofted drive over mid-off and stationed at the edge of the circle. Charlotte Dean backpedaled a couple of steps before leaping up in the air. She got one hand on the ball, but the ball did not stick. So an opportunity goes down and a single has been added. Next delivery on a good length from Eccleston has been drilled down to long off for a single, which takes Brits to 24 in South Africa. 46-1 after 6.5 overs. A big opportunity has just been squandered.
1: इस तरीके के जो मौके आते हैं, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कैचेस विन मैचेस, तो अगर इस तरीके के अवसर गंवाए जाते हैं तो कई मतलब आपको पछतावा

0: मैदान में पल सकता है। इस बार मिडल ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद थी, शॉर्ट ऑफ एंड डिलीवरी, बैक फुट पर जाकर के पंच किया एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, डीप में प्रोटेक्शन है, एक रन मिलेगा बड़ी आसानी के साथ। तो नॉर्म वॉलवर्ट का विकेट छठे ओवर में लिया गया, जिनसे स्मिथ की गेंद पर वो आउट हुई। सोफिया क्लिस्टन का आगमन हुआ है, एक बार फिर से क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलने की कोशिश, मिडल और ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद है, लगभग फुल लेंथ डिलीवरी है और उसे मिड विकेट की दिशा में खेलना चाहती थी। टैडमिन ब्रिट्स भाग्यशाली हैं कि गेंद और बल्ले में संपर्क हुआ नहीं, कोई मिसक्यूट शॉट नहीं गया। उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, 22 गेंदों में 24 रन बनाकर के खेल रही हैं। डॉट डिलीवरी एक, चार सिंगल आ चुके हैं इस ओवर में, पारी का सातवां ओवर है। इस बार बैकफुट पर जाकर के कट किया, शॉर्ट थर्डमैन की दिशा में गेंद को फील्ड किया गया। इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ, सात ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका 47 रन एक विकेट के नुकसान पर।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
3: ली। जानिए आभा के बारे में,
2: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट।

0: चार सात सात
1: South Africa need another 123 runs to win in 78 balls. Big news, Anari Dirksen was dropped, was given a lifeline when she was on zero. She has moved to two now. At the other end is Tasmin Brits batting on 24 of 23. And looks like Freya Kemp has been given the ball in hand. Freya Kemp, left arm seamer. So provides a bit of variety in this particular attack. She starts off over the wicket with the keeper up to the stumps, delivers this one on the middle stump on a good length, and Dirksen was looking to flick it away towards the onside. However, she ended up closing the face of the bat a little too early. The leading edge takes the ball into the cover region and allows a comfortable single. However, Dirksen will not be happy with the way things have started for her. That was not a convincing shot. Now remember, Sune Luse is a part of this playing 11 today, who used to open for South Africa. She hasn't come out to bat thus far. South Africa have a deep batting lineup, and hence nobody is saying that they are out of the game just yet. But England are squeezing a few tidy overs over here. Good length delivery in line with the body has been nudged towards the square leg region for yet another comfortable single. So two singles of the first two balls to get the eighth over started. South Africa are 49 for one. The previous over fetched four runs, which included one drop catch. Before that, the successful over which produced Wolfart's wicket fetched only seven runs. So a quiet face for England this, and there comes another miscued shot from Dirksen. This time the catch will be taken. It is the experienced palms of Heather Knight which complete the catch in the backward point region. A length delivery which was angled away towards outside of, slanting away from the right-hander. Anari Dirksen pressed forward and swung her bat with ambition, only to connect with the outer half of it, and the ball went flying towards backward point, where Heather Knight had ample time to settle herself underneath it and eventually complete the catch. She is as safe as a bank, and that scratchy knock from Anari Dirksen comes to an end, 49 for 2 after 7.3.
2: निश्चित तौर पर एक खराब स्ट्रोक खेला गया एनी डक्सन के द्वारा, और ऐसे समय जब इतने हाई स्टेक्स हों, देखने में ये आ रहा था कि पिछली दो तीन गेंदों पर भी उन्होंने जो स्ट्रोक्स खेले थे वो उतने कन्विंसिंग नजर नहीं आए थे, और तारीफ करनी पड़ेगी कैंप की, उन्होंने आते ही अपनी टीम को एक अच्छी सफलता दिलाई है और बहुत ही शानदार अंदाज में शुरुआत की गई थी साउथ अफ्रीका की ओर से, जबकि एक तरफ खेल रही थी टैस्मिन ब्रिट्स और दूसरी ओर थी कप्तान लॉरा वुलवर्ट। उसके बाद लॉरा वुलवर्ट के आउट होने के बाद अभी अभी कुछ देर पहले एक दूसरा विकेट गिरा, और अब मैरिजन कैप का आगमन हुआ है। मैरिजन कैप पांच पारियों में 119 रन बनाने में कामयाब हुई है इस विश्व कप में, और चूंकि बातले समाप्त हो चुके हैं तो चार खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के बाहर तैनात किए जा सकते हैं, सर्किल के बाहर इनफैक्ट तैनात किए जा सकते हैं। कैंप को अपनी तीसरी गेंद पर विकेट मिला है, बड़े लो लेग स्टंप की दिशा में शॉर्ट ऑफ लेंथ को इस्तेमाल करके मोड़ा उसे फाइन लेग की दिशा में। खिलाड़ी डीप में तैनात थी, जब तक आए गेंद को फील्ड करें, थ्रो करें एमी जोन्स के पास, तब तक एक रन लेने का मौका दोनों बैटर्स ने छोर बदल लिया।

0: 4-7-7।
1: वर्ल्ड के मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के सामने लक्ष्य है 170 रन बनाकर के इस मैच को जीतने का, सेमीफाइनल जीतने का, फाइनल में प्रवेश करने का। और इंग्लैंड की ओर से कैंप आई है नया ओवर लेकर के, हालांकि उनकी पहली गेंद मिडल और लेग स्टंप की लाइन पर है, पैड से टकराई है, सामने है।

0: जैस्मिन ब्रिट्स में चार विमर्श चल रहा है। हालांकि लग नहीं रहा कि इंग्लैंड की टीम रिव्यू के लिए जाएगी, क्योंकि कैंप जिन्होंने पहले ही ओवर में एक विकेट हासिल किया था और जेंटल मीडियम पेस गेंदबाजी करती हैं, काफी सवाल पूछते हुए मैदान पर उत्सव सा माहौल है और खासतौर पर इंग्लिश खेमे में इस समय काफी जोश देखने को मिल रहा है। कैंप की गेंद इस बार शॉर्ट डिलीवरी ऑन साइड में फुल करने के अंदाज में खेला, गेंद ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं, ब्रिट्स के स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद छिटक करके रह गई, एक रन लेने का अवसर दोनों बैटर्स के पास। तो जो गेंद की रफ्तार है उसमें कैंप बहुत ही चतुराईपूर्ण परिवर्तन करती हुई नजर आती है और इसी का परिणाम है कि उनकी गेंदों पर आजादी के साथ दोनों बैटर्स मैरिजन कैंप जो अभी अभी आई हैं बल्लेबाजी करने के लिए और टैस्मिन ब्रिट्स जो कि सलामी बैटर के तौर पर आई थी, दोनों ही खुलकर खेल नहीं पा रही है। इस बार हाफ वॉली पर लेकर खेला गया स्ट्रोक है, स्क्वायर लेग की दिशा में खेला गया है, बाउंड्री लाइन पर लिंसे स्मिथ मौजूद थी, अंदर की ओर दौड़ी और एक रन लेने से तो नहीं रोक पाएंगी दोनों बैटर्स को। लेकिन इस समय ऐसा लगता है कि इंग्लैंड की टीम, क्योंकि ये कंसोलिडेशन फेज है सातवें ओवर से लेकर के 14 ओवर के बीच का, जहां पर इंग्लैंड ने बनाए थे 78 रन, उन्होंने कोई विकेट नहीं खोया था और इस समय जब दो विकेट दो टॉप ऑर्डर बैटर पवेलियन में विश्राम कर रहे हैं साउथ अफ्रीका की ओर से मैरिजन कैप बहुत ही अनुभवी और उनके साथ टैस्मिन ब्रिट्स, उनकी कोशिश होगी कि वो पारी को सजाएं सवारे। अगली गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला गया है, एक रन के लिए दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदल लिया है, 61 रन स्कोर हुआ है दो विकेट के नुकसान पर, अभी भी 170 रन का जो लक्ष्य है वो किसी भी हालत में न तो आसान कहा जा सकता है न ही कठिन कहा जा सकता है। इवन स्टीवंस मामला लग रहा है, अगर हम स्कोर के लिहाज से कंपैरिजन देखें तो भी लगता है कि दोनों टीमें लगभग बराबरी की स्थिति में हैं। इस बार एक रन के लिए दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला है, ऑफ साइड में धीमे से पुश भर किया गया था गेंद, हालांकि स्ट्रोक जरूर खेलना चाह रही थी एक्स्ट्रा कवर की दिशा में मैरिजन कैप, लेकिन गेंद ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं, एक रन लेकर के उन्होंने छोर बदल लिया। तो स्ट्राइक तो रोटेट हो रही है, 108 रनों की अभी भी आवश्यकता है, 61 गेंदें फेंकी जानी शेष है, भले ही कोई वाइड या नो बॉल नहीं हो। टैस्मिन ब्रिट्स 32 गेंदों में 33 रन बनाकर के सामने है, इस बार बहुत जल्दी गेंद की लाइन को पाल दिया था, शॉर्ट डिलीवरी थी, हालांकि जो डिजायर्ड रिजल्ट था यानी जो बाउंड्री तलाश रही थी ब्रिट्स वो तो नहीं मिली, लेकिन सिंगल के साथ उन्होंने ओवर समाप्त किया। 10 ओवर के बाद इंग्लैंड के सामने जब 169 रन उन्होंने बनाए थे और 10 ओवर के समाप्त होने के बाद दो विकेट गंवा चुकी है टीम साउथ अफ्रीका की, थोड़ी सी स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है और इन दोनों बल्लेबाजों पर, इन दोनों बैटर्स पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अभी भी 100 रन से ज्यादा का स्कोर बनाना बाकी है। 8 विकेट ऑफकोर्स सुरक्षित है, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर जैसा हम कहते हैं कि कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी अनिश्चित नहीं है, 6.3 रन प्रति ओवर के औसत से टीम रन बना रही है।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 144116 पर कॉल करें, कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: No boundaries for 27 balls and just as I say that, steps out of the crease and flares it towards the extra cover region. The Tasman Brits picks up a 4. Ye laga ab haka choka. Charlie Dean, the English vice captain, starting the 11th over with a good length ball outside the off stump. Brits put her dancing shoes on, converted this into a half volley and punched it towards the left of long off and picked up a boundary. The next delivery, a full toss, and it has been bunted back towards the bowler who collects it on a bounce. So a couple of really loose balls from Charlotte Dean to start this over. Next ball, and she shortens the length and the batter tries to go cross-batted swipe, tries to go for a cross-batted swipe and doesn't quite make the connection that she desired. The ball goes aerial and falls in no man's land in the forward square leg region and a single has been added. So 4-0-1 to start off the 11th over. Next delivery, this time Marizan Kapp steps out, miscues, and she has been caught in the extra cover region. Natsima Brunt completes the catch and there's an explosion of joy in the English camp. They have got the big fish. Marizan Kapp has been dismissed. 6

0: 58-3 are South Africa, and Charlotte Dean's over, which did not begin on the right note, has produced something invaluable for South Africa. All the Indian fans know how important Marizaan Karp is. She played that magnificent innings to knock India out of the competition. And over here, however, she has not been able to deliver. She scores only 5 of 7 balls. She jumped out of her crease. However, Dean saw her coming and hence went wider, hung it up on a length. Eventually, Karp had to put her left leg across and try and work it towards the onside. However, she ended up closing the face of the bat a little too early. I wonder if she would have rather looked to play it on the offside. The option would have been a better one. But she rather tried to drag it from outside off towards the leg side, and in that ended up miscuing it completely. Easy peasy catch for Nat Sivabrant, who's too good a fielder to drop opportunities of those kind. South Africa in a spot of bother. Suneloos has come to the crease.
1: 10.4 ओवर के बाद 68 रन, लेकिन अब 3 विकेट के नुकसान पर चार्ली डीन की गेंद सुनेलूस के लिए. रक्षात्मक अंदाज में खेला, शॉर्ट पर विकेट की दिशा में गेंद को फील्ड किया गया. इंग्लिश जो खिलाड़ी हैं, जो फील्डर्स हैं या जो गेंदबाज हैं, उनके चेहरे पर इस समय उल्लास बिल्कुल साफ पढ़ा जा सकता है. चार्ली डीन इस बार ऑफ स्टंप की दिशा में लाइन थी, गेंद थी, लेकिन उसको स्वीप करने के अंदाज में खेला. डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद पहुंची है. एक रन का इजाफा 11 ओवर के बाद 69 रन, 3 विकेट के नुकसान पर.
2: तुम रिपोर्ट्स लाए हो?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
2: तुम हो ही भुलक्कड़.
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी करनी.

0: riding straddling stance and then shuffled towards the offside. She was basically shaping up for the scoop shot and Gibson went wider in response. The ball finished near the tram line, but the batter failed to lay bat on ball. The keeper failed to gather it and the ball trickled away into the ropes behind the wicketkeeper. So by signal, 12 overs done, 79 for 3 South Africa, still needing 91 more to win.
1: तो जब इस मुकाबले की शुरुआत हुई थी दर्पण, तब साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वॉलबर्ट ने टॉस जीता था और उन्होंने ये कहा था कि एकमात्र परिवर्तन टीम में है और वो है सोनी लुइस का आगमन, जो कि एक टैक्टिकल चेंज है। और सोनी लुइस ऐसे मौके पर बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर पहुंची है जब शायद उस टैक्टिकल चेंज की सबसे बड़ी परीक्षा हो रही है। सोफिया क्लिस्टन का आगमन हुआ है गेंदबाजी के लिए। इंग्लैंड की ओर से इस विश्व कप में सबसे सफल गेंदबाज हैं, 8 विकेट उन्होंने आज के मैच से पहले हासिल किए थे 5 मैचेस में। इकोनॉमी रेट 5.90 का रहा था और एक छोर पर बैटर लगातार नियमित अंतराल पर कहा जाए पवेलियन का रुख करते रहे हैं और 3 खिलाड़ी पवेलियन में विश्राम कर रहे हैं। दूसरी ओर टैस्मिन ब्रिट्स 40 गेंदों में 45 रन बना करके नाबाद हैं। इस बार स्वीप शॉट खेला गया है, डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री पर, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर इनफैक्ट फील्डर तैनात हैं और बड़ी आसानी के साथ उसे फील्ड किया गया। कैंप थी वहां पर, रन बनने की संभावना थी, उसका पूरा फायदा उठाया, सिंगल से दोनों बैटर्स ने छोर बदला। तो क्रिकेट में परिस्थितियां किस तरीके से करवट लेती हैं ये इस बात को इशारा करता है। इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की पारी का कुछ विवेचन किया जाए, एनालिसिस किया जाए, तो उससे पता चलेगा कि इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी की, उन्होंने 35 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर में। साउथ अफ्रीका ने बनाए 43 रन 1 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर के बाद। इंग्लैंड ने बनाए 68 रन 3 विकेट के नुकसान पर और दक्षिण अफ्रीका ने बनाए 63 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार स्टेप आउट किया, फुल टॉस पर लिया टैडबिन ब्रिट्स ने। एक्लस्टन की इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला, चार्ली डीन वहां पर मौजूद है, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बैटर्स को। साउथ अफ्रीका का स्कोर हुआ 82 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 88 रन चाहिए, 43 गेंदें फेंकी जानी शेष हैं। इंग्लैंड का पलड़ा फिलहाल तो भारी लग रहा है, इस बार स्वीप करने के अंदाज में खेला है। कारपेट के सहारे गेंद बाउंड्री लाइन की ओर पहुंची थी, टैडविन ब्रिट्स के बल्ले से निकला है 1 रन 13 ओवर के समाप्त होने के बाद। दक्षिण अफ्रीका 83 3 विकेट के नुकसान पर।
2: तुम रिपोर्ट लाए हो?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी करनी है।
2: जानिए आभा के बारे में,
3: आभा
2: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपनी मेडिकल

0: first half of the over has produced only two runs. That is not ideal from South Africa's perspective. They've reached halfway the target but have only 39 balls to score 85 more. Bell runs in, delivers another short ball outside the off stump. Sunelis brings out a pull which is not a very robust one, not a very vigorous one. The ball trickles away into the gap between long on and deep mid-wicket, and that allows for a couple. However, ones and twos are not going to hurt England. South Africa need to find boundaries. Sunelis needs to up the ante. 7 of 11 against her name. Lauren Bell runs into bowl what will be the penultimate ball of her over. It's a slower ball on the shorter side of good length at the middle pole, and Lees brings out a robust short arm pull. The ball goes to the fence, gets her four.
1: Ye laga aap haka choka.
0: Almost had to wait for the ball to arrive and delay her bat swing. However, Lees did it in accordance with the slowness of the ball, and in the end placed it well too. This is what they need more of. She placed it between mid-wicket and long on. There's a gaping gap towards it. Next delivery, short ball. This time she wasn't in control of the pull shot, and Sophie Eccleston completes another fantastic catch. Lauren Bell has delivered the goods. She has done exactly what Nat Siverbrunt asked her to do, brought in earlier in the 14th over, because England wanted to kill the game, and with the wicket of Lees, they might have done it. South Africa reeling, crumbling under pressure. They are four down for 91 as we head into a drinks break.
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: मुश्किल परिस्थितियों में दक्षिण अफ्रीका, और जैसा हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे 170 रन का लक्ष्य था उनके सामने, क्योंकि इंग्लैंड ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 169 रन बनाए थे निर्धारित 20 ओवर्स में इस दूसरे सेमीफाइनल में, जो कि इंग्लैंड के ओवल मैदान पर खेला जा रहा है, और सामने है इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमें। इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमों के बीच जब भी मुकाबले हुए हैं तो जैसे कहते हैं कि बिल्कुल अंत समय में ही फैसला हुआ है, और यहां पर लेकिन ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड ने बहुत ही शानदार वापसी की है। पहले उन्होंने बल्लेबाजी में अच्छी वापसी की हैदर नाइट और नैट सेवरब्रंट की बदौलत। नैट सेवरब्रंट ने 75 रन बनाए, हैदर नाइट ने 58 रन बनाए, 46 गेंदों का सामना किया नैट सेवरब्रंट ने, हैदर नाइट ने 47 गेंदों में 58 रन बनाए, और शतकीय साझेदारी ताबड़तोड़ अंदाज में पूरी हुई जिसके बदौलत इंग्लैंड पहुंचे 169 रन पर। 170 रन के लक्ष्य की तलाश में जब साउथ अफ्रीका की पारी की शुरुआत हुई तो विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे। कप्तान लॉरा वॉलवर्ट आउट हुई, टैजमिन ब्रिट्स एक छोर से संभाले हुए हैं पारी को, लेकिन अभी सोनेलूस कुछ देर पहले आउट होकर के पवेलियन वापस लौटी हैं, और चौथा विकेट तो 6 ओवर के बाद 43 रन एक विकेट के नुकसान पर, 7 से 14 ओवर के बीच में सिर्फ 48 रन बनाए गए हैं दक्षिण अफ्रीका के द्वारा, और उन्होंने 3 विकेट गंवा दिए हैं। और इसी परिस्थिति में यानी 7 से 14 ओवर के बीच में इंग्लैंड ने बनाए थे 78 रन और उन्होंने कोई विकेट नहीं खोया था, और ये वो मौका था, ये वो कंसोलिडेशन स्टेज थी जहां पर नैट सेवरब्रंट और हैदर नाइट इंग्लैंड की पारी को सजाने संवारने का काम कर रहे थे, और वही जो सजाना संवारना था 7 से 14 ओवर के बीच में, ऐसा लगता है कि किसी भी तरीके से मुकम्मल नहीं हो पाया है दक्षिण अफ्रीका की इस पारी में, जहां मैरिजन कैप आउट हो चुकी हैं, सोनेलूस आउट हो चुकी हैं, और कप्तान लॉरा वॉलवर्ट तो सबसे पहले आउट होकर पवेलियन वापस लौटी थी। तारीफ करनी पड़ेगी गेंदबाजी के रोटेशन की, जिस अंदाज में अपने बॉलर्स को रोटेट किया गया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंग्लिश कैप्टन नैट सेवरब्रंट के द्वारा। आज टीम में उनका आगमन हुआ था, और जैसा हम आपको बता रहे थे, आंकड़े बता रहे थे, 48 रन बनाए हैं 7 से 14 ओवर के बीच में साउथ अफ्रीका ने, और उन्होंने 3 विकेट गंवा दिए हैं। चार्ली डीन का आगमन हो रहा है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही है, 79 रनों की आवश्यकता है। दक्षिण अफ्रीका को

0: 31 गेंदें फेंकी जानी शेष है, 14 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 91 रन है 4 विकेट के नुकसान पर। टैस्मिन ब्रिट्स 43 गेंदों में 47 रन बनाकर के खेल रही है, बैकफुट पर जाकर के पंच किया, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर गेंद जा चुकी है 4 रनों के लिए।
1: ये लगा आभाका चौका।
0: इसके साथ ही टैस्मिन ब्रिट्स का अर्धशतक पूरा हुआ, 44 गेंदों में 51 रन बनाकर के वो क्रीज पर है, 115 से ज्यादा का उनका स्ट्राइक रेट है। तो क्या अकेला चना कुछ कर सकता है टैस्मिन ब्रिट्स? इसका जवाब देने के लिए फिलहाल क्रीज पर मौजूद है। दूसरे छोर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, एक और मिसक्यूट शॉट है, गेंद हवा में उछली है, मिड ऑफ की दिशा में कैच लिया गया है, वहां पर कप्तान नैट सिल्वरब्रंट मौजूद है और इंग्लैंड के खिलाफ साउथ अफ्रीका को लगता हुआ यह पांचवां झटका, 95 रन 5 विकेट के नुकसान पर चार्ली डीन को एक और सफलता। टैस्मिन ब्रिट्स की पारी का भी अंत हो चुका है।
2: द होप्स आर ड्विंडलिंग, द टारगेट ऑफ 170 लुक्स फर्दर एंड फर्दर अवे, लुक्स लाइक साउथ अफ्रीका वेट for that elusive ICC trophy in women's cricket will continue if they continue to bat like this. Tasmin Brits, who scored her 16th 50 in T20Is and is the second leading run scorer, consumed 45 deliveries and just when the required rate was getting to intolerable levels, she tried to go big, stepped out, tried to go for a ambitious swing of the bat, completely miscued it, and an easy catch for Nat Sivabrant. South Africa 95 for 5. Two batters who are yet to face a ball are out in the middle, albeit two very credible batters, two very credible lower order hitters, Chloe Tryon and Nadine De Klerk. Chloe Tryon is currently on strike and we have seen both these batters pull South Africa out of dire situations before, and they need it more than ever today. Charlotte Dean continues, delivers this one on a good length, the ball spinning in towards the middle end leg. The batter Chloe Tryon presses forward and then uses her wrists to turn it towards mid-wicket and picks up a comfortable single. We saw the wicket of Sune Luz in the previous over, where a shot ball from Lauren Bell got too big on Sune Luz and Luz went for that pull shot which she wasn't able to control. A good catch was taken by Sophie Eccleston at short fine leg. After that, in this over, we saw the wicket of Tasmin Brits, who had scored a half century. Flatter trajectory this time around from Charlotte Dean, delivers this one on a good length in line with the off and the middle stump. Nadine De Klerk gets a stubborn full face behind the ball and blocks it. Of course, she will need a couple of balls to get her eye in, to gauge what the surface is doing. You can't expect her to explode from ball one. Next delivery onto the pads. It has been nudged in a deft manner, bunted away almost towards the front of square leg. There is no fielder there and hence Charlie Dean runs across to field the ball herself and ensures that the batters do not get more than a single. So it has turned out to be a good over for England once again. The required rate going over 14 and over. South Africa need boundaries and need plenty of them. Good length delivery on the middle stump, which Chloe Tryon gets forward to and bunts it towards long on, picks up a single, end of the 15th, 98 for 5.
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम वो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी करनी।
5: जानिए आभा के बारे में।

0: 4577।
1: 15 ओवर के बाद 98.5 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य है 170 रन का, यानी अभी भी 72 रन चाहिए दक्षिण अफ्रीका को अगर ये मैच जीतना है, और 30 गेंदें फेंकी जानी शेष है बशर्ते कोई वाइड या नो बॉल नहीं होती है। 15 ओवर के बाद 98 रन, 170 रन का लक्ष्य पहाड़ सा दिख रहा है, और एडिन डिक्लर्क और क्वेट्रॉन इस समय मैदान पर मौजूद है, क्रीज पर मौजूद है। दोनों ही बैटर्स ने 2 और 3 गेंदें खेली हैं, यानी दोनों ही नए बैटर्स हैं इस समय क्रीज पर, और दक्षिण अफ्रीका पर पूरा दबाव बनाने की कोशिश में कामयाब होते हुए इंग्लिश टीम। मैक्सिमर ब्रेंट ने न केवल आज बल्लेबाजी बेहतरीन की है बल्कि उन्होंने गेंदबाजों को भी बहुत अच्छी तरीके से रोटेट किया है, जिसका सुपरिणाम उनको मिला है, और 2 कैच भी उन्होंने लिए हैं। मेडलो लेग स्टंप की दिशा में गेंद, लेग स्टंप के बाहर ड्रिफ्ट करते हुए जैकलिन विलियम्स की ओर निगाहें जा रही थी कि क्या वो वाइड करार देंगी इस बॉल को, और काफी विस्मित से दिख रही है, अचंभित से दिख रही क्लोट्रॉन, क्योंकि उन्होंने एम्पायर की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखा कि शायद इसे वाइड करार दिया जाएगा, लेकिन एम्पायर का फैसला कि संभवतः पैड से या किसी तरीके से बॉल का कनेक्शन हुआ था और इस वजह से उसे वाइड करा नहीं दिया गया। अगली गेंद मिडल और ऑफ स्टंप पर थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, उसे बल्ले से टकराने पर दिया, कोई अटैकिंग स्ट्रोक ऑफर नहीं किया, 1 रन के लिए छोर बदल लिया दोनों बैटर्स ने। चार्ली डीन आज जो विकेट ले चुकी हैं उसको मिला करके लीडिंग बॉलर्स की कैटेगरी में वो 5वें पायदान पर आ गई हैं, उन्होंने 9 विकेट अब तक हासिल किए हैं इस T20 विश्व कप में। 3 गेंदें उन्होंने इस ओवर की डाली हैं और काफी प्रभावशाली गेंदबाजी उनकी रही है, 71 रन अभी भी चाहिए, 27 गेंदें फेंकी जानी शेष हैं, 99 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बाएं हाथ से जेंटल मीडियम पेस गेंदबाजी करती है, पॉइंट की दिशा में गेंद पहुंची थी, नदीन डी क्लर्क के बल्ले से निकला था यह स्ट्रोक, लेकिन रन के लिए नहीं। कैंप इस समय गेंदबाजी कर रही है, जिनका हमने जिक्र किया था कि जेंटल मीडियम पेस गेंदबाजी करती हैं और कोई बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट उनकी गेंदबाजी में नहीं है। बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी, लगभग 7-8 कदम का उनका रनअप यॉर्क करने की कोशिश थी, लो फुल टॉस पर उसे पिक किया गया है एडिन डी क्लर्क के द्वारा, 1 रन मिलना चाहिए। पारी का ये 16वां ओवर है और 100 रन पूरे हो गए हैं, हालांकि तालियों से उसका अभिनंदन किया जा रहा है ओवल के मैदान पर मौजूद दर्शकों के द्वारा, साउथ अफ्रीका के डगआउट में भी, लेकिन सच्चाई यही है कि इस समय परिस्थितियां बहुत ही खराब और गंभीर कही जा सकती हैं साउथ अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस ओवर में 3 डॉट डिलीवरीज कैंप के, और इस बार फिर से वो लेग स्टंप की दिशा में ड्रिफ्ट करती हुई गेंद पैड से टकराई है, दोनों बैटर्स ने छोर बदल लिया है, सुरक्षित पहुंच चुके हैं। 16 ओवर्स के समाप्त होने के बाद स्कोर 101 रन 5 विकेट के नुकसान पर, यानी अभी भी 69 रन चाहिए, 24 गेंदें फेंकी जानी शेष। कैंप ने एक बहुत ही प्रभावशाली ओवर समाप्त किया, 3 ओवर उन्होंने फेंके हैं, सिर्फ 11 रन खर्चे हैं और 1 विकेट उन्होंने हासिल किया है। तो इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमों के दरमियान जो मुकाबले अब तक होते रहे हैं, और कुछ अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें नॉकआउट मुकाबलों के बारे में, तो 2017 में लॉर्ड्स के मैदान पर भारत को हरा करके इंग्लैंड ने मुकाबला जीता था, आखिरी बार वर्ल्ड कप जीता था, तब से जो कंप्लीट मैचेस हुए हैं 6 कंप्लीट होने वाले नॉकआउट मैचेस में इंग्लैंड ने 4 हारे थे और 2 जीते थे, लेकिन आज लग रहा है कि वो उस आंकड़े को बेहतर करने की ओर अग्रसर हैं, और देखना होगा कि बाकी बचे हुए 4 ओवर्स में साउथ अफ्रीका की पारी कहां तक पहुंच पाती है। फिलहाल 69 रन चाहिए 24 गेंदों में।
2: Charlie Dean to bowl her final over. It's now or never for South Africa. First delivery from over the wicket on a good length, drifting in towards the middle pole. Chloe Tryon steps out of her crease and then drives it along the carpet towards the long on fielder. Picks up only a single. But I, at the risk of sounding like a broken record, will reiterate that ones and twos are not going to hurt England. Next delivery, slightly flatter trajectory on a length at the stumps. De Klerk backs away to the leg side and then flays her hands away from the body to push it towards the cover region and picks up a couple before Natsiva Brunt chases it down. Interestingly, Natsiva Brunt has been running around like a free spirit right throughout this match, even when she was batting, even when she's fielding. The reason why I point that out is because, remember, she is recovering from a calf injury, and we were assuming that she might not be 100% fit, but she has laid all those demons to the bed. Around the wicket, this time around from Charlotte, Dean delivers this one in line with the body of Nadine de Klerk, who had backed away to the leg side. In the end, de Klerk was only able to adjust into a dink towards mid-wicket, picks up a single. Next delivery back over the wicket, and Chloe Tryon unfurls a big shot and gets a boundary.
0: Ye laga, ab haka choka.
2: A quicker delivery from Charlie Dean. She fired this one in at the stumps on a foolish length. However, the batter, almost as if she was anticipating it, shuffled to the onside.

0: 3-3-7-7।
1: 17 ओवर के बाद 113 रन 5 विकेट का नुकसान पर इस बार हाफ वॉली पर लेकर इनसाइड आउट शो खेला। अच्छा कवर बाउंड्री की बद दिशा में जा रही है गेंद, डीकला के बल्ले से निकलता हुआ बेहतरीन चौका।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: 117 रन 5 विकेट के नुकसान पर नए ओवर की शुरुआत चौके से की है। स्टेप आउट किया था, 2-3 कदम हाफ वॉली पर पिक किया था बॉल को, सर्कल को क्लियर किया था। 3 खिलाड़ी जो कि ऑफ साइड में सर्कल के अंदर तैनात हैं। 4 रनों का इजाफा डी क्लर्क के स्कोर में। लो फुल टॉस पर ड्राइव किया, बेहतरीन फील्डिंग, सर्कल के मुहाने पर अच्छा बैकअप भी आता हुआ। कैंप बहुत ही सक्षम क्रिकेटर के तौर पर उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है, तो थोड़ी कोशिश हो रही है फ्लरिश की, कुछ रनों की रफ्तार बढ़ाने की, लेकिन परिस्थितियां बड़ी डिफिकल्ट हैं क्योंकि आधी टीम पेवेलियन में है। हालांकि इस समय दोनों जो बैटर क्रीज पर मौजूद हैं वो काफी कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं। इस बार फाइनल की दिशा में गेंद को खेला गया है और जब बॉलर देख रही हैं कि बैटर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो शफल करें, लेग स्टंप के बाहर निकल जाएं, ऑफ स्टंप के बाहर जाएं, स्टेप आउट करें, कुछ रिदम जो है उसको तोड़ने की कोशिश करें गेंदबाज का, तब उसी अंदाज में जवाब देने की कोशिश भी हो रही है गेंदबाजों के द्वारा। क्लोटोइन 10 गेंदों में 12 रन बनाकर के क्रीज पर है। बोल्ड हो गई है, क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी, स्ट्रेट इज डिलीवरी। तारीफ करनी पड़ेगी सोफी एक्लिस्टन की, जिनके बारे में हमने आपको बताया था कि सफलतम गेंदबाज है इंग्लैंड की ओर से। पहली गेंद पर चौका लगा जरूर था लेकिन उसके बाद क्या शानदार वापसी की है, स्ट्रेट इज डिलीवरी बाएं हाथ से, राउंड द विकेट गेंदबाजी, थोड़ी सी लो रहती हुई गेंद, क्रॉस बैटेड स्ट्रोक ट्राई किया गेंद की लाइन में आए बगैर और बोल्ड हो गई है। क्लोटोइन, उनकी पारी का अंत हो चुका है। 118 रन 6 विकेट के नुकसान पर 17.4 ओवर की बल्लेबाजी के बाद क्लोटोइन ने 11 गेंदों में 12 रन बनाए, 2 चौके उनकी पारी में शामिल और अब साउथ अफ्रीका के डगआउट में सिर्फ और सिर्फ निराशा पड़ी जा सकती है और इसके लिए जरूर निश्चित तौर पर डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट तारीफ करनी पड़ेगी नेट शिवर ब्रंट के करिश्माई प्रदर्शन की, जिन्होंने आज जिनका आगमन हुआ इंग्लैंड की टीम में उन्हें शामिल किया गया। काफ इंजरी से जूझ रही थी, पिछले 3 मुकाबले खेली नहीं थी, उसके पहले 2 मैचेस खेली थी, लेकिन आज आते ही उन्होंने चमत्कार किया। जब इंग्लैंड पर संकट के बादल मंडरा रहे थे, 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर था, 4th विकेट के लिए शतकीय साझेदारी निभाई हेदर नाइट के साथ। अब जैप्टा का आगमन हुआ है जो कि मूल रूप से एक विकेट कीपर है लेकिन विकेट कीपर बैटर के तौर पर उनको जाना जाता है। एक्लिस्टन की गेंद मिडल और ऑफ स्टंप पर तेजी से रन चुराने का प्रयास था, कामयाब होती हुई जैप्टा, उन्होंने स्कोरिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है। 119 रन 6 विकेट के नुकसान पर एक हताशा में खेला गया स्ट्रोक कहा जा सकता है, जहां पर आपकी कोशिश होती है कि आड़ा तिरछा कोई भी स्ट्रोक खेल करके रन बनाने की कोशिश की जाए। हालांकि क्रिकेट के मैदान पर बहुत बार ऐसा संभव नहीं हो पाता है। थ्रो आता हुआ विकेट कीपर के पास, 18 ओवर के बाद 119 रन दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क

0: नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: It's nearly 9:30 p.m. in London. The sun went down 10 minutes ago and looks like at the same time the sun went down for South Africa too. 12 balls remaining. They need an improbable 51 runs to win. England have plenty of options. They go to Lauren Bell for the penultimate over. It's Sinalo Jafta on strike. 119 for 6 South Africa. And the over starts with a comical incident, slower delivery from Lauren Bell, but almost as if Jafta was expecting a pace on delivery. She swished into a horse straddling stance, stood outside the off stump waiting for the ball to arrive and play the lap shot, but the ball never arrived. It was a slower ball. She kept on waiting, and then eventually when she played a shot, she was still early into it. So a dot ball to begin the penultimate over. Next delivery, another slower one, possibly the leg cutter from Lauren Bell. It finishes outside the off stump. Jafta was looking to drive it on the up, possibly through the cover region, but wasn't able to lay bat on ball. Two dot balls means 51 runs now needed off 10 balls. If my math serves me right, that's 5.1 per ball. It is getting out of South Africa's reach. Next delivery, another slower ball. By now, Jafta should be anticipating it. Oh, she's got run out. She pushed it towards Danny Wyatt-Hodge at backward point and set off for the run. Wyatt-Hodge took her time, aimed for the bullseye at the striker's end and then scored a direct hit. She punches the air in delight. She wasn't able to contribute with the bat in her hand in the manner she has been doing in the group stages, but she has contributed in the field. Danny Wyatt-Hodge effects that run out. Sinalo Jafta, after an innings which lasted 4 balls, she scored 1 run and now she's walking back to the dugout. South Africa in dire straits, 119 for 7. It won't be wrong to say that they are on the brink of elimination.
2: जी हाँ बिल्कुल, दक्षिण अफ्रीका के फैंस जो हैं उन्होंने ओवल मैदान से अब प्रस्थान करना भी शुरू कर दिया है और इबारत ऐसा लग रहा है कि लिखी जा चुकी है। दक्षिण अफ्रीका हार की कगार पर और इंग्लैंड जीत की दहलीज पर ओवल के मैदान पर इस दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में अयाबोंगा खाका का आगमन हुआ है, जो कि मूल रूप से एक गेंदबाज है। बल्ले से क्या कुछ खास योगदान रहा है, उनका स्ट्राइक रेट है 61 का और सर्वोच्च स्कोर है 12 नाबाद रन जो उन्होंने बनाए थे। दूसरे छोर पर नेडिन डी क्लार्क हैं, 10 गेंदों में 10 रन बनाकर खेल रही हैं। लॉरेन बेल ओवर की अगली गेंद लेकर, दो डॉट डिलीवरीज हैं। पिछली गेंद पर एक रन आउट आया था, बहुत ही बढ़िया स्लोअर डिलीवरीज का कितना बेहतरीन इस ओवर में उन्होंने इस्तेमाल किया है। और डैनी वियाट-हॉज, जैसा कि दर्पण बता रहे थे कि भले ही बल्ले से योगदान नहीं कर पाई हो, लेकिन जो एक कंप्लीट टीम बनती है, क्रिकेट कहते हैं कि टीम गेम है, फ्लैशेज ऑफ ब्रिलियंस आते हैं, लेकिन जब कंप्लीट टीम, हर खिलाड़ी अपने अपने अंदाज में अपनी अपनी तरफ से योगदान देता है, तब वो सूरत हाल निभर कर सामने आती है जो इस समय इंग्लैंड के इस मुकाबले में उनकी ओर से उभर करके सामने आ रही है। पटकी हुई गेंद थी, आंख मूंद करके खेला गया स्ट्रोक, बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर के गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर जा चुकी है 4 रनों के लिए।
3: ये लगा आभा का चौका।
2: ज्यादा कुछ समझ में आया नहीं था अयाबोंगा खाका को, पटकी हुई गेंद थी, कंधे की ऊंचाई तक आई थी और उन्होंने आगे बढ़ करके ऑन साइड में स्ट्रोक खेलने का उपक्रम किया था। हालांकि गेंद की लाइन से हट गई थी, अपना चेहरा भी उन्होंने दूसरी ओर घुमा लिया था और इसी बीच नॉन स्ट्राइकर एंड पर नेडिन डी क्लार्क जो खड़ी हुई है, उनका भी बल्ला गिर गया। तो काफी कुछ हो रहा है, लेकिन वो सब कुछ ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड के पक्ष में जाता हुआ प्रतीत हो रहा है और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जाता हुआ दिख रहा है। नेडिन डी क्लार्क, चेहरे पर उनकी मुस्कुराहट है, लेकिन दिल में कहीं बहुत दर्द होगा कि आज भी टीम उनकी कामयाब नहीं हो पाई है। यॉर्क करने की कोशिश थी, परफेक्ट यॉर्कर लॉरेन बेल ने बोल्ड कर दिया है अयाबोंगा खाका को और 19 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर अब पहुंच चुका है 123 रन 8 विकेट के नुकसान पर, यानी सिर्फ 2

0: खिलाड़ियों ने बाकी लॉरेन बिल की कितनी तारीफ की जाए, क्या बेहतरीन गेंदबाजी इस पर्टिकुलर ओवर में उन्होंने की है। बैक ऑफ द हैंड से फेंकी गई उनकी गेंद, परफेक्ट यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी, एक माइटी हीव का प्रयास मिड ऑन, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट की दिशा में, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। अयाबोंगा खाका की इस पारी का अंत हुआ जहां पर एक मिस्क्यूड चौका उनके बल्ले से निकला था तीन गेंदों में चार रन बना करके। वो पवेलियन वापस जा चुकी हैं और अब कह सकते हैं, वैसे क्रिकेट के मैदान पर ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन जीत दर्पण सिर्फ एक औपचारिकता इंग्लैंड की टीम के लिए।
1: ऑफ कोर्स 47 नीडेड ऑफ द फाइनल ओवर, लेट्स डू द मैथ, it's not possible, you know it. 123 for 8 South Africa, and possibly for the last time in international cricket, Shabnim Ismail makes her way to the 22-yard playing strip, albeit as a batter. She's not in the side for her batting. She announced her retirement in 2023, came back specifically for this tournament, but it looks like South Africa will not be able to go all the way. Semi-final coming to fruition, last six deliveries remaining. South Africa need an improbable 47 to win, and Nadine de Klerk is on strike. Lindsay Smith to bowl the final over. Starts off with an arm ball slanted in towards the leg stump off a good length. The batter backs away and then works it through the gap between backward point and cover. And Freya Kemp, who was stationed at cover, runs across to the boundary and then puts in a slide to pick up the ball and keep the batters down to two. 125 for 8, 5 deliveries remaining, and South Africa need a bazillion runs to win. Only going through the motions here. 5 balls before the match comes to an end. There comes a slog sweep from Nadine de Klerk. The ball's in the air and it will land safely. Danny Gibson ran in from the mid-wicket boundary and could not get to the ball. A comfortable single taken. However, it's not going to haunt England. 126 for 8 after 19.2.
0: 19.2 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है इंग्लैंड की ओर से, यानी आखिरी चार गेंदें फेंकी जानी शेष हैं इस सेमीफाइनल मुकाबले में। और जैसा हमने पिछले ओवर के आखिर में कहा कि जीत अब सिर्फ औपचारिकता लग रही है इंग्लैंड के पक्ष में, और वो T20 विश्व कप जो कि उनकी ही मेजबानी में इंग्लैंड और वेल्स में खेला जा रहा है, फाइनल में पहुंचने की दहलीज पर है। अगली गेंद जिस पर शबनम स्माइल ने ऑन साइड में धीमे से खेला है, गेंद को एक रन के लिए दोनों बैटर्स ने छोर बदल लिया है। और इस मुकाबले में मैरिजन कैप ने सबसे ज्यादा डॉट डिलीवरी डाली थी, लेकिन लॉरेल बेल ने उनको मैच कर लिया है। 12-12 डॉट डिलीवरीज डाली गई हैं दोनों गेंदबाजों के द्वारा। लिंसे स्मिथ आई हैं इस पारी का आखिरी ओवर लेकर, फ्लैटेस्ट डिलीवरी है, अंदरूनी किनारा लिया है, लॉरेन बेल के पास पहुंची है, शॉर्ट फाइनल की दिशा में। रन बनने की कोई संभावना नहीं, 127 रन 8 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में 4 रन बने जरूर हैं, लेकिन मुकाबला लगभग समाप्त। और मैच के समाप्त होने के बाद आप सुनेंगे स्टूडियो एंड से हमारा कार्यक्रम हीरो 2020।
1: नेक्स्ट डिलीवरी आउटसाइड द ऑफ स्टंप ऑन अ गुड लेंथ, गोज फॉर अ लॉफ्टेड शॉट, डज नदीन डी क्लर्क, फाइंड्स एब्सोल्युटली नोवेयर नियर द डिजायर्ड टाइमिंग, द बॉल लैंड्स वेल शॉर्ट ऑफ द लॉन्ग ऑफ फील्डर, एंड बिफोर द फील्डर कैन पिक इट अप, थ्रो इट बैक टू द 22-yard प्लेइंग स्ट्रिप, अ कंफर्टेबल सिंगल हैज बीन टेकन, दैट टेक्स द स्कोर टू 128, and that brings Shabnim Ismail on strike. Final ball of the second semi-final. The result is a foregone conclusion, but possibly for the last time in international cricket, we will see Shabnim Ismail in action. Here comes the arm ball, which pitches outside the leg stump and then moves towards the stump. Ismail tucks it towards backward square leg, picks up a single, and just as the ball becomes dead, the celebrations begin in the England dugout. 129 for 8 is what South Africa have managed. There's a sonic explosion in the stands at the Oval as the home crowd celebrates the victory of their women's team. England's men's team's former World Cup winning skipper Owen Morgan, who's in attendance, gives the women's team a standing ovation. They won this match by 40 runs and moved one step closer to achieving that dream which they have waited for a while now. It was in 2017 last time England's women's team achieved an ICC trophy. Will they be able to do it in 2026? The last time they won a T20 World Cup was

0: चार सात सात
1: प्लेयर ऑफ द मैच। England continue with their ruthless run to hand South Africa a 40-run loss in the second semi-final, which now means that two unbeaten teams would be facing off in the summit clash, Australia and England. Hello and welcome to Player of the Match. I am Megha and joining me in studio as my co-host is Dharmendra.
2: And Megha, our mehman, Khyati Gulani, former cricketer, Jishanul Yaqeen, former cricketer, and G. Rajaraman, varishth khel patrikar. Raja, शुरुआत फिर से आप ही से करते हैं। कंडीशन का बेहतर फायदा उठाया इंग्लैंड की टीम ने साउथ अफ्रीका के मुकाबले, क्योंकि गेंदबाजी भी देखें बिल्कुल प्लानिंग के अनुसार हुई, जो फील्ड थी उसके अनुसार गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, कप्तान ने धीमी गति के गेंदबाजों का ज्यादा इस्तेमाल किया, सब कुछ इंग्लैंड के फेवर में रहा।
3: बहुत चालाक अप्रोच था, बहुत ही चतुर अप्रोच था, आई थिंक सेंसिबल और स्मार्ट है कि गेम जीतना है आपको और उसके लिए जो करना है इंग्लैंड ने वो सारी चीजें की है सिवाय टॉस जीतने वाली बात। देखिए टॉस में भी इंग्लैंड की कप्तान बोल रही थी कि वो भी गेंदबाजी करना चाह रही थी पहले, लेकिन उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ क्योंकि जैसे जैसे मैच चलता गया पिच और धीमी होती गई एंड बॉलर्स कीपिंग लो, तो उनके लिए फायदेमंद साबित हो गया। 40 रन बहुत ज्यादा होते हैं सेमीफाइनल में, 180 और 140 की बात हम कर रहे थे, लेकिन 40 रन से काफी आसानी से जीता है। वन साइडेड मैच रहा, फैंस निराश रहेंगे लेकिन सबसे ज्यादा निराश तो साउथ अफ्रीका होगी कि दो बार लगातार फाइनल खेलते हुए तीसरी बार हैट्रिक नहीं कर पाए, लेकिन दे ओनली हैव देमसेल्फ टू ब्लेम।
1: Khyati, continuing that conversation about England's bowling attack, all-round show from the bowlers, every bowler contributed their bit in creating pressure on the batters.
4: Yeah, definitely. If you see this Eccleston and Lauren Bell, they have participated really well, and their batters as well. And if we talk about fielding also, I mean, they are far ahead from the other team. And the bowlers like Lauren Bell, she brings little flavor in that. Eccleston, she's known for her breaking the partnerships. I think it all in all it was a very good performance by the bowlers.
2: और जिशा, अगर हम बात करते हैं बल्लेबाजी की, जो साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी रही, खासतौर पर कप्तान वुल्फार्ट अच्छे टच में आज दिखाई दे रही थी, पावर प्ले के जो ओवर्स चल रहे थे उसमें ठीक ठाक रन भी आ रहे थे, आपको लगता है कि थोड़ा सा वक्त उनको और बिताना चाहिए था, क्योंकि सब कुछ उस समय तक उनके हक में जा रहा था?
5: बिल्कुल, ये तो जाहिर सी बात है कि अगर आप ये सोचेंगे कि आपके पास यही दो बैट्समैन थे जो कि परफॉर्म करते आ रहे थे शुरू से, और साउथ अफ्रीका की जीत में सबसे बड़ा अहम किरदार जो था इन्हीं दोनों का था खासकर, तो मेरे ख्याल से इनको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आज लेनी चाहिए थी, इसलिए ये बड़ा मैच था सेमीफाइनल। एक किसी भी बैट्समैन को ये कोशिश करनी चाहिए थी कि वो आखिर तक लेकर के मैच में जाना चाहिए था, बाकी बैट्समैन जो भी बैटर्स थे उन बैटर्स को उनको चाहिए था कि उनको वो उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से यूटिलाइज करके उनसे रन निकाल करके मैच को जीतने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं प्लानिंग्स जो उनकी थी या जो कुछ भी था, या ये आप कह सकते हैं कि

0: बिग गेम, इससे बेटर अप्रोच की उम्मीद थी. आई थिंक इंग्लिश प्लेयर्स यहाँ पे ज्यादा प्रिपरेशन के साथ आए थे और दे न्यू द कंडीशंस एज वेल. उनको पता है कि कौन सा किस तरीके से आपको कौन से स्ट्रोक्स यहाँ पे आपके ऑन रहेंगे, कौन से स्ट्रोक्स आपको रोकने हैं. और बॉलर्स भी बहुत अच्छा यूटिलाइज करते, अपने फील्ड सेटिंग बहुत अच्छी थी. इनफैक्ट द वे द फील्डर्स वर फील्डिंग वॉज ऑल्सो कमेंडेबल.
1: जीशान अपेरेंटली प्लान ए बी सी साइमल्टेनियसली लेकर चल रही थी साउथ अफ्रीकन टीम, क्योंकि एक सवाल जो लगातार उठ रहे थे क्योंकि फाइनल सेमीफाइनल तक पहुंच गई तो शायद फिर वो सवाल कम हो गए थे, वो ये था रोल क्लैरिटी का, क्योंकि खिलाड़ियों को एक सेट ऑर्डर नहीं दिया जा रहा था, एक सेट रोल वहां पर नहीं दिया जा रहा था.
2: बिल्कुल, देखें क्रिकेट का एक बहुत ही बेसिक चीजें होती है क्रिकेट में, और मुझे नहीं मालूम कि उनके जो सपोर्ट स्टाफ है या जो कोई भी उनको समझाते होंगे कि कैसे खेलना है क्या है, वहां मुझे नहीं लगा कि कहीं कोई उनको कोई गाइडेंस मिल रहा था. इसलिए कि जो भी बैटर आ रहे थे वो अपने हिसाब से खेल रहे थे, मुझे नहीं लगा कि कोई कहीं से गाइड करने की उनको कोई दी जा रही थी. हाँ, ये जरूर है कि अगर प्लान ए खराब होता है, कैप्टन अगर उनकी शुरू में आउट हो जाती है और एक बैटर अगर खेल रही है, तो कोशिश ये होनी चाहिए थी कि ज्यादा ये होना चाहिए था. मैंने पहले भी कहा कि अगर इस मैच को जीतना है तो इनको रोटेट करना पड़ेगा, इनको मेहनत करनी पड़ेगी, दौड़ के रन बनाने पड़ेंगे. अगर ये कोशिश करेंगे ये कि हम चार से और छह से कोशिश करके और निकालेंगे मैच का, तो वो बहुत मुश्किल है. इसलिए कि इनके जो बाकी जो बैटर रहे हैं उनके जो परफॉर्मेंस इस सीरीज में है बहुत ज्यादा नहीं रहे हैं. यही दो जो ओपनर्स थे इन्होंने सबसे ज्यादा रन भी बनाए हैं और बैटिंग करके अपनी टीम को जिताने की कोशिश की है. जब भी इन्होंने देखा कि इनके कैप्टन आउट हो गए हैं, तो इन्हें कोशिश ये करनी चाहिए थी कि जो एक तरफ अगर वो खेल रही थी तो उनको ये कोशिश करना चाहिए था कि वो हिट करती, दूसरा जो बैटर आता उससे ये बात करना चाहिए था कि इनको रोटेट करो रोटेट करो. ये प्लान बी होने चाहिए थे, जो कि नजर नहीं आया मुझे यहाँ पे कहीं से भी कुछ भी. वो एक बिखरी सी टीम नजर आ रही थी, और वो बिखरी सी टीम अगर सेमीफाइनल जैसे स्टेज पे आने के बाद से ऐसे बिखर जाना, थोड़ा सा मुझे अफसोसनाक ये रहा है इस मैच को देखने के बाद. लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे इंग्लैंड के जो की जो कैप्टनशिप भी रही है इसमें, उनकी फ्री प्लेसमेंट, उनकी फील्डिंग्स, उनकी बॉलिंग का वो तरीका जहां बॉल डालना चाहिए था. स्पेशली मुझे खासकर रमन सर, अगर आप याद होगा कि हम लोग भी बात कर रहे थे पीछे भी इस सिलसिले में कि कैसे क्या होगा आगे की चीजों को लेकर, तो मुझे लगता है कि टीम ने कहीं लाइक किया
1: बिल्कुल. और इस पे कैसे देखते हैं दो कप्तान, इसे कैसे इसका आकलन करते हैं, आइए सुनते हैं पहले साउथ अफ्रीकन कप्तान लॉरा वॉल्फार्ट और उसके बाद इंग्लिश कप्तान को.
3: Today by a really good England side, and yeah, I think they played really well.
4: You've been in situations like this before and you've been able to get over the line, so what was different this evening?
3: Not too sure. I think the main difference between our innings and theirs is just they had so many more partnerships. Obviously we started really well with the ball and then they had that really big partnership, and I think we just didn't have any partnerships to sort of speak of, and didn't really have any batters that really got going. So frustrating to lose this well on a big stage, but yeah, we'll go back to the drawing board.
4: Did the pitch play as you expected to in that second innings, and what did you feel was traceable at the halfway stage?
3: Yeah, I thought it was a pretty decent pitch, coming on quite nicely. Thought 170 was about par, pretty happy with that. Yeah, I thought, especially with the outfield as well, it's lightning, I thought it was going to be tough to defend. But yeah, I think they bowled pretty well. Taylor had different plans for us, and yeah, we weren't able to step up.
4: How difficult is it to play against a team that have so much home support as well in a ground like this?
3: Yeah, I think it does play a role, but it was so cool to see so many fans here tonight. I think it just adds sort of to the vibe and the energy. A couple of South Africans as well that I saw, so yeah, that was nice.
4: And just lastly, just on South Africa on the whole through this tournament, you know, a lot of positives obviously for you to get to this point. How will you reflect on, you know, what you put and what you brought to the table?
3: Yeah, decent campaign for us. I think happy to have made it out of this group stages. I think upon reflection, our batting never really fired throughout the competition. We had some glimpses here or there, some special innings throughout the tournament, but I think as a whole, we just weren't quite clicking. So yeah, and I think that showed again a bit today, but yeah, I think our bowling and our fielding was pretty good throughout. So yeah, I think we'll have a look at what we've done wrong and hopefully be better next time.
4: A lot of experienced players within that squad, but a lot of young players coming through.

0: 2018 में भी इन दोनों टीमों के बीच फाइनल हुआ था। परिणाम राजा बिल्कुल उसी अनुरूप है जिसका पूर्वानुमान लगाया जा रहा था इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले कि फेवरेट टीमों में ऑस्ट्रेलिया होगी, इंग्लैंड होगी।
1: ऑस्ट्रेलिया तो हमेशा ही होती है। आई थिंक ऐसा कोई क्रिकेट टूर्नामेंट हो नहीं सकता जहां पे ऑस्ट्रेलिया का महिला टीम आप उनको फेवरेट ना माने। साउथ अफ्रीका का चैलेंज काफी स्ट्रांग हो सकता था, लेकिन क्योंकि इंग्लैंड घर पे खेल रहा है और वो दे हैव गॉट अ वेरी गुड टीम, तो इंग्लैंड वाज आल्सो वन ऑफ द फेवरेट टू मेक इट टू द फाइनल। यही देखने मिला है कि दो अच्छी टीम होंगे फाइनल में, और उम्मीद यही कर सकते हैं फैन बन के कि फाइनल अच्छा मुकाबला हो। क्रिकेट डिजर्व्स गुड कॉन्टेस्ट, नॉट वन साइडेड मैचेस, खास करके T20 में जब आप 40 रन से जीत रहे हो और दोनों सेमीफाइनल काफी वन साइडेड रहे, तो होपफुली फैंस विल गेट अ गुड फाइनल।
0: और श्रोताओं, आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे इस कार्यक्रम के साथ, सवाल कोई करना चाहते हैं हमारे विशेषज्ञों के साथ, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई राय है आपकी, तो हमें कॉल कर सकते हैं 0112342108 और 0112342108 पर। और हमारे इस कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी अरविंद जी, क्या कहना चाहते हैं, क्या सवाल करना चाहते हैं? जी जी, और सवाल कोई आपका? जी ये बहुत अहम सवाल है कि दक्षिण अफ्रीका की टीम बड़े मौकों पर अक्सर जो है फिसल जाती है, हालांकि पिछले दो मौके ऐसे जरूर रहे खाती जब इंग्लैंड की टीम को साउथ अफ्रीका की टीम ने शिकस्त दी थी, लेकिन ये एक बार फिर ऐसा मौका आया जहां साउथ अफ्रीका की टीम लड़खड़ाई और फिर टूर्नामेंट से बाहर हो गई है।
2: जी बिल्कुल, अगर आप देखें कि इंग्लैंड की जो टीम है वो पूरे प्रॉपर प्लान के साथ आई थी, हर चीज का उनका एक प्लान रेडी था, बॉलर्स के लिए प्लान ए प्लान बी था, सेम वे उनका बैटर्स के लिए भी प्लान ए प्लान बी था, तो वो वहां पे आई थिंक थोड़ी सी चूक हुई है साउथ अफ्रीकन टीम से, जो होती ही रही है। थोड़े बेटर होमवर्क के साथ वो आ सकते हैं कि अगर आप इस सिचुएशन में पहुंचते हैं तो आपको किस टाइप का गियर लगाना है और आपके कौन से प्लेयर्स आपको एज ए बॉलर्स यूज करने हैं, अगर कोई अच्छी पार्टनरशिप बन रही है। इतने अच्छे 3 विकेट स्टार्टिंग में लेने के बाद जो पेसर्स ने काफी अच्छा आई थिंक प्रदर्शन दिया, उसके बाद जो उनके स्पिनर्स उतना पिचिंग नहीं कर पाए।
3: 2011 के विश्व कप से पहले पुरुषों के विश्व कप में किसी भी मेजबान टीम ने जीत नहीं हासिल की थी, उसके बाद एक सिलसिला सा शुरू हो गया जहां पे कई बार मेजबान टीम ने खिताब जीता। महिलाओं के विश्व कप में हालांकि 2009 में जब पहली बार T20 वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड ने खिताब जीता, 2017 में ओडीआई विश्व कप अपने नाम किया घर पे, अभी वापस घर पे खेल रही है इंग्लैंड की टीम, तो काफी सारे बॉक्सेस इस नैरेटिव में टिक हो रहे हैं। जीशान
4: कह सकते हैं इस चीजों को, खैर ये तो एक मैं ये कह सकता हूँ कि एक ऐसा
3: कोइंसिडेंस
4: माने इसको या आप ये कहें, लेकिन सच ये है कि होम सीरीज कोई भी अगर होती है या होम कोई टूर्नामेंट बड़ा होता है तो उसका थोड़ा सा फायदा जरूर से वहाँ की होम टीम को होती है। उसकी वजह है कि बहुत सारे खासकर जो वुमेन्स की टीम का ये टूर्नामेंट वर्ल्ड कप हो रहा है, तो आप ये समझें कि कहीं ना कहीं बड़े जो क्रिकेटर्स हैं वो कहीं अगर कॉमेंट्री भी कर रहे हैं और अपनी कॉमेंट्री में भी कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो कि सपोर्ट स्टाफ को आइडिया लगता है और उसके ऊपर वो भी अमल करने की कोशिश करते हैं, तो आप समझें कि वहाँ पर इनको बहुत सारे सपोर्ट्स हैं इंग्लैंड को आज के दिन में। अगर होम सीरीज होती है तो हमारे यहाँ भी होता है, अगर हमारे हिंदुस्तान में भी अगर इस तरह का कोई होम सीरीज होता है तो वहाँ हमारे यहाँ भी जो बड़े लीजेंड जो कमेंट्री में बैठे होते हैं वो कुछ कुछ अपने हिंट ऐसे देते हैं जिससे कि उससे फायदा होता है। तो मैं ये जरूर से कहूंगा कि ऑब्वियस है 2009 के बाद से 2026 का जो ये टूर्नामेंट है कहीं ना कहीं वो रिपीट होने की तरफ बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है।
0: और मेरा हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, हम स्वागत करते हैं उनका, स्वागत है आपका, नाम बताइए। नमस्कार।
4: नमस्कार,
0: बताइए सवाल।

तो मेरा मानना ये सेटेलाइट वगैरह उससे चीजों का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि ये करण बहुत भारी पड़ते हैं चीजों में।

0: मेरा मानना ये सब लाइट वगैरह उससे चीजों का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि ये के कारण बहुत भारी पड़ते हैं तो पूजा में। तो ये लाइट प्राणी प्राणालय में ये मशीनों का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। जो
1: So Sanjay ji advocating for further innovation. Now the two things that he touched upon involve a lot of subjectivity, because wherever humans are involved in decision making, obviously there'd be that subjective perspective. I think this was better. You think that was better, Raj?
2: So we'll never be satisfied. Any amount of technology. Let's take LBW. पहले तो टेक्नोलॉजी आया उसमें भी हमको वी आर फाइंडिंग गैप्स थे। DRS इज सपोज टू हैव इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग, लेकिन आई थिंक वी आर स्टिल ओनली 95%, वी कैन नेवर बी 100%। और क्रिकेट एक ऐसा खेल है मेगा जहाँ पे ह्यूमंस खेलते हैं तो ह्यूमन का जजिंग एलिमेंट जरूरी है। आई एम ऑफ द फर्म ओपिनियन दैट वी शुड लीव एवरीथिंग टू द अंपायर्स। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज करने से दिक्कतें आने लगी। आई थिंक वी आर रिलाइंग टू मच ऑन डेटा एंड वेरी लिटिल ऑन इमोशन। आई थिंक स्पोर्ट इज अबाउट इमोशन, एंड इफ यू कैन गो बैक टू कीपिंग इट एन इमोशनल थिंग विल बी गुड। लेकिन देयर इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ वैलिडिटी इन आस्किंग फॉर डेटा and for data to be used in decision-making processes. But I think it's a very simple game and we are complicating it by getting into much technology.
3: And Khyati, if you look at the match today, England has won very well. And the condition was talking about and all the things were talking about. Australia was the final match. Australia was the top of its group in the semi-final. And here in England, it was the same thing. फाइनल कैसा होने वाला है?
4: देखिए, अगर आप देखेंगे उनकी जो टॉप ऑर्डर बैटर है वो काफी अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन टीम का, वहीं पे इंग्लैंड टीम को आई थिंक अपने जो टॉप थ्री बैटर्स हैं उनको थोड़ा और बेटर प्लान के साथ आना होगा कि इस टीम के साथ आप इतना रिस्क नहीं ले सकते कि आपके पहले तीन बैटर्स जल्दी आउट हो, क्योंकि उनके पास ऐसा बोलिंग लाइनअप भी है जो वो कम बैक कर सकते हैं। तो आई थिंक अगर आपके पास आपको एक अच्छा फाउंडेशन मिलता है विद योर ओपनिंग बैटर्स, डेफिनेटली देन आप उस कॉन्टेस्ट में होंगे, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट विद द टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया।
5: विशान, हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी में जो विविधता है, उनके पास लेफ्ट आर्म एंगल है लूसी हैमिल्टन का पेस में और स्पिन में भी, दे गॉट ऑल द बेसिस कवर्ड।
6: देखिए, प्लेयर्स जो भी है उनके पास में, आप जिनके भी नाम ले रहे हैं सारे हैं, और भी सारे उनके अच्छे प्लेयर्स हैं उनके पास में ऑस्ट्रेलिया के पास। जो सबसे बड़ी जो खासियत है उनमें कि उनके पीछे में 6 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप का एक बहुत बड़ा मोरल बूस्ट करने के लिए उनके पास में एक चीज है जो कि इंग्लैंड के पास में नहीं है। तो ये एक प्लस पॉइंट उनके साथ में जरूर से है ऑस्ट्रेलिया के साथ में। लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की टीम और अगर इंग्लैंड की टीम, दोनों टीमों को हम देखेंगे अभी के वक्त में, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज भी हम जो देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे इंग्लैंड टीम जो है वो अब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है। जिस हिसाब से उन्होंने आज परफॉर्मेंस किया है तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो फाइनल मैच है वो बहुत बेहतरीन मैच होगा। और कहीं ना कहीं मुझे अब एहसास ये हो रहा है या इंट्यूशन से हो रहा है मुझे कि कहीं वो 2009 वापस जो कह रही थी कि क्या घर वापसी होएगी क्या, तो मुझे लगता है कि वो घर वापसी होने का वक्त आ गया है। कब? 5 तारीख को।
5: Well, this chance are emerging from the US as well, where yesterday night England handed DR Congo a defeat in the dying minutes, but today England completing a comprehensive victory over South Africa to romp into the finale. Thanks a lot to each one of our analysts.
6: Thank you
5: Dharmendra.
3: Shukriya.
5: And now we'd be back with that final clash, where on one hand Australia having been

हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, रात्रि के 2:44 मिनट हो चुके हैं। अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। सवेरे 5:53 मिनट पर प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। शुभ रात्रि। जय हिंद।